0: असली नहीं लगता है। इसके अलावा भाग रहा व्यक्ति सड़क किनारे लगी जिस होर्डिंग पर चढ़ता है उस पर लिखे गए कई टेक्स्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर ये इंदौर का वीडियो होता तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र जरूर होता, लेकिन हमें कहीं भी इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक एक्स यूजर के अकाउंट पर 8 अगस्त को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पोस्ट में बताया गया है कि वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में 99.8% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। वायरल हुए वीडियो को हमने एक और एआई डिटेक्शन टूल डी फेकोमीटर पर भी जांचा। इस दौरान टूल के 6 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो के एआई जनरेटेड होने की उच्च संभावना जताई। इसके अलावा हमने इंदौर में हाल के दिनों में हुई ऐसी किसी घटना के बारे में भी सर्च किया जिसमें पुलिसकर्मियों के किसी चोर का पीछा करने, उसके बस की छत पर चढ़ने और फिर होर्डिंग पर पहुंचने जैसी घटना का जिक्र हो, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। यह वीडियो एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: केरल में हालिया आई बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ दिखाया जा रहा है। यूजर्स उसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: केरल में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। केरल की बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसी भाषा लग रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो केरल का नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट

0: इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला, जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिलबोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिलबोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहराह ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: बेटियां जब अपने सपनों को पूरा करती हैं तो माता पिता के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात शायद ही कोई हो। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक ऐसा ही प्यारा पल लोगों का दिल जीत रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेटी ने पहली बार अकेले विमान उड़ाकर अपने जीवन का एक बड़ा सपना पूरा किया। अपनी इस खास उपलब्धि को उसने अपने पिता के नाम किया और सिर्फ 2 शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने अपने पापा को थैंक्स डैड कहा। बताया जा रहा है कि ये खास का है जहां बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से जब बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की तो उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चों के साथ कार की सफाई करता नजर आया। माहौल बिल्कुल सामान्य और प्यारा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने ऐसी मदद कर दी कि पिता के होश उड़ गए। वीडियो में छोटी बच्ची घर के बाहर पानी का पाइप हाथ में लिए खड़ी नजर आई। कार का फ्यूल टैंक खुला हुआ था। बच्ची निश्चल भाव से पाइप को टैंक के मुंह में डालकर पानी भरने लगी। वो खुशी खुशी पापा पापा चिल्लाती है ताकि पिता उसकी मदद देख सके। पीछे की तरफ पिता पूल साफ कर रहा था। जब वो मुड़ता है और नजारा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चीखता हुआ दौड़ता है, पाइप छीन लेता है, लेकिन तब तक काफी पानी फ्यूल टैंक में जा चुका होता है।
3: मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
2: एक माँ और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ किचन में रोटी बेल रही है, तभी वहाँ उसकी बेटी पहुँचती है और कहती है मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
4: माँ एक रोटी निकाल कर दे देती है और कहती है कि पापा से पूछकर बताना कि सब्जी कैसे बनी है।
5: पापा से पूछ कर सब्जी कैसे बनी है।
3: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते हो।
2: उसके बाद बेटी जवाब देती है कि पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो। यूजर्स बच्ची के इस मासूमियत भरी जवाब पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
3: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते।
6: ये आंटी अराउंड मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से चलती हुई आ रही है।
2: बारिश से जलमग्न दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी सी मदद का बड़ा दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक बाइकर ने पानी भरी सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और उन्हें पीछे बिठाकर सुरक्षित पार कराया। वीडियो में दिखता है कि जैसे बाइकर की नजर उस महिला पर पड़ती है और उसके पास रुक जाता है, फिर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने में मदद करता है और उसे पानी से भरे रास्ते से होते हुए ले जाता है।
6: पानी में बहुत स्लो स्लो ये भाई मिला, बहुत बढ़िया लगा मेरे को देख के। मैं सोच रहा था कि कौन इनकी हेल्प करेगा। बढ़िया है।
2: बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं बल्कि डॉग ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं। ये नजारा इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों ही मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से इतने साफ लहजे में हिंदी बोल रहा है कि लोग देखते ही रह गए।
7: थोड़ी दोस्त, थोड़ी दोस्त।
2: भारत के प्रति विदेश बुजुर्ग की दीवानगी और बात करने का अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
7: लेकिन देखिए सब सारी किताबें जर्मन में हैं और ये भिन्न-भिन्न देशों के बारे में।
2: इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जर्मन पर्यटक सिर्फ किताबी या बनावटी हिंदी नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनके बोलने के तरीके में एक देसी टच साफ झलकता है। शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और माँ को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है। उसके चेहरे पर माँ की कमी का दर्द साफ नजर आता है। इस भावुक पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है वो बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 93 साल है और 71 साल इनके शादी के हो गए हैं लेकिन इस दौरान इनका प्यार उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी जवां होता जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंचती है और उत्साहित होकर पूछती है इस ड्रेस में वो कैसे लग रही है। पति चौंक कर पूछता है क्या। पत्नी फिर बोलती है मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद पति दरवाजा खोल कर अपनी पत्नी को देखता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो ये दिखाता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब पति और पत्नी के बीच तालमेल बेहतर हो। कभी कभी किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश किसी के लिए कही गई अच्छी बात या फिर अचानक मिला कोई प्यारा सा सरप्राइज भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक मेले या उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थी और आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके लिए एक यादगार पल आने वाला है। इसी दौरान पास में मौजूद एक युवा कलाकार की नजर महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी। उसने महिला अफसर का एक पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया और बिना किसी को परेशान किए उनका स्केच बनाने लगा। कलाकार काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। वो उनके चेहरे की बारीकियों को कागज पर उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। सबसे खास बात ये थी कि महिला अफसर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे स्केच पूरा हो गया। कलाकार ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उस पर एक प्यारा सा नोट भी लिखा। इसके बाद उसने अपनी स्केच बुक उठाई और सीधे महिला पुलिस अधिकारी के पास पहुंच गया। जब कलाकार ने महिला अफसर को उनका पोर्ट्रेट दिखाया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी ड्यूटी के दौरान उनका इतना खूबसूरत स्केच बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर अपनी तस्वीर देखी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर आई खुशी देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि छोटा सा सरप्राइज उन्हें सच में पसंद आया। इन दिनों सामने आए हाथियों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नन्ना हाथी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जर की केबल में फंस जाता है। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता नजर आता है। उसके बाद उसकी माँ जो करती है उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि हाथी का बच्चा ईवी चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां मौजूद चार्जर की केबल किसी तरह उसके शरीर में उलझ जाती है। बच्चा केबल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो बेचैनी में इधर उधर हिलता है और अपनी माँ की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। बच्चे को परेशानी में देखकर हथिनी तुरंत उसके पास पहुंचती है। माँ अपने बच्चे को चारों तरफ से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस चीज में फंसा हुआ है। इसके बाद वो बिना ज्यादा समय गंवाए चार्जर की तरफ बढ़ती है। फिर आता है वीडियो का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा। हथिनी अपने सिर और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए चार्जर को जोरदार धक्का देती है। उसका एक ही धक्का इतना जोरदार होता है कि चार्जर नीचे गिर जाता है और बच्चे के लिए रास्ता साफ हो जाता है। बच्चा भी जैसे ही आजाद होता है राहत महसूस करता दिखाई देता है। माँ भी उसके पास बनी रहती है। हथिनी और उसके बच्चे की ये पूरी घटना चार्जिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या है इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कैसा होगा आपकी राशियों पर असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
1: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा, घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आए। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुंचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: योग से न सिर्फ तन स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी ऊर्जावान बना रहता है। इन बच्चों को देखिए, अपने फिटनेस के दम पर क्या सुंदर फॉर्मेशन बनाए हैं, वो भी मिनटों में, कोई चूक नहीं। इनके बीच तालमेल भी गजब का है। योगा स्टूडेंट्स का ये वीडियो देखकर लोग इनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। प्लास्टिक की डोरी चाहिए और वो बाइक में फंसी हुई है, सो खूब दिमाग लगाया जा रहा है, कभी इधर से तो कभी उधर से निकालने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन डोरी है कि निकल नहीं रही। पर कौवा भी हार नहीं मान रहा, उसने तब तक कोशिश की जब तक की डोरी निकल नहीं गई। लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं हमें भी तुरंत हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो चाहिए उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। खेल भी, एक्सरसाइज भी, देखिए जरा इन्हें, टास्क मजेदार मिला है। दो अलग अलग घेरे और उनमें ही एक एक पांव रखना है और फिर एक हाथ गर्दन के पीछे रखनी है और एक हाथ से सामने रखी पेंसिल उठाकर पीछे के चौकोर घेरे में डालनी है। ध्यान रहे पेंसिल बाहर ना निकल पाए। प्रतियोगिता दो बच्चों के बीच है और इसे जीतने के लिए दोनों बच्चे जिस तरह से मेंढकों की तरह उछल कूद कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: आज लगने जा रहा है साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा। भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी। इम्फाल में असम राइफल के पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा। दिल्ली में वाहनों की कड़ी चेकिंग। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति। निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है ये पोत।

0: से पुर्तगाल में की सिविल मैरिज, दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी शादी की खुशखबरी। क्रोएशिया में पुनाड अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र, गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समंदर के अंदर की सैर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
1: पर धन्य है हनुमान जी, आ हा हा, हनुमान जी से सीखो।

0: विचार करो, हनुमान जी को किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता बता, जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान
1: ज्ञान गुण सागर,
0: जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो, और जो स्वयं राम दूत अतुलित
1: बल धाम,
0: स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो ना, कटारो नहीं ना। पर धन्य हनुमान जी, ज्ञान के सागर बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे? बूढ़े जामवंत जी से। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो, कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है, जामवंत के
1: वचन सुहाए,
0: गाइए सुनी हनुमंत। कभी भी बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है, ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग, हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, अब तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। क्या? सुनी हनुमंत
1: हृदय अति भारी।
0: वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करूं तात तुम जाई, सीतह देख कहो सुध आई। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को उजारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर, पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जितनी चाबी बांधो उतने ही चलते। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी, पर चाय तो उठाई पर मैं डंका की उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था, बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी, आपने वो तो कहा ही नहीं था। बताओ, हम कहा धन्य है बेटा, हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो। उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हम कहा क्या उल्लू आदमी है, हम कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया, हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले, तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं, उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन, मेरा कक्का? पता है क्या बोला गुरुजी, ये तो आपने कही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना कहो उतना ही करते हैं, पर हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी को समझ आ गया कि जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं, वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलो, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है, और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलो कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है। हनुमान जी कैसे जी रहे,

जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई। दूसरी बात और समझने जैसी, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की बातों को सुनकर हर्षित भए। क्यों? ज्ञान है, जहां से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहे, बुरा ना मानना। मेरे पागलो, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पालन। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं, पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित भए, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, तीन कारण हैं दुख के, वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य तीन हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन बताओ, बताओ। ले तुमने बत्ती से दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहो। मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार, बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या, दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हाँ जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है,
किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो दो बैंड बाजा बजाने वाले गए, एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ, अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है। तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था, एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, दो घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह पर, एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक एक यजमान के घर दो पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना, और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले, हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5,000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले, हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है, आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है, तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या, एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो, तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले, दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो। ये पहला कारण दुख का। दूसरा कारण दुख का, दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है शुक्मान। कहीं पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत, हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती, चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती, रोज पीटती, रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे, चंगीलाल सीधा साधा, क्योंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा, उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली
और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था। तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है विधानसभा क्या खाक संभलेगी। भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा। तो और परेशान चंगीलाल, तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हमका कुछ नहीं, उसने धमकी क्या दी। अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला, हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया, वो तुरंत घर गया। रात को ही पश्चिम बिहार की ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होके बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना, हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी टेंशन में बोली, हमने कब कहा ये, आप परित्याग क्यों कर रहे। चंगीलाल बोला सुबह जाना है उसके पहले हमसे ही इस्तीफा ले ली, कम से कम कल के दिन समाज में ये इज्जत तो रहेगी कि पत्नी नहीं भगी, भगाई है, संतुष्टि तो रहेगी। शिव कुमार भगवान करे तुम्हें ऐसा ना करना पड़े। पर शिव कुमार दुखों से बचने का ये सॉल्यूशन है, ये सूत्र है। क्या दुखी तुम कब होगे, जब तुम कोई बात कमिटमेंट दुनिया के सामने कर दोगे कि हम ऐसा करेंगे, और वो ना होगा तो बेइज्जती होगी, तो तुम दुखी रहोगे, दिमाग तुम्हारा ईगो डाउन होगा, ईगो हर्ट होगा, दिमाग में तुम्हारे टेंशन आएगी और तुम जल्दी पेंशन लेने के पहले ही निपट जाओगे। तो शिव कुमार उपाय क्या है, तुम पहले ही दिन दुनिया के सामने अपने आप को निकम्मा घोषित कर दो, अपने आप को विचित्र आदमी घोषित कर दो, अपने आप को जीरो घोषित कर दो, फिर भले ही एक नंबर मिल जाए, दस नंबर मिल जाए, ये बोनस होगा, और नहीं भी मिलेंगे तो तुम कह तो सकते हो कि हमने तो पहले ही कही थी, हमने तो पहले दिन ही कहा कि हम ऐसे हैं। ये दुख से बचने का उपाय। पर तुमने पूछा कि दुख क्या है, तो दूसरा कारण सुनो, दुख कुछ नहीं अज्ञानता है। तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो, तुम्हें पता ना हो तो तुम क्या करोगे, खिसको, ऊपर पैर मत रखो, चलो चलो। लेकिन तब तक कोई कान में कहे, कमिश्नर साहब, पीएम है, अरे रख लो रख लो रख लो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, आ जाओ आ जाओ, नजदीक आ जाओ आ जाओ। बताइए ये तुम अभी अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे, अज्ञानता, पता नहीं था इसलिए ऐसी हरकत कर रहे थे, अब पता चल गया तो खुद की सीट छोड़ने को तैयार। ये ज्ञान है, ये अज्ञानता भी दुख का कारण है। किसी दरिया के किनारे शिव कुमार, समझो दुख क्या है। दूसरा कारण, किसी नदी के किनारे एक आदमी गया, रात का समय था, मछलियां पकड़ने गया, पुराना जमाना, लाइट तो थी नहीं, वो रात को ही चला गया। उसने सोचा सुबह हो बाकी मछुआरे आवे, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं और सुबह की पहली सूर्योदय की किरण के पहले मैं जाल को बिछा दूं ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। अब रात को बैठ गया, किस्मत से उसके बगल में एक थैला डला था, उसने सोचा होगा कोई कचरे का बैग, होगा कोई ऐसे ही कार्टून, उसमें कुछ पत्थर जैसे थे चमकदार, चिकने चिकने, वो एक एक पत्थर उठावे और दरिया में नदी में फेंकता जावे। और पूरी रात उसने उस कार्टून में भरे हुए पत्थरों को फेंका, लेकिन जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, थोड़ी रोशनी आई, उजाला छाया, पक्षी चहचहाने लगे, तब उसे होश आया कि अब तो सुबह हो गई है, चलो जाल उठाओ, मछलियां पकड़नी है। लेकिन जैसे ही कार्टून जिस थैले में रात भर पत्थर समझ करके वो पानी में फेंकता रहा, हाथ में बचा हुआ एक पत्थर उसने गौर में देखा, गौर से देखा तो वो कोई पत्थर नहीं था, हीरों का थैला था, डायमंड का थैला था। अब सिर धुन धुन कर पछताने लगा, एक ही बचा,
पूरी रात हीरे फेंक फेंक करके दरिया में फेंक दिए, यही जिंदगी है। अगर तुम अज्ञानी रहोगे तो जिंदगी के प्रत्येक हीरे के पल को, सदगुरु को तुम इस तरफ उस तरफ फेंकते जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा और तुम्हें दुख हो जाएगा।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: करें, कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: आज लगने जा रहा है साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा आज बुध का गोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल के पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, दिल्ली में वाहनों की कड़ी चेकिंग। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है ये पोत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिक से पुर्तगाल में की सिविल मैरिज, दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी शादी की खुशखबरी। पुनात अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र, गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समंदर के अंदर की सैर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से धरती के कई हिस्सों में दिन में होगी रात, 3 दशक बाद सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाएगा अंधेरा। 1999 के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा सूर्य ग्रहण, खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप के कुछ हिस्से, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में दिखेगा ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:04 से रात 1:27 तक रहेगा ग्रहण। रात का समय होने की वजह से भारत में दिखाई नहीं देगा कल का सूर्य ग्रहण। दिखाई नहीं देने के कारण सूतक भी नहीं लगेगा और सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। देश में जहाज निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, देश की तटीय अपतटीय सुरक्षा, गश्त और समुद्री निगरानी को मिलेगी मजबूती। कोलकाता में लॉन्च किया गया अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज श्रुति, सांस्कृतिक विरासत और वेदों के आधार पर रखा गया है जहाज का नाम। मुजफ्फरपुर के घनश्याम जायसवाल का कमाल, गरीबी से नहीं मानी हार, पढ़ाई के जरिए बदली किस्मत, पास की यूपीएससी परीक्षा, बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं घनश्याम के पिता, दुकान पर भी हाथ बटाते थे घनश्याम, सफलता से रोशन किया नाम। राजस्थान के कोटा से 1000 श्रद्धालु मदुरई और रामेश्वरम के लिए हुए रवाना, स्पेशल ट्रेन के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा पर रवाना हुए श्रद्धालु। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए गुड न्यूज, मौजूदा वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक 23.09% बढ़कर 8.11 लाख करोड़ हुआ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। नेट कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 19.83% बढ़कर लगभग 2.70 लाख करोड़ हुआ तो नॉन कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़कर 5.07 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। मध्य प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार, राज्य सरकार ने 47,990 करोड़ के विकास कार्यों को दी मंजूरी। कोलकाता मेट्रो के विस्तार से जुड़ी गुड न्यूज, कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर सुरंग की खुदाई में मिली सफलता। खिदीरपुर से विक्टोरिया के बीच 1.72 किलोमीटर लंबी दूसरी समांतर भूमिगत सुरंग का निर्माण हुआ पूरा, 10 महीने में पूरा किया गया सुरंग खनन का काम। महाराष्ट्र के अकोला से आई सामाजिक ताने बाने की सुंदर तस्वीर, यहां एक मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से रक्षाबंधन के लिए बना रहा है देवराखी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले अपने आराध्य को राखी अर्पित करने की है परंपरा, राखी बनाने की परंपरा को पूरी लगन से आगे बढ़ा रहा है परिवार। बेहतर होगी जयपुर की परिवहन व्यवस्था, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पीएम ई बस सेवा के तहत 16 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात में कल खेल योजना शक्तिदूत 2.0 का होगा शुभारंभ, उप मुख्यमंत्री हर संघवी 388 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और भूमि पूजन। कार्टिंग के फॉर्मूला वन में आतिक अमीर के नाम नई उपलब्धि, एफआईए यूरोपियन चैंपियनशिप के राउंड 4 में टॉप 10 में 2 बार जगह बनाने वाली पहली भारतीय बनी। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति का अलग रंग, स्कूटी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा। हरिद्वार से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंदर का जोरदार स्वागत, हरिद्वार से कावड़ लेकर पहुंचने पर गांव वालों ने किया स्वागत। कावड़ यात्रा के दौरान यूपी के बागपत में कावड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते दिखे पुलिस वाले, एसपी खुद बारिश में व्यवस्था बनाते दिखे। यूपी के सहारनपुर में भारत कालीन अनोखा शिव मंदिर, मान्यता है कि इस मंदिर को दुर्योधन ने बनवाया था और भीम ने दिशा बदली थी। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर इस पश्चिम मुखी शिव मंदिर में मन्नतें लेकर दूर दूर से पहुंचते श्रद्धालु, यहां सावन में लगता है मेला। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कावड़ यात्रा के तीसरे दिन 151 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा पर निकले हैं करीब 700 श्रद्धालु। अमरकंटक से नर्मदा का जल लेकर जलाभिषेक के लिए भोरम देव की ओर बढ़ रहे हैं कावड़िये, कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में निकाली गई तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई रैली के दौरान लोगों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के शाहदरा इलाके में सुरक्षा एजेंसी ने की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का किया अभ्यास। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में गर्भगृह का लोकार्पण किया। भागवत ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा भी की। राखी और उपहार भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग की शानदार पहल, राखी पर डाक विभाग ने शुरू की वाटरप्रूफ लिफाफा सेवा। छोटा लिफाफा 10 रुपए में, बड़ा लिफाफा 15 रुपए में करवाया जा रहा है उपलब्ध, भाई तक सुरक्षित राखी पहुंचाने की नेक पहल। चंदौली में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। यात्रा को लेकर महिलाओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह, गाए देशभक्ति के गीत। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी से मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ, संत कबीर कुटीर पर की शिष्टाचार मुलाकात। महिलाओं के लिए वरदान बनी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 योजना, सालों से दबंगों से परेशान महिला को एक शिकायत पर मिला न्याय। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एम्बुलेंस व ब्लड डोनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी, विकास कार्यों के लोकार्पण पर जोर। 15 अगस्त के नजदीक आते ही सामने आने वाला देशभक्ति का जज्बा, शोपिया में पुलिस और नागरिक प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द और गौरव को बढ़ावा देना इसका मकसद। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के तरानों की गूंज, झांसी रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए गूंज रहे देशभक्ति के गीत। झांसी समेत रेल मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशन पर 15 अगस्त तक गूंजेंगे देशभक्ति के तराने, तिरंगे के रंग के लाइट से सजाए जा रहे रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से भी आई देशभक्ति के जज्बे वाली तस्वीर, ऑल ट्रेन व्हीकल पर निकाली गई तिरंगा रैली, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। गुजरात के महीसागर जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, कई गांवों का टूटा संपर्क, कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 14 फीट लंबे घायल किंग कोबरा का किया गया इलाज, इलाज के बाद जंगल में छोड़ा गया किंग कोबरा। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, हफ्ते भर की गर्मी के बाद आई बारिश ने लोगों को दी राहत। असम के मरांगी में बाढ़ के हालात में सुधार, बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी हालात सामान्य होने बाकी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आया फ्लैश फ्लड, पुलिस और एसडीआरएफ के त्वरित रेस्क्यू से बचाई 7 लोगों की जान। उत्तराखंड के चमोली में फ्लैश फ्लड, तमक इलाके में आए फ्लैश फ्लड में बाल बाल बचे, पोकलैंड चालक जोगिंदर सिंह सूझबूझ से बचाई जान। मणिपुर में बहाल होगी जरूरी चीजों की आपूर्ति, नाकेबंदी हटने के बाद मणिपुर के उखरूल से इम्फाल की ओर बढ़े जरूरी सामानों से लदे 460 ट्रक।

0: ये प्रेमी इस खास नजारे के लिए पहुंच रहे हैं। आज शाम पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ स्पेन और आइसलैंड में दिखाई देगा। इस दौरान कुछ समय के लिए सूरज पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा। स्पेन के उत्तर से लेकर पूर्वी हिस्से तक लोग ग्रहण देखने की तैयारी कर रहे हैं। यहां के कई इलाकों में शुरू हुआ ग्रहण उत्सव। स्पेन में 2 अगस्त 2027 को फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये 21वीं सदी में यूरोप का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की और इसके प्रभाव की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। आखिर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 12 अगस्त को रात में 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा 12 अगस्त की मध्य रात्रि जब बीत जाएगी, 13 अगस्त शुरू हो जाएगा, तो 13 अगस्त की बहुत सुबह 1:27 पर समापन होगा। यानी ये ग्रहण 12 अगस्त को रात में 9:04 पर शुरू होगा और इसका समापन 13 अगस्त को 1:27 प्रातः समाप्त होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, फिर भी भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम, किसी तरह के सूतक के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव देश दुनिया पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे। लेकिन जहां तक सूतक के नियमों की बात है, उसका पालन करने की भारत में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है, तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर लगभग अगले 3 महीने तक पड़ता है और राशियों पर इसका प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न में ये सूर्योदय आरंभ हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं सूर्य ग्रहण के समय और पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। इस ग्रहण के समय राहु और मंगल ये दोनों निकट अंशों में हैं। अब आप देखिए, कर्क राशि जल की राशि है, मीन लग्न जल का लग्न है, जल की राशियां प्रभावित हो रही हैं। तो इस सूर्य ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप के झटके लग सकते हैं या जल से आपदाओं की संभावना बन सकती है। सत्ता में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चूंकि स्वतंत्र भारत की राशि भी कर्क है और ये ग्रहण कर्क में ही लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थिति बन रही है। इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसका प्रभाव आम जनता पर और देश की राजनीति पर पड़ेगा। राहु और मंगल का करीबी अंश में होना अच्छा नहीं है। आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं, विस्फोट आदि की नौबत आ सकती है। तटीय स्थानों में जो समुद्र तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहां पर विशेष समस्या का समय हो सकता है। तो ये ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं की सूचना दे रहा है। विस्फोट और उपद्रव जैसी स्थिति बनेगी इस बात की जानकारी भी दे रहा है। देखिए, आपको पहले भी बताया कि ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक 15 दिन तक पड़ेगा। तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको काफी परेशान कर सकती हैं, आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और करियर में आपको विशेष सफलताएं इस समय मिलेंगी, ग्रहण लाभकारी है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। कर्क राशि, करियर में आपके समस्या आ सकती है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। सिंह राशि, ग्रहण का प्रभाव दुर्घटना करवा सकता है, दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहिएगा। कन्या राशि, ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं आपके लिए, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो हमने मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक का हाल जाना कि उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, इनके काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य और जीवन में इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की और पारिवारिक समस्या वृश्चिक वालों को इस समय परेशान कर सकती है। ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। धनु राशि, ग्रहण की वजह से चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चोट चपेट और दुर्घटना से सावधान रहें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। मकर राशि, ग्रहण के कारण करियर में आपके समस्या आ सकती है और स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, ग्रहण आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं, तो मीन वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें और महत्वपूर्ण काम रुकेगा तो परेशान ना हो, कुछ समय बाद काम आपका बन जाएगा। ग्रहण काल में चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय में भगवान के नाम का मंत्र या गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, इसका जप अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे, ग्रहण काल में नाम जपेंगे या गुरु मंत्र जपेंगे, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको जरूर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ सकता हो, ऐसी स्थितियां हो, तो क्या करेंगे? जो ग्रहण का समय है रात के 9 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच का, इस समय में शिव जी और सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: आज लगने जा रहा है साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी। इम्फाल में असम राइफल के पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा। दिल्ली में वाहनों की कड़ी चेकिंग। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति। निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है ये पोत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिक्स से पुर्तगाल में की सिविल मैरिज। दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी। शादी की खुशखबरी। क्रोएशिया में पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समंदर के अंदर की सैर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका हमारे देश पर और हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: ग्रहण काल में चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय में भगवान के नाम का मंत्र या गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, इसका जप अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे, ग्रहण काल में नाम जपेंगे या गुरु मंत्र जपेंगे, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको जरूर होगा।
4: और आइए जान लेते हैं 12 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। रात के 11:06 तक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। प्रातः 7:59 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और आइए जानते हैं पंडित जी से कि इस बार सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है।
0: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। आखिर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 12 अगस्त को रात में 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा। और इस ग्रहण का समापन होगा 12 अगस्त की मध्य रात्रि, जब बीत जाएगी 13 अगस्त शुरू हो जाएगा। तो 13 अगस्त की बहुत सुबह 1:27 पर समापन होगा, यानी ये ग्रहण 12 अगस्त को रात में 9:04 पर शुरू होगा और इसका समापन 13 अगस्त को 1:27 प्रातः समाप्त होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है फिर भी भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम, किसी तरह के सूतक के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव देश दुनिया पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे, लेकिन जहां तक सूतक के नियमों की बात है उसका पालन करने की भारत में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
4: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें, धन की हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
0: देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर लगभग अगले 3 महीने तक पड़ता है और राशियों पर इसका प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न में ये सूर्योदय आरंभ हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं सूर्य ग्रहण के समय और पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। इस ग्रहण के समय राहु और मंगल ये दोनों निकट अंशों में हैं। अब आप देखिए, कर्क राशि जल की राशि है, मीन लग्न जल का लग्न है, जल की राशियां प्रभावित हो रही हैं। तो इस सूर्य ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप के झटके लग सकते हैं या जल से आपदाओं की संभावना बन सकती है। सत्ता में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चूंकि स्वतंत्र भारत की राशि भी कर्क है और ये ग्रहण कर्क में ही लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थिति बन रही है। इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसका प्रभाव आम जनता पर और देश की राजनीति पर पड़ेगा। राहु और मंगल का करीबी अंश में होना अच्छा नहीं है। आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं, विस्फोट आदि की नौबत आ सकती है। तटीय स्थानों में जो समुद्र तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहां पर विशेष समस्या का समय हो सकता है। तो ये ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं की सूचना दे रहा है। विस्फोट और उपद्रव जैसी स्थिति बनेगी इस बात की जानकारी भी दे रहा है।
4: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न महिमा ने हमें लिखा है और महिमा हमें मेल लिखती हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1992। जन्म का समय रात में 9:50। जन्म स्थान है जबलपुर। महिमा पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। महिमा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह तय होने का समय चल रहा है। ज्यादातर संभावना ये लगती है कि अभी 1 से 2 महीने में आपकी शादी तय होगी और 2027 के शुरुआती समय में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले हिस्से में आपकी शादी होनी चाहिए। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न अतुल ने हमें लिखा है और अतुल जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1994। जन्म का समय सुबह के 7:35। जन्म स्थान है मुंबई। अतुल कह रहे हैं कि मैं 1 साल नौकरी किया था और अब मैं अपना व्यापार कर रहा हूं। क्या मुझे व्यापार में सफलता मिलेगी या मुझे वापस नौकरी में जाना चाहिए। अतुल जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में बने रहना चाहिए। व्यापार की स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं और परिश्रम करेंगे तो अगले साल व्यापार और ज्यादा बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर आपने परेशानी लिखी है, उसको लेके बहुत चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा। अक्टूबर 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य के हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए देखते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा।
0: देखिए, आपको पहले भी बताया कि ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक 15 दिन तक पड़ेगा। तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको काफी परेशान कर सकती हैं, आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और करियर में आपको विशेष सफलताएं इस समय मिलेंगी, ग्रहण लाभकारी है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। कर्क राशि, करियर में आपके समस्या आ सकती है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। सिंह राशि, ग्रहण का प्रभाव दुर्घटना करवा सकता है, दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहिएगा। कन्या राशि, ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं आपके लिए, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
1: और अब हम जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, यात्राओं में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। और पहली 6 राशियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब बाकी 6 राशियों के बारे में हम जानेंगे।
0: तो हमने मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक का हाल जाना कि उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, इनके काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य और जीवन में इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की और पारिवारिक समस्या वृश्चिक वालों को इस समय परेशान कर सकती है। ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। धनु राशि, ग्रहण की वजह से चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चोट चपेट और दुर्घटना से सावधान रहें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। मकर राशि, ग्रहण के कारण करियर में आपके समस्या आ सकती है और स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, ग्रहण आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं, तो मीन वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें और महत्वपूर्ण काम रुकेगा तो परेशान ना हो, कुछ समय बाद काम आपका बन जाएगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में आपके सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका लेते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न राधे श्याम जी ने हमें लिखा है और राधे श्याम जी हमें मेल लिखते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1965, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है हाथरस उत्तर प्रदेश और मेल लिखते हैं मथुरा से। राधे श्याम जी लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, किसी न किसी कारण से मेरे स्वास्थ्य में समस्या बनी रहती है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। राधे श्याम जी, आपकी ज्यादातर जो समस्या है वो हड्डियों और नसों की है। सूर्य का गड़बड़ होना आपकी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए और एक मोटी लगभग 10-12 रत्ती की चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए पंडित जी देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और चौथा प्रश्न किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न तन्वी ने हमें लिखा है और तन्वी हमें मेल लिखती हैं जयपुर राजस्थान से। तन्वी की जन्म तारीख है 6 मई 1990, जन्म का समय शाम के 5:55, जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। तन्वी कह रही हैं कि मेरा एक बार विवाह हो करके ब्रेक हो चुका है, आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तन्वी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में होगा। स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ दूसरा विवाह जब भी करिएगा उस समय कुंडली एक बार मिला लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका शीघ्र विवाह हो, विवाह आपका सुखद रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 12 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि सूर्य ग्रहण के सूतक के जो नियम हैं वो इस बार भारत में क्यों लागू नहीं होंगे। देखिए, ग्रहण के नियम वहीं लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में किसी भी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे।
1: गुड लक में जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 12 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में अपने पितरों पूर्वजों के नाम से अनाज का दान करिएगा। आपको अपने पितरों का पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 12 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।

0: सिंह पर नियमित रूप से बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा बेहतर बनी रहेगी।
1: गुडलक में हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ सकता हो, ऐसी स्थितियां हो, तो क्या करेंगे? जो ग्रहण का समय है रात के 9 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच का, इस समय में शिव जी और सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: ऐसी खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब बात करेंगे सहारनपुर के एक किसान की, जो गाय के गोबर से कर रहे हैं कमाई। फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हो चुके आदित्य त्यागी ने गाय के गोबर से संबरानी कप यानी धूप जलाने वाले कप का निर्माण शुरू किया है और इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। उनके बनाए उत्पाद देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खूब बिक रहे हैं।

0: गाय का गोबर बहुपयोगी होता है। ऐसे में लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस से बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक किसान हैं आदित्य त्यागी। 71 वर्षीय त्यागी गाय के गोबर से एक यूनिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर होने के बाद आदित्य त्यागी ने देसी गायों को पालना शुरू किया, लेकिन दूध बेचने से अपेक्षित मुनाफा नहीं होने की वजह से उन्होंने देसी गायों के गोबर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उन्होंने गायों के गोबर से संबरानी या धूनी कप बनाने का काम शुरू किया। धूनी कप में धूप और लोबान जलाने से घर में खुशबू आती है। आज उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से बिक रहे हैं और उन्हें हर महीने लाखों रुपए की आमदनी भी हो रही है। आदित्य त्यागी ने देसी गाय के गोबर में गूगल और लोबान जैसी प्राकृतिक सामग्री मिलाकर ऐसे संबरानी कप तैयार किए हैं, जिनका उपयोग घरों में धूनी देने और वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए होता है।
1: स्टेप बाय स्टेप है, जैसे बनाते हैं गोबर से बनाया तो उसको 3 दिन या 2 दिन छाया में सुखाते हैं, फिर 1 दिन धूप में सुखाते हैं, उसके बाद रख देते हैं, फिर उसका फिलिंग होगा, फिलिंग करने के बाद भी कम से कम 1 दिन अगर अच्छी धूप है, नहीं तो 2 दिन सुखाना पड़ता है, उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है। तो खर्च इस पर अगर सही करेंगे, मतलब सही चीज डालेंगे जो डालनी चाहिए, केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो खर्च ज्यादा आएगा।
0: बाजार में मिलने वाले अधिकतर संबरानी कप कोयले से बने होते हैं, जिनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस निकलती है, जबकि देसी गाय के गोबर से बने इन कप्स को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। अनिल त्यागी के अनुसार उनका उद्देश्य संबरानी कप से केवल व्यवसाय करना नहीं, बल्कि लोगों तक शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद पहुंचाना है।
1: लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों? मार्केट में काला वाला कप आ रहा है, वो कोयले का। अब घर में जलाते हैं शुद्धि के लिए, कोयला जलाएंगे तो उसमें पॉल्यूशन होता है, उससे गाय के गोबर से ऑक्सीजन मिलती है जलने पे, तो इसलिए गाय के गोबर की लोग जागरूक हो गए, गाय के गोबर के संबरानी कप की काफी डिमांड है। इसमें गाय का गोबर है, गूगल, लोबान और एक जो कोई नहीं मिलाएगा, बहुत महंगी चीज है, सुगंध कोकिल आती है, वो यहाँ हमारे यहाँ जड़ी बूटी नहीं होती है, नेपाल में होती है। मैं वन विभाग में रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानकारी है, सुगंध कोकिला मिलाते हैं इसके।
0: संबरानी कप से आदित्य त्यागी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। एक संबरानी कप बनाने में लगभग 10 ग्राम देसी गाय का गोबर लगता है, जबकि एक कप की कीमत करीब 10 रुपए पड़ती है। इस हिसाब से गोबर का मूल्य 400 रुपए प्रति किलो से भी अधिक हो जाता है, जबकि उनका संबरानी कप होलसेल में करीब 90 रुपए और ऑनलाइन लगभग 220 रुपए में बिकता है। आदित्य त्यागी को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं, जिनमें दक्षिण भारत से सबसे अधिक मांग आ रही है। इस साल उन्होंने 20,000 संबरानी कप तैयार किए हैं, जिनमें से एक महीने के भीतर ही करीब 1/3 कप्स की बिक्री हो चुकी है।
1: मार्केटिंग की समस्या आती है, हमने उनको कहा कि बेचने की आपको परेशानी नहीं है, कुछ भी आप जितना बनाएंगे हम ले लेंगे, हम अपना कर देंगे। तो कई लोग हमसे, 3-4 लोग हमसे जुड़ गए हैं। अब उनको मेटीरियल, जो बनाने का मेटीरियल है, क्योंकि दूसरे पर भरोसा नहीं है कि वो क्या मिला देगा, मिक्स मटेरियल हम उनको तैयार करके देते हैं और वो अपने घर में बनाते हैं, उनको मशीन दे रखी है हमने, घर में बनाते हैं और सुखा के हमें दे जाते हैं, उनको पर पीस हम पैसा दे देते हैं।
0: संबरानी कप्स को तैयार करने से लेकर उसकी पूरी पैकिंग तक आदित्य त्यागी अपने घर में ही करते हैं और इसके लिए उन्होंने 5 से 7 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। आज उनकी नौकरी के समय मिलने वाली सैलरी से भी अधिक आमदनी इस व्यवसाय से ही हो रही है। आज उनका ये मॉडल उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है जो देसी गाय पालन से नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में रंगा है, चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोले बाबा के दर्शन को आते रहते हैं। सावन के मौके पर धार्मिक पर्यटन के रूप में आज आपको इस विशेष धाम के दर्शन कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कि कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन धाम जो है वो इतना लोकप्रिय है। पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आएं। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुँचें। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: गुड न्यूज टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरे की जगह अपने ही देश की जगहों को प्रमोट किया जाए तो हमारे देश का टूरिज्म भी इससे बढ़ेगा। ऐसे में आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अगर आप आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए एक वीडियो और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। उम्र सिर्फ 12 साल लेकिन हुनर ऐसा कि दुनिया सलाम करे। चीन के 12 साल के तीन बच्चों ने जंप रोप में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर बड़े बड़े एथलीट भी दंग रह जाएं। महज 60 सेकंड में 496 सफल जंप और वो भी इतनी जबरदस्त स्पीड और तालमेल के साथ कि देखने वाले देखते रह गए। देखिए नन्हे चैंपियंस की रिकॉर्ड तोड़ कहानी।
0: रस्सी घूम रही है, पैर थिरक रहे हैं और रफ्तार इतनी तेज कि आंखें भी धोखा खा जाएं। ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन नहीं बल्कि बच्चों का कमाल है। ये तीनों बच्चे सिर्फ 12 साल के हैं लेकिन इनका कारनामा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है। चीन के चोंगकिंग में इन तीन नन्हे एथलीट्स ने जंप रोप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तीनों के नाम है लेंग हाउरान, ओउ जुताओ और जू चेंगसी। तीनों ने 2026 एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में सिर्फ 60 सेकंड में 496 सफल जंप लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस चैंपियनशिप में 9 एशियाई देशों के 1160 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तीन नन्हे सितारों की हुई। जंप रोप के इस स्पीड इवेंट में रफ्तार के साथ तीनों का तालमेल भी बेहद खास रहा। एक छोटी सी गलती और रिकॉर्ड हाथ से निकल सकता था, लेकिन महीनों की मेहनत और लगातार प्रैक्टिस ने इन तीनों को चैंपियन बना दिया। इनकी स्कूल टीम पिछले 26 साल से जंप रोप की ट्रेनिंग दे रही है। बच्चे रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि प्रैक्टिस करते करते इनकी रस्सियां तक टूट जाती हैं। अब इन नन्हे चैंपियंस का अगला लक्ष्य है अगले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसके लिए ये अभी से प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और मेहनत अगर बड़े हों तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना और मस्ती करना भी बेहद जरूरी है। स्कूल के मैदान में खेल कूद बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ उनके मानसिक विकास में भी मदद करता है। इन तस्वीरों में बच्चे गाने की धुन पर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बड़े ही मजेदार अंदाज में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस गतिविधि के जरिए बच्चों का बैलेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पढ़ाई के बीच मस्ती भरे ये पल बच्चों को तरोताजा कर रहे हैं। ऊंचाइयां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। इन बच्चियों का अभ्यास भी इसी जज्बे की मिसाल है। मुश्किल लगने वाली गतिविधि को ये बेटियां पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पूरा करती नजर आ रही हैं। उनका संतुलन, एकाग्रता और लगातार प्रयास देखने वालों को भी प्रभावित कर रहा है। यही छोटी छोटी कोशिशें बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। इन बेटियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। शब्दों से खेलना हो तो इन बच्चों से सीखना चाहिए। क्लास में कराई जा रही यह मजेदार गतिविधि बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ाने का शानदार तरीका है। कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द तैयार किया जाता है, लेकिन बच्चे उन्हीं अक्षरों से नए नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बच्चे खेल खेल में सीख भी रहे हैं और अपनी सोच को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी और उत्साह देखकर आसपास मौजूद लोग भी उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। कहते हैं अकेले दबाव सहना मुश्किल होता है, लेकिन साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यही सीख दी जा रही है। टीचर एक एक ग्लास पर दबाव डालती हैं तो ग्लास आसानी से दब जाते हैं, लेकिन जब कई ग्लासों को एक साथ रखकर उनके ऊपर प्लेट रखी जाती है तो पूरा सेटअप संतुलित बना रहता है। ये छोटा सा प्रयोग बच्चों को बताता है कि एकता में ताकत होती है और मिलजुल कर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ मजेदार गतिविधियां भी बच्चों के सीखने का हिस्सा बन रही हैं। अब इस गेम को ही देख लीजिए, जिसमें बच्चों को बिना हाथ लगाए पेन को बोतल के अंदर डालना है। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं है। बच्चे पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सफल हो रहा है तो कोई दोबारा प्रयास कर रहा है। खेल खेल में सीखने का ये अंदाज बच्चों को खूब पसंद आ रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण।
10: लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेकेड क्रेन महोत्सव का आयोजन हुआ, 14 अगस्त मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न।
1: भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए।
10: देश भर में उत्साह के साथ निकाली जा रही है हर घर तिरंगा यात्रा, कहीं साइकिल पर तो कहीं बाइक पर निकाली जा रही है यात्रा।
1: देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल के पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, दिल्ली में वाहनों की कड़ी चेकिंग।
10: रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिक्स से पुर्तगाल में सिविल मैरिज की, दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी शादी की खुशखबरी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशोभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शुभ समाचार की शुरुआत सावन में सूर्य ग्रहण के संयोग की करेंगे। आज सूर्य ग्रहण लगेगा, हालांकि भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण का एक धार्मिक पक्ष भी है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण को लेकर सूतक, मंत्र जाप, ध्यान और पूजा जैसी मान्यताएं हैं। हालांकि सूतक लगेगा या नहीं, तो इसके बारे में भी आगे हम करेंगे बात।
10: बात स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की भी होगी। देश भर में अब देशभक्ति का रंग छाने लगा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी तैयारियों के बीच तिरंगा रैली का जगह जगह आयोजन हो रहा है, देशभक्ति के तराने गूंजने लगे हैं। आजादी का जश्न मनाने को लेकर पूरे देश में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है, तो ये जोश और रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: तो साथ ही बात डाक विभाग की शानदार पहल की भी होगी। इस बार रक्षाबंधन के लिए एक नया लिफाफा जारी किया गया है। इस वाटरप्रूफ लिफाफे में बहनें अपने भाई के लिए राखी भेज सकती हैं। ये लिफाफे पानी या नमी से खराब नहीं होते, यानी राखी पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचने की गारंटी है। डाक विभाग ने लिफाफे के साथ साथ राखी के लिए गिफ्ट बॉक्स भी शुरू किया है। क्या है इसका चार्ज और आप कैसे भेज सकते हैं ये वाटरप्रूफ राखी अपने भाई तक, इस पर भी हम आगे करेंगे बात।
10: साथ ही आपको मिलवाएंगे स्टेशन के अर्जुन से। दरअसल भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों एक रोबो कॉप की खूब चर्चा हो रही है। यह हाईटेक रोबोट प्लेटफॉर्म के साथ रेलवे स्टेशन के हर हिस्से पर पैनी नजर बनाए रखता है। AI तकनीक से लैस ये रोबोट कई जटिल कामों को एक साथ निपटा सकता है, तो इन सभी के बारे में आगे विस्तार से करेंगे बात।
1: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे पुर्तगाल, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने औपचारिक तौर पर शादी रचा ली है। रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिक्स से सिविल मैरिज की, इस शादी पर भी आगे हम करेंगे बात। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
10: आज साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये दुर्लभ खगोलीय घटना ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और उत्तरी रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी, जहां पर दिन के समय कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा जाएगा। हालांकि रात होने की वजह से भारत में नजर नहीं आएगा।
1: नागपुर से करीब 3 लाख राखियां भेजी गई हैं। ये पहल प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से की गई है और इस पहल के तहत देश की अलग अलग सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा राखियां भेजी गई हैं।
10: देशभर में आजादी की सालगिरह का जश्न देखने को मिला। शहर शहर, गांव गांव, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग तिरंगा थामे एकजुट होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के केरन घाटी में तिरंगा रैली की है। यहां पर यूपीएस केरन बाला और हायर सेकेंडरी स्कूल केरन ने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर एक गर्व और देशभक्ति से भरी संयुक्त तिरंगा रैली आयोजित की।
1: स्वतंत्रता दिवस के नजदीक हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रशासन ने चंदौली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरियां निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगे।
10: वहीं राजस्थान के कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन से 1000 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर मदुरई और रामेश्वरम के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई। इस 8 दिवसीय तीर्थयात्रा राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत पूरी तरह निशुल्क भेजा गया, जिसमें यात्रियों के भोजन, चिकित्सा और सुविधाओं का पूरा खर्च उठाया गया।
1: देश में जहाज निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी। कोलकाता में अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज श्रुति को लॉन्च किया गया। देश की तटीय अपतटीय सुरक्षा, गश्त और समुद्री निगरानी को मजबूती इससे मिलेगी। जहाज का नाम सांस्कृतिक विरासत और वेदों के आधार पर रखा गया है।
10: वहीं वुशु के मैदान में कोटा की 18 साल की दिव्यांशी ने वो इतिहास रच दिया है जिसका इंतजार पिछले 36 वर्षों से था। एशियन गेम्स में वुशु पिछले 36 साल से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में वुशु में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया था। दिव्यांशी इस सूखे को खत्म करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई।
1: चीन के चांगशा शहर में 12,000 वर्ग मीटर में स्केन किंगडम बनाया गया है। यहाँ 6,500 से ज्यादा ब्रांड के हजारों तरह के स्नैक्स मिलते हैं। स्नैक किंगडम में 25,000 से ज्यादा चीनी और 10,000 से ज्यादा विदेशी स्नैक्स हैं। यहाँ लोग अपनी पसंद के स्नैक्स खरीदें। साथ ही यहाँ खाने पीने की चीजों के बहुत बड़े मॉडल लगाए गए हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं।
10: सलमान खान और संजय दत्त अब इंटरनेशनल एक्शन फिल्म 7 डॉग्स में मिस्र के सुपरस्टार अहमद एजवाज और करीम अब्दुल अजीज के साथ नजर आएंगे। फिल्म में हॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका और जियान कार्लो नजर आएंगे। हाल ही में जारी ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बड़े बजट की ये फिल्म भारत में 21 अगस्त को हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज होगी।

और शुभ समाचार की शुरुआत सावन के साथ करेंगे। सावन की पावन बेला है और आज हरियाली अमावस्या का पर्व है। इस पर इस तिथि का खास महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आज ही सूर्य ग्रहण का संयोग भी बना है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लिहाजा यहाँ इसका सूतक भी मान्य नहीं है। इसी खास अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य और दिव्य अभिषेक किया गया। मंत्रोच्चार और वैदिक विधियों के बीच बाबा का पूजन हुआ और मनोहारी श्रृंगार किया गया। सावन की हरियाली अमावस्या की आध्यात्मिक ऊर्जा और महाकाल की भक्ति मानो उज्जैन में आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दिया। हर ओर गूंजा हर हर महादेव का जय घोष।

तो देखिए 18 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के मस्तक पर सूर्य चिन्ह, दिव्य आभूषण और विशेष फूलों की मालाओं से उनका श्रृंगार किया जाता है। यूं तो सूर्य ग्रहण रात 9:04 से लग रहा है और भारत में सूतक काल मान्य नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश के बाकी मंदिरों के उलट बाबा महाकाल धाम के कपाट ग्रहण काल में खुले रहते हैं। इस दौरान केवल पूजा व्यवस्था और स्पर्श दर्शन में बदलाव किया जाता है। आपको सुनाते हैं महाकाल की भव्य

सावन में बारिश होती है, मेघ बरसते हैं जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और जब इस पवित्र और पावन महीने में अमावस्या आती है तो हरियाली अमावस्या का उत्सव बन जाता है। वैसे इस बार हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है जिससे आज का दिन और खास हो गया है। आज रात 9:04 पर चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढक देगा। जहां चंद्रमा की गहरी छाया पहुंचेगी वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हालांकि भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण का एक धार्मिक पक्ष भी है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण को लेकर सूतक, मंत्र जाप, ध्यान और पूजा जैसी मान्यताएं हैं। भले ही भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव केवल उसके दिखाई देने वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। ज्योतिषी गणनाओं में ग्रहण के समय सूर्य की राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में कर्क राशि, अश्लेषा नक्षत्र और उनसे संबंधित राशियों पर इसके प्रभाव की चर्चा की जा रही है। वहीं विज्ञान इसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति और स्थिति से जुड़ी एक खगोलीय घटना मानता है।

0: सावन शिवरात्रि के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये इस साल यानी 2026 का दूसरा और अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण है। 18 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब भगवान शिव के प्रिय महासावन में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय विज्ञान दोनों ही लिहाज से ये सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। इस तरह जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर होगा वहां दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण सावन मास यानी हरियाली अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जिसके चलते इसका धार्मिक और ज्योतिष महत्व बढ़ जाता है।
1: इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। जब कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहाँ पड़ रहा है तो यहाँ भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड, जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा।
0: खास बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के समय होगा, इसीलिए ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण रात 9:04 से लेकर देर रात 1:27 तक लगेगा। इस दौरान रात 11:17 पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिका महासागर के कुछ हिस्सों में साफ साफ दिखाई देगा। तो वहीं यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में आंशिक रूप से नजर आएगा। भारतीय धार्मिक परंपरा में आमतौर पर ग्रहण दिखाई देने वाले क्षेत्रों में सूतक काल को महत्व दिया जाता है। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद करने, पूजा पाठ रोकने और कुछ धार्मिक कार्यों से परहेज करने की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन ग्रहण के दिखाई नहीं देने पर सूतक काल मान्य नहीं होता है। सावन का महीना शिव आराधना का विशेष महीना है और भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, इसीलिए इसका ना तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा और न ही पूजा पाठ पर इसका असर पड़ेगा। मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और शिव आराधना समेत बाकी कामकाज भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे।
1: देखिए, ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि यदि जो है ग्रहण जो है आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में दिखाई ना दे तो उसका ना तो सूतक माना जाता है, ना उसका जो है कोई प्रभाव मंदिर इत्यादि के ऊपर पड़ता है, ना किसी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं जिनके ऊपर मानते हैं कि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
0: धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को एक संवेदनशील और शक्तिशाली काल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण का मनुष्य के मन और ऊर्जा दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी की कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है और सूर्य ग्रहण लगने पर हर कुंडली पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। हालांकि विज्ञान इन मान्यताओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। विज्ञान के अनुसार ये सिर्फ एक प्राकृतिक स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सूर्य ग्रहण में क्या खास होने वाला है। दरअसल पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। इस दौरान कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और पूर्णता वाले क्षेत्र में दिन के समय अंधेरा जैसा नजारा दिखाई देता है।
3: जी हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर पूरे पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता। जिस संकरे क्षेत्र से चंद्रमा की पूर्ण छाया गुजरती है वही सूर्य पूरी तरह से ढका दिखाई देता है और दिन में रात जैसा दिखता है। बाकी के इलाकों में ग्रहण नजर आता है।
2: हालांकि ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, भारत में रोशनी पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3: तो ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण की स्थिति को राशि और नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण होने की स्थिति में प्रभाव पड़ेगा
2: और इसी तरह चंद्र ग्रहण की स्थिति को ज्योतिष में कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से भी जोड़ा जाता है।
3: तो ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं। इससे प्रकाश, तापमान और पृथ्वी के प्रभावों में बदलाव देखने को मिलते हैं।
2: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील खगोलीय घटना माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन, मन और वैश्विक व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ता है।
3: तो सूर्य को आत्मा, पिता, अधिकार, मान सम्मान और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाधित होती है, जिसे ये समय भौतिक कार्यों के लिए वर्जित लेकिन आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है।
2: आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार क्या है ग्रहणों का महत्व और खासतौर से सूर्य ग्रहण क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
4: होने वाली है अद्भुत घटना, लगने वाला है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। सूर्य सारी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का जितना असर दूसरे ग्रहों पर होता है उतना ही इसका प्रभाव धरती और मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है तो किसी के लिए ये आफत का सबब बन जाता है। दरअसल सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि इसका अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में वर्णित कई महत्वपूर्ण और युगांतकारी परिवर्तन लाने वाली घटनाएं सूर्य ग्रहण के दिन ही घटित हुई थी। पुराणों के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। इसी तरह रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था उस दिन सूर्य ग्रहण था। इसी तरह महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे थे उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। तो वहीं महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। इसी तरह कृष्ण की नगरी द्वारका जिस दिन डूबी थी उस रोज भी सूर्य ग्रहण था। यानी जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना हुई तो सूर्य ग्रहण से उसका कनेक्शन रहा है। लेकिन विज्ञान की नजर में ये एक खगोलीय घटना है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र इसे अलग नजरिए से देखता है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह माना जाता है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर कुंडली पर इसका प्रभाव भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो आज रात को लगने वाले पूर्ण ग्रहण का मुख्य मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल के छोटे हिस्से से होकर गुजरेगा। इसके अलावा यूरोप के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। विस्तार से आगे आपको बताते हैं।
2: दरअसल ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यहां पर चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह से ढक देगा, जिससे कि दिन में अंधेरा जैसा लगने लगेगा।
3: तो पश्चिमी आइसलैंड भी पूर्ण ग्रहण के मार्ग में है। यहां शाम के समय सूर्य पूरी तरह से आपको ढका दिखाई देगा।
2: तो वहीं रूस के सुदूर उत्तरी हिस्से में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस क्षेत्र में ग्रहण दोपहर के आसपास दिखाई देने की संभावना है।
3: तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से भी चंद्रमा गुजरेगा। पूर्णतः सबसे लंबा चरण समुद्र के ऊपर के क्षेत्र में होगा, हालांकि इसकी अवधि 2.5 मिनट से भी कम रहेगी।
2: उत्तरी स्पेन इस ग्रहण को देखने के लिए प्रमुख स्थानों में शामिल है। यहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण शाम में सूर्यास्त के करीब दिखाई देगा।
3: तो पुर्तगाल के उत्तर पूर्वी छोटे से हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण भी दिखाई देगा।
2: वहीं यूरोप के अन्य हिस्से जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के कुछ देशों में पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यानी चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकेगा।
3: तो इस ग्रहण की खासियत ये है कि इसका रास्ता आर्कटिक क्षेत्र से शुरू होकर ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूरोप तक पहुंचता है। उत्तरी स्पेन में ये लगभग सूर्यास्त के समय दिखाई देगा, इसलिए इसे एक बेहद खास सनसेट, टोटल सोलर इक्लिप्स के रूप में देखा जा रहा है, जिसे देखने के लिए कई देश में पहले से भव्य इंतजाम भी किए गए हैं।
2: तो वहीं धर्म और ज्योतिष से परे अगर विज्ञान की नजर से देखें तो सूर्य ग्रहण की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक अपने अपने टेलीस्कोप और तमाम उपकरणों के साथ सूरज से जुड़े कई रहस्य खोजने में जुट जाते हैं।
3: तो सुपर पावरफुल कैमरा से सूरज की अनगिनत तस्वीरें खींची जाती हैं, फिर इन तस्वीरों का महीनों तक या कई बार तो सालों तक विश्लेषण होता है और इस स्टडी से निकल कर आते हैं अंतरिक्ष और खासतौर पर सूरज से जुड़े कई रहस्य।

0: अंतरिक्ष कौतूहल और रहस्य का वो खजाना है जिसे पूरी तरह से जान पाना आज तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सका। धरती अगर इंसान का जीवन है तो चंद्रमा और सूर्य उसका परम सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के बंधन से बंधी है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना चांद की नियति है। दिन और रात के चक्के पर घूमता जीवन यूं तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जब धरती और सूरज की रोशनी के बीच चांद की छाया आ जाती है तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूरज का एक हिस्सा छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन जब सूर्य कुछ देर के लिए पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छिप जाता है तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। भले ही अंतरिक्ष में सूरज, धरती और चांद के इस अद्भुत संयोग के ज्योतिष या धार्मिक महत्व को आप न मानते हो, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण ही वो समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेक विलक्षण घटनाएं घटती हैं, जिनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यों की पहेली सुलझाने में मदद मिलती है। 1968 में लॉकयर नाम के वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के मौके पर की गई खोज के सहारे ही सूरज की सतह पर हीलियम गैस की मौजूदगी का पता लगाया था। प्रकाश कणों की गति पर ग्रेविटी के प्रभाव के बारे में आइंस्टीन का नियम भी सूर्य ग्रहण के मौके पर ही सही साबित हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान की गणना के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट का ही हो सकता है, लेकिन इन गिनती के मिनटों में ही दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों को कई काम करने पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीरों और जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण कई महीनों तक चलता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सूर्य और उसकी किरणों के प्रभाव को सही तरीके से समझ लिया जाए तो हैरतअंगेज परिणाम लाए जा सकते हैं। यही वजह है कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को भले ही धर्म और ज्योतिष विज्ञान अपने अपने नजरिए से देख रहे हों, लेकिन दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अंतरिक्ष के कुछ और राज समझने का एक सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए हर घर तिरंगा कैंपेन की झांकी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण।
3: लद्दाख में पहली बार ब्लैक निग क्रेन महोत्सव का आयोजन, 14 अगस्त मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न।
2: भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त, 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए।
3: देशभर में उत्साह से निकाली जा रही है हर घर तिरंगा यात्रा, कहीं साइकिल पर तो कहीं बाइक पर निकाली जा रही है यात्रा।
2: देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल के पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, दिल्ली में वाहनों की कड़ी चेकिंग।
3: रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्स से पुत्र पुर्तगाल में की सिविल मैरिज, दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी शादी की खुशखबरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें।

शुभ समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में अब देशभक्ति का रंग छाने लगा है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी तैयारियों के बीच तिरंगा रैली का जगह जगह आयोजन हो रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर भी देशभक्ति के तराने गूंजने लगे हैं। आजादी का जश्न मनाने को लेकर पूरे देश में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए AI CCTV की मदद ली गई। वहीं 15 अगस्त को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी की भी तैयारी तेज हो गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर बाइक रैली का आयोजन हो रहा है। आज सुबह राजधानी दिल्ली में सांसदों की एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और जन भागीदारी का संदेश दिया गया है।

0: हाथों में तिरंगा, साइकिल पर तिरंगा, बाइक पर तिरंगा, हर तरफ देश की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है। देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और हर भारतीय के स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की जीवंत गाथा है। इस बार 15 अगस्त को आजादी के 79 वर्ष पूरे हो जाएंगे और देश स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा, जिसको लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम की है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक और साइकिल रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी नजर आई। बडगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के हरी झंडी दिखाए जाने के साथ ही रैली आगे बढ़ चली। इस तिरंगा रैली में पूरे जिले से सैकड़ों बाइकर्स और साइकिलिस्ट का जबरदस्त जोश दिखा। इनमें स्टूडेंट्स, युवा ग्रुप, सरकारी कर्मचारियों के साथ ही अलग अलग वर्गों के लोग शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास स्थित केरन घाटी में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यूपीएस केरन बाला और हायर सेकेंडरी स्कूल केरन के साथ ही यहां के लोगों ने संयुक्त तिरंगा रैली निकाली। ये रैली हायर सेकेंडरी स्कूल केरन से देशभक्ति का संदेश देते हुए फ्लैग पॉइंट तक गई। यूपी के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। हाथों में तिरंगा थामे वो देशभक्ति के गीत गाते नजर आईं। इस तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा।
1: देश में तिरंगा यात्रा की धूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। किस तरह से ये तमाम लोग हैं, जनमानस है, जो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और महिलाओं की भी जबरदस्त भागीदारी है। हाथों में तिरंगा है, मन में देश के प्रति अटूट आस्था और विश्वास दिखाई दे रहा है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ये तमाम लोग तिरंगा यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। शाम से तिरंगा लहरा रहा है,
2: लोग भी अपना योगदान दे सके राष्ट्र के निर्माण में, उसी संकल्प के साथ आज सभी हमें भारत माता की जय के साथ हम लोग और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ यहाँ खड़े हैं, उपस्थित हुए हैं।
1: राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें आधी आबादी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर देशवासियों से हर घर तिरंगा को एक उत्सव बनाने की अपील की है। पूरा देश आजादी के जश्न में सराबोर नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के रेलवे स्टेशनों पर भी देशभक्ति की गूंज सुनाई पड़ रही है।

0: देशभक्ति के गाने सुनाई पड़ने लगे हैं।
1: मैं आया तो इधर वंदे भारत मातरम और देशभक्ति के गीत बज रहे थे, सुन के बड़ा अच्छा लगा। मतलब बचपन के दिन याद आ गए, जब स्कूल जाते थे स्कूल में हम लोग भी गाया करते थे। हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये गीत बजाए जा रहे हैं और इससे सभी लोगों में देश के प्रति भावना उत्पन्न होती है, देशभक्ति की। इससे प्रत्येक भारतीय को अपने आप में गौरव अनुभव होता है।
0: झांसी समेत रेल मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशनों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए देशभक्ति के ये तराने 15 अगस्त तक गूंजते रहेंगे।
2: राष्ट्र 9 से 15 अगस्त तक जो स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में स्टेशनों पर जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है, मतलब देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं, ये इसमें इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे कि जो रेल यात्री सुविधाओं पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही साथ जो हमारा जो आजादी का जो समारोह है उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हर घर तिरंगा जो है, हर घर तिरंगा भी का भी आयोजन किया जा रहा है और स्टेशनों पर पेट्रियोटिक सॉन्गों को भी बजाया जा रहा है। जो हमारे जैसे बड़े बड़े स्टेशन हैं उनके साथ साथ जो वहाँ भी व्यवस्था है, वहाँ पे हम तिरंगा रंग में जो लाइटें लगाई जाएंगी।
0: पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा नजर आ रहा है और स्वतंत्रता दिवस पर कुछ इसी तरह तिरंगे की लाइट से रेलवे स्टेशन भी जगमगाते नजर आएंगे। चंदौली से उदय गुप्ता और झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: डाक विभाग ने इस बार रक्षाबंधन के लिए एक नया लिफाफा जारी किया है। इस वाटरप्रूफ लिफाफे में बहनें अपने भाई के लिए खास राखी भेज सकती हैं। ये लिफाफे पानी या नमी से खराब नहीं होते, यानी राखी पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचने की गारंटी है। डाक विभाग ने लिफाफे के खास साथ राखी के लिए गिफ्ट बॉक्स भी शुरू किए हैं। खास बात यह है कि इनके दाम भी बेहद वाजिब रखे गए हैं।
0: भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस बार भारतीय डाक विभाग ने बहनों के प्रेम को भाइयों तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया है। सावन के महीने में बारिश की वजह से कई बार राखी और दूसरे गिफ्ट्स भीगकर खराब होने का डर बना रहता है, लेकिन इस बार डाक विभाग की एक पहल ने इस फ्रीक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। भाइयों तक राखी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इस बार पोस्ट ऑफिस में वाटरप्रूफ लिफाफे और वाटरप्रूफ गिफ्ट बॉक्स की सुविधा दी जा रही है। इन लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स में रखी राखी बारिश के पानी से भी खराब नहीं होगी और इस वाटरप्रूफ बॉक्स में रखे गिफ्ट्स पर नमी का कोई असर नहीं पड़ेगा।
4: पूरी तरह वाटरप्रूफ है, अच्छे लिफाफे है, थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। राखी का कवर है तो इसका डिलीवरी जल्दी होगी, इसलिए बहनों से अनुरोध है किसी भी नजदीक डाकघर में जाएं और ये तीन तरह के लिफाफे जिसमें भेजना चाहती हैं आप भेज सकती हैं।
0: वाटरप्रूफ लिफाफे की कीमत 10 रूपए और 15 रूपए रखी गई है, जबकि गिफ्ट बॉक्स की कीमत 30 रूपए है। यही नहीं, इन लिफाफों और बॉक्स पर आज से 10% की छूट भी दी जा रही है। इन लिफाफों और गिफ्ट बॉक्स की स्पीड पोस्ट से डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बहनों का प्यार भाइयों तक वक्त से पहुंचे। धौलपुर से उमेश मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
3: जुलाई में भी जो कसर रह गई थी वो अगस्त में पूरी हो गई है। दरअसल देश के तमाम राज्यों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

0: अगस्त के महीने में मॉनसून ने तेवर दिखाए तो दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्य बरखा बहार से खिल उठे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है और अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल भारत में मॉनसून के दो एक्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश के पास है तो दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है। आने वाले कुछ दिनों में ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्रों में तब्दील हो जाएंगे और इससे देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं।
1: आने वाले 24 घंटे में दो रहने वाले हैं, पूरा पहला तो पूर्वी भारत और दूसरा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो से लगा हुआ मध्य भारत और गुजरात का जो क्षेत्र है। इस मैप से भी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये लो प्रेशर यहाँ पे है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर वर्षा का प्रमाण ज़्यादा रहेगा। राजस्थान खासतौर से पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी वर्षा आज होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में एक दो दिन की बारिश के बाद एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। हालांकि बारिश का ये ठहराव

0: ही दिनों का होगा। 15 अगस्त के बाद एक बार फिर इन राज्यों में तेज बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मध्य भारत में बादल अच्छी मानसून बारिश की तरफ इशारा कर रहे हैं।
1: पहाड़ों के लिए क्या होता है, हमारे पास अभी एक पश्चिम विक्षोभ भी है जो कि पाकिस्तान के आसपास काम कर रहा है, और यहाँ से जो मानसून ट्रफ उसका भी एक्सटेंशन, वर्टिकल एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है, यानी मानसून ट्रफ एक्टिव कंडीशन में देखी जा रही है, और जिसका जो विस्तार है एक से डेढ़ किलोमीटर तक वर्टिकली ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। तो इसकी वजह से पश्चिम विक्षोभ की वजह से और जो पूर्वी हवाएं जो यानी कि बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से जो मॉइस्चर जा रहा, नमी जा रही है, ये यहाँ से भी मॉइस्चर जा रहा और अरब सागर से भी जा रहा, तो कुल मिला के जो ये वाला पॉकेट्स है खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है वर्षा देखी जा रही है, तो ये दोनों कारण बने।
0: मैदानों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है, और आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश कुछ चुनौतियां लेकर भी आ सकती है। अनमोल बाली, गुड न्यूज टुडे।
2: खेल के क्षेत्र में देश की महिला शक्ति अपना शानदार दम दिखा रही है। राजस्थान की एक वुशु खिलाड़ी का एशियन गेम्स के लिए टीम में चयन होने से पूरा प्रदेश फक्र महसूस कर रहा है। हर किसी को इस युवा खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन करने का भरोसा है, और इस लड़की ने राजस्थान के लिए इतिहास भी रच दिया है। देखिए,

0: राजस्थान की वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत टीम में जगह बनाकर इतिहास रचा है। एशियन गेम्स में वुशु पिछले 36 साल से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक राजस्थान का कोई खिलाड़ी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया था। अब पहली बार कोटा की रहने वाली 18 साल की दिव्यांशी ऐसा करने जा रही है। ये जापान में 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय वुशु टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।
1: मैं 12-time नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट, उसमें एक बार ब्रॉन्ज मेडल आया है और चाइना में जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था उसमें सिल्वर मेडल, और अभी मैं वर्ल्ड एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ जो कि जापान में होंगी।
0: दिव्यांशी ने महज 10 साल की उम्र में वुशु का अभ्यास शुरू किया था। साल 2017 में शुरू हुआ ये सफर अब एशियन गेम्स तक पहुंच चुका है। इस दौरान दिव्यांशी 12 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का नाम बढ़ा चुकी हैं। दिव्यांशी ने वुशु के अलावा बॉक्सिंग में भी अपना दम दिखाया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीत चुकी है।
2: पहली बार एशियन गेम में चयनित होने वाली दिव्यांशी पहली खिलाड़ी है जो राजस्थान से खेल रही है। 36 वर्षों से एशियन गेम्स के अंदर वुशु हो रहा है, राजस्थान पहली खिलाड़ी चयनित हुई है।
0: दिव्यांशी का लक्ष्य एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीतने पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
3: कोटा के खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। दिव्यांशी ने भी इसी तरीके से राज्य स्तर पर आने वाले समय पर राष्ट्रीय स्तर पर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का नाम।
0: दिव्यांशी के एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयन को लेकर राजस्थान में खुशी की लहर है। परिवार और कोच से लेकर हर किसी को दिव्यांशी के एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने का पूरा भरोसा है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों एक रोबो कॉप की खूब चर्चा हो रही है। ये हाईटेक रोबोट प्लेटफॉर्म के साथ रेलवे स्टेशन के हर हिस्से पर पैनी नजर बनाए रखता है। एआई टेक्निक से लैस ये रोबो कई जटिल कामों को एक साथ निपटा सकता है।
0: चौकस निगाहें, चप्पे चप्पे पर नजर, आरपीएफ का ये रोबोट कॉप है मुसाफिरों की सुरक्षा का हम सफर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तैनात ये रोबोट कॉप रेल मुसाफिरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रोबोट का नाम है डीएससी अर्जुन। सिर पर आरपीएफ की कैप और चार पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल पर सवार इस एआई रोबोट को देखकर सभी की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी होती है कि लोग इसके बारे में पूछे बिना रह नहीं पाते। डीएससी अर्जुन के पास तैनात सिपाही मुसाफिरों को इस रोबोट की खूबियों के बारे में समझाते हैं। इस अत्याधुनिक रोबोट में 7 हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। ये रोबोट ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। रेलवे ट्रैक पर उतरने वाले यात्रियों पर इसकी पैनी नजर होती है। ये रोबोट आग जैसी घटना को तुरंत भांप लेता है। किसी भी गड़बड़ी का पता चलते ही ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। इस रोबोट को करीब 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। डीएससी अर्जुन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और रेलवे स्टेशन की दूसरी अहम जगहों की लगातार निगरानी करता है। निगरानी के साथ ही ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए मुसाफिरों को जागरूक भी करता है। ये रोबोट ट्रेनों के आवागमन, सामान की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक पार न करने की हिदायत के साथ लोगों को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी देता है। खास बात ये है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई जटिल कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। डीएससी अर्जुन रोबोट एआई, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस है। ये रोबोट आरपीएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभा सकता है। इसमें एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। ये रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स से यात्रियों की संख्या का आकलन करता है। इसकी एआई तकनीक लावारिस सामानों को तुरंत पहचान लेती है। ये संदिग्ध गतिविधियों के बारे में फौरन आगाह कर सकता है।
5: रोबोट है और ये सबके ऊपर निगरानी रखता है और जो भी क्रिमिनल या कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके अगर फिगर से अगर मैच कर जाता है तो ये सीधा हेडक्वार्टर तक वो पहुंचा देता है और लोगों को भी ये उनको बता देता है कि आपका सामान ठीक तरह से रखिए, सजा के रखिए और निगरानी में रखिए ताकि ये चोर के द्वारा कोई उसको उठा ना ले जाए।
0: रेलवे का मानना है कि डीएससी अर्जुन की तैनाती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये रोबोट रियल टाइम में अहम सूचनाएं जुटाकर अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करता है। इसके आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों की मदद पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले पहचान सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में ये रोबोट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात कर लेते हैं मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो की, जो अपनी गर्लफ्रेंड रोड्रिग्स के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दरअसल दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर की। इसमें अंगूठी पहने नजर आई हैं रोड्रिग्स, और इस तस्वीर के साथ उन्होंने बेहद ही छोटा लेकिन खास कैप्शन लिखा, सी और जी, यानी क्रिस्टियानो और जॉर्जिया। इनके बीच में लव का एक इमोजी लगाया गया। खबर है कि ये शादी पुर्तगाल के लिस्बन के पास एक रिजॉर्ट में हुई। इस शादी में रोनाल्डो और रोड्रिग्स के पांचों बच्चे भी मौजूद रहे। इंस्टा स्टोरी में अब आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए प्रियांशी की एक फनी इंस्टा स्टोरी।
6: भाई पिज्जा खाने चलेगा?
7: मेरा ना कल फिजिक्स का पेपर है तो मैं नहीं आ पाऊंगा।
8: अच्छा, फिजिक्स की स्पेलिंग बता।
7: एफ आई।
6: ये रोटी हम ऐसे बेली, गोल रोटी बेली है, ठीक है? फिर हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे पलटे।
8: रुक रुक रुक, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी ले लेता हूँ ना।
6: बनने तो दे सर्टिफिकेट, तवे पे डालेंगे फिर, ठीक है? इसको सेकेंगे एक तरफ से, चलो पलट।
4: इसी के साथ शुभ समाचार में इन तमाम खबरों के बाद आज के लिए बस इतना ही।
9: बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य? सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव? सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेकेड क्रेन महोत्सव का आयोजन, 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की और इसके प्रभाव की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 11:06 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 7:59 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। आखिर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 12 अगस्त को रात में 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा 12 अगस्त की मध्य रात्रि जब बीत जाएगी, 13 अगस्त शुरू हो जाएगा, तो 13 अगस्त की बहुत सुबह 1:27 पर समापन होगा। यानी ये ग्रहण 12 अगस्त को रात में 9:04 पर शुरू होगा और इसका समापन 13 अगस्त को 1:27 प्रातः समाप्त होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, फिर भी भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम, किसी तरह के सूतक के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव देश दुनिया पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे, लेकिन जहां तक सूतक के नियमों की बात है, उसका पालन करने की भारत में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेष राशि, पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें, धन की हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर लगभग अगले 3 महीने तक पड़ता है और राशियों पर इसका प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न में ये सूर्योदय आरंभ हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं सूर्य ग्रहण के समय और पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। इस ग्रहण के समय राहु और मंगल ये दोनों निकट अंशों में हैं। अब आप देखिए, कर्क राशि जल की राशि है, मीन लग्न जल का लग्न है, जल की राशियां प्रभावित हो रही हैं। तो इस सूर्य ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप के झटके लग सकते हैं या जल से आपदाओं की संभावना बन सकती है। सत्ता में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चूंकि स्वतंत्र भारत की राशि भी कर्क है और ये ग्रहण कर्क में ही लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थिति बन रही है। इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसका प्रभाव आम जनता पर और देश की राजनीति पर पड़ेगा। राहु और मंगल का करीबी अंश में होना अच्छा नहीं है। आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं, विस्फोट आदि की नौबत आ सकती है। तटीय स्थानों में
जो समुद्र तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहां पर विशेष समस्या का समय हो सकता है। तो ये ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं की सूचना दे रहा है। विस्फोट और उपद्रव जैसी स्थिति बनेगी इस बात की जानकारी भी दे रहा है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया कि ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक 15 दिन तक पड़ेगा। तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको काफी परेशान कर सकती हैं, आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और करियर में आपको विशेष सफलताएं इस समय मिलेंगी, ग्रहण लाभकारी है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। कर्क राशि, करियर में आपके समस्या आ सकती है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। सिंह राशि, ग्रहण का प्रभाव दुर्घटना करवा सकता है, दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहिएगा। कन्या राशि, ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं आपके लिए, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, यात्राओं में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में आपके सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक का हाल जाना कि उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, इनके काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य और जीवन में इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की और पारिवारिक समस्या वृश्चिक वालों को इस समय परेशान कर सकती है। ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। धनु राशि, ग्रहण की वजह से चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चोट चपेट और दुर्घटना से सावधान रहें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। मकर राशि, ग्रहण के कारण करियर में आपके समस्या आ सकती है और स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, ग्रहण आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं, तो मीन वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें और महत्वपूर्ण काम रुकेगा तो परेशान ना हो, कुछ समय बाद काम आपका बन जाएगा। ग्रहण काल में चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय में भगवान के नाम का मंत्र या गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, इसका जप अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे, ग्रहण काल में नाम जपेंगे या गुरु मंत्र जपेंगे, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको जरूर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ सकता हो,
ऐसी स्थितियां हों तो क्या करेंगे? जो ग्रहण का समय है रात के 9 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच का, इस समय में शिव जी और सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता बता, जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान
1: ज्ञान गुण सागर,
0: जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो, और जो स्वयं राम दूत अतुलित
1: बल धाम,
0: स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो ना, कटारा नहीं ना। पर धन्य हनुमान जी, ज्ञान के सागर बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे? बूढ़े जामवंत जी से। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो, कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है, जामवंत के
1: वचन सुहाए,
0: गाइए सुनी हनुमंत। बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है, ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग, हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, अब तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। क्या? सुनी हनुमंत
1: हृदय अति भारी।
0: वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करूं तात तुम जाई, सीता देख कहां सुध आई। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को जारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर। पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा। कई लोग ऐसे होते हैं, जितनी चाबी भांदो उतने ही चलते। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी। पर चाय तो उठाई, पर मैं डंका की उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था। बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी, आपने वो तो कहा ही नहीं था। बताओ, हमका धन्य है बेटा। हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो। उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हमका क्या उल्लू आदमी है, हमने कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया। हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले, तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं, उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन, मेरा कक्का? पता है क्या बोला गुरुजी, ये तो आपने कही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जितना कहो उतना ही करते हैं। पर हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी को समझ आ गया कि जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं, वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलो, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है, और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलो कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है। हनुमान जी कैसे जी रहे,

जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई। दूसरी बात और समझने जैसी, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की बातों को सुनकर हर्षित भए। क्यों? ज्ञान है, जहां से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहे, बुरा ना मानना। मेरे पागलो, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पालेना। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं, पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित भए, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है? बेटा शिव कुमार, तीन कारण हैं दुख के, वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य तीन हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन, बताओ बताओ। ले तुमने बत्ती से दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। अब तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहो। मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार, बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या, दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे, हाँ जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है,
किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो दो बैंड बाजा बजाने वाले गए, एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ, अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है। तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था, एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, दो घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह पर, एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक एक यजमान के घर दो पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना, और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले, हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5,000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले, हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है, आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है, तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या, एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो, तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले, दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो। ये पहला कारण दुख का। दूसरा कारण दुख का, दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है शिव कुमार। यहीं पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत, हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती, चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती, रोज पीटती, रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे, चंगीलाल सीधा साधा, क्योंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा, उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली
और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था। तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है, विधानसभा क्या खाक संभलेगी? भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा? तो और परेशान चंगीलाल। तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हमका कुछ नहीं। उसने धमकी क्या दी? अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला। हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया, वो तुरंत घर गया। रात को ही पश्चिम बिहार की ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होके बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना, हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी टेंशन में बोली, हमने कब कहा ये, आप परित्याग क्यों कर रहे? चंगीलाल बोला सुबह जाना है उसके पहले हमसे ही इस्तीफा ले ले, कम से कम कल के दिन समाज में ये इज्जत तो रहेगी कि पत्नी नहीं भगी, भगाई है, संतुष्टि तो रहेगी। शिव कुमार भगवान करे तुम्हें ऐसा ना करना पड़े। पर शिव कुमार दुखों से बचने का ये सॉल्यूशन है, ये सूत्र है। क्या दुखी तुम कब होगे? जब तुम कोई बात कमिटमेंट दुनिया के सामने कर दोगे कि हम ऐसा

अपने आप को विचित्र आदमी घोषित कर दो, अपने आप को जीरो घोषित कर दो, फिर भले ही एक नंबर मिल जाए, दस नंबर मिल जाए, ये बोनस होगा, और नहीं भी मिलेंगे तो तुम कह तो सकते हो कि हमने तो पहले ही कही थी, हमने तो पहले दिन ही कहा कि हम ऐसे हैं। ये दुख से बचने का उपाय। पर तुमने पूछा कि दुख क्या है, तो दूसरा कारण सुनो, दुख कुछ नहीं अज्ञानता है। तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो, तुम्हें पता ना हो, तो तुम क्या करोगे? खिसको, ऊपर पैर मत रखो, चलो चलो। लेकिन तब तक कोई कान में कहे, कमिश्नर साहब, पीएम है, अरे रख लो रख लो रख लो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, आ जाओ आ जाओ, नजदीक आ जाओ आ जाओ। बताइए, ये तुम अभी अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? अज्ञानता, पता नहीं था इसलिए ऐसी हरकत कर रहे थे। अब पता चल गया तो खुद की सीट छोड़ने को तैयार, ये ज्ञान है। ये अज्ञानता भी दुख का कारण है। किसी दरिया के किनारे, शिव कुमार समझो दुख क्या है। दूसरा कारण, किसी नदी के किनारे एक आदमी गया, रात का समय था, मछलियां पकड़ने गया, पुराना जमाना, लाइट तो थी नहीं, वो रात को ही चला गया। उसने सोचा सुबह हो, बाकी मछुआरे आवे, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं, और सुबह की पहली सूर्योदय की किरण के पहले मैं जाल को बिछा दूं ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। अब रात को बैठ गया, किस्मत से उसके बगल में एक थैला डला था, उसने सोचा होगा कोई कचरे का बैग, होगा कोई ऐसे ही कार्टून, उसमें कुछ पत्थर जैसे थे चमकदार, चिकने चिकने, वो एक एक पत्थर उठावे और दरिया में नदी में फेंकता जावे। और पूरी रात उसने उस कार्टून में भरे हुए पत्थरों को फेंका, लेकिन जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, थोड़ी रोशनी आई, उजाला छाया, पक्षी चहचहाने लगे, तब उसे होश आया कि अब तो सुबह हो गई है, चलो जाल उठाओ, मछलियां पकड़नी है। लेकिन जैसे ही कार्टून जिस थैले में रात भर पत्थर समझ करके वो पानी में फेंकता रहा, हाथ में बचा हुआ एक पत्थर उसने गौर में देखा, गौर से देखा तो वो कोई पत्थर नहीं था, हीरों का थैला था, डायमंड का थैला था। अब सिर धुन धुन कर पछताने लगा, एक ही बचा, पूरी रात हीरे फेंक फेंक करके दरिया में फेंक दिए। यही जिंदगी है, अगर तुम अज्ञानी रहोगे तो जिंदगी के प्रत्येक हीरे के पल को, सदगुरु को तुम इस तरफ उस तरफ फेंकते जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा और तुम्हें दुख हो जाएगा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
6: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और

0: दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
1: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
3: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
4: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
5: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
5: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
8: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
9: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
10: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
11: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है, और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
12: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
4: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
13: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर उन्होंने फौजी 360 ला के दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
14: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
16: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
17: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
19: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
20: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: राम मंदिर CEO पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व DM SP भी शामिल। आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन, 14 अगस्त मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। प्रयागराज में मनाया जा रहा आजादी का जश्न गूंजा, रंग दे बसंती का संदेश, कविता और चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल। देशभर में उत्साह के साथ निकाली जा रही है हर घर तिरंगा यात्रा, कहीं साइकिल पर तो कहीं बाइक पर निकाली जा रही है यात्रा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से धरती के कई हिस्सों में दिन में ही होगी रात, 3 दशक बाद सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाएगा अंधेरा। 1999 के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा सूर्य ग्रहण, खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप के कुछ हिस्सों, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में दिखेगा ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:04 पर, उसके साथ ही रात 1:27 तक ये ग्रहण रहेगा। रात का समय होने की वजह से भारत में दिखाई नहीं देगा कल का सूर्य ग्रहण, दिखाई नहीं देने के कारण सूतक भी नहीं लगेगा और सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई सांसदों की रैली में हुई जीत। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया यह आयोजन, जिसके तहत अलग अलग राज्य और शहरों में भी तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, ड्यू के माय भारत वॉलंटियर्स भी शामिल। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई तिरंगा साइकिल रैली, इस देशभक्ति और फिटनेस यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय के 1,000 से ज्यादा माय भारत वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। तिरंगा साइकिल रैली को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह, मांडविया बोले साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या का समाधान। श्रीनगर में CRPF की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर, कोट रोड और रीगल चौक के आसपास निकाली गई रैली, स्कूली बच्चों में भी दिखा रैली को लेकर खास उत्साह। देशभर के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल के भव्य पाइप बैंड प्रदर्शन का आयोजन। की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, युवाओं और आम जनता में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना कार्यक्रम का उद्देश्य। ऐतिहासिक कांगला स्थल पर हुआ देशभक्ति से भरा संगीतमय आयोजन, इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए छात्र और आम लोग। दो लद्दाख बटालियन NCC का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न, कारगिल और लेह क्षेत्र में हुआ कार्यक्रम। इस शिविर में विभिन्न कॉलेज और स्कूल्स के कैडेट्स ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। आत्मकथा का टाइटल है ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। विज्ञान भवन में आयोजित हुआ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधिकारिक है आत्मकथा। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने नौजवानों को दिया संदेश, मुश्किलों के बावजूद हार ना माने, खुद पर रखें भरोसा। देश में जहाज निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, देश की तटीय अपतटीय सुरक्षा गश्त और समुद्री निगरानी को मिलेगी मजबूती। कोलकाता में लॉन्च किया गया अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज श्रुति, सांस्कृतिक विरासत और वेदों के आधार पर रखा गया है जहाज का नाम। मुजफ्फरपुर के घनश्याम जासवाल का कमाल, गरीबी से नहीं मानी हार, पढ़ाई के जरिए बदली किस्मत, पास की यूपीएससी परीक्षा, बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं घनश्याम के पिता, दुकान पर भी हाथ बटाते थे घनश्याम, सफलता से रोशन किया नाम। राजस्थान के कोटा से 1000 श्रद्धालु मदुरई और रामेश्वरम के लिए रवाना, स्पेशल ट्रेन के लिए तीर्थस्थलों की यात्रा पर रवाना हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में लगातार खेलों का दिया जा रहा है बढ़ावा, दरअसल घाटी में लड़कियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है बास्केटबॉल। श्रीनगर में आयोजित किया गया लड़कियों का बास्केटबॉल कार्यक्रम, कई जिलों की टीमों ने लिया हिस्सा। घाटी में बढ़ती खेल सुविधाओं से खिलाड़ी खुश, युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना मकसद। कश्मीर का अंगूरों वाला गांव के नाम से मशहूर है गांधरबल का रिपोरा गांव, जहां पर 600 साल पुरानी परंपरा और आधुनिक बागवानी का मेल से हो रही है अंगूरी की खेती। मीठी फसल और बड़े बड़े अंगूरों के लिए मशहूर है ये गांव, लगातार नई तकनीक से खेती कर और गांधरबल को अंगूर का हब बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बूस्ट, दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने जीएमसी उधमपुर में 128 स्लाइस सिटी स्कैनर का किया उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का किया उद्घाटन, गोरखपुर को विकास की नई सौगात। हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, सेस के जरिए बढ़ोतरी। बुलंदशहर में गौमूत्र से जैविक खाद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आसपास के लगभग 15 गांव इस परियोजना से जुड़े। कटिहार में एक शादी बनी चर्चा का विषय, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामे बारात लेकर पहुंचा दुल्हा, बारात में 2 दर्जन ट्रैक्टर शामिल। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन हुआ, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। 14 अगस्त मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न, दुर्लभ और लद्दाख के राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन के संरक्षण पर जोर देना मकसद। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के कारण प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार, सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की दी चेतावनी। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 4 लेन हाईवे की 1 लेन को किया गया बंद। मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड, करीब 7 घरों पर गिरे पत्थर, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, हफ्ते भर की गर्मी के बाद आई बारिश ने लोगों को दी राहत। 26 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करेगी 90 के दशक की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली 2 में आएंगी नजर। फिल्म उड़ता तीर की नई रिलीज डेट का ऐलान, 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। श्रद्धा कपूर की इटा हुई पोस्टपोन, अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म में रणदीप हुड्डा, जिशान अयूब भी आएंगे नजर। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म राणा बाली की रिलीज डेट में बदलाव आया, अब 30 अक्टूबर को होगी रिलीज। रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड के साथ पुर्तगाल में सिविल मैरिज की, दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीरें शेयर कर शादी की खुशखबरी दी। क्रोएशिया में पर्यटकों ने गर्मी से बचने के लिए समुद्र के अंदर सैर की, हेलमेट की मदद से वो समुद्र की तलहटी पर चलते और मछलियों को हाथ में खाना खिलाते नजर आए। मंगलवार को यहां का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, ऐसे में लोगों ने पानी के अंदर करीब 3 मीटर नीचे जाकर ठंडक का मजा लिया। संडा वाटर पार्क में जाने के लिए डाइविंग का अनुभव नहीं है जरूरी, खास हेलमेट से हवा मिलती है जिससे पर्यटक आराम से समुद्र के अंदर सांस ले सकते हैं। पर्यटक करीब 20 मिनट तक समुद्र के नीचे घूमते हैं, वहां की समुद्री दुनिया देखते हैं, डाइवर्स भी उनके साथ रहते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से घुमाते हैं। पर्यटकों के लिए इतनी गर्मी में समुद्र के अंदर जाना बेहद मजेदार अनुभव, ठंडक के साथ समुद्री जीवों को करीब से देखने का भी आनंद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड, बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है, ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है, मसों में ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व डीएमएसपी भी शामिल। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। प्रयागराज में मनाया जा रहा आजादी का जश्न, गुंजार रंग दे बसंती का संदेश, कविता और चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल। देशभर में उत्साह से निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा, कहीं साइकिल पर तो कहीं बाइक पर निकाली जा रही यात्रा।

हूँ आपके साथ पूजा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। आज रात 9:04 पर चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढक देगा। जहां पर चंद्रमा की गहरी छाया पहुंचेगी वहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हालांकि भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण का एक धार्मिक पक्ष भी है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण को लेकर सूतक, मंत्र जाप, ध्यान और पूजा जैसी मान्यता है। भले ही भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव केवल उसके दिखाई देने वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। ज्योतिष गणनाओं में ग्रहण के समय सूर्य की राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में किस राशि पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज कब से कब तक लगेगा सूर्य ग्रहण और ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या बिल्कुल भी ना करें।

0: पावन सावन और सावन में सौभाग्य वाली शिवरात्रि के ठीक बाद सूर्य ग्रहण। ये संयोग जल्द नहीं होता, इसीलिए श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या पर पड़ने वाला सूर्य ग्रहण न सिर्फ ज्योतिष बल्कि खगोल दोनों ही नजरियों से खास बन गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण क्यों अहम है। भारत में सूर्य ग्रहण 9:04 से शुरू होगा, मध्य समय रात्रि 11:16 रहेगा और इसका समापन 13 अगस्त की सुबह 1:27 पर होगा। ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा और इसीलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं है। फिर भी सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। खासकर सावन में शिवरात्रि के बाद पड़ने वाले इस ग्रहण का सकारात्मक असर माना जा रहा है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर। जैसे धार्मिक स्थल बंद नहीं होंगे, वैसे भी ये रात का समय है, भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:04 से लेकर के 1:28 तक ही सूर्य ग्रहण की स्थिति रहेगी। तो भारत भूमि में ऐसे समय में मंदिर आदि के कपाट वैसे भी बंद रहते हैं, तो सूतक के नियम का कोई आधार नहीं बनता है। भारत में दृश्य नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह भारत भूमि को प्रभावित तो नहीं करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। और इसी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव के संदर्भ में, तो कुछ राशियों को लाभ प्राप्त होगा तो कुछ राशियों को नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त होगा।
0: 2026 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। पहली बात तो ये है कि इसे यूरोप के कुछ हिस्सों और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में देखा जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, पुर्तगाल, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में नजर आएगा। जानकारों की राय में ऐसा सूर्य ग्रहण धरती पर साल 1999 में नजर आया था और आगे 23 अगस्त 2090 को दिखाई देगा। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आता जाएगा, सूर्य का एक बड़ा हिस्सा उसकी छाया में छिपता जाएगा और जब ग्रहण अपने चरम पर होगा तब आसमान में रोशनी काफी कम हो जाएगी। दिन में रात जैसा नजारा होगा क्योंकि चंद्रमा सूर्य के करीब 90% हिस्सा ढक लेगा। लेकिन अगर ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो इस ग्रहण का समय विलक्षण है। शिवरात्रि पर ग्रहों का अद्भुत संयोग है और चतुर्ग्रही योग बना है। बुध, सूर्य, गुरु, चंद्रमा चारों कर्क राशि में है और इसकी वजह से बुधादित्य और गजकेसरी योग बना है।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभिष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं,

0: का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। विभिन्न पदार्थों जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्रियां हैं, धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान इत्यादि हुआ, को भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। और भगवान मृत्युंजय, भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए।
1: हालांकि सूर्य ग्रहण नजर नहीं आने से भारत में इसका सीधा असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानकार मान रहे हैं कि ग्रहण के किसी भी तरह के असर से बचने के लिए शिव की आराधना से बेहतर कोई उपाय नहीं। यानी सावन के सोमवार को उपवास रखें, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नियम से बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही शिव पंचाक्षर स्त्रोत और शिव मंत्र का जाप भी करें।
2: देखिए जातक ठहरे सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहाँ पड़ रहा है तो यहाँ भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड, जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव।
1: सावन की अमावस्या पर पड़ रहे सूर्य ग्रहण को लेकर एक दुविधा पितरों के लिए अर्पण और दान को लेकर है। जानकारों के मुताबिक सूतक लागू नहीं होने की वजह से इसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ तक कि ग्रहण का असर कम करने के लिए भी दान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सूर्य ग्रहण से कौन कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी नवजोत रंधावा ने ज्योतिष आचार्यों से खास बातचीत की है, देखिए।
1: का अंतिम सूर्य ग्रहण भी से कहा जा रहा है। सबसे पहले नंता जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी दो सवाल। पहली बात तो ये कि हम जो लोग भारत में रह रहे हैं वो इसको किस नजरिए से देखें, दूसरा क्योंकि सनातन को मानने वाले पूरी दुनिया में है, कहां कहां नजर आ रहा है और जहां भी नजर आ रहा है वहां क्या प्रोटोकॉल रहेगा इसका?
4: जी बहुत सुंदर प्रश्न नवजोत जी, बिकॉज देखिए इंडिया में, भारत में तो सूतक काल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ नग्न आंखों से हमें ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा है। तो आप आराम से अपना दिनचर्या आप कर सकते हैं, कोई सूतक नहीं है। लेकिन ये जो आपने जो सेकंड पॉइंट बोला कि सनातनी तो पूरे विश्व में है, हर जगह में है, तो जो जो उस ग्रहण की परिधि में आ रहे हैं उनको विशेषकर जरूर उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये टोटल सोलर इक्लिप्स है और टोटल सोलर इक्लिप्स का जो असर होता है ना 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का रहता है। इट्स अ वेरी ड्रास्टिक थिंग और ये हमेशा देखा गया है कि बहुत उत्पात और उत्पत्तियां या नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, शेयर मार्केट में अपहीवल्स होते हैं, किसी सेलिब्रिटी की या नेता की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो वैसे सिचुएशन होती है। अब ये जो ग्रहण पड़ा है ना, इसका विशेषकर असर जो रहेगा वो यूरोप में रहेगा। आप पूरा यूरोप ले लीजिए, इधर इंग्लैंड, आयरलैंड से लेके ऊपर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर आर्कटिक, एंटार्कटिक, पैसिफिक ओशंस और रशिया का जो नदन पार्ट्स है, नदन एरियाज टचिंग है, वो सारे एरियाज रहेंगे। मेडिटेरियन एरिया रहेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका रहेगा। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे जरूर परेशानियां आते हुए दिखाई देती हैं और एकदम से अपहीवल्स होंगे। अभी आप देखिए ना कि ग्रहण तो कल है लेकिन उसका असर ऑलरेडी चल रहा है कि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी। अच्छा, ग्रहण क्या है? ग्रहण जब एसेंडेंट जब राइज कर रहा है, जो मेजर पीक टाइम है ग्रहण का, उस समय वहां पे अगर मैंने स्पेन को लेकर के कैलकुलेशंस डाली थी क्योंकि मैक्सिमम 100% ग्रहण वहां पे दिखाई दे रहा है, तो मकर लग्न बन रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य ग्रहण है, तो आप ये सोच लीजिए आगजनी जैसी स्थितियां, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मोर वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं या हीट वेव्स आ सकती है। अभी जैसे यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी आई कि कितने लोग मरे, मतलब यूरोप में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि 40 के बार भी पारा जाएगा और सारी मतलब लगभग सारे एसी सब कुछ एवरीथिंग गॉट एग्जॉस्टेड देयर और लोगों के पास चीजें मतलब वो लिटरली समुद्र के अंदर घुस घुस करके अपने को ठीक कर रहे थे, वैसी स्थितियां बन गई थी। तो उस तरह की कैलामिटीज आती है। अब ग्रहण जो पड़ रहा है ना उस समय अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, चतुर्ग्रही योग यहाँ पे पड़ रहा है और उस समय कल

0: जो है मॉर्निंग में गुरु भी उदय हो जाएंगे और गुरु ऑलमोस्ट पुष्य नक्षत्र से अश्लेषा की तरफ को जा रहे हैं, 18 अगस्त को अश्लेषा में आ जाएंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है, उसमें ना एक सर्पेंट की तरह होता है, कुंडलिनी राइज करती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, बहुत सारी डीपर रिसर्च का होता है। तो इस समय अगर आप अपने पैरामीटर्स ठीक नहीं करते हैं, अनएथिकल रहते हैं, तो बहुत कष्ट में रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉजिकली अपनी लाइफ को रीसेट करने के बारे में सोचेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप अपने
1: बिल्कुल
0: जीवन
1: बिल्कुल
0: में ले सकते हैं। तो उस तरह की मेरे को घटनाएं घटित होते हुए दिखाई देती
1: बिल्कुल।
0: हैं,
1: एक बार जल्दी से
0: इंडिया से
1: नंदा जी,
0: रिलेटेड
1: समय
0: इश्यूज
1: क्योंकि
0: रहेंगे।
1: आज हमारे पास बहुत लिमिटेड है और ग्रहण को लेकर आप जानती हैं कि एक घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए हमारे पास वक्त अभी कम है। जल्दी से तमाम खास मेहमानों से सवाल लगातार लेते जाएंगे। पंडित प्रकाश, इस ग्रहण का असर नंदा जी ने समझाया, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, कहां कहां किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा?
2: देखिए, इसका असर जो है आपका अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, और आपके रसिया के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर, आइसलैंड के अंदर, इन जगह पे, यानी समस्त यूरोप में ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और भारत में ये दृश्य नहीं है तो यहाँ सूतक मान्य नहीं है। सूतक याद रखिएगा आप, क्योंकि हमारे GNT के व्यूवर इन देशों से भी हमें देख रहे हैं, तो 12 घंटे पहले सूतक सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में मंदिर के दर्शन, मूर्ति के दर्शन करना निषेध होते हैं, बाल बनाना, नाखून काटना निषेध होता है, साथ ही साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करना निषेध होता है। अगर वहां पर कोई गर्भवती स्त्री है तो उनको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ग्रहण, जब ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण काल में सोना वर्जित कहा जाता है। ग्रहण काल के अंदर कोई भी किसी भी व्यापारिक डीलिंग करना या व्यापारिक गतिविधि करना भी निषेध कहा जा सकता है। क्या करना चाहिए ग्रहण काल के अंदर, तो ग्रहण काल जब लग रहा हो, अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग लग रहा है, तो एक तो सूर्य का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, या फिर ओम घृणे सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान के, जैसे अभी श्रावण का महीना आ रहा है तो भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय की जाप कर लें तो अति उत्तम रहेगा। ग्रहण जब चल रहा हो तो उस समय पे आपको एक तो भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय या विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या सूर्य ग्रहण है तो पर्टिकुलर सूर्य ग्रहण का भी एक मंत्र करना चाहिए, ओम घृणे सूर्याय नमः। साथ ही साथ कुछ लोग रोगी हैं तो उनको क्या करना चाहिए, रोगी अगर कोई जल ले रहे हैं तो जल के अंदर, जैसे जल ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा तुलसी दल डाल के उसके बाद आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर दूध, और ग्रहण में कहीं कहीं पर संहिता के अंदर लिखा है कि बहुत जरूरी हो, जैसे बालक है या कोई वृद्ध है तो वो अगर लॉन्ग, या कोई शुगर पेशेंट है, या जो लोग लंबे समय तक भोजन नहीं कर सकते, मतलब भोजन करने से उनको वीकनेस आती है, तो क्योंकि ये जो ग्रहण है भारत के अनुसार
1: जी
2: करीबन करीबन 7.5 घंटे का ग्रहण है, अगर भारत से अगर इसको देखा जाए तो कहीं कहीं पर अलग अलग जगह पे होगा, तो उनको उस समय पे क्या करना है, तरल चीजें लेनी है, यानी कि आप रस ले सकते हैं, जैसे फलों का रस आप ग्रहण कर सकते
1: हल्की
2: हैं,
1: चीजें।
2: फिर आप ग्रहण कर सकते हैं, चटनी इसमें खा सकते हैं, तो ये इसकी शास्त्र परमिशन देता है, लेकिन किनको, वृद्ध को और बच्चों को। तो जो भी आप खाएंगे उसके अंदर तुलसी का दल, यानी तुलसी आप
1: तुलसी
2: जरूर डाल
1: पत्ता
2: दीजिए।
1: जरूर उसमें होना चाहिए। बिल्कुल लौटूंगी श्रुति गर्वंदा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि नंदिता जी पंडित प्रकाश बता ही रहे हैं कहां कहां कैसे असर होगा। मैं सीधा आपके पास आऊंगी, पहली 6 राशियों के बारे में बता दीजिए क्या करना, असर इन पर कितना हो रहा है।
3: पहली 6 राशियों के बारे में अगर मैं आपको
1: मेष,
3: बताऊं,
1: वृषभ,
3: देखिए,
1: मिथुन, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या।
3: बिल्कुल आप चाहते हैं मैं इन 6 के साथ, मतलब 6 की 6 राशियों के लिए एक साथ बता दूं?
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी, तो ऐसा है ना कि देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रभाव जो है मुझे लगता है यहाँ पे, यहाँ से ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि देखिए जब भी ग्रहण लगता है उसके बाद सूर्य की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और 17 अगस्त को जो है सूर्य अपना गोचर भी जो है सिंह राशि से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी राशियों को अगर मैं कोई कलेक्टिव चीज कहना चाहूं तो ये कहूंगी कि किसी भी प्रकार के अवसाद से बचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अननेसेसरी गैम्बलिंग से बचेंगे, सेहत का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि मंगल राहु भी ऐसे नक्षत्र जो है वो कल ही से पकड़ रहे हैं, ऐसे नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, तो गुस्सा, वाद विवाद, इन सब चीजों से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। शिव उपासना करने का सबसे उत्तम समय है, और मैं कहूंगी कि शिव रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ें या महामृत्युंजय का जाप करें, क्योंकि ये सत्ता वर्ग या अधिकारी वर्ग से जो भी इन राशियों में, मैं कहूंगी कि देखें मेष राशि के चौथे भाव में है लेकिन पंचम भाव में भी सूर्य का गोचर होगा, तो किसी तरह के गेन्स हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी इनको गैम्बलिंग से बचना है। सिमिलरली वृषभ राशि की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इनके ट्रैवल के इनके योग है, लेकिन ट्रैवल में वहां पे थोड़ा सा ये सावधानी दें और घर में जो है वो वाद विवाद से जो है वो बचें, इस तरह की चीज है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि इनका जो है ट्रैवल जो है उतने फ्रूटफुल हो सकता है इनके लिए ना जाए, तो वहां पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। कर्क राशि वालों का अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि गैम्बलिंग से बचें, स्टॉक मार्केट में जो अननेसेसरी गैम्बलिंग होती है उस तरीके से उन चीजों से जो है इनको बचने की जरूरत रहेगी। और सिंह राशि वालों को ना किसी भी कंफ्यूजन में मुझे लगता है थोड़ा सा ठहर कर, अगर आप ठहर कर डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन पे जो है बहुत ध्यान देना सभी 6 राशियों को कि वाणी पर जो है वो संयम रहे, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें, कोई ऐसी बात ऐसी स्टेटमेंट हो सकता है कि आपके मुख से निकल जाए जो आप ही के लिए भारी पड़ जाए, वो थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। बाकी सब शिव कृपा है। इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए मैं कहूंगी आज जब भी आपको समय मिले शिव जी का जल अभिषेक जरूर करें।
1: बिल्कुल
3: जी नवजोत,
1: डीपी शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। जो समय बताया गया है ग्रहण का वो 9:04 से बुधवार रात शुरू हो जाएगा भारतीय समय के मुताबिक, और गुरुवार के तड़के 1:27 तक ये समय रहने वाला है। हालांकि भारत में तो रात होगी, नजर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ विशेष सावधानियां जो बरतनी चाहिए।
4: देखिए भारत में सूतक नहीं है, ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं होता है। ये 15 दिन में 2 ग्रहण लग रहा है, 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा अगस्त से ही। ये सावन है, 2 ग्रहण लगे मतलब कि आपके विश्व के पटल पे कोई ना कोई अनहोनी की घटना है, पूरे विश्व में का शांति के दौर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं 15 दिन में देखा भूकंप आना, चक्रवात होना, कोई घटना ना, कोई विशेष शक्ति के संसार में मान हानि होना, लॉस होने का कराता है। सूर्य राजा है तो राजा ऐसे व्यक्ति को ही क्षय कराता है। रही भारत की स्थिति, तो भारत में भी पीढ़ी आज रुपये है। आप देख लीजिए, छात्र आंदोलन हो, नीट आंदोलन हो, UGC का आंदोलन है, झारखंड से दिल्ली तक सब आपके सामने है। ये कोई ना कोई रूप ले लिया, और 26 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी, भारत लिए भी इसका कोई ना कोई प्रभाव रहेगा। 15 दिन खास कर समय ठीक नहीं है, इसीलिए हर कहीं को भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, आदित्य स्त्रोत्र के पाठ
1: बिल्कुल
4: करना चाहिए।
1: जी। भगवान यही जानना चाह रही थी कहाँ कहाँ किस किस को सावधानी बरतने की जरूरत है। वक्त की कमी है, जल्दी से नंदा जी आपके पास आऊंगी। आखिरी 6 राशियां तुला से मीन तक।
0: तुला राशि की बात करें, आपके दशम भाव में ग्रहण पड़ेगा, बॉसेस से बना के रहिए इस समय, स्पेशली जो कंट्रीज मैंने बताई या पंडित जी बता रहे थे अभी, तो उन एरियाज में जैसे कनाडा या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप पूरा सारा हो गया, रशिया वगैरह, आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से इन सब से बना करके रखनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं। तुला राशि वालों को अगर ग्रहण की स्थितियों से अपना बचाव करना है तो आपके लिए सबसे ज्यादा है कि शिव शक्ति की उपासना करें, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके भाग्य स्थान पे ग्रहण का असर हो रहा है। यात्राएं अगर आप प्लान कर रहे हैं, और स्पेशली अगर रिलीजियस यात्राएं कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है, अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस समय पितृ दोष की शांति करिए, किसी भी मंदिर में आप तुलसी जी का पौधा वहां पे जाके अर्पित कर लें, बहुत अच्छा रहेगा वहां लगाए, या फिर पीपल का पेड़ कहीं आप अगर स्पेशली शमशान एरिया में लगा देते हैं वो भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। धनु राशि की बात कर लें तो आपको अपने पाँव में तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ सकती हैं, एक अचानक से अनायक से किसी रोग या किसी कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना करना पड़ सकता है, प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट एस्पेक्ट। ये ग्रहण का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, और आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। आज महाशिवरात्रि अगर आप सुन रहे हैं इस बात को, तो आज के दिन और कल के दिन भी महामृत्युंजय का जाप तो करें करें, लेकिन साथ ही साथ शिव जी को सफेद चंदन से उनका त्रिपुण जरूर उनके ऊपर बनाएं, वो बहुत आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेके आएगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप पर ध्यान देना है विशेषकर, और एकदम से बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आपके लिए बन सकती है और ऐसे ही कुछ आपके घर परिवार में भी हो सकता है जीवन साथी के साथ। तो थोड़ा सा संयम बरत के किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको माता लक्ष्मी की इस समय विशेषकर पूजा करनी चाहिए, कन्याओं को दही चीनी खिलाएं या उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करें, गिफ्ट में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों की बात करूं तो सेहत की तरफ विशेषकर आपको ध्यान देना है, कर्जे वर्जे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंसिव आपको इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस करके रखने हैं, फाइनेंसेस अपने बैलेंस करके रखने हैं। हालांकि इतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि 6 हाउस में जब ग्रहण पड़ता है तो कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी आपके लिए लेकर आता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति की आराधना करते रहें, गणपति को हरी दुर्वा घास चढ़ाए, बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वालों के लिए वैसे ही 7.5 से गुजर रहे हैं आप, तो मानसिक तनाव की स्थितियां तो बन रही है, अभी जो पिछले टाइम से कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा था अचानक से एकदम से उसमें चीजें थमने लगेंगी, लेकिन ये समय है कुछ नया पढ़ाई लिखाई सीखने का या अपनी लाइफ को री इन्वेंट करने का। जितना आप ऐसा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सावन का महीना है, सावन के महीने में ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य जो देवता होते हैं उनका आधिपत्य जो होता है वो महादेव को ही बोला जाता है, कहते हैं महादेव ही उनका प्रतिरूप है, महादेव की शरण में चले जाए, महादेव को पंचामृत से स्नान कराएं, महादेव को गंगा जल से अभिषेक करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर करेंगे तो ज्यादा आपको फल मिलेगा।
1: बिल्कुल, चलिए वक्त अभी इतना ही, तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: कहते हैं अकेले दबाव सहना मुश्किल होता है, लेकिन साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यही सीख दी जा रही है। टीचर एक एक ग्लास पर दबाव डालती हैं तो ग्लास आसानी से दब जाते हैं, लेकिन जब कई ग्लासों को एक साथ रखकर उनके ऊपर प्लेट रखी जाती है तो पूरा सेटअप संतुलित बना रहता है। ये छोटा सा प्रयोग बच्चों को बताता है कि एकता में ताकत होती है और मिलजुल कर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ मजेदार गतिविधियां भी बच्चों के सीखने का हिस्सा बन रही हैं। अब इस गेम को ही देख लीजिए, जिसमें बच्चों को बिना हाथ लगाए पेन को बोतल के अंदर डालना है। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं है। बच्चे पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सफल हो रहा है तो कोई दोबारा प्रयास कर रहा है। खेल खेल में सीखने का ये अंदाज बच्चों को खूब पसंद आ रहा है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, गांधरबल में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सोपोर में भी निकली भव्य बाइक रैली। प्रयागराज में मनाया जा रहा आजादी का जश्न, गूंजा रंग दे बसंती का संदेश, कविता और चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल। राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व डीएम एसपी भी शामिल। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
1: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
7: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, तो आज होने वाले सूर्य ग्रहण तक की जानकारी भी देंगे, लेकिन इससे पहले शुरू करते हैं 5:25 अच्छी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई सांसदों की रैली हुई आयोजित। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीयू के माई भारत वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल थे। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। इम्फाल में असम राइफल के भव्य पाइप बैंड प्रदर्शन का आयोजन हुआ, देशभक्ति की धुनों ने बांधा समा। लद्दाख बटालियन एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। कारगिल और लेह क्षेत्र में किया गया ये कार्यक्रम।
7: पीएम मोदी ने किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। आत्मकथा का टाइटल ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल। देश में जहाज निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश की तटीय अपतटीय सुरक्षा गश्त और समुद्री निगरानी को मिलेगी मजबूती। श्रीनगर में आयोजित किया गया लड़कियों का बास्केटबॉल कार्यक्रम। कई जिलों में टीमों ने लिया हिस्सा। कश्मीर का अंगूरों वाला गांव के नाम से मशहूर है गांधरबल का रेपोरा गांव, जहां पर 600 साल पुरानी परंपरा आधुनिक बागवानी का मेल से हो रही है अंगूर की खेती। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिला बूस्ट। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने जीएमसी उधमपुर में 128 लाइव सिटी स्कैनर का किया उद्घाटन।
1: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना। मुजफ्फरपुर के घनश्याम जायसवाल का कमाल, गरीबी से नहीं मानी हार, पढ़ाई के जरिए बदली किस्मत, पास की यूपीएससी परीक्षा, बने असिस्टेंट कमांडेंट। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ। सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड्स की भी चेतावनी दी।
7: छब्बीस साल बाद बॉलीवुड में वापसी करेगी 90 की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर। कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली 2 में आएंगी नजर। मुड़ता तीर की नई रिलीज डेट का ऐलान। 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की ये जासूसी कॉमेडी। श्रद्धा कपूर की ठग हुई पोस्टपोन, अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जिशान अय्यूब भी आएंगे नजर। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म राणा बली की रिलीज डेट में बदलाव हुआ, अब 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड रोड्रिग से पुर्तगाल में सिविल मैरिज की। दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी शादी की खुशखबर।
1: क्रोएशिया में पर्यटकों ने गर्मी से बचने के लिए समुद्र के अंदर सैर की। हेलमेट की मदद से समुद्र की तलहटी पर चलते और मछलियों को हाथ से खाना खिलाते हुए नजर आए। बर्लिन के थिएटर के बाहर बना स्विमिंग पूल। खास बात यह है कि यहां एंट्री के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस के पुराने जहाज नाव सेंटा मारिया का बड़ा मॉडल लिवरपूल पहुंचा। यह जहाज 1492 में कोलंबस की यात्रा में इस्तेमाल हुए जहाज की नकल है। चीन के चोंगकिंग में 1300 मीटर की ऊंचाई पर खुला अनोखा एनिमल पार्क। यहां लोग जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देख पाएंगे। बीजिंग की लियांगमा नदी बनी आकर्षण का केंद्र। यहां लोग बोटिंग, कायाकिंग, पैडल बोर्डिंग और जॉगिंग के लिए इकट्ठा होते हैं।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: नमस्कार, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं जो बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा है सूर्य ग्रहण के बारे में।
1: बिल्कुल शुभता, आज सूर्य ग्रहण है, बेहद ही खास दिन है आज। हम सब जानते हैं कि जब चांद, सूरज और हमारी धरती एक सीधी लाइन में आते हैं तो सूरज का प्रकाश थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और दिन में भी अंधेरा सा छा जाता है।
0: तो देखिए, विज्ञान के लिए ये एक अनोखी और सुंदर खगोलीय घटना होती है। वहीं हमारी पुरानी मान्यताओं और शास्त्रों की माने तो सूर्य ग्रहण का समय बहुत खास होता है। ये सिर्फ आसमान के हलचल नहीं बल्कि पूजा पाठ, जप तप और ध्यान लगाने का एक खास मौका है। आज रात को टाइम बता देते हैं आपको, 9:04 पर चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढक देगा। जहां चंद्रमा की गहरी छाया पहुंचेगी वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।
1: हालांकि भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, ऐसे में भारत में सूतक भी नहीं लगेगा, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव केवल उसके दिखाई देने वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। ज्योतिषी गणनाओं में ग्रहण के समय सूर्य की राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। सावन महीने में 18 साल बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सावन की शिवरात्रि के अगले ही दिन इस ग्रहण को लेकर भारत में सूतक काल मान्य नहीं है। ये सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा, भारत में ये क्यों नहीं दिखेगा, इस सब के बारे में जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए।
2: सावन शिवरात्रि के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये इस साल यानी 2026 का दूसरा और अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण है। 18 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब भगवान शिव के प्रिय महासावन में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय विज्ञान दोनों ही लिहाज से ये सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। इस तरह जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर होगा वहां दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण सावन मास यानी हरियाली अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जिसके चलते इसका धार्मिक और ज्योतिष महत्व बढ़ जाता है।
3: इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड, जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा।
2: खास बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के समय होगा, इसीलिए ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण रात 9:04 से लेकर देर रात 1:27 तक लगेगा। इस दौरान रात 11:17 पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिका महासागर के कुछ हिस्सों में साफ साफ दिखाई देगा। तो वहीं यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में आंशिक रूप से नजर आएगा। भारतीय धार्मिक परंपरा में आमतौर पर ग्रहण दिखाई देने वाले क्षेत्रों में सूतक काल को महत्व दिया जाता है। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद करने, पूजा पाठ रोकने और कुछ धार्मिक कार्यों से परहेज करने की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन ग्रहण के दिखाई नहीं देने पर सूतक काल मान्य नहीं होता है। सावन का महीना शिव आराधना का विशेष महीना है और भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, इसीलिए इसका ना तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा और न ही पूजा पाठ पर इसका असर पड़ेगा। मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और शिव आराधना समेत बाकी कामकाज भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे।
3: देखिए, ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि यदि जो है ग्रहण जो है आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में दिखाई ना दे तो उसका ना तो सूतक माना जाता है, ना उसका जो है कोई प्रभाव मंदिर इत्यादि के ऊपर पड़ता है, ना किसी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं जिनके ऊपर मानते हैं कि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2: धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को एक संवेदनशील और शक्तिशाली काल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण का मनुष्य के मन और ऊर्जा दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी की कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है और सूर्य ग्रहण लगने पर हर कुंडली पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। हालांकि विज्ञान इन मान्यताओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। विज्ञान के अनुसार ये सिर्फ एक प्राकृतिक स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए, अगर आपके भी बहुत सारे डाउट्स हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, तो उसको दूर करने का जिम्मा हमने लिया है। और खास मेहमान इसी पर बातचीत करने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा जी। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। राज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए, जब भी हम नॉर्मली भी ग्रहण की बात करते हैं ना, तो कोई भी आम इंसान जब इसको सुनता है, इस शब्द को, तो वो डर जाता है। ग्रहण से डरने की जरूरत है, क्योंकि भारत में तो ये दिखाई नहीं दे रहा, सूतक काल यहाँ मान्य नहीं होगा। जो भी कंफ्यूजन है, पहले तो उसको दूर कीजिए आप।
4: देखिए, किसी भी परिस्थिति को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी परिस्थिति को लेकर के बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं होती। इंपॉर्टेंट है ये जानकारी प्राप्त करना कि वो किसके लिए डराने वाला विषय है और किसके लिए नहीं डरने वाला विषय है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय विश्व के अंदर कहीं भी कोई घटना होती है, इफेक्ट उसका पड़ता है कहीं ना कहीं। यस, स्पिरिचुअल इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा भारत के ऊपर, बिकॉज मंदिर नहीं बंद रहेंगे, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको किसी प्रकार से कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है उस समय पर। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनको किसी चीज को भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात करूं, दूसरा जो इम्पैक्ट है उसकी बात करता हूं कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, देश पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप खुद इस चीज को जानते हैं, लड़ाई हो रही होती यूएस में, ईरान में, इसराइल में, और इम्पैक्ट यहाँ हम पर पड़ रहा होता है। पेट्रोल आपके घर का, मतलब राशन पानी आपको लेने में उसमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि ग्रहण को लेकर के जो एक डरने वाला विषय होता है, गुड न्यूज का ये सबसे सुंदर मुझे लगता है तरीका है कि आप लोग खबरों को बिल्कुल क्लियर करते हैं और अच्छी न्यूज जरूर सुनाने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे की अच्छाई क्या है उस पर बात करते हैं। तो मैं एक अच्छाई पर आ रहा हूं। ग्रहण व्यक्ति टू व्यक्ति प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में, स्पेशली बता रहा हूं, ये शायद हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर उसके जन्म सूर्य पर, जन्म चंद्र पर, जन्म लग्न पर, जन्म के दशम भाव पर ग्रहण घटित होता है, या उसके सामने, यानी उसके सामने वाले हाउस में घटित होता है, तो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और मैं एग्जाम्पल के साथ उसको बताना चाहूंगा, नेहरू जी के जो ग्रहण घटित हुआ, नेहरू जी के वृष राशि पर ग्रहण घटित हुआ था 20 मई 1947 को, वृष राशि में ग्रहण घटित हुआ, और उनकी जो राशि है वो, उनका जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में था, सामने ग्रहण घटित हुआ, और 15 अगस्त 1947 को उनको पीएम का पद प्राप्त होता है इनके, यानी उनके लिए वो ग्रहण बहुत फायदेमंद रहा। इंदिरा गांधी के वृश्चिक राशि के अंतर्गत सूर्य था और 23 नवंबर 1965 को वृश्चिक राशि में ही ग्रहण घटित होता है और 1966 22 जनवरी को उनको पीएम का पद प्राप्त होता है। यानी ग्रहण ने सूर्य के ऊपर घटित होने से उनको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। मैंने कहा अगर सूर्य चंद्र या दशम भाव या लग्न पर या उसके सामने घटित होता है तो उसके लिए फायदेमंद है। राजीव गांधी इसी प्रकार से, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबके दशम भाव पर अगर ग्रहण घटित हुआ है तो उसके कुछ दिन के बाद उनके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर प्राप्त हुई है। लेकिन अब दूसरे एस्पेक्ट को लेकर के देखा जाए, ज्योतिष एक शब्द कहता है कि अगर आपके लग्नस्थ मंगल पर या शनि पर या राहु पर किसी मैलेफिक प्लैनेट जहां पर आपका बैठा हुआ है और उस राशि पर अगर ग्रहण घटित होता है, सो दैट इज डेंजरस, वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। महात्मा गांधी जी की परिस्थिति को अगर उठा करके देखा जाए, मुझे लगता है शायद अगर आपके पास समय है तो मैं कंटिन्यू करूंगा।
0: बिल्कुल।
4: तो महात्मा गांधी की अगर देखा जाए, लग्न के मंगल पर ग्रहण घटित होता है 12 नवंबर 1947 को और 30 जनवरी को उनकी जो है वो हत्या हो जाती है। इसी प्रकार भारत के लग्न पर ग्रहण घटित हुआ वृष राशि पर, जबकि भारत के लग्न पर राहु विराजमान है, वृष लग्न है भारत की और वहीं पर राहु विराजमान है, वहां पर ग्रहण घटित होता है 1984 में 30 मई को। उसके बाद देश के अंदर क्या परिस्थिति हुई आप सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और उसके कारण पूरे देश के अंदर क्या परिस्थिति होती है हम सब लोगों ने देखा होगा। इसी ये ऐसी कई सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्लैनेटरी पोजिशन क्या है, देश की प्लैनेटरी पोजिशन क्या है, वहां पर ग्रहण घटित होने पर ग्रहण का इंपैक्ट उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, तब पड़ेगा कितने दिन में पड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ज्योतिष में इसका समाधान है बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं चर्चा करूंगा।
1: ठीक है राजू, आपसे वो भी समझेंगे क्योंकि राजू आपने बताया कि देखिए भारत में इसका असर नहीं पड़ेगा। नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नितिशा जी आपके पास आते हुए भारत में तो असर नहीं पड़ेगा लेकिन नितिशा जी कुछ मान्यताएं ऐसी है कि जिन बच्चों का जन्म इस दौरान होता है उसको लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, वो थोड़ा समझाएगा।
5: थैंक यू पूजा जी और जेएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीतांबरा। देखिए सूर्य ग्रहण 18 साल के बाद जैसे कि आपने बोला पड़ रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण बहुत स्पेशल है क्योंकि कर्क राशि के लास्ट नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है जिसके स्वामी बुध है, और इस नक्षत्र की अगर बात करें तो कुंडलिनी वाला सांप इसकी आकृति बनती है, यानी ये बहुत रहस्यमय नक्षत्र है और इस रहस्यमय नक्षत्र में अगर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है तो आने वाली जो घटनाएं हैं वो भी बहुत रहस्यमय हो जाएंगी। आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि 18 साल के बाद सावन में लगा है, लेकिन 64 ईयर्स के बाद ये यूरोप, पश्चिमी यूरोप के कुछ इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण की तरह देखने को मिलेगा। और सबसे स्पेशल बात इसके नक्षत्र में है क्योंकि नक्षत्र आज हमारे जितने भी कार्मिक, क्योंकि शनि महाराज मीन राशि से गोचर कर रहे हैं तो जितने भी हमारे कार्मिक पैटर्न है या फिर जो छुपी हुई चीजें हैं, जो मनुष्य से छुपी हुई है या फिर जो सरकार और सत्ता से जुड़ी छुपी हुई है वो सब बाहर आने वाली है। और अगर बच्चों की बात करूं तो स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र, कर्क लग्न या फिर कर्क लग्न और सिंह लग्न के बीच का ये समय है, यानी दोनों लग्ने मिल रही हैं, एक जल तत्व वाली है और एक अग्नि तत्व वाली है, तो इसको गंडक मूल भी कहा जाता है। ये बहुत स्पेशल समय है, स्पेशली इस नक्षत्र में उत्पन्न बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हेल्थ संबंधी, स्पेशली मानसिक हेल्थ संबंधी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कुंडलिनी जागृत का होने का सबसे बेस्ट और पीक टाइम ये रहने वाला है जहां पर एक साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है और अपने अष्टम भाव यानी रहस्य से छुपी हुई चीजों को उजागर कर उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बस मैं माताओं से इतना कहूंगी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि भारत में देखने को नहीं मिलेगा इसलिए डरने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के नाम से शिवलिंग का अगर कल के दिन जब मोक्ष मिल जाएगा सूर्य को 4:00 पे रात्रि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, उसके बाद अपने बच्चों के हाथों से नाग के जो चांदी के जो नाग नागिन है या पीतल के या तांबे के वो अपने छोटे बच्चों के हाथों से शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। और देखिए अगला सोमवार आ रहा है, नाग पंचमी का दिन है और सूर्य ग्रहण और नाग पंचमी बहुत प्यास में पड़ रहा है और नक्षत्र नागों का नक्षत्र है, ये भी बहुत स्पेशल बात है, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे उपाय करके अगर हम चलते हैं तो इस सूर्य ग्रहण का असर हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा। पूजा जी मैं एक चीज और यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि ये सूर्य ग्रहण है यानी सत्ता सरकार हमारी आत्मा हमारे सिर से जुड़ा हुआ ग्रहण कहीं ना कहीं लगने जा रहा है और खगोलीय घटना हो रही है, तो मानव जीवन पर इसका कम या ज्यादा असर देखने को जरूर मिलेगा, कहीं कम है और कहीं पे ज्यादा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी ये सरकार को लेकर के बहुत स्पेशल समय रह सकता है, इंक्लूडेड भारत, क्योंकि हमारी भी राज्य सत्ता कहीं ना कहीं सूर्य है और सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। आने वाले समय में मौसम बदलाव या प्राकृतिक आपदाएं या सरकार से छुपे हुए रहस्य या सरकार के लिए जनता का सड़कों पे आना ये सब भी स्वाभाविक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये ग्रहण छोटा मोटा ग्रहण नहीं है और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हाँ, हमारे भारत में देखने को नहीं मिलेगा इसलिए भारत पे इसका असर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत पे इसका असर नहीं होगा। जी
1: जी
0: चलिए नीतीशा जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया आपने कि किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा और कैसा नहीं पड़ेगा। राज जी आपके पास आते हुए, राज जी और नीतीशा जी, इनफैक्ट बहुत सारे शोज हम ग्रहण के बारे में पहले भी पास्ट में भी कर चुके हैं। फॉलो अप क्वेश्चन जो मैंने पहला सवाल पूछा था ना, उसी का फॉलो अप क्वेश्चन किसी दर्शक ने पूछा है कि यूनिवर्स तो एक है राज जी, सूर्य तो एक है, तो इसका असर तो जाहिर सी बात है कि हम पर होगा। आप देखिए, लोगों की कंफ्यूजन्स यही हैं कि असर कुछ ना कुछ होगा। तो इस दौरान जब सूर्य ग्रहण लग रहा है 9:04 पर रात को और 10:30 तक ये रहेगा, करीब 1.5 घंटे की अवधि होगी, तो उस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता देते हैं।
4: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो उस प्रश्न का उत्तर की हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अगर काम किया जाए कि एक कमरे के अंदर एक जगह पर आग जलाया जाए तो ये बहुत देखने को मिलेगा कि जो उस अग्नि के नजदीक है उस पर उसका आग जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ेगा, उसका प्रभाव जो है हीट जो है वो ज्यादा पड़ेगा, और जो उससे दूर होगा उस पर थोड़ा कम पड़ेगा। तो इम्पैक्ट सब पर पड़ता है, मैंने स्टार्टिंग में भी ये शब्द कहा था और फिर ये कह रहा हूं, लेकिन कम और ज्यादा पड़ेगा, किसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके का पड़ेगा, किसी की थोड़ा डिफरेंट तरीके का पड़ेगा। इवन जितने कंट्रीज में लग रहा है मैं उसको भी क्लियर कर सकता हूं, और मैं बाकायदा जो एस्ट्रोलॉजी जो संहिता ज्योतिष कहती है उसको भी क्लियर कर सकता हूं कि हर कंट्री में इसका इंपैक्ट अलग अलग मंथ में पड़ेगा, अलग अलग समय पर पड़ेगा, एक जैसा प्रभाव सभी पर ग्रहण होने के बाद भी एक समय पर नहीं पड़ेगा। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जब भी, क्योंकि सूर्य आत्मा के प्लैनेट है और आत्म जागृति का ये सबसे बेहतरीन समय होता है ग्रहण के समय। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने ये शब्द कहा था कि आप नदी में जाइए, सरोवर में जाइए, गंगा जी में जाइए, वहां स्नान कीजिए, स्नान के बाद भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, क्योंकि ग्रहण के समय पर किया गया दान, ग्रहण के समय पर किया गया जप, ग्रहण के समय पर किया गया तप कई हजार गुना अधिक फल देता है। इस प्रकार की परिस्थिति है तो सबसे पहले तो डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता होती तो आप गुड न्यूज नहीं देख रहे होते। गुड न्यूज का तात्पर्य यही है कि आपके जो मन में भ्रम है, जो वहम है, जो डर है, उन सबको निकाल करके एक्चुअलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उस तक आपको पहुंचाया जाए। तो ग्रहण के दौरान मैंने पहले ही करेक्ट किया था, दोबारा करेक्ट कर रहा हूं कि कोई भी मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सम्मानीय प्रेग्नेंट लेडी है, तो वहां पर उनको किसी प्रकार कोई और प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि कुछ काटना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है या टीवी इत्यादि नहीं देखना है। हाँ, जिस जगह पर यह ग्रहण घटित हो रहा है, इंग्लैंड में यह ग्रहण घटित हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, इटली में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, जिन जिन कंट्रीज में यह ग्रहण रूस में हो रहा है, तो वहां के लोग अगर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको जो ये प्रोसेस है सारे वो फॉलो करने की आवश्यकता है। उस पर पूरा दिन जीएनटी पर क्योंकि प्रोग्राम चलता रहेगा, अलग अलग जो विद्वान लोग हैं वो आकर के अपनी अपनी राय देंगे, देखते रहिएगा तो आपको बारीकियां और पता चलती रहेंगी। लेकिन मैं भारतीयों को स्पेशली कह रहा हूं कि आपको ग्रहण के दौरान भगवान के नाम के स्मरण की आवश्यकता है। इस समय पर जितना अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखेंगे, जितना भगवान का स्मरण करेंगे, उतने आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी, आपके ब्रेन से और आपके बॉडी से उतना ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो निकलेगी और वो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करेगी। और ये नियम है, हम सभी लोग जानते हैं यूनिवर्स का एक नियम है कि जो आप देते हैं उसका कई गुना जो ब्रह्मांड है वो आपको वापस देता है। तो जब आप नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपकी ब्रह्मांड के अंदर जाती है तो फिर नकारात्मक चीजें आपके साथ होती हैं, आपके सराउंडिंग जो कंडीशन है वो नकारात्मक बन जाती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं तो फिर पॉजिटिविटी ब्रह्मांड से आती है। तो इस समय पर जब आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे भगवान का, तो कई गुना हजार गुना होकर के ब्रह्मांड में जाएगा और भगवान की कृपा भी उतनी ही आपके ऊपर आएगी, उससे कई गुना अधिक होकर के आएगी और जो आपकी सराउंडिंग कंडीशन है वो पॉजिटिव होगी। ये बहुत ध्यान रखना है कि उस समय पर मैं असफल हूं, मुझे कुछ नहीं मिल पाया, मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता या मुझे सफलता नहीं मिल रही है, इस प्रकार की नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक चीजों को सोचने से प्लीज बचिएगा। उस समय पर सकारात्मक सोचिएगा, जो जिंदगी मिला है उसका स्मरण कीजिएगा। किसी ने एक शब्द कहा था कि इस दुनिया का एक ही रोना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। तो जो मिल गया उस पर धन्यवाद कीजिएगा, बेहतर होगा। जी सर गुप्ता जी, धन्यवाद।
1: क्या बात बोली है राज जी आपने। चलिए इसी मुद्दे पर और भी बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप सब कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, गांधरबल में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सुपौर में भी निकली भव्य बाइक रैली।

0: का जश्न गूंजा रंग बसंती का संदेश कविता और चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल।
1: राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू के आखिरी दिन दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व डीएम एसपी भी शामिल।
0: भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
1: आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण।

0: और चलिए हमारी खास पेशकश सूर्य ग्रहण पर लगातार जारी है। आज रात 9:04 पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब करीब डेढ़ घंटा इसकी अवधि होने वाली है। इसके प्रभाव क्या होंगे भारत में, दिखाई देगा नहीं देगा, सूतक काल मान्य होगा नहीं होगा, इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर रहा है गुड न्यूज टुडे आपके लिए। और बातचीत का दौर लगातार जारी है। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, नितिशा जी आपके पास आते हुए। नितिशा जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक के बीच में, खग्रास और वल्याकार, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दे दीजिए।
1: जी शगुफ्ता जी, तो देखिए ग्रहण के ना अलग अलग जो प्रेजेंटेशन है कि कौन सा ग्रहण लगने जा रहा है उसके बारे में हमारी पंचांग में निर्धारित किया जाता है कि ये वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसलिए खंडग्रास है। यानी ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से चंद्रमा आ जाएगा और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आएगी, इसलिए ये पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। लेकिन यूरोप के कई हिस्सों में, स्पेशली ब्रिटेन में, यूरोप के पश्चिम एरिया में इसे वल्याकार सूर्य ग्रहण से भी जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनेगा और चंद्रमा पूरे सूर्य को नहीं ढक पाएगा और एक अंगूठी की तरह एक शेप बनेगी और एक स्टोन की तरह, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रही है, तो वल्याकार उसे कहा जाता है। खंडग्रास में कोई भी क्लियर शेप हमें नजर नहीं आती है और अंधेरा हो जाता है, और वल्याकार में एक रिंग ऑफ फायर की शेप हमें नजर आती है। तो ये ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण शगुफ्ता जी बहुत स्पेशल है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस नक्षत्र में जब जब ग्रहण लगा है तब तब बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत स्पेशल है। कुंडलिनी जागृत का नक्षत्र है और साथ ही साथ हमारे जो भी नॉट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जो कार्मिक नॉट्स हैं उनके खुलने का और उनके बंधने का दोनों का ही समय है। और जैसे कि कहा जाता है ना कि हम और पूजाएं करते हैं तो कई बार हमें 100 गुना फल मिलता है, 10 गुना त्योहारों पे फल मिलता है, यहाँ पे 100 गुना तक फल मिल सकता है इस नक्षत्र का, क्योंकि ये पूरा नक्षत्र नाग श्रेणी में आता है और नाग श्रेणी में आने के कारण हमारी कुंडलिनी को, हमारी बॉडी की जो सूर्य शक्ति को पूरी तरह जागृत करने वाला नक्षत्र है। और पूरी तरह से ये ऊर्जा जब जागृत होती है तो साधना मंत्र जाप से हम अपनी जो कार्मिक नॉट्स है जो बंधी हुई है उनको तक खोल सकते हैं। इसलिए ये सूर्य ग्रहण मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जो नेक्स्ट ईयर अगस्त में आ रहा है ना शगुफ्ता जी, वो जी। और भी ज्यादा सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रहने वाला है।
0: उसका मैं तो नहीं समझूंगी नितिशा जी, एक बार राजजी के पास, क्योंकि समय कम है, राजजी आपके पास आते हुए, राजजी उस नजारे के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान चांद सूरज को कुछ देर के लिए ढक लेता है, कैसा दिखता है वो?
2: जी बिल्कुल, ग्रहण का 2-3 तरीका है, जैसा कि अभी बात हो रही थी। ये जो ग्रहण है, ग्रहण का तरीका खग्रास, खंडग्रास और कंकड़ाकृत, ये तीन है जिसको वल्याकार की बात आप लोग कर रहे थे, उसको कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खग्रास सूर्य ग्रहण का मतलब है कि कुछ समय के लिए पूरी तरीके से जो चंद्रमा है वो सूर्य को ढक लेता है, यानी सूर्य पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है, इसको कहा जाता है खग्रास। और ये बहुत अद्भुत घटना होती है, इसको देख करके मतलब साइंटिस्ट के लिए डेफिनेटली बहुत अद्भुत होता है और उसी का जो स्पिरिचुअलिस्ट है, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम आप अपने मन को पूरी तरीके से चंद्रमा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस समय क्योंकि चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया है, आपका अपने मन पर कंट्रोल करने की शक्ति कितनी है इसी समय पर पता चलती है। और उसके साथ साथ इस समय मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। और खंडक ग्रास जो सूर्य ग्रहण जिसको कहा जाता है, उसमें चंद्रमा कुछ पार्ट जो सूर्य का है उसको ढकता है, यानी खंड का शब्द है कुछ पार्ट। और एक ग्रहण जिसको वाल्याकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है या कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा सूर्य के बीच के पार्ट को तो ढक लेता है लेकिन साइड के पार्ट को नहीं ढकता है, तो वहां पर एक लाइन सी दिखती रहती है जिसको रिंग ऑफ फायर या जो भी अभी कहा जाता है, नित्सा जी बता रही थी, वो परिस्थिति होती है। तो लेकिन ये जितने भी जो दृश्य होते हैं, खैर सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है, ये परिस्थिति रहती है, लेकिन हाँ ये समय बहुत अद्भुत होता है हम सभी के लिए अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने का। जी सब
0: बिल्कुल। चलिए राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि आज का सूर्य ग्रहण जो है वो कितना खास है। नितिशा जी आप बने रहिए हमारे साथ, ये रिपोर्ट इसी बीच आपको दिखा देते हैं। सूर्य देव पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसे केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक विषय माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं होती बल्कि पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का अत्यंत प्रमाणिक वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक इसका जिक्र भी मिलता है।

आदित्याय विदम्भ दिवाकराय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदया, यानी हम भगवान सूर्य को जानते हैं जो दिन को प्रकाशित करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, वो सूर्य देव हमारी बुद्धि को प्रकाशमय करे और सतमार्ग पर प्रेरित करे। सनातन परंपरा में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता और संपूर्ण सृष्टि की आत्मा मानी गए हैं। जब ऐसे परम तेजों में सूर्य देव पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसे केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक विषय भी माना जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक सीधी रेखा में आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और दिन में ही तिमिर यानी अंधेरा छा जाता है। इसी अद्भुत

0: साधना का समय माना गया है क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का प्रथम संदर्भ मिलता है, जहां इसे असुर स्वरभानु के आख्यान से जोड़ा गया है। ऋग्वेद के अनुसार स्वरभानु ने अपने छद्म से सूर्य को ग्रसित कर लिया था, जिससे संपूर्ण लोक अंधकार में डूब गया था। तब महर्षि अत्रि ने अपने महान तपोबल और प्रभु आराधना से सूर्य देव को उस संकट से मुक्त कराया। अत्रि देवता देव भी सपर्णे स्वरभानु ब्रह्म हन द्वित तमः। ऋग्वेद के पांचवें मंडल के 40वें सूक्त की इस ऋचा का पावन अर्थ है कि महर्षि अत्रि सूर्यदेव और अन्य देवताओं का पूजन करते हुए स्वरभानु के प्रकोप को शांत कर रहे हैं और सृष्टि को पुनः आलोकित कर रहे हैं। अथर्ववेद में इसे आसुरी शक्तियों के प्रभाव का समय माना गया है और इसे आत्मरक्षा हेतु भगव नाम जप एवं मंत्रो उच्चार का विधान बताया गया है। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र और भगवान सूर्य के सिद्ध मंत्रों का जाप ग्रहण के समय अत्यंत कल्याणकारी और रक्षा कवच के समान माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी ग्रहण से जुड़ी पौराणिक कथाएं विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के प्राप्त अमृत का पान करने के उद्देश्य से स्वरभानु नामक दैत्य रूप बदल कर आया। वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया था, लेकिन सर्वदर्शी भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे पहचान लिया, किंतु तब तक वो अमृत आचमन कर चुका था। जैसे ही अमृत उसके होंठ तक पहुंचा, श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेद दिया। अमृत प्रभाव से वो अमर रहा। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। धार्मिक मान्यता है कि राहु केतु की इसी छाया के कारण समय समय पर सूर्य ग्रहण घटित होता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण के अनेक कांड में भी इसका प्रामाणिक संदर्भ मौजूद है। भगवान श्री राम और खर दूषण के मध्य हुए भयंकर युद्ध के समय सूर्य ग्रहण लगने का वर्णन आता है, जहां राहु को सूर्य ग्रहण का मुख्य कारण दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति में अनादिकाल से सूर्य ग्रहण का सूक्ष्म अध्ययन और वर्णन मिलता है, जो ये सिद्ध करता है कि जब से सृष्टि और काल चक्र का अस्तित्व है, तब से ये खगोलीय और आध्यात्मिक घटना निरंतर घटित होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ नितिशा जी जुड़ी हुई हैं, सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। नितिशा जी, थोड़ा सा इस ग्रहण को लेकर धार्मिक महत्व हम समझना चाहेंगे, धार्मिक मान्यता इसको लेकर क्या है। साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें इस समय नहीं हमें करना चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए।
2: जी पूजा जी, तो जैसे कि आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे अध्यात्म पर मत्स्य पुराण ऋग्वेद को लेकर के, देखिए ये जो इसका जो आध्यात्मिक अध्ययन जो किया गया है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगी कि सूर्य हमारी आत्मा है, सरकार है, सत्ता है, हमारा सिर है, हमारी आंखें हैं, और सूर्य कहीं ना कहीं उच्च पदों को भी दिखाता है। और यहाँ पे राहु जब उसे ग्रहण लगाता है, तो यानी जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न है, जो पिछले कुछ समय पे हमने अपने कर्मों को बिगाड़ा है अपनी इच्छाओं के कारण, क्योंकि राहु है कौन, राहु एक फोग है, राहु एक कोहरा है जो क्लैरिटी नहीं देता है। तो जब वो सूर्य के साथ आता है, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है सूर्य ग्रहण का, तो यहाँ पे चंद्रमा भी इंक्लूड होते हैं, यानी हमारा मन भी इंक्लूड है, और जो राशि है वो चंद्रमा की ही राशि है, कर्क राशि, जिसे जल तत्व की राशि कहा गया, और नक्षत्र बुध का है जो सर्प यानी नाग देवता को दर्शाता है। तो यहाँ पे सारा जो पैटर्न हमें मिल रहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो हमारे मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो जो सरकार और सत्ता को चला रहे हैं, जहां जहां ये ग्रहण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है, स्पेशली वहां, हाँ जहां पर नहीं देखने को मिल रहा, ऐसा नहीं है कि वहां पे इसका असर नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा, लेकिन हाँ कुछ स्तर वहां पे कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम होगा। तो वैश्विक स्तर पर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि सरकार और बड़े पदों पर जो

0: बैठे हुए लोग हैं उनके कहीं ना कहीं कार्मिक लूप्स इस समय खुलने वाले हैं, सभी चीजें सामने आने वाली है, जैसे कि असंतोष की भावना जनता में बढ़ सकती है, साथ ही साथ गोपनीय खुलासे इस समय हो सकते हैं, ये नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, नेतृत्व में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है और तनाव, सीमाओं पर तनाव, क्योंकि भारत की कुंडली में भी अगर देखा जाए तो लग्न वृषभ लग्न है और थर्ड हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है। थर्ड हाउस हमारे भाई बहनों को भी दर्शाता है, हमारे पराक्रम को भी दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमाओं को दबाव, सीमाओं को लेकर के दबाव भारत को भी देखने को मिल सकता है। और प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं कि कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं पे ज्वालामुखी फटनी जैसी घटनाएं सुनने को मिल सकती है, जंगलों में आग, क्योंकि यहाँ पे दो राशियां मैच हो रही है, जो जल तत्व की और जो अग्नि तत्व की है, इसलिए मुझे ये दोनों ही तत्वों से जुड़े जो आगे संभावनाएं बन रही है उससे संबंधित हमें न्यूज सुनने को मिल सकती है। तीसरी चीज, एक चीज कहना चाहूंगी, जहाँ पे सीमाओं में बदलाव आ रहा है वहीं पर कहूंगी कि ये बदलाव कहीं ना कहीं आतंकवादी हमलों को भी दिखाता है। और पूजा जी, जब ग्रहण लग रहा है तो मीन लग्न उस समय लगी होगी और उसके बाद जब ग्रहण पीक पे पहुंचेगा उस समय मेष लग्न होगी और 1:27 जहाँ पे ग्रहण खत्म हो रहा है वहां पे वृषभ लग्न होगी और मोक्ष काल के समय ये अगेन कर्क लग्न तक ये पहुंच चुका होगा, क्योंकि जो मोक्ष काल है वो 4:00 पर बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा समय है, ये पूरा समय हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, जो बताता है कि राहु की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा जब नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है तो हमारे वेदों में ये मेंशन किया गया कि जितना आप सकारात्मक सोचोगे, जितना आप सकारात्मक रहोगे, जितना आप मंत्रों का जाप करोगे, क्योंकि देखिए किसी ग्रह को ग्रहण लगने जा रहा है, अगर हम उस ग्रह के ही मंत्रों का जाप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, तो उसको बल मिलता है और जब उसको बल मिलता है तो वो हमारे कुंडली में उसका सकारात्मक प्रभाव जुड़ जाता है। इसलिए इस समय बिल्कुल भी लड़े ना, झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, सकारात्मक सोचें, जितना आप सकारात्मक सोचेंगे उतना अच्छा है। जैसे मैं हमेशा ग्रहण पे सिर्फ ये बोलती हूँ कि आई एम गॉड फेवरेट चाइल्ड, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, जो मेरे सभी कार्य हो जाते हैं। और सेकेंड थिंग, जितना आप पॉजिटिव रहते हो, जितना आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हो कि कहाँ कहाँ मैंने बुरे कर्म किए और किस किस से मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, तो अगर वो लोग आपके आसपास हैं तो आज के दिन उनसे फोन करके या मिलके माफी जरूर मांगे, अन्यथा हमारे जो कार्मिक लूप है वो कहीं ना कहीं बंधन टाइट होता जाएगा जिसको हमें आगे खत्म करना पड़ेगा। और इसलिए मंत्रों का जाप करें, सावन का पवित्र माह चल रहा है, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना 100 गुना नहीं, मैं तो कहूंगी 1000 गुना, वो जो 4 घंटे का जो ग्रहण काल है उसमें आपको 1000 गुना फल प्राप्त हो सकता है।
1: बिल्कुल नितीशा जी, जब पहले भी हम ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो कई बार आप ये भी बताती हैं कि ये वक्त जो होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करती हैं वो भी सच हो जाती हैं, ये कितना सत्य है?
0: ये 100% सत्य है शगुफ्ता जी, मैंने बोला ना, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मैं सिर्फ पूरा दिन यही सकारात्मक, यही मैनिफेस्टेशन रखती हूँ कि मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता भी है शगुफ्ता जी कि जाम लगा होता है तो जाम खुल जाता है और बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो मेरी लाइफ में नहीं आती है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इस समय जरूर करिए, क्योंकि वही नकारात्मक प्रभाव को वही सकारात्मक हमारी ऊर्जा समाप्त कर जाती है। इसलिए जब भी असुरी शक्तियां बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है उस समय आप जितना मैनिफेस्टेशन करते हो उतना असुरी शक्तियों को बल नहीं मिल पाता है, देवीय शक्तियों को बल मिलता है। और देवीय शक्तियों को बल मिलने के कारण वो जो देवीय शक्तियां हैं वो हम पे अपनी ऊर्जा बनाए रखती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि ये कर्क राशि में लग रहा है तो बहुत से लोगों को आज के दिन बहुत सी उलझने, टेंशने, मन में एक तरह से रोना आना, दुख का बढ़ जाना, क्योंकि कार्मिक लूप का समय है और ये वाला नक्षत्र बहुत ज्यादा कार्मिक लूप को दिखाता ही दिखाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जब जब ग्रहण लगा है तब तब हमने देखा है कि बहुत बड़े बदलाव लोगों में आए हैं। तो ये समय बहुत बड़े बदलाव का, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे आज के दिन तो कल से ही आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव होगा, और आज के दिन अगर हम लोग नकारात्मक सोचेंगे तो कल से ही वो नकारात्मक प्रभाव, वो कहते हैं ना बीमारी आ जाती है अंदर तो दूसरे दिन वो फीवर आ जाता है, तो सेम कंडीशन वो रहने वाली है। तो मैनिफेस्ट वही करिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारा जन्म मनुष्य रूप में बहुत स्पेशल हुआ है, जब हम मनुष्य रूप में अपनी हर वो इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन मैनिफेस्ट करिए कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी जीवन में उच्च पद है, जो भी सुंदरता है, जो भी अट्रैक्शन है, चाहे वो धन से रिलेटेड है, चाहे वो गाड़ी बंगले से रिलेटेड है, वो हमें प्राप्त हो। तो आज के दिन मैनिफेस्ट जरूर करें जी।
2: नितिशा जी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ बता दीजिए, वो आज के दिन किन चीजों से बचें, क्या उनको करना चाहिए?
0: देखिए, मैं गर्भवती महिलाओं के लिए आज कोई भी वो प्रिकॉशन रखने को नहीं कहूंगी, स्पेशली भारत में कि आपको कोई प्रिकॉशन रखना है, लेकिन बस इतना कहूंगी कि जितनी आपकी बॉडी सीधी रहती है, यानी एक दूसरे पे चढ़ती नहीं है, चाहे हम हाथ बांध के बैठे या पैर बांध के बैठे, बस इतना आप ध्यान रखिए कि कोई भी बॉडी का पार्ट हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। इस चीज का ध्यान रखिए जो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। दूसरा, आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, तो जितना आज के दिन आप मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही आपका बच्चा भी सकारात्मक प्रभाव को लेकर के पैदा होगा। और ये हर महिला के लिए कहूंगी, जब जब आप गर्भवती हो और कोई भी ग्रहण पड़ जाता है, उतने समय कृपया किसी भी बुरी बातों को सोचना बंद कर दीजिए और सकारात्मक सोचिए कि मेरा स्वास्थ्य, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है, तो आप अपने बच्चे को भी एक सकारात्मक ऊर्जा रिलीज करते हो, जो बहुत शुभ रहता है। तो आज के दिन गर्भवती महिलाएं बहुत पॉजिटिव रहे और विवादों से बच के रहे और कोई भी पुरानी बात को याद बिल्कुल ना करें।
1: बिल्कुल, किसी भी तरह का ग्रहण हो, अगर आप खुद को सकारात्मक रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा जी, ये छोटी छोटी जानकारियां और डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और चलिए, इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खास कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

सूर्य ग्रहण आसमान में घटने वाली एक ऐसी खगोलीय घटना जिसे लेकर सदियों से इंसान के मन में जिज्ञासा और रहस्य रहा है, लेकिन जब बात महाभारत काल की आती है तो सूर्य ग्रहण की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है।

0: आसमान में जब ग्रहण लगता है तो चारों ओर अंधेरा पसर जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा देखने को मिलता है। और कुछ ऐसा ही नजारा महाभारत के युद्ध में बना था, जब अचानक से अंधेरा पसर गया और सबको लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है। लेकिन वो केवल अंधेरा नहीं था, बल्कि भगवान की रची माया थी जिसने महाभारत का इतिहास बदल दिया। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में सूर्य ग्रहण के कई योगों का उल्लेख मिलता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण की सूक्ष्म कला गणना और इसके आध्यात्मिक व भौतिक प्रभावों से भली भांति परिचित थे। जिस दिन द्वितीय क्रीड़ा में पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण का योग था। महाभारत में 18 दिवसीय महासंग्राम के दौरान भी 3 बार ग्रहण के योग बने, जिसके प्रभाव से इतना विशाल धर्म युद्ध और संहार हुआ। जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा पूर्ण की, उस दिन भी सूर्य ग्रहण की छाया थी। दरअसल अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध करेगा, लेकिन सूर्यास्त करीब आ गया और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। कौरवों को लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है। जब जयद्रथ अर्जुन के सामने आया और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। विज्ञान की नज़र से देखें तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी तक पहुंचने से रुक जाता है। लेकिन भारतीय परंपरा में ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं माना गया, इसके साथ धार्मिक आस्था, मंत्र जाप, दान और स्नान जैसी परंपराएं भी जुड़ी हैं। यही वजह है कि महाभारत और सूर्य ग्रहण का रिश्ता आज भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ लंच टाइम की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, गांधरबल में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सुपौर में भी निकली भव्य बाइक रैली। राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व जीएम एसपी भी शामिल। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी पूरी, आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी और किया रवाना। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया यह आयोजन, जिसके तहत अलग अलग राज्यों और शहरों में भी तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीयू के माई भारत वॉलंटियर्स भी हुए शामिल। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई तिरंगा साइकिल रैली, इस देशभक्ति और फिटनेस यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय के 1,000 से ज्यादा माई भारत वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। तिरंगा साइकिल रैली से लेकर युवाओं में दिखा उत्साह, मांडविया बोले साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान। नक्सल प्रभाव से बाहर आए गांव तक पहुंची बाइक रैली, बस्तर तिरंगा यात्रा का आयोजन। नारायणपुर से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की शानदार रैली की शुरुआत, राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना है उद्देश्य। स्वतंत्रता दिवस के जश्न और राष्ट्रीय एकता के संदेश के तहत श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में दिखा सुंदर नजारा, भव्य शिकारा तिरंगा रैली आयोजित। डल झील में तिरंगे झंडों से सजे नजर आए शिकारे, देश प्रेम की भावना का दिखा सुंदर नमूना। सुपौर में शानदार बाइक तिरंगा रैली का आयोजन, हर घर तिरंगा योजना के तहत हजारों युवाओं ने लिया रैली में हिस्सा। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर, कोर्ट रोड और रीगल चौक के आसपास निकाली गई रैली, स्कूली बच्चों में भी दिखा रैली को लेकर खासा उत्साह। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल के भव्य पाइप बैंड प्रदर्शन का आयोजन। पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, युवाओं और आम जनता में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना कार्यक्रम का उद्देश्य। ऐतिहासिक कांगला स्थल पर हुआ देशभक्ति से भरा संगीतमय आयोजन, इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए छात्रों और आम लोग। दो लद्दाख बटालियन एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न, कारगिल और लेह क्षेत्र में हुआ कार्यक्रम। इस शिविर में विभिन्न कॉलेजेस और स्कूलों के कैडेट्स ने हिस्सा लिया, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। आत्मकथा का टाइटल है ट्रंप ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। विज्ञान भवन में आयोजित हुआ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित है ये आत्मकथा। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने नौजवानों को दिया संदेश, मुश्किलों के बावजूद हार ना माने, खुद पर रखें भरोसा। प्रयागराज में बन रहा है आजादी का जश्न, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को समर्पित रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन। चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। रंग दे बसंती शीर्षक से आयोजित कवि सम्मेलन, कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, सामाजिक एकता और भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। उत्तर प्रदेश में युवाओं की नाराजगी दूर करने मैदान में उतरेंगे यूपी के मंत्री। जेंजी चौपाल में सुनेंगे समस्याएं और बताएंगे सरकार की योजनाएं। राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व डीएम एसपी भी शामिल। जम्मू कश्मीर में लगातार खेले को दिया जा रहा है बढ़ावा, घाटी में लड़कियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है बास्केटबॉल। श्रीनगर में आयोजित किया गया लड़कियों का बास्केटबॉल कार्यक्रम, कई जिलों की टीमों ने लिया हिस्सा। घाटी में बढ़ती खेल सुविधाओं से खिलाड़ी खुश, युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना इसका मकसद। कश्मीर का अंगूरों वाले गांव के नाम से मशहूर है गांदरबल का रिपोरा गांव, जहां 600 साल पुरानी परंपरा और आधुनिक बागवानी का मेल से हो रही है अंगूरों की खेती। मीठी फसल और बड़े बड़े अंगूरों के लिए मशहूर है ये गांव, लगातार नई टेक्निक से खेती कर रहे और गांदरबल को अंगूर का हब बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिला बूस्ट, स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू ने जीएमसी उधमपुर में 128 स्लाइस सिटी स्कैनर का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, गोरखपुर को विकास की नई सौगात दी। हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, सेस के जरिए बढ़ोतरी। बुलंदशहर में गौमूत्र से जैविक खाद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू, आसपास के लगभग 15 गांव इस परियोजना से जुड़े। कटिहार में एक शादी बनी चर्चा का विषय, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग था हमें बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, बारात में 2 दर्जन ट्रैक्टर शामिल। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया।
3: इकोनॉमिक वैल्यू देखिए
2: इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। चौदह अगस्त मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न, दुर्लभ और लद्दाख के राजकीय पक्षी ब्लैक नेक क्रेन के संरक्षण पर जोर देना इसका मकसद। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, खराब मौसम के कारण प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। असम के गोलाघाट में धनसरी नदी का जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार, सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 4 लेन हाईवे की 1 लेन को किया गया बंद। मुंबई के घाट के ऊपर में लैंडस्लाइड, करीब 7 घरों पर गिरे पत्थर, मलबे में कई के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, हफ्ते भर की गर्मी के बाद आई बारिश ने लोगों को राहत दी। फिल्म हैवान का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार और सैफ अली खान अहम भूमिकाओं में आएंगे नजर, सितंबर में रिलीज होने जा रही है फिल्म। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया है फिल्म हैवान का निर्देशन, हैवान के जरिए करीब 18 साल बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएगी अक्षय और सैफ अली खान की जोड़ी।

0: कृष्ण अवतारम पार्ट टू की रिलीज से पहले मेकर्स का बड़ा फैसला, फिल्म का पहला भाग कृष्ण अवतारम पार्ट वन दहाड़ को दोबारा सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज। सलमान खान और संजय दत्त अब इंटरनेशनल एक्शन फिल्म सात डॉग्स में मिस्र के सुपरस्टार अहमद एज और करीम अब्दील अजीज के साथ नजर आएंगे। भारत में 21 अगस्त को हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म कॉमन आदमी के साथ बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़े नेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी, अरित्र दास क्रिएशन और नर्चर राइज प्रोडक्शन के साथ ये उनका पहला प्रोजेक्ट। 26 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करेंगी 90s की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली 2 में आएंगी नजर। फिल्म उड़ता तीर की नई रिलीज डेट का ऐलान, 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जासूसी कॉमेडी फिल्म। श्रद्धा कपूर की ईशा इथा हुई पोस्टपोन, अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में रणदीप हुडा और जिशान अयूब भी आएंगे नजर। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म राणा बाली की रिलीज डेट में भी बदलाव, अब 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिग्स से पुर्तगाल में की सिविल मैरिज, दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीर शेयर कर दी शादी की खुशखबरी। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद ने रचा इतिहास, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में देश को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का ऐलान, बीसीसीआई ने जानकारी दी। 13 से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे तीनों मैच, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में होंगे तीनों मुकाबले। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को वापस लेने से इनकार किया, हार्दिक ने वापसी के लिए कप्तानी पाने की रखी थी शर्त। रोहित शर्मा होस्ट के तौर पर टीवी पर करेंगे डेब्यू, द रोहित शर्मा शो नाम से जल्द आएगा एक गेम शो। क्रोएशिया में पर्यटकों को गर्मी से बचाने के लिए समुद्र के अंदर सैर की गई व्यवस्था, हेलमेट की मदद से वो समुद्र की तलहटी पर चलते और मछलियों को हाथ से खाना खिलाते आए नजर। मंगलवार को यहां का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, ऐसे में लोगों ने पानी के अंदर करीब 3 मीटर नीचे जाकर ठंडक का मजा लिया। इस अंडर वाटर पार्क में जाने के लिए डाइविंग का अनुभव नहीं है जरूरी, खास हेलमेट से हवा मिलती है जिसमें पर्यटक आराम से समुद्र के अंदर सांस ले सकते हैं। पर्यटक करीब 20 मिनट तक समुद्र के नीचे घूमते हैं और वहां की समुद्री दुनिया देखते हैं, डाइवर्स भी उनके साथ रहते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से घुमाते हैं। पर्यटकों के लिए इतनी गर्मी से समुद्र के अंदर जाना बेहद मजेदार अनुभव, ठंडक के साथ समुद्री जीवों को करीब से देखने का भी आनंद।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पहाड़ों पर भी इस वक्त खूब बारिश हो रही है, खासतौर से हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम का येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऐसे में कहीं आसमान में सफेद काले बादल नजर आ रहे हैं तो कोहरे ने भी हरे भरे पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है।
2: बारिश ने पहाड़ों को धुला तो कोहरे ने आगोश में लिया, फिर आसमान से उतरते बादलों ने पहाड़ों को अपना लिया। बस यही तो खूबसूरती पहाड़ों की फिजाओं में इन दिनों छाई हुई है। देहरादून में मूसलाधार बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसी दौरान विशाल दून घाटी में बिछी कोहरे की चादर ये बताने के लिए काफी है कि मानसून अभी बाकी है। आसमान में घिराए काले बादल संकेत दे रहे हैं कि गरज चमक के साथ बारिश भारी होगी, इसलिए अगर आप देहरादून में रहते हैं तो इस मानसूनी बरसात का आनंद लें। बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर एहतियात के साथ निकलें। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की खूबसूरती भी इन दिनों देखने लायक है। ऊपर से कोहरे की सफेद चादर से ढका मंडी का आसमान इस शहर की ब्यूटी में चार चांद लगा दे रहा है। ब्यास नदी किनारे बसे मंडी में भी मॉनसून की हरियाली नजर आ रही है। यहाँ भी मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए अगर आप मंडी में रहते हैं तो एहतियात के साथ ही इस बरसाती मौसम को एंजॉय करें। आसमान से मौसम का कुछ ऐसा ही जादू मनाली में भी दिखा। हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में घने कोहरे ने नजारा बेहद शानदार बना दिया है, जिसमें कोहरे से ढके पहाड़, घाटियां और हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती दिल को खुश कर देने वाली है। देहरादून, मंडी और मनाली की ये बेपनाह खूबसूरती साफ बयां कर रही है कि कुछ मौसम देखे नहीं बल्कि सिर्फ महसूस किए जाते, जिसमें पहाड़ों की बादलों से नजदीकियां, कोहरे की खामोशी के बाद अचानक बारिश की बौछारें, बस यही इस मानसूनी सीजन का खास चक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, गांधरबल में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सोपोर में भी निकली भव्य बाइक रैली। राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए 34 सवाल, आवेदकों में पूर्व डीएम एसपी भी शामिल। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम फिर एक बार सास बहू और पेटिया यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। बारिश हो, तेज धूप हो या फिर मौसम अपना अचानक मूड बदल ले, एक चीज जो हमेशा हमारा साथ निभाती है वो है ये छाते। और देखिए छाता ना सिर्फ हमें बारिश से नहीं बचाता, बल्कि ये तो सुरक्षा और उसके साथ साथ सूझबूझ की भी एक निशानी है। क्योंकि देखिए जब रहेगा छाता हमारे पास तो हम पहले ही खराब मौसम से बच जाएंगे। और आजकल जब हम छातों की वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक, विंड प्रूफ, फोल्डिंग, इतनी वैरायटी है मार्केट में अवेलेबल कि आपके लिए चूज करना भी हो जाएगा मुश्किल। और एक बात जो आप हमेशा याद रखें, बारिश में भीग जाने के बाद छाते को हमेशा खोल कर सुखाएं ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इसमें जंग लगने का डर ना हो, और उसके साथ साथ छाते में बदबू भी नहीं होती है। और आज तो हमारे ये एंटरटेनमेंट का सफर भी एक मजबूत छाते की तरह है जो एंटरटेनमेंट की बारिश में आपका साथ निभाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए अनुपमा में शुरू होगा कंपटीशन, दिखेगा माँ बेटी का रिश्ता। जिन जिंदगी और मौत से लड़ेगा ईशान, नयनिका बचाएगी जान।

0: सुरक्षित से मिलने पहुंचेगी अपराजिता। निहाल के घर होगी शिव पूजा, खास मेहमान बनकर आएंगी रुचिता और जानवी। होगा अवनि का पर्दाफाश, सूरज और ईशा करेंगे अवनि का प्लान फेल। बंदूक के निशाने पर नागेश्वर, गुरु बनेगा रक्षक।
1: ऐ बारिश तो इतना बरस कि वो जा ना सके,
2: कुछ ऐसा ही होता है ना प्यार का एहसास।
1: और यहाँ पर भी है हमारे लिए प्यार की बारिश और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी। लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है सूरज और ईशा की इस कहानी में आज। क्या फिर से आया है कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा?
0: अवनि के कब्जे में सूरज का परिवार। सूरज बनकर आया रक्षक। अपनी नेतानी सूरज पर बंदूक।
3: आधी बातें आंखें बोले।
0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है क्योंकि अवनि का सच सभी के सामने जो आ गया है। ऐसे में अवनि ने सूरज के सभी परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। देखिए कैसे इन सभी को रस्सी से बांधकर अपने पास रखा है ताकि अवनि अपने मकसद को अंजाम दे सके। भाई उसे मिनिस्टर को मारना है इसलिए उसने बॉम्ब प्लान किया है और ये काम हो सके इसलिए सूरज का परिवार अवनि की गिरफ्त में है। तो वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब भी आ गए हैं जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ईशा पर है क्योंकि चल रहा है 15 अगस्त का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें खास मिनिस्टर मेहमान बनकर पहुंचे हैं। और ईशा परेशान है क्योंकि यहां पर है बॉम्ब जो उसे ढूंढना है।
4: छोटे और परिवार में से किसी एक को चुनने का वक्त आया ना, तो आपकी बहू रानी ने ड्यूटी को चुना और आप सबको छोड़ दिया मेरे पास मरने को। आत्मा लग गया लगता बेचारी को।
5: तुम्हें तो पता है ना अपनी जो कहती है वो करती रहती है। अब मैं तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में जाके मंत्री की जान ले नहीं सकती है ना, तो ये नेक काम तुम्हें ही करना पड़ेगा।
0: लेकिन इससे पहले कि अवनि कुछ और प्लान करती तभी वहाँ पर पहुँच गए सूरज अपने परिवार वालों के लिए, उन्हें बचाने के लिए। और देखिए कैसे अवनि के गुंडों से वो लड़ रहे हैं। आज तो सूरज अवनि का भी सामना करने को तैयार है। भाई सूरज पर दो दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो अपने परिवार को बचाने की और दूसरा ईशा को ये बताने की कि अवनि ने बॉम्ब कहाँ छुपाया है। ऐसे में देखिए कैसे निडर होकर आज सूरज सभी से लड़ रहा है और इन गुंडों को सिखा रहा है सबक। ऐसे में जब सूरज ईशा को ये बताने जा रहा होता है कि आखिर बॉम्ब कहाँ छुपा है तभी अवनि आकर उस पर वार कर देती है और फिर शुरू हो जाती है इनकी लड़ाई। भाई आज तो सूरज चुप नहीं बैठेगा, अपने परिवार को तो बचा चुका है और अब मिनिस्टर को भी बचा कर रहेगा।
6: ईशा से प्लान बी का मतलब बॉम्ब है।
0: भाई जहाँ एक तरफ सूरज लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईशा को पता चल चुका है कि किस लैपटॉप में बॉम्ब छुपा है और उसके हाथ वो लैपटॉप भी लग चुका है।

0: परत मी दुसरा लॅपटॉप दिला होती. श्रेया
1: क्या कर रही है ईशा? ये जान भी जा सकती है.
0: ईशा देश के लोगों के लिए जान किस्मत वालों की जाती है.
2: गुस्से में लाल हो चुकी है क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि उसका प्लान फेल हो रहा है. ऐसे में अवनी के गुंडों को भी सूरज ने खूब सबक सिखाया है. ऐसे में अब अवनी ने निकाल ली है बंदूक और तान दी है सूरज पर. लेकिन सूरज भी चालाक निकला. उसने पहले ही बंदूक की गोलियां निकाल कर अपने पास रख ली है.

0: ऐसे में देखिए अवनी का हाल तो और भी ज्यादा बेहाल हो गया है, लेकिन सूरज ने ये नौबत नहीं आने दी कि उसने अवनी पर हाथ उठाया, क्योंकि तभी वहाँ पहुँच गई सूरज की फैमिली यानी कि ये लेडीज गैंग जिन्होंने अवनी को बंधक बना लिया।
1: प्लानिंग करने वाली थी कुछ बहुत बड़ा हादसा करने की, तो अब वो क्या था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ मंत्री जी हमारे मोहल्ले में आने वाले हैं और ये ईशा जी ने ही प्लान एग्जीक्यूट किया था कि मंत्री जी यहाँ रहेंगे तो सेफ रहेंगे बिकॉज तुम्हारे कुछ आदमी हैं और हमारी पुलिस फोर्स, क्योंकि सूरज भी बोला रहता कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा ईशा जी, तो दोनों मतलब कि ईशा जी और सूरज इन शॉर्ट दादा भाई दोनों मिलके मतलब कि ध्यान देंगे कि मंत्री जी को कुछ ना हो और अवनी का किया हुआ जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाए। लेकिन वो प्लान फ्लॉप होने से पहले ही अवनी जो है सूरज की पूरी फैमिली को मतलब यू नो अगवा करके वो किसी गोडाउन में लेकर आ जाती है। सूरज को ये बात जब पता चलती है सूरज वहां से भागता है और ईशा जी वहां पे हैंडल करते रहती है मोहल्ले में सबकी कुछ गड़बड़ ना हो यहाँ पे, मंत्री जी आ गए रहते हैं, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और एक तरफ यहाँ पे सूरज अपनी पूरी फैमिली को बचाने आया है, और जैसे ही सूरज यहाँ पे आता है तो और अवनी को बोलता है कि बस बहुत हो गया, खेल खत्म करो, हार मान जाओ और खुद को सरेंडर कर दो, तो अवनी बोलती है कि सडनली अपने बंदों को कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट प्लान बी। तो सूरज वहाँ पे कंफ्यूज होता है कि मतलब इसका जो प्लान था वो कुछ और था, मतलब मैं तो कुछ और सोच के बैठा, एंड शॉक में चले जाता है एंड सडनली प्लान भी एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देते हैं और उसी में एक्शन शुरू हो जाता है, लड़ाई मारपीट होने लगता है। एंड सूरज वहाँ पे देखता है कि प्लान बी में एक्चुअली जो लैपटॉप है लैपटॉप के अंदर बॉम्ब फिट किया गया है। अब इतने सारे लैपटॉप बांटे जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों में, अब उसमें से किस लैपटॉप में बॉम्ब है ये बहुत बड़ा मतलब बड़ी बात हो गई। तो सूरज सडनली जो फ़ोन ऑन रहता है ऑलरेडी ईशा अवनी की बात चलते रहती उसी में बोलता है कि ईशा जी प्लान बी का मतलब है, एंड बोलने ही वाला रहता है सडनली एंड अवनी आके यू नो रॉड मारने की कोशिश करती है डंडा एंड फ़ोन टूट जाता है, सूरज बच जाता है। तो यही एक्शन एंड ऑल चलते रहता है एंड फाइनली आई थिंक ईशा जी सुन ली रहती हैं सारी चीज़ें एंड ईशा जी वहाँ पे जाके ऑलरेडी बच्चे को लेके पकड़ ली रहती है, लैपटॉप एक्चुअली वर्क नहीं करता है तो ईशा जी को सब पता चल गया रहता है कि ये लैपटॉप वर्किंग नहीं है, मतलब इसी में कुछ खामियां है। तो वो लैपटॉप के अंदर बॉम्ब रहता है और सूरज जैसे ही वीडियो कॉल करता है सब होने के बाद यहाँ पे अवनी पकड़ में आ जाती है, सब लोग पकड़ के बांध देते हैं उसको फैमिली वाले और हम जीत जाते हैं कहीं ना कहीं अवनी से। और सूरज जब बात करता है वीडियो कॉल पे तो ईशा जी बॉम्ब के साथ रहती हैं, तो सूरज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि और ईशा जी ये टेंशन में आ जाती है कि अब मेरा ये लास्ट मोमेंट है, तो वो यही बोलती है सूरज पूरे फैमिली का ध्यान रखना अगर मुझे कुछ हो गया ये वो, ईशा सूरज समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा ईशा जी ये है वो है, एंड फाइनली सूरज को वहाँ पे दिखता है कि जो मैप बना हुआ है उसी में बॉम्ब डिफ्यूज का भी जो प्रोग्राम होता है एंड कैसे कितने वायर कट करने हैं क्या करने हैं वो सारी चीज़ें लिखी रहती है।
0: तो भाई अब देखना होगा कि क्या सूरज और ईशा मिलकर अवनी के इस प्लान को फेल कर पाएंगे या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और नुपुर मावजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: बारिश और मोहब्बत दोनों का अपना ही अलग जादू होता है, वैसे जादू तो है इस जुनूनी की इस कहानी में भी। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और देखते हैं किस हाल में हैं आज रूहानी और गुरु, क्या कहानी में फिर से आ रहा है कोई नया मोड़ जो लेकर आ रहा है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। लेट्स फाइंड आउट।
0: गुरु को रूहानी की तलाश, घरवाले बने बंधक, गुरु बना रक्षक, दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गौतम रूहानी को जबरन उठाकर ले गया है उसे शादी कराने के लिए, ऐसे में गुरु अपनी रूहानी को ढूंढ रहा है। बार बार अपने मोबाइल से सभी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई उसका कॉल नहीं उठा रहा, लेकिन गुरु उसके पैरों में ब्रेक नहीं लग रहे। अचानक गुरु की नजर पड़ती है जमीन पर पड़े एक झुमके पर, इसी बीच उसको मिलती है पायल भी, ऐसे ही एक एक कर उसे मिलती जाती है रूहानी की सारी निशानियाँ।
3: तो
0: भाई गुरु ने बंदूक चलाकर ये संकेत दे दिया है रूहानी को कि वो रूहानी को बचाने के लिए आ गया है, पर उसे ये नहीं पता कि हवेली के बाहर उसके भाई और पापा सभी बंधक बने हुए हैं, वो भी त्रिपुरारी के, क्योंकि त्रिपुरारी ने बंदूक के निशानों पर सभी को रखा हुआ है। हालांकि नागेश्वर त्रिपुरारी पर भड़कता है, लेकिन बंदूक के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाते।
3: ना तो पुलिस छोड़ेगी, ना करो।
4: पापा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। पापा
3: मामा जी आपसे
5: जो सब ज्यादा आपके साथ हुए थे वो आपके खिलाफ थे। अब गौतम बाबू और डॉक्टर ने की शादी वो कर रहे
3: हैं। गलत कर रहे हो मामा जी। अरे चलो।
0: भाई त्रिपुरारी ने तो बता दिया है कि शादी पर ब्रेक नहीं लगेगा, ऐसे में त्रिपुरारी तो अंदर चला जाता है, लेकिन उसके सभी गुंडे गुरु के घर वालों को अपना बंधक बनाकर रखते हैं। लेकिन उन गुंडों को ये नहीं पता कि अपने घर वालों का रक्षक बनकर वहाँ पहुँच जाएगा गुरु। तभी तो देखिए कैसे एंट्री करते ही गुरु ने बदमाशों को सबक सिखाना शुरू कर दिया और उसमें गुरु के परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं।
6: थोड़ी देर से आए पर तुम सबको ढेर करके जाएंगे।
0: भाई यहाँ तो गुरु का भाई गुरु को अंदर जाकर शादी पर ब्रेक लगाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक बदमाश गुरु पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार नागेश्वर को आ जाता है उसी गुंडे पर गुस्सा और देखिए कैसे गुरु और नागेश्वर दोनों ही मिलकर बदमाशों को सबक सिखाते हैं। भाई आज तो गुरु के पापा गुरु की ढाल बन गए हैं और ये देखकर गुरु वाकई खुश है और अब जल्द से जल्द उस हवेली के अंदर जाकर अपनी रूहानी को गौतम के कब्जे से बाहर निकाल कर लाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: जब मन खुश होता है ना तो बारिश भी त्योहार की तरह लगती है, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूही। वैसे बात तो सही है, देखिए जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम खुश होते हैं, तो फिर तो हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन की तरह ही होता है। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी हमेशा बना रहे मोहब्बत का सेलिब्रेशन। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।

के घर शिव पूजा, मेहमान बनकर पहुंची जानवी और रुचिता। दादी से मुंह छुपाती रुचिता दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में मनाई जा रही है सावन की पूजा, और ऐसे में सभी लोग पीले रंग में रंगे हुए हैं। भाई निहाल के घर में दादी और बाकी घर वालों ने ये खास पूजा रखी है और सभी शिव जी की भक्ति में लीन हो चुके हैं, और इस खास पूजा में खास मेहमान बनकर आए हैं जानवी और रुचिता। असल में दादी ने ही बुलाया है जानवी को निहाल से मिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जानवी चेंज करने के लिए चली जाती है और अकेली पड़ जाती है रुचिता। ऐसे में दादी को देखते ही वो अपना मुंह छुपा लेती है और घूंघट कर लेती है ताकि फिर कोई बवाल ना हो जाए। ऐसे में दादी को शक होता है, लेकिन इससे पहले कि वो रुचिता का चेहरा देखती उन्हें कोई काम आ जाता है और वो पूजा की तैयारियों में जुट जाती है।

0: ए लड़की, कौन है तू और घूंघट क्यों किया? कुछ पूछ रही हूँ मैं, घूंघट क्यों किया?
1: हाँ, वो उनका डर है क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत ऐसा टॉर्चर किया था. सो मेरे को उनको फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है. आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ ऑलरेडी. सो दैट्स वाई मैं अपने आप को उनसे छुपाने के लिए घूंघट वूंघट लेके ऐसे छुप छुप के जा रही हूँ, ताकि शी डजंट सी मी एंड आई डोंट हैव टू गो टू अनदर टॉर्चर अगेन.
2: वैसे यहाँ पर तो देखिए बन गई है निहाल और रुचिता की जोड़ी. भाई इनका हिटन में जरूर चल रहा है, लेकिन शिव पार्वती की इस खास पूजा में दोनों शिव पार्वती ही लग रहे हैं. ऐसे में शिव जी तो इनकी जोड़ी बना कर ही रहेंगे.

0: निहाल के साथ अभी तक रुचिता का सिर्फ हिट एंड मिस ही चल रहा है, और दर्शकों को ये हिट एंड मिस अभी देखते हैं कैसा पसंद आता है, कैसी टीआरपी आती है, दर्शक हमें कैसा पसंद करते हैं, उसके हिसाब से जो हमारी कहानी है वो आगे बढ़ेगी।
1: तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं एंटर करी हूँ घर में सूट पहनकर, बड़ी नानी ने बोला कि सूट पहनकर जाना है तो मैं सूट पहनकर आई हूँ। अब जो निहाल की जो दादी जी हैं उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी संस्कारी लड़की हूँ, जो कि हूँ मैं, बट रुचिता ज़्यादा है, तो उनको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। अभी यही सब मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में ये सब कुछ चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बड़ी नानी को कब पता लगता है, सॉरी निहाल की दादी को कब पता
0: लगता है। एंड ऑल्सो वी कांट गिव ऑल द डिटेल्स, दर्शक अगर देखेंगे नहीं, अगर हमारा यही सब कुछ सुन लेंगे तो कैसे चलेगा। प्लीज़ देखिए हमारा शो और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए।
2: तो भाई अब देखना होगा कि कब और कैसे निहाल और रुचिता की जोड़ी बनती है और इसके बाद क्या क्या बवाल होते हैं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आजकल तो यूवी प्रोटेक्शन वाले छाते भी आते हैं जो सिर्फ हमें बारिश से ही नहीं बल्कि तेज धूप से भी बचाते हैं, और यहाँ आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि अभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली एंटरटेनमेंट वाली गुड न्यूज जो जुड़ी है आपकी फेवरेट कहानी से, जिसमें फिर से आए हैं एक इंटरेस्टिंग मोड, यानी फिर से आया है आपके लिए एक नया ड्रामा। सो गेट सेट गो।
4: सब कुछ बुरा करने के बाद भी तुम दिल्ली में और उसकी जान लेकर उसका पीछा छोड़ोगे क्या?
5: सदमे में नर्मदा रज्जी की कोशिशें।
4: रज्जी ने नर्मदा को जहर दिया है इस बार।
5: नया षड्यंत्र रचती मोगरा।
4: रज्जी ने अपने मायके से आए लड्डू नर्मदा को खिलाए थे और उन लड्डुओं में जहरीली चीज भी मिली।
5: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई जब से नर्मदा की बेबी का मिसकैरेज हुआ है भाई उसके तो होश ही उड़ गए हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, इतनी नहीं उसकी तो दुनिया ही तबाह हो गई है। और ये नर्मदा को देखकर साफ जाहिर है, तभी तो गुमसुम बैठी नर्मदा देखिए कैसे किसी से बात ही नहीं कर रही है। लेकिन रज्जी पूरी कोशिश कर रही है कि वो नर्मदा का ध्यान रखे, उसे खाना खिलाए और उसकी तबीयत बिगड़ने ना दे, लेकिन भाई नर्मदा रज्जी से बात करने को तैयार ही नहीं है। असल में पूरा माजरा ये है कि मोगरा ने लड्डू में जहर मिलाया था जिसके चलते नर्मदा के होने वाले बच्चे का मिसकैरेज हो गया और इन सभी का इल्जाम लग गया है रज्जी पर।
4: आपको पता है हमने आपके पसंद की सारी चीजें ली, आप खाओगे ना? अभी आप ही ट्राई कीजिए, बताइए कैसी बनी। परीक्षा में पास हो गए ना हम आपको अपने हाथ से खिला।
5: भाई रज्जी नर्मदा को समझाने की कोशिश ही कर रही होती है कि फिर एक बार मोगरा आ

0: कर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करती है। वही वो रज्जी को तो फटकार लगाती ही है, साथ ही साथ नर्मदा को भड़काने की पूरी पूरी कोशिश करती है।
1: और ये भैया इल्जाम लगाना बंद करो। अभी
2: तो बस साबित कर रही थी।
1: बस मैंने कह दिया ना, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, और ये फालतू की बहस नहीं चाहिए। माँ की मतलब सीधा मोगरा को बोलने तो दो, उसके बाद रज्जी को भी बोलने दिया जाएगा। हम दोनों बख्शों की सुनना चाहते हैं, और जो पर्दे के पीछे चल रहा है ना यहाँ पे इस घर में, आज सबके सामने आ जाना चाहिए। अभी ये सब करने की क्या जरूरत है, ये वक्त नहीं है सब करने का। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग?
2: रज्जी ने नर्मदा को जहर दिया है इस बारे में। बेकार की बात नहीं है मम्मी जी, रज्जी ने अपने मायके से आए लड्डू नर्मदा को खिलाए थे और उन लड्डुओं में जहरीली चीज भी मिली हुई थी। नर्मदा की रिपोर्ट में आया और हमने ये बात डॉक्टर को पापा जी से करते हुए सुनी थी अस्पताल में। रज्जी ने नर्मदा को लड्डू खिलाए हैं ये भी सच है। झूठ, हमने ये झूठ बोल रही है, हम सच कह रहे हैं। हमने और आशीष ने दोनों ने देखा था। आशीष जी कुछ कहिए ना।
1: नर्मदा की चिल्लाने की आवाज सुनकर जब हम दोनों अंदर गए थे तो हमने देखा था रज्जी पहले से वहां मौजूद थी, और उसके हाथ में वो लड्डू का डब्बा भी था, और वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी नर्मदा से।
2: लगा कि क्या बोल रहे हैं, हम भाग गए थे क्योंकि भाभी की चिल्लाने की आवाज आई थी, वो घबराई नहीं थी। हम उन्हें बस नाम नाम करके बेड पर बिठा के रख रहे थे। और रही बात वो लड्डू की, वो हम लड्डू नहीं लाए, वो कमरे के बाहर पड़े गए थे, वो इसने वहां रखे थे। बातें मत बनाओ रज्जी।
1: रज्जी तुमने लड्डू खिलाए क्या? नर्मदा तुमने खिलाए थे नर्मदा को लड्डू? केतु रज्जी ऐसा नहीं कर सकती।
0: लेकिन इन सब के बावजूद भी भाई रज्जी मोगरा को तो वहाँ से भगा देती है, और इसी के साथ साथ वो नर्मदा के आगे फूट फूट कर रोने लगती है। भाई अपनी सच्चाई की गवाही देती है, लेकिन नर्मदा एक भी शब्द नहीं कह रही है, क्योंकि वो इतने सदमे में है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। ऐसे में अब देखना होगा कि कैसे और कब रज्जी मोगरा का पर्दाफाश करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अगर आपका छाता गीला हो तो उसे तुरंत बंद कर बैग के अंदर ना रखें, पहले उसे अच्छे से सुखाएं, फिर उसे बैग में रखें। इससे छाते में जंग भी नहीं लगेगा और उसमें बदबू भी नहीं होगी। देखा, हम तो शेयर करते हैं आपके साथ सिंपल एंड अमेजिंग टिप्स, और उसके साथ साथ शेयर कर रहे हैं ये स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

0: रिमझिम के सर पर केक लीला, फिर चाहे वो रिमझिम हो, समीर हो, या फिर हो यश, या फिर हो श्वेता, इसके साथ रिमझिम की सारी गर्ल्स आज एक साथ जमा हुई है। पूरी कास्ट एंड क्रू मना रही है उत्सव। भाई उत्सव इसलिए क्योंकि 300 एपिसोड का जश्न है। सास बहू बेटियां पहुंचा दंगल टीवी के शो रिमझिम के सेट पर, जहां पर मनाया जा रहा है 300 एपिसोड का जश्न। और इस मौके पर एक छोटी सी पार्टी सेट पर रखी गई, जहां पर पूरी कास्ट एंड क्रू ने इस मौके को सेलिब्रेट किया। जी हां, आजकल टीवी सीरियल्स की उम्र लंबी नहीं, और अगर कोई एपिसोड 100 क्या 200 क्या 300 पार कर ले तो ये सेलिब्रेशन का मौका होता है। तो आज रिमझिम के समीर यानी हिमांशु और रिमझिम यानी यशिका खूब मूड में है। यशिका जो एक टीनेजर है, वो खुद को रोक नहीं पा रही हैं कभी केक खाने से या फिर समीर के साथ मस्ती करने में। वहीं पर बाकी कलाकारों का अंदाज भी देखने लायक है। इस मौके पर केक कटा और ये खुशी उन्होंने हमारे साथ बयां की।
1: सॉरी यश, प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद मैं ये शादी नहीं कर सकती।
2: समीर लो रिमझिम को ये वरमाला पहना दो।
1: मैंने शादी ना करने का फैसला जरूर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया। ऐसे
3: उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, समय का एटीट्यूड चेंज हो गया, हमारी लड़ाई हो गई, उन्होंने तो प्यारी वाली बॉन्डिंग थी, मैंने भी मिस हो गई थी। मतलब बैंटर हमेशा करते हैं, पहला एक इमोशनल सीन था जहाँ पे हम लोग ऐसे लिटरली फील दैट वी क्राइड आफ्टर द सीन ऑल्सो।
4: सीरियल में ऐसा देखा है कोई जो हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलन भी है, सारे दुख भी मैं ही सहूं, जो भी मैं ही रहूं, तो मुझे एक्चुअली में जैसे भी इमोशनल सीन तो पढ़ने में बहुत मजा आया। फिर कट्टू कबीर सिंह वाला वाइब आ गया, उसके अंदर एग्रेशन है, उसकी फ्लॉज है उस कैरेक्टर के बहुत सारे, सो आई एम रियली एंजॉइंग दिस। इट्स अ गुड स्टडी। और समीर कितना इवॉल्व हो रहा है, पहले कैसा था, अभी कितना चेंज हो गया, टुवर्ड्स लव एंड ऑल, टेकिंग ऑन रिस्पांसिबिलिटी।
5: एक नया नन्ना मेहमान आने वाले महल के अंदर।
6: इस जन्म का सारा प्यार तुम तुम्हारे नाम कर चुके, लेकिन जो तुमने आज हमें खुशियाँ सुनाई है ना, हम 700 जन्म का प्यार तुम्हारे नाम कर देंगे। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं रिमझिम, यू आर प्रेग्नेंट।
0: वैसे रिमझिम समीर के साथ यहाँ पर बाकी कलाकार भी हैं, जैसे हाल ही में कुछ नई एंट्रीज जैसे श्वेता वगैरह। तो आइए इनसे जानते हैं कि सीरियल में नया क्या हो रहा है।
7: ऑलवेज हार्डकोर नेगेटिव कैरेक्टर्स की हैं, और जब मेरी एंट्री हुई वो हाई नेगेटिव कैरेक्टर हमेशा सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, बट थोड़ी टाइम के बाद बोला गया कि इसमें आपको कॉमेडी ऐड करनी है क्योंकि सभी नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं। मैंने कहा मैंने कभी कॉमेडी की नहीं थी यार, कैसे कॉमेडी करूँ। मेरे को लगा भाई अब तो प्रताप गया हाथ से, ये करेक्टर अब निकल जाएगा, आती नहीं थी करनी। फिर लोगों ने सिखा दी मुझे कॉमेडी करनी, तो आपको ये बता दिया प्रताप सा करेक्टर कैसा लग रहा कॉमेडी में। अरे
0: तो भाई ये थे रिमझिम और समीर जो अपनी कहानी से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो 300 एपिसोड के बाद कहानी जल्दी लेगी एक नई करवट। फिलहाल कहानी में लव ट्रायंगल है, मोहब्बत है, पैशन है, रिमझिम और समीर की केमिस्ट्री है जो दर्शकों को पसंद आती है। तो टीवी सीरियल्स की ऐसी ही मजेदार खबरों के लिए आप बने रहिए सास बहू और बेटियां साथ। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: जब कोई हर मौसम में आपका साथ निभाए उसी को तो कहलाते हैं सच्चा रिश्ता। यानी जिंदगी के अप्स एंड डाउन, जिंदगी में धूप छांव, जिंदगी में मिलना बिछड़ना, हर मोमेंट पे जो आपके साथ रहता है। कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आए हैं आज अपराजिता और रक्षित। वैसे हम चाहते हैं कि आप दोनों भी इसी तरह एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहें। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज।

0: अकेला मामी की जासूसी से बढ़ा रक्षित का डर। क्या रक्षित की माँ के सामने होगा अपराजिता के होने का खुलासा? स्टार प्लस की सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में रक्षित अपने कमरे में पहुंच गया है और बेहद परेशान है क्योंकि अपराजिता रवीना भाभी की कंपनी ज्वाइन करने वाली है। ऐसे में रक्षित हैरान था ही कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है बालकनी पर और बालकनी में उसे दिखाई दे जाती है अपराजिता। ऐसे में उसे लगता है कि वो अपराजिता के होने का सपना देख रहा है। बस फिर क्या, उसे नजरअंदाज कर वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और ये देख अपराजिता घबरा जाती है क्योंकि अपराजिता सपनों में नहीं हकीकत में रक्षित से मिलने पहुंच गई है।
1: मैम सॉरी, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं पहनने वाला क्योंकि थोड़ी देर में तो तुम वैसे ही
2: खुर हो जाओगी।
0: अब अनजाने में रक्षित सोने चला तो जाता है और अपराजिता वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि रक्षित उसे सपनों में देख रहा है। ऐसे में सोते हुए रक्षित को उठाने के लिए जैसे ही अपराजिता जाती है तो रक्षित घबरा कर उठ जाता है और उसे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर अपराजिता उसके कमरे में पहुंची कैसे। ऐसे में अपराजिता ने उसे बता दिया है कि वो पाइप से चढ़कर उसके कमरे में पहुंची है। इतना ही नहीं, असल में वो आई है रक्षित से माफी मांगने के लिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रवीना भाभी की ज्वाइन करने का ये ऑफर रक्षित को पसंद नहीं आएगा।
3: अगर आपको और कहीं और जॉब नहीं मिली तो मैं
0: भाई रक्षित तो अपराजिता को समझाने की कोशिश कर रहा है और अपराजिता उसे निहारे जा रही है क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा मिला है जो उसे उसके करियर के लिए सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अचानक वो हिचकिचा जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रक्षित के कमरे में रक्षित की माँ और शीला मामी पहुंच जाती हैं। बस फिर क्या, उन्हें देखकर रक्षित घबराया हुआ है क्योंकि कमरे में अपराजिता है जो जाकर कहीं छिप गई है। ऐसे में मामी बालकनी देखकर हैरान है क्योंकि वो खुली हुई है और रक्षित बहाने मारे जा रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं अपराजिता के होने का सच उसकी माँ के सामने ना आ जाए। खैर, रक्षित की शीला मामी की एंट्री हुई है जो असल में बेहद ही लालची है। तभी तो देखिए कैसे रक्षित का कमरा देखकर उनका लालच बढ़ता जा रहा है और वो रक्षित का कमरा हथियाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में वो कोशिश भी करती है रक्षित के सामने अपनी बात जाहिर करने की, लेकिन रक्षित बातों को घुमा देता है। और तो और रक्षित डरा हुआ भी है क्योंकि रक्षित की माँ और बड़ी मम्मी दोनों को ही नहीं पता है कि रक्षित के कमरे में अपराजिता आई है जो बेड के नीचे छिपी हुई है। ऐसे में जैसे ही रक्षित की बड़ी मम्मी बेड की ओर नजरें घुमाती है तो रक्षित बार बार कोशिश करते हैं कि बड़ी मम्मी उस बेड के ऊपर जा ना सके। भाई रक्षित तो पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अपनी मम्मी और बड़ी मम्मी को कमरे से बाहर निकाल सके, लेकिन रक्षित की माँ तो खाना खिलाने के इरादे से आई है और जबरदस्ती अपने बेटे के साथ बैठी हुई है। और रक्षित की बड़ी मम्मी वो तो इतनी लालची है, घर के हर सामान पर नजर गड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, मौका पाते ही वो रक्षित के बेड के ऊपर कूदने भी लगती हैं क्योंकि उन्हें रक्षित का कमरा भा जो गया है।
4: बड़ी मम्मी नहीं,
5: गधा चीखता भी है।
4: गधे को आपसे एनर्जी मिली है, चीखने लगे गधा। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप और कूदेंगे ना तो गधा कहीं उल्टी ना कर दे, क्योंकि गधा नहीं गधा है, गधा। अब आप बताइए आपको गधे पर कूदना है? डॉक्टर
5: गधे में कौन कूदता है?
4: कभी लात भी मार देता है।
0: फिलहाल तो रक्षित पूरी कोशिश कर रहा है अपराजिता को इन सब से छिपाने की, और जल्द से जल्द उसने मौका पाते ही अपनी बड़ी मम्मी और माँ को कमरे के बाहर भेज दिया। अब देखना होगा क्या रक्षित की माँ को पता चल पाएगा कि रक्षित के कमरे में अपराजिता है। खैर ये तो सीरियल की कहानी है, लेकिन ऑफ कैमरा आज हो रहा है सेट पर सेलिब्रेशन शब्बीर के जन्मदिन का। जरा देखिए कैसे पूरी टीम शब्बीर के लिए स्पेशल केक लाई है, जिसे देखकर शब्बीर बहुत खुश है और पूरी टीम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सपनों की
2: रातें। अब बारिश का मजा तो तभी है ना जब तैयारी पूरी हो, और यहाँ होगी आपके लिए एंटरटेनमेंट की बारिश, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहु एयरपेटिया की एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, लेकर चलेंगे हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर, क्योंकि यहाँ तो खुले हैं मनोरंजन के सभी द्वार। गेट सेट गो।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज धैर्य को लगा है जोरदार झटका, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी अलमारी खोली वैसे ही उसे मिल जाता है संदेश जिसमें उसकी असलियत लिखी होती है। ये देखकर धैर्य घबराया है कि इसी बीच कमरे में कपड़े लेकर पहुंच जाती है मन्नत, जो अलमारी में वो कपड़े रखना चाहती है, लेकिन धैर्य उसे जाने से मना करता है। पर मन्नत को पता है कि असल में माजरा किया है। अब धैर्य ने कोशिश तो की कि मन्नत वहाँ ना जा सके, लेकिन मन्नत तो जाना चाहती थी क्योंकि वो धैर्य के हाव भाव देखना चाहती है। तभी तो देखिए कैसे वो नकली नाटक शुरू कर देती है अलमारी में लिखे हुए संदेश को देखकर।
5: क्या ये?
6: मैंने जी मुझे कैसे पता हो सकता है? आप समझ नहीं रहे, आप वो लोग तो कुछ भी करते हैं, वो लोग तो लोग ही ऐसे ना, तो धोखाधड़ी भरी पड़ी है उन लोगों में। कैसे लोग हैं वो लोग, आपको तो मालूम है किस कितना झूठ झूठ बोला है उन्होंने, तो मतलब मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आप एक बात बताइए कि उन्होंने विक्रांत के साथ तो उनको उसको भी जैसे कोई मनोरंजन कहानी सुनाई होगी ना, जिसके कारण वो ऐसा हो गया। अब वो यहाँ पर आ गया, उसको मैनिपुलेट कर नहीं सकते, इसलिए वो लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब पता नहीं झूठी मूठी कहानी सुनाएंगे आपको हमारा घर तोड़ने के लिए।
0: भाई मन्नत और विक्रांत ने मिलकर ऐसा खेल खेला है कि धैर्य को भी नहीं पता कि ये संदेश विक्रांत और मन्नत का लिखा हुआ है। उसे तो यही लगता है कि ये सब मान्यता ने किया है। बस फिर क्या, मन्नत तो धैर्य को दिलासा दे रही है और उससे वादा भी कर रही है कि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिर मान्यता ने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन धैर्य ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं उसका खुलासा ना हो जाए। ऐसे में वो अकेला चुपचाप बैठकर घबराने लगता है, और मन्नत भले ही कमरे से जा रही है लेकिन पलटकर धैर्य का डर भी देख रही है।
7: क्या
0: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में ध्रुव पूरी कोशिश कर रहा है राज और आरंभी से वो पेन ड्राइव वापस लेने की, जिसमें आरंभी के ससुराल के खिलाफ वो वीडियो है जिसमें दहेज की बातचीत हुई है। असल में वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि ध्रुव ने ही रिकॉर्ड किया था। ऐसे में देखिए कैसे वो राज की कार में बैठकर न सिर्फ बातें कर उसे बहला फुसला रहा है बल्कि राज के जाते ही वो उसकी कार में छानबीन कर रहा है उस पेन ड्राइव के लिए। खैर ध्रुव के हाथों तो वो पेन ड्राइव लगता नहीं है, लेकिन ध्रुव ने अपने असिस्टेंट यानी कि अतुल को आरंभी के पीछे लगा दिया है। ऐसे में देखिए जिस कार में राज और आरंभी जा रहे हैं, अतुल ऑटो में बैठकर उस कार का पीछा कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अतुल का ऑटो खराब हो जाता है, जिसके चलते वो आरंभी और राज का पीछा कर नहीं पाता। ऐसे में वो इस बात की जानकारी ध्रुव को कॉल करके देता है।
5: अंकुल जी बोल,
7: गाड़ी निकल गई है सर।
5: व्हाट?
7: हाँ सर, मैं जिस रिक्शा में गाड़ी का पीछा कर रहा था ना, रिक्शा खराब हो गया है। मेरे आसपास कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है और वो गाड़ी अब कहीं दिख भी नहीं रही है।
5: यार क्या यार, फंसा दिया तुमने।
0: फिलहाल तो आज अतुल के हाथों से आरंभी और राज दोनों ही निकल गए। अब देखना होगा क्या ध्रुव उस पेन ड्राइव को आरंभी से ले पाएगा। स्टार प्लस की सीरियल फितूर में आज सौम्या के घर मच गया है बवाल। असल में सौम्या के घर वालों ने मोबाइल में देख लिया है सौम्या और जीत का वीडियो, जहां पर जीत पूरे कॉलेज के सामने चिल्ला चिल्लाकर सौम्या को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। ऐसे में जैसे ही सौम्या घर में आती है तो उसे देखकर सौम्या की बड़ी मम्मी ताने कसने लगती है। इससे पहले कि सौम्या के पापा कुछ पूछने के लिए सौम्या के पास जाते, सौम्या की बड़ी मम्मी ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। भाई उमा ने तो सौम्या के पापा को उकसा दिया। ऐसे में सौम्या के पापा आगे बढ़े और सौम्या डर गई कि कहीं वो उस पर हाथ न उठा दे, लेकिन असल में दरवाजे पर जीत आ जाता है, जिसे देखकर सौम्या के पापा का गुस्सा भड़क उठता है और वो जीत को अनाप शनाप बोलने लगते हैं। ऐसे में जीत भी जवाब देता है।
8: क्या कहा था तुमने मेरी बेटी को?
9: गर्लफ्रेंड?
8: खबरदार
9: अंकल जी, आपकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये जो फोटोज देख रहे हैं वो नकली हैं, रियल जनरेटेड हैं। कॉलेज में लोगों ने जानबूझकर बनाई है ताकि मेरे और सौम्य के बीच में अफवाह उड़ा सके।
10: अच्छा, तो ये तुम पूछा पूछा के उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, उसका क्या है?
9: अफवाह को जितना डराया करो तू दो जिम जाकर रैप मारकर तगड़ी होती जाती है। लोगों का मुझे मुंह बंद करवाना था तो मैंने झूठ बोल दिया।
10: अच्छा, यही से गर्लफ्रेंड बोलकर यही तरीका मिला क्या है? तुमने हम सबको गुटबक समझा है क्या?
8: तो लोगों का मुंह बंद नहीं करवाया और खुलवा दिया है, लोग आग उगल रहे हैं। अरे सौम्या की इज्जत उछाल दी तुमने।
11: पापा को ये तो बताए कि सौम्या ऐसा कुछ तो नहीं करेगी, क्योंकि पापा का पूरा भरोसा है, जो सौम्या को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। यार इतना कुछ होने के बाद पापा ने बोला कि मेरी बेटी की हरकतें ऐसी हो ही नहीं सकती है, गलती इसकी है, इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि जितना भी कांड होता है इसने ही यही करता है।
12: मैंने बचाया इनको, ठीक है, पूरे कॉलेज के सामने किया ताकि इनको अब कोई छेड़े ना, ठीक है। एक तरफ से तो अच्छा ही हो गया ना, अंकल को समझना चाहिए कि पिताश्री को समझ में नहीं आ रही कि भाई एक तरफ आपकी बेटी का भलाई किया मैंने, समझो, लेकिन रख के मारा, पंजे का निशान छाप दिया मेरे मुंह पे, पूरा लालू रखा, देखो अगर आप ये देखिएगा, ये मेकअप हुआ है। सो ये बैठी दे रही है, बस घूरती रहती है, बस ऐसे करते ऐसे करती हूँ, वाइब्रेट कर रही होती है, पुराना नोकिया का फोन होता है, टेबल के ऊपर करता करता बाहर गिर ही जाता है टेबल से, वाइब्रेट करता करती वो।
0: मैं फिलहाल तो जीत ने सभी घरवालों को ये बता दिया कि उसके और सौम्या के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन घरवाले जीत से बेहद नाराज हैं। और तो और जीत इसी घर में किराएदार के रूप में रहता है, ऐसे में सबके गुस्से को बर्दाश्त करते हुए जीत चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर चला जाता है। लेकिन सौम्या के बड़े पापा वो बेहद परेशान नजर आते हैं, वो न सिर्फ जीत से नफरत करते हैं बल्कि अब तो वो चाहते हैं कि जीत को घर से निकाला जाए।
13: ये जो कुछ हो रहा है, ये फोटोज, ये सब कुछ, इस सब के पीछे एक कारण, जब तक घर में जवान लड़की है और साथ में इस तरह का होंडा मवन यहाँ पर रहेगा, तब तक लोग बात करते रहेंगे, और जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा तब तक ये होगा, बार बार होगा और होता रहेगा। मुझे
12: ये मजबूरियां लेके चढ़े हैं मेरे ऊपर। अरे शर्मा जी का फ्लैट है वो, ठीक है, तुम लोग भी कराए पे ही हो। ऐसे हीरो बनते हैं, इसके अनूप जी, अनूप है ना पापा, ऐसे हीरो बनते हैं जिनका खुद का घर हो। भाई खुद किराए पे है, इनसे ज्यादा किराया तो मैं भरता हूँ ऊपर वाले कमरे का। कैश भी मुझसे लेकर जाते हैं।
2: जिंदगी में कुछ लोग छाते की तरह होते हैं जो बिना कुछ कहे हर मौसम में आपका साथ निभाते हैं। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर आपके लिए है एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट एक साथ, क्योंकि हम भी तो एग्जैक्टली उस छाते की तरह हैं जो एंटरटेनमेंट के हर मौसम में निभाते हैं आपका साथ। सो गेट सेट गो।
14: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से, और टिकती है डर पे। जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया।
15: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
16: भाई आखिरकार हो ही गया मिर्जापुर का मूवी का ट्रेलर लॉन्च। ऐसे में यहाँ पर पहुँच गए हैं फिल्म के सभी कलाकार, यानी कि पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, अभिषेक बैनर्जी, जितेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शिवा चड्डा, राजेश तैलाव, श्रेया पिलगांवकर, सोनम चौहान, बिस्वास, शाहजी चौधरी, श्वेता त्रिपाठी और फिल्म से जुड़े सभी कास्ट एंड क्रू। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं ट्रेलर लॉन्च के इस खास मौके पर और दिखाते हैं यहाँ के सभी खास पर कि आखिर ये कलाकार अपनी इस नई पारी के लिए कितना एक्साइटेड हैं। भाई सीरीज तो सभी ने पसंद की है, लेकिन अब फिल्म क्या बवाल मचाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। उससे पहले आइए करते हैं कलाकारों से ढेर सारी बातें।

0: क्या हो सकता है, इतनी शोर है हमारे आसपास कि थोड़ी भी शांति जो है वो बहुत पावरफुल लगने लगती है। हम शोर के दौर में जी रहे हैं, बस गहराई है, बात यहाँ से निकलती है तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: अबे मिर्जापुर का किंग कौन?
0: हमारे लड़के हमको भैया कहते हैं, सीजन वन में था ना, लगता है वही लड़के आ गए हैं इधर। पूर्वांचल से आए हो क्या?
2: अरे अरे हम लगा देते हैं भैया, मैं भैया।
3: इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन देखिए क्या है कि हमें कुछ ऐसा, देखिए एंट्री उसकी होती है जो कहीं गया हो। हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम अमर हैं, हमें कुछ हो नहीं सकता।
2: देखिए हमने जो
3: बॉन्ड,
2: जी हमने जो फिल्म बनाई है मिर्जापुर, उसकी दुनिया में सब लोग जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो किसी के लिए जान दे सकते हैं, और कंपाउंडर उनमें से एक है। लॉयल्टी है मुन्ना भैया के लिए, और भी विस्तार से बता सकते हैं लेकिन आप लोग जल्दी दर लेट हो रहे होंगे तो आगे बढ़ो।
3: चाचा आए, कैसे हैं आप? अरे वाह, याद है हा? दोबारा मत बोलना वो सब। बहुत बढ़िया, सो गुड टू सी यू गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चाचा।
4: ये करप्शन रियल है यार, तुम सब सब इन्फेक्ट हो चुके हो। अच्छा आज एक नए किरदार भी है हमारे साथ, जो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन इनको मजा आ रहा है। नहीं नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू, आई लव यू। अरे यार पोस्टर वोस्टर लाए हो तुम, थैंक्स यार। ओहो ओके ओके, वो सब आप बोलना, डायलॉग आप लोग तो सब जानते ही हो, फिल्म आ रही है देखना।
5: आई होप जितना गांव वाले जीतू भैया को प्यार मिला उतना बंदूक वाले बबलू भैया को भी प्यार मिले।
1: अरे अरे
5: आई होप सबको मजा आए फिल्म देख के।
6: हम मिर्जापुर में तूफान लाने वाले हैं।
1: अच्छा।
6: तो लेकिन बदला होगा या वफा वो देखने के लिए तो आप सबको 4th of September को जाना पड़ेगा थिएटर। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जो भी आप देखने वाले हैं वो आपका होश उड़ाने वाला है, बहुत बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है थिएटर्स में, एंड आई एम श्योर एवरी मिर्जापुर फैन इज गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट इन द थिएटर्स। और बस ये कहूंगी कि मिर्जापुर तो आ गया है, भौकाल विल फॉलो माय ब्रदर।
7: मिर्जापुर यूनिवर्स में मैं न्यू कमर हूँ, सो डेफिनेटली मैं कुछ सीखने आया हूँ, बिकॉज फ्रॉम सीजन 1, 2, 3 व्हाट आई हैव सीन, जिस जिसको लगा कि वो बहुत कुछ सीख चुका है वो मर जाते हैं। मुझे मरना नहीं है
8: यार, अगर इरादा बता दिया दुनिया को तो बेवकूफ़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। बस इतना कह सकता हूँ कि इरादा पक्का है, और नेक है कि नहीं वो मैं चाहता हूँ जनता पर्दे पर देखे।
9: साइलेंस और वायलेंस गोलू को दोनों नहीं पसंद, और हमने ये देखा है कि जनरली वायलेंस जो चुनता है वो मजबूरी में चालू करता है, शुरू करता है और फिर मज़ा आने लगता है। लेकिन मिर्ज़ापुर से हमने अगर एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि वायलेंस का रास्ता जो भी चुनता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो गोलू और श्वेता दोनों यही चाहेंगे कि आप लोग वायलेंस बस स्क्रीन पे इंजॉय करें।
10: पहली बात तो नमस्कार, टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्वीटी गुप्ता को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना गुड्डू का ना मुन्ना का, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद से इतना प्यार करती है कि उसका सैसिनेस टशन उससे ही आ जाता है। एंड आई हैव टू से कि सीजन 1 मिर्ज़ापुर के अंत में स्वीटी का जब अंत हुआ था तब लगा नहीं था कि फिर से इस मिर्ज़ापुर वर्स में इस कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो वेरी ग्रेटफुल टू अमेज़न एक्सेल, पुनीत जी, गुरुपा, एवरीबडी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव टू द ऑडियंस।
11: इसका कोई सरल जवाब तो नहीं है, तो दर्शकों तो जगत में ही बहुत परेशान है। दिल्ली से शुरू हो गए कहाँ तक जा रही। तो बट 4 सितंबर को मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा।
12: सवाल ये नहीं है कि कौन फंसेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। क्योंकि जो भी बीना के रास्ते में आता है वो तो फंसता ही है, शायद उसको खुद ना पता हो कि वो फंस गया हो, लेकिन फंस तो जाता ही है। तो बीना तो अपने तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड है, आप मिर्ज़ापुर बड़े पर्दे में देखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? I'm a king, but I bop, I'm a saint, they call me a bad man, that's a fucking good thing, mama said swing back when another
13: तो देखा आपने, ट्रेलर ने तो सभी के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन अब मूवी क्या हिट करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
14: बारिश की तरह कभी कभी मनोरंजन की दुनिया में भी अचानक खबरों की बौछार हो जाती है। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाएंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया भी हर दिन नहीं होती है जैसी। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
15: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस के नए सीजन की। सामने आया है बिग बॉस सीजन 20 का नया प्रोमो, जहां पर इस सीजन में आया है नया ट्विस्ट, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को मिलने वाली हैं दो लाइव्स, यानी कि दो मौके उनके पास खुद को सेव करने के। अब क्या होगा ये ट्विस्ट, ये तो शो के आने के बाद ही पता चलेगा।
16: कथास यूट्यूब तो इस बार बिग बॉस दे रहे हैं सभी घर वालों को एक नहीं दो दो चांस, सो सेफ खेलने का नो नो चांस। बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान, कथास्तों में जान।
15: इसी के साथ बिग बॉस सीजन 20 में कंटेस्टेंट बनकर आ सकते हैं जिया मानिक और उनके हस्बैंड वरुण जैन, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। नजर डाल लीजिए सर आपकी नयनिका के इस लुक पर, जहां नयनिका बन गई है दुल्हनिया। तो क्या है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट, क्या ईशान की शादी नयनिका से होगी, ये देखना होगा। फिलहाल तो आप नजर डाल लीजिए इनके इस ब्राइडल लुक पर।

दंगल टीवी लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है हमारी भाभी नंबर वन। और इस शो में नजर आएंगे प्रथम कुंवर, सोनल खिलवानी और साहिल बलानी, ये तीनों होंगे शो के लीड्स। इसी के साथ खबरें ये भी हैं कि शो में नजर आएंगी एक्ट्रेस तन्वी सावंत भी। तो हो जाइए तैयार दंगल के नए शो के लिए।

श्रद्धा कपूर जल्द नजर आएंगी फिल्म ईथा में। सामने आया है इसका पोस्टर। आपको बता दें कि ये फिल्म दिसंबर 4, 2026 को रिलीज होने वाली है।

0: बेटो
1: अनन्या पांडे की बहन इलाना पांडे ने अनाउंस की है अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी। ऐसे में घर में आ गई है ढेर सारी खुशियाँ। देख लीजिए ये वीडियो। इसी के साथ नजर डालीजिए अनन्या पांडे के इस वीडियो पर, जहां वो पहुंच गई हैं शिव मंदिर लेने शिव जी का आशीर्वाद।

0: हर मुश्किल में अपने परिवार की ढाल बन जाती हैं हमारी अनुपमा। बिल्कुल छाते की तरह वो हर मुसीबत से अपनी फैमिली को बचाती हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको अनुपमा के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में। अब क्या फिर से आई है कोई नई सिचुएशन या फिर कोई नया ड्रामा या कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इस कहानी में नया मोड़। चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के सेट पर।
1: बाल बाल बची राही

0: के चलते एक छत के नीचे आए शाह और कोठारी। बवाल मचाते कभी अनुपमा, कभी प्रेम, कभी माही। अलग अलग टास्क के अलग अलग तमाशे। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में स्वाद संग्राम प्रतियोगिता में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां पर उस ट्विस्ट के चलते कोठारी और शाह परिवार एक ही छत के नीचे आ गए हैं और उस घर में जगह जगह पर लग गए हैं कैमरा और इन सभी की जा रही है निगरानी और साथ ही दिए जा रहे हैं अलग अलग टास्क। पहला टास्क है किंजल और श्रुति के बीच, जहां पर किंजल अनुपमा की मदद कर रही है रसोई में और बजर बजते ही श्रुति किंजल को दे देती है अल्टीमेटम अनुपमा की मदद न करने का, लेकिन किंजल अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो लगातार अनुपमा की मदद कर रही है।
1: किंजल, किंजल, तुम हेल्प नहीं करोगी? यहाँ पे सुना मैंने श्रुति जी, लेकिन मैं आपका हुक्म मानने से इनकार कर रही
2: हूँ। जी हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे, कुछ कीजिए।
1: किंजल, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा, समझे तुम?
3: कॉम्पिटिशन चल रहा है, स्वाद संग्राम कॉम्पिटिशन चल रहा है और वो उसमें दोनों परिवार एक साथ शाह परिवार शाह घर में शाह हाउस में आ जाते हैं। तो यहाँ फिर क्या होता है, बस वही यहाँ चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजर्स भी आ जाते हैं और यहाँ होते हैं टास्क, अलग अलग टास्क अलग अलग जोड़ियों के, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
4: सो बेसिकली हम लोग घर पे मिले थे क्योंकि हमें 24 घंटे की पूजा करनी थी एंड दैट कॉट ऑडियंसेस आई कि ये दोनों तो अपोनेंट्स है, ये दोनों फैमिली साथ कैसे हो गई, साथ में है मतलब क्या प्राइज मनी ये लोग आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या ढूंढ कर रहे हैं टीवी पे। तो मीडिया आ गई थी घर पे एंड ऑर्गेनाइजर्स आए टू आर रेस्क्यू और उन लोगों ने कहा कि हमने इन्हें साथ बुलाया है क्योंकि हम इन्हें टास्क देने वाले हैं, जो कि हमें भी नहीं पता था एंड वी वर ऑल टेकन अ बैक कि ये क्या हो रहा है। पर ठीक है, चलो मीडिया के सामने बोल दिया तो बोल दिया, बट देन वी क्लैरिफाइड कि आप सचमुच तो टास्क नहीं देने वाले ना, बट दे एक्चुअली केम विथ अ प्लान कि हम ग्रुप्स बनाएंगे दो दो के और हम टास्क देंगे हर एक ग्रुप को।
0: अगला टास्क होता है अनुपमा और राही के बीच में, लेकिन तभी आ जाता है ट्विस्ट क्योंकि राही की चुन्नी में लग जाती है आग, जिसके चलते अनुपमा उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। अपने परवाह किए बिना अनुपमा राही की जान बचाती है और राही डरी सहमी सी अपनी माँ के गले लग जाती है। ऐसे में न सिर्फ अनुपमा बल्कि घर वाले भी राही को समझा बुझा रहे हैं, संभाल रहे हैं। भाई राही की ये हालत देखकर तो वाकई सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अनुपमा राही को आराम करने के लिए उसके कमरे में जाने को कहती है और राही भी बात मानकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसी ट्विस्ट के बीच टास्क भी पूरा हो जाता है और ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चलता है तो उस पर बवाल मच जाता है।
5: मम्मी की टीम एक और टास्क जीत गई,
6: वाह! क्या टास्क? हाँ, पॉपकॉर्न में तुम्हें नमक की जगह का नशा डाला है, कौन से टास्क की बात
7: कर रही है? भाई सही बोल रहे हैं, मम्मी जीत गए।
5: मम्मी क्या चाल चल रही है आपने? क्या चाल चल रही है आपने? खुद खुद भी देख लिया, बनवा भी लिया राही को।
6: हाँ, बकवास कर रहे तुम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या हुक्म दिया? कौन सा टास्क?
1: क्या बात है, आज पता चला इस कंपटीशन को जीतने के लिए तुम किस हद तक गिर सकते हो।
8: श्रुति
1: पहले यादव पर चिल्ला रही थी और अब मुझ पर। ममता की याद में क्या कमाल का गेम खेला है तुमने? बजर बजा तुम्हारा और आदू का नाम अनाउंस हुआ, लेकिन तुमने इतनी जोर से उसको गले लगाया कि उसने कुछ सुना ही नहीं। क्या बात है अनुपमा, तुमने उसकी तबीयत का और इस मौके का क्या फायदा उठाया। वाह, तुमने उसको हुक्म दिया, उसने तुम्हारा हुक्म मान लिया। माँ के प्यार का ऐसा नमूना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं।
4: तो बस अभी वही कैमरा हर जगह लग चुका है और जैसी बजर बजेगा वैसे हमें हमारा टास्क पूरा करना होगा। तो यही सब चल रहा है और चलते चलते मेरे दुपट्टे में मतलब आग लग जाती है। वहाँ पे मम्मी मुझे बचाती है और फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, लेकिन उसी बीच में बजर बज जाता है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, ये मैं बताऊंगी नहीं, इसके लिए आप सबको देखना होगा रोज। बस यही सब कुछ चल रहा है, बट वेरी एंटरटेनिंग। मतलब कुछ ना कुछ टास्क, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा नॉर्मल सीरियल जैसे सीन्स करते हैं, नॉर्मल जैसे फैमिली सीन्स होता है, वहां से थोड़ा सा हट के एकदम डिफरेंट मजा आ रहा है बहुत।
0: भाई तोशु और पाखी तो बहुत खुश है, लेकिन अनुपमा ने उनको फटकार लगा दी। इतना ही नहीं, अनुपमा तो सभी घर वालों को बताने की कोशिश कर रही है कि वो तो अपनी बेटी की जान बचाने आई है, उसने तो बजर सुना ही नहीं। ऐसे में घर वाले कुछ सोचे ना सोचे श्रुति अपना दांव फिर से चल देती है और प्रेम को जल्द से जल्द राही को बुलाने के लिए कहती है। लेकिन प्रेम श्रुति पर ही नाराज हो उठता है क्योंकि उसने अपनी राही की हालत देखी थी।
8: वो पूरी जल सकती थी अभी, उसके कपड़ों तक आग लग गई थी, इतनी कमजोर है कि बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही, और आप उसे यहाँ बुला रही है टास्क पूरा करने के लिए।
9: तो पहले ही आ गई थी, अब राही भी अपना टास्क हार जाएगी।
10: तुम्हारी सबसे पीछे हो जाएगी ना।
11: हाँ, कम से कम मैं किसी और की तरह परिवार से खेलता तो नहीं।
4: हाँ, क्योंकि उस टाइम पे इतना केओस हो जाता है, किसी को आवाज़ मतलब बजर बजने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देता है। और जब तक मम्मी मुझे रूम में जाने के लिए बोलती है तब तक बजर फिर से बज चुका होता है और टास्क ओवर हो जाता है। इसका मतलब तो वही हुआ कि मैं हार गई, मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया। बाद में रियलाइज कि मैंने सुना नहीं था और मम्मी ने भी रियलाइज़ किया कि उन्होंने भी सुना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स मिल चुके हैं लव यू जिंदगी कैफे को। तो और मुझे डर है कि अनुज कैफे को पॉइंट नहीं मिला और प्रेम फिर से गुस्सा हो जाएगा, नाराज होगा मेरे ऊपर, झगड़े ये वो, तो यही मुझे अवॉइड करना था। तो बस यही सारी चीजें चल रही है एक साथ।
0: भाई प्रेम को भी यही लगता है कि अनुपमा ने ये जानबूझकर किया है। ऐसे में अनुपमा चाहकर भी प्रेम की गलतफहमी मिटा नहीं सकती। खैर, अब अगला टास्क शुरू हुआ है और अगले टास्क में ईशान और माही का नाम आ गया है। ऐसे में जैसे ही बजर बजा तो देखिए दौड़कर माही ने ईशानी का मोबाइल छीन लिया और ईशानी बेहद परेशान हो रही है क्योंकि उसे कॉल आने वाला है इंटरव्यू के लिए, लेकिन माही फोन देने के लिए तैयार नहीं है। भाई जीत के लिए तो माही कुछ भी कर सकती है, उसे तो बजर तक नहीं सुनाई दिया और अब भी वो मोबाइल लेकर टेबल पर चढ़ी हुई है। ऐसे में अनुपमा को आ गया गुस्सा और अनुपमा ने उसे रोककर ईशानी का मोबाइल छीन ईशानी को दे दिया।
4: माही और ईशु वाला एक टास्क था जो वो लोग दोनों परफॉर्म कर रहे थे। ईशु को कुछ उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसे जॉब का एक्सेप्टेंस मिलने वाला था, उसके बॉस का कॉल था एंड माही हर्ड दैट कॉन्वर्सेशन। उसने बस वो फ़ोन लिया और उसने टास्क दिया कि भाई तुम फ़ोन इस्तेमाल नहीं करोगी। अब टास्क करियर के ऊपर होता है ना, सॉरी करियर टास्क के ऊपर होता है ना। सो माही उसने बहुत बचपना कर लिया एंड हम सब ने उसे समझाया कि ये गलत होता है, बट माही इज माही एज वी ऑल नो।
0: भाई स्वाद संग्राम प्रतियोगिता के चलते माही ने ईशानी के करियर पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में प्रेम और उसके घर वालों को माही का ये किया सही लग रहा है। खैर, एक टास्क पूरा हो गया है और अब अगला टास्क शुरू होगा प्रेम और दिग्विजय के बीच में। फिलहाल तो बजर बजने की देरी है और ऐसे में अनुपमा घर में इस तरह के बवाल को लेकर परेशान है और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने हाथों से लड्डू बना रही है और लड्डू बनाते बनाते सभी को बता रही है कि ये लड्डू प्रेम को बहुत पसंद है। इसी बीच प्रेम भी आता है पानी पीने के लिए। ऐसे में अनुपमा चुपचाप एक कटोरी में एक लड्डू रख प्रेम की तरफ खिसका देती है, लेकिन प्रेम वो लड्डू खाता नहीं है और ये सब दिग्विजय देख लेते हैं। इसी बीच कहानी में आता है ट्विस्ट। जैसे ही बजर बजता है, दिग्विजय रख देते हैं प्रेम के सामने टास्क, वो लड्डू न खाने का।
12: प्रेम, तुम अनुपमा जी का हाथ का कुछ नहीं खाओगे।
13: वाह दिग्विजय जी, वाह क्या गेम खेला है आपने। मतलब अगर प्रेम हुकुम मानेगा तो टेस्ट करेगा और अगर नहीं मानेगा तो मम्मी के हाथ के लड्डू खाने पड़ेंगे। वाह वाह
14: प्रेम, तुम देख क्या रहे हो? जाओ ना वहाँ पे लड्डू है, जाके फटाफट खाओ, टाइम कम है, हमें जीतना है। गो
12: प्रेम, लड्डू ही जो है उसमें जहर थोड़ी ना मिला, खा लो जाकर।
0: फिलहाल तो प्रेम के घर वालों के लिए जीत जरूरी है। ऐसे में मोटी बा के कहने के चलते प्रेम आगे बढ़ता है, वो लड्डू वाली कटोरी भी उठाता है, लेकिन वो लड्डू खाता नहीं बल्कि उस लड्डू को अपने हाथ में ही फोड़ देता है और अपना गुस्सा जाहिर करता है। यानी उसे हारना कबूल है लेकिन अनुपमा के हाथों कुछ खाना कबूल नहीं।
4: जैसे एक एक टास्क सबको मिला है वैसे ही उन्होंने लड्डू बनाया था और दिग्विजय जी एंड प्रेम का टास्क था उस टाइम पे। तो प्रेम ने जैसे प्रेम को बोला गया कि तुम्हें अनुपमा जी के हाथ का बना हुआ तुम कुछ नहीं खा सकते और अगर उसने नहीं खाया तो टास्क वो हार जाएगा और अगर उसने खाया तो वो जीत जाएगा, मतलब हमारी टीम जीत जाएगी। बट नहीं, ईगो थोड़ा सा बड़ा हो गया है उसका, भी कुछ कर नहीं सकते हम, तो इसलिए वो नहीं खाता है और हम टास्क हार जाते हैं।
0: अब ईगो के चलते प्रेम ने हारना मंजूर कर लिया है, लेकिन अब भी एक टास्क बाकी है और ये टास्क देने के लिए खुद ऑर्गेनाइजर पहुंच गए हैं अनुपमा के घर में, क्योंकि ये टास्क वो लोग करेंगे जिसमें अनुपमा, दिग्विजय और प्रेम राही शामिल होंगे।
14: अब फिर से आप हमें हमारी फैमिली को परेशान करेंगे क्या?
15: नहीं नहीं राही जी,
12: बच्चों को तो हमने अभी भी शामिल नहीं किया और इस बार हम बड़ों को भी शामिल नहीं करेंगे। इस टास्क में अनुज कहते एक तरह से सिर्फ आप और प्रेम जी और लव यू जिंदगी कैफे की टीम से अनुपमा जी और दिग्विजय, हम सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको उनके आंसर देने और हम आपको उनको पॉइंट देंगे, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ।
4: आई नो राइट, हम खुद शौक ही हुए जा रहे हैं, अलग अलग टास्क आ रहे हैं, अब आगे एक लाइव डिटेक्टर वाला एक टास्क आने वाला है, हमें खुद नहीं पता कि वो क्या है, क्या होने वाला है, बट उन्होंने एटलीस्ट इतना अनाउंस कर लिया है। लेट्स सी, हमें खुद रोज शॉक्स मिल रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है।
0: लाइव डिटेक्टर टेस्ट यानी कि अब होगा सच और झूठ से पर्दाफाश और सामने आएगी सभी के दिल की बात, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
16: उम्मीदों की बारिश में हमेशा खुशियों का छाता साथ रखना चाहिए, कुछ ऐसा ही कह रही हैं हमसे हमारी नौनिका। जैसे नौनिका और ईशान, हम तो चाहते हैं कि अब आपकी जिंदगी में हो सिर्फ और सिर्फ प्यार की बारिश, बस यूं ही रहें आप एक दूसरे के साथ। लेकिन क्या करें, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो शायद क्रिएट करेंगे आपके बीच ढेर सारा कन्फ्यूजन। बस आपको रखना है एक दूसरे पर विश्वास। लेकर चलते हैं आप सबको सैराब के सेट पर।
17: में ईशान की जान,

0: चमत्कार रंग लाई नायनिका की दुआ। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है ईशान। ऑपरेशन थिएटर में ईशान की हालत बिगड़ गई है और ऐसे में सभी डॉक्टर्स हो गए हैं परेशान। ऐसे में वहाँ पर पहुँचती है नायनिका। भाई वो डॉक्टर भले ही है लेकिन दवा के साथ साथ दुआ भी उतनी ही जरूरी है। तभी तो नायनिका लेकर आई है ये फूल और देखिए कैसे ये फूल ईशान के सर पर रखकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ईशान होश में आ जाए। और ये प्रार्थना रंग भी लाई क्योंकि ईशान को होश आ गया। भाई ये तो हो गया है चमत्कार।
1: ईशान का एक ऑपरेशन हो चुका है जो कि नायनिका ने किया है और उसके अभी मल्टीपल ऑपरेशंस होने हैं। एक और मेजर ऑपरेशन जो अभी जिसकी तैयारी के लिए नायनिका गई हुई है, तो सबकी एकदम हार्ट बीट बढ़ी हुई है क्योंकि वो खून एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं उसकी लाइफ में। तो वो मंदिर जाती है, वहाँ पर पूजा करती है, अपनी फैमिली के यहाँ जाती है। फैमिली उससे 100 सवाल करते हैं कि आप मंदिर उसके लिए गए हो, क्यों गए हो। ऑलरेडी नायनिका बहुत परेशान है। यहाँ से जब वो अपने घर से निकल के अभी जस्ट हॉस्पिटल पहुँची है और यहाँ पर भी मीडिया वालों ने ऐसे उसको घेरा हुआ है कि बताइए क्या है और आपका पर्सनल रिश्ता क्या है, आपने मुंह मोड़ लिया है, ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो मीडिया के आए हैं नायनिका के लिए। तो वो ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुकी है। यहाँ से अंदर जाती तो विशु दादा ने भी उसको सवाल कर लिए, उनकी मदर ने, मारिया ने काफ़ी सारे सवाल कर लिए। तो अब उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि ईशान ठीक हो जाए, फिर बाकी सबके सवालों के जवाब होते रहेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब दवा असर नहीं करती है तो सबसे ज़्यादा असर दुआ करती है। और इनफैक्ट मेरी मदर हमेशा कहती हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो दुआओं में ही पावर है। आप सबकी दुआएं लेते हुए चलो तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। और अब वही नायनिका के दिमाग में आया है कि ऑपरेशन तो वो कर ही रही है, एक और मेजर ऑपरेशन भी बाकी है, अभी उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन मंदिर जाके माथा टेक कर आकर यू नो ऊपर वाले की जो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर का भी एक छोटा सा टच आ जाएगा तो शायद ही विल बी फाइन वेरी सून।
0: भाई जहाँ एक तरफ ईशान संग हुआ है चमत्कार, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान की मम्मी भी ईशान को लेकर काफी परेशान हो रही है और वो डॉक्टर से सवाल जवाब पूछ रही है।
2: ये सब बातें मेरी समझ से बाहर है। आप बस मुझे इतना जवाब दीजिए कि मेरा बेटा बचेगा या नहीं बचेगा, बस इतना जवाब दे दीजिए।
3: हम ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते।
0: तभी वहाँ पर पहुँचती है नायनिका और फिर एक बार ईशान की मम्मी का गुस्सा नायनिका पर फूटता है। लेकिन इस बार नायनिका चुप नहीं बैठने वाली, उसने भी ईशान की मम्मी को करारा जवाब दिया और वहाँ से चली गई।
2: विश्वनाथ, तुम इस लड़की से कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देखिए आप यहाँ रहे या यहाँ से जाए ये आपका फैसला है, लेकिन एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, इसलिए मैं किसी भी वक्त यहाँ पर आ जा सकती हूँ। ये बात आपको समझनी होगी। तुम मेरे बेटे के आसपास भी नहीं जाओगी। सॉरी, पर आपके बेटे का ऑपरेशन मैंने किया है, इसलिए आपकी ये बात तो मैं नहीं मान पाऊंगी। इसलिए ईशान के सारे फॉलोअर्स मुझे ही लेने होंगे। आप अपने गुस्से को सच्चाई पर हावी नहीं होने दे सकते। प्लीज आप इन्हें समझाइए कि ये जो कह रही है एक डॉक्टर से कह रही है और ये मुझसे इस तरह से

0: इतना कुछ हो गया, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि उसके हाथ में जादू है, वो करिश्मा कर सकती है। अगर उसने एक बार हमारे बेटे को छू लिया ना, वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
1: अब ये उस सिचुएशन पर आ चुकी है जहाँ पे उसका माइंड जो है वो ये कह रहा है कि बस ईशान ठीक हो जाए, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो ईशान की भलाई के लिए किया। उसे ये लग रहा था कि अगर नौनिका उसकी लाइफ में नहीं रहेगी तो ईशान फिर भी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज़ ही हैज़ द टाइम। और नौनिका के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, बट ईशान के पास तो बहुत टाइम है।
2: ऐसे में ईशान को होश आता है और होश में आते ही वो सबसे पहले नौनिका का नाम ही पुकारता है। तो फाइनली ईशान ठीक हो चुका है और रोड टू रिकवरी पर है।
3: जब आपको लगता है कि हाँ इससे जिंदगी इससे खराब नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान आपको सरप्राइज करता है और बोलता है अरे तुम्हें क्या लगा। तो यस ऑफ कोर्स बेचारा ईशान जो है उसके जीवन में सब कुछ बहुत खतरनाक ही हो रहा है। कि एक बार वो अभी कुछ टाइम बहुत खुश था जब वो मुंबई में था, जब से वो कलकत्ता आया है पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया उसकी मोहब्बत पे, कि जब वो नौनिका से मिलता है नौनिका उसको कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल मेरे प्यार के हकदार नहीं हो, ये तुमने सोच कैसे लिया, ये वो इतना सुनाती कि उसके कान का पर्दा फट जाता है। तो उसके बाद उसका ईशान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बीसीटी हॉस्पिटल में, जो कि बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट है। और किस्मत और आयरनी कुछ इस प्रकार है कि नौनिका ईशान को ट्रीट कर रही है, उसका कान जो है वो ठीक कर रही है, जो कि वो काफ़ी टाइम से चाहता भी था। तो कुछ ऐसा सीन है, पर सच्ची मोहब्बत उस सोने जैसी है जिसको जितना तराशो उतनी ज़्यादा और निखर के आती है। तो हम बस उसी तराशने का टाइम चल रहा है, जो एक बार तरश गई फिर उसके बाद देखिए और ज़्यादा निखरती है।
2: तो भाई इस हादसे के बाद अब देखना होगा कि कैसे ईशान और नौनिका की जोड़ी बनती है और कैसे फिर एक बार नौनिका ईशान से दोस्ती करती है, क्योंकि तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अगर ईशान किसी मुसीबत में होगा तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे।
5: तो फिर तुम्हें ये घर छोड़ना होगा।
6: यात्रा के लिए हल्के और फोल्डेबल छाते सबसे काम में आते हैं, क्योंकि इजीली हमारे बैग में स्टोर हो जाते हैं। तो आप भी लेकर चलें अपने साथ हमेशा एक छाता, चाहे बारिश हो या धूप या अचानक बदल जाए मौसम। देखिए यही तो होता है हमारी सुरक्षा का प्रतीक। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर, जिसमें है एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड ड्रामा, सब कुछ एक साथ। लेट्स चेक इट आउट।
2: संजय का मुंह छिपाना, नरेंद्र का हंगामा मचाना, बुआ जी के सामने सच का आना, जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में नरेंद्र ने जैसे ही संजय की तस्वीर अखबार में देखी, देखी कैसे वो संजय के ऑफिस का पता लगाकर पहुंच गया है संजय के ऑफिस में उससे मिलने के लिए। सबसे पहले तो वो रिसेप्शन में जाता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है संजय से मिलने की, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने को कहती है क्योंकि संजय मीटिंग में जो है। ऐसे में नरेंद्र चुपचाप जाकर रिसेप्शन में बैठ जाता है। इसी बीच संजय को पता है कि नरेंद्र जाएगा नहीं और उसे मीटिंग अटेंड करनी है। तो देखिए कैसे अपने ऑफिस के बाकी कलीग्स के साथ अखबार में अपना चेहरा छिपाकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नरेंद्र ने उसे देख लिया है। बस फिर क्या, संजय का इस तरह से छिप छिप कर जाना नरेंद्र को गुस्सा दिला देता है और नरेंद्र पहुँच जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास लड़ने झगड़ने के लिए।
7: अभी अभी संजय सामने से ही गुजरा है, मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि संजय मेरे सामने से गुजरा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मुझसे झूठ बोला जा रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ किसी भी हालत में एक बार संजय से मिल जाऊँ, संजय से मिलूँगा तो मुझे पता चलेगा मेरी वृंदा कहाँ है। अब मैं गाँव से आया हूँ, गाँव का प्रधान हूँ, तो शहर में कैसे बड़े ऑफिसर्स में बात करी जाती है, कैसा एक तरीका होता है, मुझे नहीं पता है। मैं तो यहाँ से हटा हुआ इंसान हूँ, मुझे वृंदा चाहिए, वृंदा चाहिए, वृंदा चाहिए, दैट्स इट। तो उसके लिए रिसेप्शनिस्ट बाबा मुझे समझाती है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, ढंग से बैठिए, ये वगैरह। तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है बस मुझे संजय से मिलाइए, संजय से मिलाइए, दैट्स इट। तो अभी यही चल रहा है।
2: बाहर नरेंद्र बवाल मचा रहा है तो वहाँ संजय को पता चल गया है, और साथ ही पता चल गया है संजय की बुआ जी को भी। तभी तो देखिए कैसे वो बाहर पहुँच गई हैं और सिक्योरिटी से नरेंद्र को बाहर निकालने के लिए कह रही हैं।

0: धक्के तो मैं बहुत खा रहा हूँ इस शो के अंदर है, ये कोई पहली बार नहीं है। कभी बा मारती है, कभी वृंदा मारती है, और अभी सिक्योरिटी गार्ड मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं किसी के ऑफिस में घुस के ऐसी हरकतें करूंगा तो वहाँ तो चपरासी मुझे बाहर निकाल देगा। ऐसा लग रहा है संजय की हरकतें देखे कि संजय सब कुछ छुपा के रख रहा है, किसी के फैमिली में पता ही नहीं है कि संजय ने क्या करा है। तो संजय की बुआ जो एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती हैं किसी भी तरीके से ओवर पावर करने के लिए, शायद उनके लिए एक सुनहरा मौका हो ये कि वो संजय के किसी पास के बारे में जान सकें और उसके बाद वो कुछ एक नया फैसला ले सकें, संजय की ज़िंदगी बदल सकें और घर में अपनी एक सत्ता बना सकें, तो शायद उनके लिए एक मौका है।
1: अब जिस हिसाब से नरेंद्र अपने गांव की लड़की को भगाने का इल्जाम लगाकर वहां से गया है, उस हिसाब से संजय की बुआ जी को संजय पर डाउट हो गया है और वो संजय से जानने की कोशिश में लगी है।
2: क्या था ये और कौन थे ये लोग?
3: उसके बुआ है, कुछ बात करो। चलो
2: संजू, तो किस लड़की को
3: पकड़ते?
1: फिलहाल तो संजय ने बुआ जी को बातों से घुमा दिया, लेकिन बुआ जी इतनी आसानी से संजय की बातों में आएंगी नहीं, क्योंकि वो तो संजय के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली है। देखना होगा क्या वो सच का पता लगा कर रहेंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: जैसे कि तेज हवा में एक मजबूत छाता ही टिकता है, वैसे ही ये जो हमारे सितारे हैं ना, ये भी बस जो इस लंबे सफर को तय कर जाते हैं, जिनमें असली टैलेंट होता है, वही टिक पाते हैं लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में। और इसी के साथ साथ अब दिखा रहे हैं हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के वो सारे रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
5: तू ठिंगू जी है, तू ठिंगू जी है, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा।
6: देख लीजिए कौन बनेगा करोड़पति का ये नया प्रोमो, जहां खास मेहमान बनकर आए हैं वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट डॉक्टर, डॉक्टर गणेश बराइया।
5: मेरे फादर ने उनको बोला कि मेरे गणेश को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो वो बात मेरे दिल को छू गई और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और MBBS में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया, पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरा एडमिशन रिजेक्ट किया गया मेरी कम हाइट की वजह से। पर मेरे टीचर ने हार नहीं मानी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल किया।
7: ये छपा था गणेश बरैया वर्सेस द मेडिकल सिस्टम, बहुत बड़ी बात है।
5: अभी मैं MBBS डॉक्टर बनके मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त हूँ।
7: जहाँ जहाँ भी लोगों ने आपके ऊपर ताना मारा है, आपने उनके असंभव होने को संभव कर दिया। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए, ये रहा आपके पर्दे पर।
5: ये आज का दिन मेरी जिंदगी का सुवर्ण पन्नों में लिखा जाएगा।
7: सोच लिया है?
5: यस।
7: मॉनिटर डी पे ताल लगाया जाए।
6: कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने शेयर किया है ये वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी स्किन पर व्हाइट पैचेस आ गए हैं। ऐसे में फैंस हो गए हैं चिंतित।

0: तो आज का हमारा ये मॉनसून स्पेशल सफर यहीं समाप्त होता है। याद रखिए कि एक छाता हमें यही सिखाता है, सिर्फ बारिश से नहीं बचाता बल्कि हर मौसम में तैयार रहना भी सिखाता है। और हमारी ये जो जिंदगी है ना, ये भी मौसम की तरह है, कभी धूप तो कभी छांव, लेकिन अगर साथ अपनों का है ना तो जिंदगी का ये सफर आसान हो जाता है। आप रखिए अपने अच्छे से ख्याल। अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहु और पेटियां। बाय बाय।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: जम्मू कश्मीर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, डल लेक में शिकारों पर लहराया तिरंगा, गांधरबल में तिरंगा लेकर निकले लोग, सोपोर में भी निकली तिरंगा बाइक रैली। चंदौली रेलवे स्टेशनों पर बज रहे देशभक्ति के गीत, रेल कर्मी और स्काउट गाइड तिरंगा यात्रा निकाल कर दे रहे देशभक्ति का संदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हुई देश के पहले ग्रेन ATM की शुरुआत, लंबी लाइनों में लगने से मिली निजात, 24 घंटे मिलेगा राशन। भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी है केदारनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे भक्त, 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, छावनी में तब्दील, लाल किले के आसपास का इलाका। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते भी सुरक्षा चाक चौबंद, यमुना नदी में बोट में बैठकर सुरक्षा कर्मी कर रहे पेट्रोलिंग। नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में लगातार मूवमेंट पर रखी जा रही पुलिस की टीमों की नजर, रात में लगाई जाएगी गश्त। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडोज की सघन पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई निगरानी। देशभक्ति के रंग में डूबा भारतीय रेलवे, रेलवे स्टेशनों पर बज रहे देशभक्ति के गीत, तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया ये आयोजन, जिसके तहत अलग अलग राज्यों और शहरों में तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, DU के माय भारत वॉलंटियर्स भी शामिल। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई तिरंगा साइकिल रैली, देशभक्ति और फिटनेस यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय के 1,000 से ज्यादा माय भारत वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। तिरंगा साइकिल रैली को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह, मांडविया बोले साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या का समाधान। नक्सल मुक्त गांवों तक पहुंची बाइक रैली, बस्तर तिरंगा यात्रा का आयोजन। नारायणपुर से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की शानदार रैली की शुरुआत, राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य। स्वतंत्रता दिवस के जश्न और राष्ट्रीय एकता के संदेश के तहत श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में दिखा सुंदर नजारा, भव्य शिकारा तिरंगा रैली आयोजित। डल झील में तिरंगे झंडों से सजे नजर आए शिकारे, देश प्रेम की भावना को दिखाया गया। सोपोर में शानदार बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, हर घर तिरंगा योजना के तहत हजारों युवाओं ने लिया रैली में हिस्सा। श्रीनगर में CRPF की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर, कोर्ट रोड और रीगल चौक के आसपास निकाली गई रैली, स्कूली बच्चे भी दिखे। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल्स के भव्य पाइप बैंड प्रदर्शन का आयोजन। पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, युवाओं और आम जनता में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना इसका उद्देश्य। ऐतिहासिक कांगला स्थल पर हुआ देशभक्ति से भरा संगीतमय आयोजन, इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए छात्र। दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, देशभक्ति में डूबे लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। प्रयागराज में मन रहा आजादी का जश्न, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को समर्पित तिरंगे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रंग दे बसंती शीर्षक से आयोजित कवि सम्मेलन, कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, सामाजिक एकता, भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए मैदान में उतरेंगे यूपी के मंत्री, जेन जी चौपाल में सुनेंगे समस्याएं। दो लद्दाख बटालियन एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, कारगिल और लेह क्षेत्र में हुआ कार्यक्रम। इस शिविर में विभिन्न कॉलेजों और स्कूल के कैडेट्स ने हिस्सा लिया, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना उद्देश्य। पीएम मोदी ने किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन, आत्मकथा का टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। विज्ञान भवन में आयोजित हुआ पुस्तक विमोचन का ये कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित आत्मकथा। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने नौजवानों को दिया संदेश, मुश्किलों के बावजूद हार न माने, खुद पर भरोसा करें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की खास पहल, दुर्ग जिले में प्रदेश का पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम शुरू। लाभार्थियों को अब घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, इस मशीन के जरिए ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे लोग। राशन कार्ड नंबर या आधार कार्ड से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए होती है लाभार्थी पहचान, पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में मशीन से निकलता है अनाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और मरीजों के साथ भी मुलाकात की, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में लगातार खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा, घाटी में लड़कियों के बीच में तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा बास्केटबॉल। श्रीनगर में आयोजित किया गया लड़कियों का बास्केटबॉल कार्यक्रम, कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। घाटी में बढ़ती खेल सुविधाओं से खिलाड़ी खुश, युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना मकसद। कश्मीर का अंगूरों वाला गांव के नाम से मशहूर है गांधरबल का रेपोरा गांव, जहां 600 साल पुरानी परंपरा दिखाई देती है। मीठी फसल और बड़े बड़े अंगूरों के लिए मशहूर है ये गांव, लगातार नई तकनीक से खेती कर और गांधरबल को अंगूर का हब बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिला बूस्ट, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने जीएमसी उधमपुर में 128 स्लाइस सिटी स्कैनर का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया, गोरखपुर को विकास की नई सौगात दी। हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, सेस के जरिए बढ़ोतरी। बुलंदशहर में गौमूत्र से जैविक खाद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आसपास के लगभग 15 गांव इस परियोजना से जुड़े। कटिहार में एक शादी बनी चर्चा का विषय, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामे बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन हुआ, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया। इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। 14 अगस्त को मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न, दुर्लभ और लद्दाख के राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन के संरक्षण पर जोर देना मकसद। भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी है केदारनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को आ रहे भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के कारण प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। आज लगेगा साल का दूसरा आखिरी सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से धरती के कई हिस्सों में दिन में होगी रात, 3 दशक के बाद सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाएगा अंधेरा। 1999 के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा सूर्य ग्रहण खगोल, वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप के कई हिस्सों, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में दिखेगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:04 से लेकर रात 1:27 तक रहेगा ग्रहण। रात का समय होने की वजह से भारत में दिखाई नहीं देगा कल का ये सूर्य ग्रहण, दिखाई नहीं देने के कारण सूतक भी नहीं लगेगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने, इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जम्मू कश्मीर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, डल लेक में शिकारों पर लहराया तिरंगा, गांधरबल में तिरंगा लेकर निकले लोग, सोपोर में भी निकली तिरंगा बाइक रैली। चंदौली रेलवे स्टेशन पर बज रहे देशभक्ति के गीत, रेलकर्मी और स्काउट गाइड तिरंगा यात्रा निकाल कर दे रहे देशभक्ति का संदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हुई देश के पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत, लंबी लाइनों में लगने से मिली निजात, 24 घंटे मिलेगा राशन। भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी है केदारनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे भक्त, 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। भोलेनाथ जो बेलपत्र और धतूरे के साथ ही जलाभिषेक के अर्पण से वरदान लुटा देते हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे आभूषण की महिमा बताने जा रहे हैं जो दिव्य और मंगलकारी माना जाता है। आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी महाशक्ति की, शिव के प्रिय रुद्राक्ष की, जो माना जाता है भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। शिव कृपा के लिए कई उपाय बताए गए हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग इन्हीं उपायों में से एक है। रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ, आखिर रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानिए।

0: वो जन्मा है रुद्रनाथ के रुदन से। उसकी उत्पत्ति मानी जाती है त्रिनेत्रधारी के नेत्रों से, जिसे देवाधिदेव महादेव के अंतर्मन का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसका प्राकट्य होना ध्यान मग्न महादेव की लीला का सार है। ये रुद्राक्ष है जिसे महादेव की शक्ति माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि धरती पर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का विवरण मिलता है। रुद्राक्ष जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में कही गई है, जो महादेव का आभूषण है, जो शिव को प्रिय है, जिसे शंभुनाथ की शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
1: भगवान शिव की उपासना में भस्म का, बेलपत्र का, भांग धतोरा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्र के अश्रुओं से निकला ये वो अनमोल मोती है जो लोगों के जीवन में न सिर्फ आने वाले संकटों को दूर कर सकता है, बल्कि ये साधक की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करवा सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे महादेव की महाशक्ति कहे जाने वाले रुद्राक्ष की महिमा, साथ ही ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय तथा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं।
1: रुद्राक्ष के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। कैसे? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं और इस शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है। जो भी धारण करता है या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं और उसको मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं।
0: माना जाता है कि कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की सनातनी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि से लेकर संतों की दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है शिव का ये आभूषण। मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसके प्रयोग से मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप जानते समझते हैं उससे कहीं अधिक है इसकी शक्ति। रुद्राक्ष की शक्ति को मापना भी आसान नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल अचूक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करके परेशानियों को दूर करता है। काम बनने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है? रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिलेगा सिर्फ लाभ।
1: जो व्यक्ति भी इसे धारण करता है और भगवान शिव को चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करते समय सावधानी बरतनी है कि सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए।
0: रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर यह चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरों की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। विशेष लाभ पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है और अगर सही रुद्राक्ष धारण किया जाए तो जरूर पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। रुद्राक्ष के वैसे कई प्रकार भी हैं, हर किसी की एक पहचान है, पर असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की खुद पहचान कर सकते हैं, जानिए।

0: भोलेनाथ के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है महाकाल के लिए सबसे खास। रुद्राक्ष धारण करके करे महादेवों की भक्ति। एक रुद्राक्ष से मिल सकती है शिव की शक्ति। भोलेनाथ का वरदान है रुद्राक्ष। शिव शक्ति का प्रताप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है महादेव के अश्रुओं से।
1: भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान मुद्रा में बहुत समय तक भगवान शिव बैठे रहे। अचानक उनके मन में किसी बात को लेकर ग्लानि हुई। उनके नेत्र से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं, निकल जाती हैं। और यही जो उनकी दो बूंदें हैं भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गए।
0: कहते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे, और जब ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बनकर जमीन पर गिरे। उनके अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा उगा, जिससे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। कथा कहती है कि एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था।

0: शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कथा कहती है कि भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था जिससे त्रिपुर का वध हो सकता था, लेकिन उस अस्त्र का तेज बहुत ज्यादा था। कथा कहती है कि त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। कथा है कि अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुओं की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला समाज में मान सम्मान पाता है। ये महज एक वस्तु नहीं है बल्कि तन मन की ऊर्जा को संतुलित रखने की औषधि है जिसे धारण कर आप भी पा सकते हैं महादेव की महाकृपा। चलिए आपको बताते हैं कि एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष की विशेषताओं पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: अब जो 14 प्रकार है रुद्राक्ष के, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव स्वरूप है, इसे धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर स्वरूप है, तीन मुखी रुद्राक्ष सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है, चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, यह सर्व सुख प्रदायक है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदायक है, पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह कालाग्नि स्वरूप है, पाप का नाश करके उत्तम फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है।
0: रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए मंत्र जाप में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन के हर दिशा में सुख शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि हर मनोकामना पूरी कर सकता है रुद्राक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है, पापों का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करने वाला है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जो सुख धन और रूप प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, आयु में वृद्धि करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप है, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है 9 मुखी रुद्राक्ष में।
0: शीघ्र विवाह के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिक्षा और एकाग्रता के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए 1 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष, नौकरी की बाधाओं से बचने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, भक्ति के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मस्तक पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शांति मिलती है तथा शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सभी प्रकार के सुखों के को प्रदान करने वाला माना गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के कष्टों का शमन करने के लिए। 12 मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, सामान्य जनों के लिए अच्छा माना गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है विश्व देव के रूप में है, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, जो परम कल्याणी है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना गया है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष होगा तो आपके पास से मुसीबतें हो जाएंगी कोसों दूर। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में ज्योतिष के जानकार।
1: असली जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो बनावट, एक रुद्राक्ष की बनावट दूसरे रुद्राक्ष से भिन्न होगी, समान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक के जो रुद्राक्ष होते हैं, नकली होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे कि जो रेखाएं हैं असली रुद्राक्ष पर ऊपर से नीचे तक अस्पष्ट और प्राकृतिक

0: रेखाएं होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। असली दाने की ऊपरी सतह खुरदरी और असमान होती हैं। दो असली रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसका ध्यान देना जरूरी है। जबकि त्रिशूल, ओम या विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं, वह असली में नहीं पाए जाते। यह नकली रुद्राक्ष का जो फल है, रुद्राक्ष है, उस पर बनाए जाते हैं लक्ष्य। असली रुद्राक्ष भारी होने के कारण पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी के ऊपर तैरता रहता है।
1: उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता, न ही उस पर कोई असर होता है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूबता नहीं है। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग से गहरा हो जाता है। काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाले रुद्राक्ष ज्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। रुद्राक्ष को सुई से कुरेदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप नहीं होगी। तो देखा आपने मनोकामना पूर्ति का ये रुद्राक्ष किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब आप ही रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कैसे शांत होंगे शनिदेव, आगे जानिए।
2: माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहां तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से समाप्त किया जा सकता है।
1: शनि पीड़ा का अंत करेगा रुद्राक्ष। शनि की कृपा का पात्र बनाएगा रुद्राक्ष। माना जाता है कि महादेव के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शून्य हो जाता है। साथ ही साथ जानकार ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वालों पर ग्रहों की पीड़ा का असर नहीं होता। महादेव के प्रताप से उनके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रुद्राक्ष से लाभ हासिल कर सकते हैं।
0: षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, भस्म से स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी वस्तुओं से उसका पूजन उसी प्रकार करेंगे जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार, 1008 बार या यथाशक्ति जप करेंगे। अंत में ओम तद पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार जप करके भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा।
1: यही तो है रुद्राक्ष की शक्ति। अगर आप भी शनि के कष्टों से दो चार हो रहे हैं तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष, क्योंकि शास्त्रों में शनि के गुरु हैं महादेव। माना जाता है कि जो भी साधक महादेव के आभूषण को धारण करता है और धर्म सम्मत आचरण रखता है उस पर शनि कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को शनि परेशान नहीं करते हैं और वो साधक शनि का साढ़े साथी और ढैया होने पर भी सुख से रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शनि से जुड़ी बाधाएं कैसे आप रुद्राक्ष की मदद से दूर कर सकते हैं। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3-10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। सेहत की दिक्कतें हों तो शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साढ़े साथी या ढैया हो तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। माना जाता है कि रुद्राक्ष से जुड़े ये महाप्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं और साथ ही नियमों का पालन करते हैं तो शनिदेव आप पर भी मेहरबान होंगे, जिससे आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों एक रोबो कॉप की खूब चर्चा हो रही है। ये हाईटेक रोबो प्लेटफॉर्म के साथ साथ रेलवे स्टेशन के हर हिस्से पर पैनी नजर बनाए रखता है। एआई तकनीक के साथ लैस ये रोबोट कई जटिल कामों को एक साथ आसानी से निपटा भी सकता है।
9: चौकस निगाहें, चप्पे चप्पे पर नजर, आरपीएफ का ये रोबोट कॉप है मुसाफिरों की सुरक्षा का हम सफर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तैनात ये रोबोट कॉप रेल मुसाफिरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रोबोट का नाम है डीएससी अर्जुन। सिर पर आरपीएफ की कैप और 4 पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल पर सवार इस एआई रोबोट को देखकर सभी की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी होती है कि लोग इसके बारे में पूछे बिना रह नहीं पाते। डीएससी अर्जुन के पास तैनात सिपाही मुसाफिरों को इस रोबोट की खूबियों के बारे में समझाते हैं। इस अत्याधुनिक रोबोट में 7 हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। ये रोबोट ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। रेलवे ट्रैक पर उतरने वाले यात्रियों पर इसकी पैनी नजर होती है। ये रोबोट आग जैसी घटना को तुरंत भांप लेता है। किसी भी गड़बड़ी का पता चलते ही ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। इस रोबोट को करीब 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। डीएससी अर्जुन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और रेलवे स्टेशन की दूसरी अहम जगहों की लगातार निगरानी करता है। निगरानी के साथ ही ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए मुसाफिरों को जागरूक भी करता है। ये रोबोट ट्रेनों के आवागमन, सामान की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक पार न करने की हिदायत के साथ लोगों को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी देता है। खास बात ये है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई जटिल कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। डीएससी अर्जुन रोबोट एआई, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस है। ये रोबोट आरपीएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभा सकता है। इसमें एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। ये रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स से यात्रियों की संख्या का आकलन करता है। इसकी एआई तकनीक लावारिस सामानों को तुरंत पहचान लेती है। ये संदिग्ध गतिविधियों के बारे में फौरन आगाह कर सकता है।
10: रोबोट है और ये सबके ऊपर निगरानी रखता है और जो भी क्रिमिनल या कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके अगर फिगर से अगर मैच कर जाता है तो ये सीधा हेडक्वार्टर तक वो पहुंचा देता है और लोगों को भी ये उनको बता देता है कि आपका सामान ठीक तरह से रखिए, सजा के रखिए और निगरानी में रखिए ताकि ये चोर के द्वारा कोई उसको उठा न ले जाए।
9: रेलवे का मानना है कि डीएससी अर्जुन की तैनाती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये रोबोट रियल टाइम में अहम सूचनाएं जुटाकर अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करता है। इसके आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों की मदद पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले पहचान सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में ये रोबोट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बज रहे देशभक्ति के गीत, भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कर्मचारी, यात्री कर रहे हैं पहल की तारीफ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हुई देश के पहले ग्रेन ATM की शुरुआत, लंबी लाइनों में लगने से मिली निजात, 24 घंटे में मिलेगा राशन। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत में नहीं दिखाई देगा, खगोलीय नजारा ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा ग्रहण। चीन के जिलेन में खिले 1,00,000 सूरजमुखी के फूल, सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, कर रहे दीदार।

सूर्य ग्रहण पर क्या महा उपाय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे आगे चर्चा करेंगे। सावन का पावन महीना एक खगोलीय घटना का साक्षी भी बन रहा है। आज श्रावण अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 18 साल बाद सावन में फिर वही दुर्लभ संयोग बन रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन धार्मिक नजरिए से अगर देखा जाए तो असर कितना होगा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 18 साल बाद सावन में सूर्य ग्रहण के मायने क्या है, सावन में 15 दिन दो ग्रहण क्या है संकेत, 4 ग्रहों के मेल से क्या खुलेगा सौभाग्य का द्वार, क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण और क्या भारत में लागू होगा सूतक नियम क्या है, ये भी आपको आगे बताएंगे। क्या आप आज पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं, ऐसे में ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे जिनका जवाब आज देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और धर्मगुरु हमें देंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे।

सावन चल रहा है और हरियाली अमावस्या भी है, आज ही सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो आज का दिन बहुत खास हो जाता है। आज रात 9:04 पर चंद्र सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढक देगा। जहां चंद्रमा की गहरी छाया पहुंचेगी वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हालांकि भारत में ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण का एक धार्मिक पक्ष भी है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण को लेकर सूतक, मंत्र, जाप, ध्यान और पूजा जैसी तमाम मान्यताएं बताई गई हैं।

0: तो चलिए आज का दिन बहुत विशेष और अहम हो जाता है। आज रात सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा क्योंकि सावन चल रहा है और इसी बीच आज सूर्य ग्रहण का संयोग भी है। जो समय रहेगा वो होगा 9:04 आज रात से शुरू होने वाला ये ग्रहण और फिर उसके बाद आज देर रात 1:27 पर ये खत्म होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसका सीधा मतलब ये है कि सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं है, यानी कि आम दिनों की तरह ही मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, खुले रहेंगे। अब ये कहां नजर आएगा वो जानना भी बहुत जरूरी है। ये नजर आएगा यूरोप के तमाम हिस्सों में, जैसे कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, ये तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये ग्रहण नजर आएगा। स्पेन, पुर्तगाल में भी ग्रहण दिखेगा, साथ ही साथ फिनलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस में भी आंशिक तौर पर ये ग्रहण नजर आएगा। और कहा जा रहा है कि सभी 12 राशियों पर ग्रहण का असर होने वाला है, साथ ही साथ देश और दुनिया पर भी इसका असर होगा। तो ग्रहण का भारत में आध्यात्मिक महत्व क्या है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य ग्रहण को लेकर भी मंदिरों में खास तैयारी हो रही है। तो सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या करना है, जब तब से कैसे मिलेगा लाभ, ये सब आज जानेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो तमाम ज्योतिषाचार्यों से जानने की कोशिश करेंगे।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर। जैसे धार्मिक स्थल बंद नहीं होंगे, वैसे भी ये रात का समय है, भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:04 से लेकर के 1:28 तक ही सूर्य ग्रहण की स्थिति रहेगी। तो भारत भूमि में ऐसे समय में मंदिर आदि के कपाट वैसे भी बंद रहते हैं, तो सूतक के नियम का कोई आधार नहीं बनता है। भारत में दृश्य नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह भारत भूमि को प्रभावित तो नहीं करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। और इसी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव के संदर्भ में, तो कुछ राशियों को लाभ प्राप्त होगा तो कुछ राशियों को नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त होगा। जैसे मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको कुछ लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगे। वैसे तो सूर्य ग्रहण सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा, परंतु इन राशियों को सकारात्मक प्रभाव ज्यादा देगा और थोड़ा मोड़ा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। परंतु ज्यादा जो सावधानी वाली स्थिति है वह कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है और कुंभ है।
0: चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पंडित श्रीपति आचार्य, हमारे साथ इस वक्त आचार्य गौरव स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, वाणी आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य गौरव, आप ही से शुरू करना चाहूंगी, जब नजर नहीं आ रहा है भारत में ग्रहण, तो क्या नियम बन जाते हैं भारतीयों के लिए और उन भारतीयों के लिए, क्योंकि यूरोप में एक बड़ी संख्या है भारतीयों की जो वहां पर रहते हैं।
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा है। देखिए, सूर्य ग्रहण कहने के लिए एक खगोलीय घटना है, सामान्य घटना है, लेकिन इसका विशेष लाभ हमारे जीवन पे पड़ता है, क्योंकि कुंडली को और कहते हैं समस्त ग्रहों को बल केवल सूर्य से मिलता है, और सूर्य का एक पल के लिए भी, सूर्य की अगर किरणें सही तरीके से धरती पे ना आए या फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट धरती पे ना आए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। नवजोत जी, ये जो गोचर है ये दृश्यमान नहीं है, यानी नजर नहीं आएगा, लेकिन ये गोचर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये दिखेगा, और वहां पर भी हमारे कुछ जो भारतीय लोग हैं जो वहां रहते हैं, जो धर्म को मानते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर वो समाधान के तौर पे चलेंगे तो उनके लिए विशेष, मैं आगे आने वाले समय में आपको जरूर बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एक सूर्य का जो बल होता है, सूर्य देता है ऑरा, सूर्य देता है यश, और सूर्य का अगर इस समय पे, पर क्योंकि ये एक सामान्य नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगने वाला है, भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन पूर्ण रूप से होने वाला ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव मैं कह सकता हूँ बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर। तो मेरा केवल ये बताना नवजोत जी, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये देश और दुनिया के ऊपर इसका असर रहेगा, भारत इससे सुरक्षित है लेकिन बाहर की जो कंट्रीज हैं वहां के लोगों के लिए ये सूतक मान्य रहेगा, तो वो सावधानियां और नियम के अनुसार अगर चलेंगे तो उनके लिए विशेष रहेगा।
0: बिल्कुल, एक बार वानिया जी आपके पास आना चाहूंगी, किन मायनों में खास है। अब सूतक काल माने नहीं, सीधा मतलब यह है कि मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, हमें वो तमाम नियम फॉलो किया बिल्कुल नहीं करने हैं जो नॉर्मली हम लोग ग्रहण के दौरान करते हैं।
3: थैंक यू सो मच नवजोत जी। ये जो ग्रहण है ये भारत में, जैसे हम सब ही बता रहे हैं आप लोगों को कि भारत में इसका सूतक काल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ग्रहण सूर्य जो होता है पूरे सौर मंडल में एक ही होता है, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ग्रहण जो है ये कर्क राशि में लग रहा है और ये अश्लेषा नक्षत्र में जो है लगने जा रहा है। अश्लेषा नक्षत्र जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, हमारी लाइफ में हिप्नोटिक चार्म का होता है। हिप्नोटिक चार्म होता है रहस्यमयी जो किसी की पर्सनालिटी होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में, क्योंकि कर्क राशि है, कहीं ना कहीं इमोशन से इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तो आप लोगों में एक रिलीज देखेंगे, लोगों में एक शिफ्ट देखेंगे, एक इमोशनल अप एंड डाउन थोड़ा सा आपको लोगों के बीच में जो है देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही एक वजह बनेगी चीजों में डिस्ट्रेस होने की। तो आप लोग जो है, आप अगर जाग रहे हैं उस टाइम पर, क्योंकि 9:04 पर जो है ये हमारा शुरू होगा और 9:04 पर और ये रात को 1:28 पर खत्म होगा, तो आप जो है सूर्य मंत्र कर सकते हैं, आप गीता का जाप कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप इस टाइम पर माँ गायत्री की आराधना जितना कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर सूतक जो है इसका लागू हो रहा है, जहां ग्रहण दिख रहा है और जहां ग्रहण नहीं भी दिख रहा है, ड्यू टू एनी रीजन आपकी कुंडली में अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है, राहु केतु के साथ उसकी युति है, और वैसे भी एक जाप करने में तो कुछ भी मुझे लगता है प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मतलब ही ये होता है कि अच्छी चीजों को अपने अंदर से ग्रहण करना और नेगेटिव चीजों को रिलीज करना। आप इस टाइम पर आज ये सोचिए कि क्या आप अपनी लाइफ में आज रिलीज कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में अब बिल्कुल भी आपके हाइएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, जो चीजें आपको तंग करती है। आज के दिन आप एक प्रण लीजिए, एक पेपर पर इस चीज को लिखिए कि आज आप अपनी लाइफ से क्या लेट गो करेंगे और क्या आज आप अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। तो 9:04 में जब 11:16 पर जब ये ग्रहण आपका पीक पर चला जाएगा, 11:16 पीएम जो आईएसटी टाइमिंग में बात कर रही हूं, और जो अलग अलग देश से हमें देख रहे हैं जीएनटी के माध्यम से, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। उस टाइम पर जो है जब ये पीक जाएगा तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन का पीक समय हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए, सूर्यदेव को आप विजुअलाइज कीजिए, उन्हें जो है आप नमन करके जो भी आप अपनी लाइफ से लेट गो करेंगे उस टाइम पर वो बहुत अच्छा है। माँ गायत्री को जो है याद कीजिए, और उस टाइम पर अगर आपको लगे आपका टेम्पर थोड़ा सा हाई हो रहा है, आपका आर्ग्यूमेंट एजिटेशन, गलती से भी आज अपने बॉसेस से आपको लड़ाई नहीं करनी है, पिता से जो है किसी भी बात का आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और कोशिश करें पिता की ब्लेसिंग्स जो है वो आप अपनी लाइफ में बनाए रखें, और कल जो है आप थोड़ा सा अपनी राशि के अनुसार या ग्रहण के अनुसार, कल जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो सुबह उठकर आप जो है दान भी कर सकते हैं। बट फिर से मैं यही बात कहूंगी कि आप घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव रहना है, सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, सूर्य सहस्त्र नाम जो है या फिर सूर्य अष्टकम पर जो है आप थोड़ा सा मेडिटेट करके या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, और कल सुबह उठकर आप सूर्य देव को जल जो है वो आप जरूर दें।
0: बिल्कुल पंडित श्रीपति आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस ग्रहण को देखते हैं?
4: जय जगन्नाथ, धन्यवाद सारे दर्शकों को कि ये जो सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य पराग होगा, इसमें पहली बात कि सूर्य जो कि सकल शक्ति के अधिकारी होते हैं, हम लोग का ये सारा विश्व सूर्य के किरण के आने के बाद ही हम लोग का जो लाइफ स्टार्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट को जाएंगे तो वो भी सारे सौर्य मंडल में सारे ग्रह जो 9 ग्रह है उन सबको ये मैनेज करते हैं, तो वहां पे जो कर्क राशि में ये संगठित होगा तो भारत में नहीं है क्योंकि रात को आता है, फिर भी सारे विश्व को भगवान सूर्यदेव का और ये सूर्यों का कंट्रोल करना, ये हम लोग का भूगोल भी बोलता है, हम लोग का एस्ट्रोनॉमी भी बोलता है, एस्ट्रोलॉजी भी बोलता है, तो वहां पे 4 ग्रहों का भी सम्मिलित होना उसी मोमेंट में, जैसे रवि रहेंगे, बुध रहेंगे, गुरु रहेंगे और चंद्रमा, ये 4 जो प्लैनेट है ये की कॉम्बिनेशन हम लोग का कुछ ना कुछ राशियों के ऊपर प्रभाव डालेगा, कुछ ना कुछ हम लोग का प्लानिटरी जब चेंजेस होता है एक महाजागतिक परिवर्तन है जिसका असर आएगा हम लोग का सारे विश्व के ये प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति के ऊपर जो आएगा उसमें देखिए कि ये अमावस्या के तिथि के ऊपर हुआ है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नियर बाय संक्रांति भी है 17 तारीख को और 28 तारीख को भी एक ग्रहण लग रहा है चंद्रमा का। तो इसी बीच में इतना नियर बाय इतना सारा प्लानिटरी चेंजेस होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का प्रकृति के ऊपर उसका तांडव रहेगा। जैसे ये जो कंट्रीज जो कि टोटल एक्लिप्सिस देखेंगे कंप्लीट आपका सूर्य ग्रहण होगा, जैसे ग्रीनलैंड, पुर्तगाल, नॉर्थ ईस्ट रशिया एंड रिलेटेड नॉर्थ कंट्रीज जो है नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड, ये सब में 100% कुछ ना कुछ असर आएगा प्रकृति को लेके। जैसे कुछ ना कुछ आपका सुनामी आना, कुछ अर्थक्वेक आना, ऐसा कुछ प्रकृति का जो होता है तांडव उसी होगा। और जो भी पार्शियली समझेंगे जैसे कि आपका यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, उससे कंट्रीज में भी असर आएगा। बट ये जो राशि को लेके हम बोलेंगे तो इसमें पर्टिकुलर जो कि नेगेटिवनेस भोगेंगे वो कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, मेष एंड आपका मिथुन, ये सब में क्या होगा। जैसे कि जो कॉम्बिनेशन हुआ है रवि के साथ आपका बुध एंड गुरु जो कि एक की कर्क राशि से हम लोग का द्वादश भाव का अधिपति एंड थर्ड हाउस दैट इज कम्युनिकेशन एंड आपका एक्सपेंसेस लिटिगेशन एंड रिलेटेड टू हम लोग का मोक्ष का हाउस होता है
0: जी।
4: जैसे कि ये जो राशि है मिथुन एंड कन्या इन दोनों के ऊपर असर क्या आएगा कि दोनों ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा उन लोग का ये पीरियड।
0: ठीक है,
4: इसमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट वन मंथ उन लोग को भुगतना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, आने वाले 40 दिन क्योंकि कहा जाता है, श्रीपति जी मैं लौटूंगी आपके पास, 40 दिन कहा जाता है कि आपको बहुत सावधान रहना है। एक एक करके तमाम राशियों का जिक्र भी करेंगे श्रीपति जी आगे, लेकिन उससे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम शास्त्रों की बात करें या सनातन की बात करें आचार्य संजीव अग्निहोत्री
2: जी, जी
0: क्या कुछ ग्रहण के बारे में बताया गया है।
5: देखिए ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता। ग्रहण माने किसी को ग्रहण करना, पकड़ लेना, जकड़ लेना, उसको निरस्त कर देना, उसकी प्रणालियों को एकदम ध्वस्त कर देना। कई बार ऐसा देखा गया है, महाभारत काल में 3 बार सूर्य ग्रहण पड़े थे और उसके प्रभाव देखने को मिले, जो अतिशय धर्म माने धर्मराज जी को साक्षात धर्म मूर्ति कहा गया और ऐसे धर्मराज पर भी अतिक्रमण ये हुआ कि अधर्मियों के द्वारा, और कई बार उनको पराजय का मुख देखना पड़ा, कई बार वो बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब कई बार प्रतिज्ञाओं का बड़ा महत्व था उस समय क्षत्रिय समाज में, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि सब लोगों ने इतना उनके ऊपर अतिक्रमण कर दिया तो बेचारे फंस गए। बहुत सारी सेना थी, बहुत सेना को पीछे करना था, गुरुदेव को पीछे करना था, नहीं हो पाया। अंत में भगवान जिसके साथ है, धर्म जिसके साथ है, सूर्य नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ है, विजय तो उसी की होगी क्योंकि सूर्य ही जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आपको प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है, राजकीय विभागों में आपको बड़े बड़े उच्च पद प्रदान करने वाला सूर्य है। इसलिए सूर्य को सदैव जो है नमस्कार करें, उनको अर्घ प्रदान करें, सूर्य को कमल दल चढ़ाएं, लाल वाला कमल चढ़ाएं और दिव्य सूर्य की आभा आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में शुभ किरणें आएंगी। अब ये ग्रहण में क्या होता, अशुभ किरणें होती हैं, तो अशुभ किरणों के कारण जीवन का व्यक्ति का जीवन ध्वस्त हो जाता है। 2032 तक ये समय बड़ा खराब है, बड़ा ही सोचने वाला समय, कितने लोग रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, इस तरह की भविष्यवाणियां हमारे धर्म पुराणों में हो चुकी हैं। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की लेकिन पूरी नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए। भगवान ने देखा कि भाई ये तो सब मामला, ये जो दुष्ट लोग आतंकवादी एक साथ एकत्रित हुए ये सब कहानी बिगाड़े दे रहे हैं, तो भगवान ने वहां पर अपनी भगवत्ता ऐश्वर्य का जो है प्रदर्शन किया। भगवान ने तुरंत सूर्य नारायण को आज्ञा दी और वहां पर सूर्य जो है तुरंत अस्त हो गए। और इसके बाद जब सबने कहा कि भाई अब तो आपको अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, अर्जुन आप तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो, तो अर्जुन बोले ठीक है अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की, हमारी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हुई। तो क्योंकि भगवान को लगा कि धर्म धर्म का अंत हो जाएगा अधर्मियों के कारण, तो भगवान ने अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रकट किया, सूर्य को प्रकट किया और ये सूर्य स्वस्थ सानंद हो गए, प्रकट हुए। भगवान ने कहा अर्जुन देखो ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, फिर क्या है। फिर तो अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और उसका राधे राधे कर दिया। तो धर्म की सदैव विजय होती है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी धर्म रूपी सूर्य को कभी नहीं छोड़े, धर्म रूपी अपने पिताश्री को कभी नहीं छोड़े। यदि आपने अपने पिता की अवहेलना की, अपने दादाजी की अवहेलना की, अपनी माँ की अवहेलना की, तो ये सूर्य चंद्रमा आपका साथ छोड़ देंगे हमेशा को। आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, घर, नौकरी, व्यापार, श्री, चंद्रमा श्री प्रदान करते हैं, तो इसलिए प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिर जगतपते अनुकंपय माम भक्तिया गृहाणार्घम दिवाकर। सूर्य भगवान को इस मंत्र से, पौराणिक मंत्र है, सभी लोग दे सकते हैं और अर्घ प्रदान करिए। रोली लाल टीका डालकर, लाल चंदन डाल के, चावल डाल के, और आपके जीवन में निश्चित सूर्य नारायण जो है आनंद करेंगे, सुख शांति समृद्धि आपको प्रदान करेंगे।
0: चलिए आचार्य गौरव आपके पास आती हूँ। चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, एक बार उसको समझाते हुए साथ ही साथ इसका दुनिया पर कितना असर होगा। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर इसका असर हो रहा है। अगर मैं जियोपॉलिटिकली देखूं तो कहां कहां किस किस क्षेत्र में इसका असर आप देखते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, जब भी दो या दो से अधिक ग्रहों का गोचर बनता है, जैसे कि अब यहाँ पर कर्क राशि के अंदर सूर्य का विराजमान होना, वहीं पे बुध का आना, वहीं पे बृहस्पति का होना, वहीं पे अब जो है चंद्रमा भी गोचर जो है वहीं पे कर रखा है चंद्रमा ने, क्योंकि अमावस्या का टाइम भी है। ये चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी भाव के लिए, मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं, इस पर काफी हमने चर्चा करी है, ग्रहों का युद्ध होना ये थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट है समझने का। यानी एक भाव में दो से अधिक ग्रह विराजमान हो तो उस भाव का कहीं ना कहीं नाश होता है, परेशानी आती है। अब जैसा अगर हमें समझना है, जैसा नवजोत जी ने पूछा कि पूरी दुनिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, कुंडली अवेलेबल होनी चाहिए, भारत की कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, तो इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये गोचर बनता है भारत की तीसरे भाव के अंदर, वृषभ लगन कुंडली बनती है, हालांकि कर्क राशि है। जब भारत का जब विभाजन हुआ पाकिस्तान से तो कुंडली बनी, कुंडली बनने पे कर्क राशि आई और वृषभ लगन जो है कुंडली बनी। तीसरे भाव के अंदर इस समय चार ग्रह विराजमान है और भारत की स्वयं की कुंडली के अंदर केतु इस समय विराजमान है चतुर्थ भाव के अंदर। यानी ये जो कंट्रीज हैं, यानी जो मिडल ईस्ट का एरिया है, अगर हम अपर साइड थोड़ा देखते हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ पे, जैसे कि पाकिस्तान की साइड हम कह सकते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई वाइब्रेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रहण है, इसका असर रहता है। हम इस टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा जाएं तो जैसे कि ईरान की तरफ, और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जो इसराइल का जो परेशानियां चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, तो मेरे हिसाब से ये जो ग्रहण है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो डालेगा। क्योंकि नवजोत जी, हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि सूर्य है सर्वोच्च नेता, यानी सबसे टॉप के लीडर, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे सर्वोच्च है, उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना जो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं खतरे का सिंबल बनता आ रहा है। और नवजोत जी, आप इस चीज को भी नोट करिएगा कि भारत की कुंडली में भी अभी दो दिन के बाद ही सूर्य जो है वो गोचर करने वाले हैं इस ग्रहण के बाद, भारत के चतुर्थ भाव के अंदर। और नवजोत जी, ये कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि राहु के ठीक 180 डिग्री आगे केतु के साथ में सूर्य का विराजमान होना, ये हमारे लिए भी इतना बेहतर नहीं है। यानी अगर हम विदेशों की बात करें, वहां पे तो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, जैसे भूकंप की समस्या, कोई परेशानियां, कोई दंगे, ऐसी दिक्कतें दिखती हैं। लेकिन भारत के सुख के अंदर भी नवजोत जी, मुझे कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं। इसी अगस्त का महीना चल रहा है, माफ कीजिएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर जो टाइमिंग्स हैं, ये दो तीन महीने का समय भारत के सुख के लिए भी इतना बेहतर नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और हमेशा से कहा जाता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो आप मंत्र चैंटिंग करिए, आप दान करिए। जैसे आचार्य जी ने भी बताया कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको ग्रहों की नॉलेज नहीं है, माता पिता, यानी आपके पिता जो है सूर्य, माता चंद्रमा, आप इन्हें ही, इनको ही आप, इनकी ही आप इनका आदर करें, इन्हें मान सम्मान दें, आपके चंद्रमा और जो सूर्य हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगे। और मंत्र चैंटिंग करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मंत्र चैंटिंग करें और इससे बाहर निकलने का कहीं ना कहीं आप प्रयास आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, चलिए हम एक एक करके जल्दी से अब राशियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाना जी, जिम्मेदारी आपकी है, बताना आप ही को है, सूर्य ग्रहण है तो बताइए देश और दुनिया में, क्योंकि बहुत से लोग, सनातनी लोग बसते हैं यूरोप में, बार बार हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि वहां पर ग्रहण लग रहा है, तो तमाम नियमों को वहां पर भी माना जाएगा। लेकिन अब आप सभी जिस बात को लेकर हम जानते हैं कि सूर्य एक है, असर पूरी धरती पर, पूरी दुनिया पर होता है। सबसे पहले पहली तीन राशियों की, मेष, वृषभ और मिथुन की बात करें तो क्या सावधानी इनको बरतनी है?
3: जी देखिए नवजोत जी, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है इनकी कुंडली के जो है चतुर्थ भाव पर लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये सुख का भाव होता है और हमारे मन का भाव होता है, तो मन में जो है थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकता है, आपको एक इमोशनल टर्मोइल, क्योंकि आज अमावस्या भी है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि इनको थोड़ा सा इमोशनल फील होगा, तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, आप जो है गीता इस टाइम पर जो है पढ़ सकते हैं, या फिर अपने माला के साथ जो है आप ओम क्रीम सूर्याय नमः का जो है इस टाइम पर जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर जो ये ग्रहण है ये इनके पराक्रम भाव पे लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको आज, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में ये है तो कम्युनिकेशन का ही वो नक्षत्र है, तो आप अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें और अपनी वाणी से आप अपने छोटे भाई बहनों से जो है आपको बिल्कुल भी नहीं बिगाड़नी है, आपको अपने दोस्तों के साथ जो है नहीं बिगाड़नी है। हो सकता है अगर आप आज के लिए डिले कर सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल जो है अपना आज के दिन अगर आप ना करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि से मैं कहूंगी कि आपने अगर आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है, तो आप माँ गायत्री की आराधना इस टाइम पर अगर आप करते हैं और आप सूर्य सहस्त्र नाम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और गलती से भी जो है आपने फ्रेंड्स, अपना जो सिबलिंग्स हैं, आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, उनसे जो है आपने नहीं बिगाड़ना, और आपको हो सकता है कि एनर्जी और स्टेमिना में थोड़ा सा जो है कर्टेल आपको लगे कि बहुत डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, तो उस चीज से आप घबराए ना, क्योंकि टाइम ऑफ रिलीज है और मेनली जो है ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में सबसे ज्यादा रहेगा ये ग्रहण का जो असर है, तो आप लोग जो है बस अपना सूर्यदेव की आराधना करें, पिता से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए मैं बोलूंगी कि ये ग्रहण जो है उनके द्वितीय भाव पर लगेगा। अब लग भी अश्लेषा में रहा है और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव जो होता है हमारी वाणी का होता है, सो अगेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस और कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आपकी वाणी से जो है किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे, और आपके कुटुंब का भी है तो अपने कुटुंब से जो है, यानी कि आपकी जो फैमिली है उनसे जो है आपको नहीं बिल्कुल भी बिगाड़ना है। और यहाँ पर जो है आपका धन का भी ये भाव है, तो आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन इस टाइम पर लेते हैं उसको आप थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के लें, जहां पर आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा सोच समझ के लेंगे तो ये आपको लाभ देगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको सूर्यदेव की आराधना करनी है, ओम क्रिणी सूर्याय नमः का जाप करना है। अगर इस टाइम पर आपकी कंट्री में डे टाइम है तो उस टाइम पर तो आप और ज्यादा जो है सूर्यदेव का जितना आप जाप करेंगे और सूर्य सहस्त्र नाम, सूर्य अष्टकम जो है, या फिर आप आदित्य हृदय सूत्रम जो है वो भी सुन सकते हैं। और इस टाइम पर सभी राशि वालों, आपको जो भी अपने लाइफ से रिलीज करना है वो आप जरूर करें, और अपने अगर आपको कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप जो है आप जरूर करें।
0: बिल्कुल पंडित जी,
3: राशि की बात,
0: तीन राशियां अगली तीन राशियां पंडित श्रीपति आपसे जानना चाहूंगी, कर्क सिंह और कन्या, इनको कितनी सावधानी बरतनी, इनके लिए समय कैसे अगर हम ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो?
4: देखा जाए तो कर्क और सिंह ये दोनों को बहुत सारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें पहले रिजल्ट क्या होगा उससे पहले प्रतिकार ले लीजिए। कि पहली बात की सूर्यदेव इंडिकेट टू फादर मीन्स पिता, तो पहले की जितना पितृस्थानीय है, जितना गुरु गुरुजन है, सबको आपका सम्मान रहना चाहिए, सबके लिए आपका दायित्व है कि सबके लिए आप सम्मान देना चाहिए। पहली बात की सूर्यदेव के लिए आपका ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है प्लैनेट्स में, इसमें फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एंड आपका पर्सनल लाइफ एंड आपका हेल्थ, चारों में कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आएगा। इसलिए इस सबको तीनों राशि को क्या प्रतिकार लेना चाहिए कि पहली बात कि आप जो सोच रहे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि डिसीजन इमीडिएट मत लीजिएगा। कहीं ना कहीं जहां पे आपका नहीं पूछा जाता है वहां पे बात मत करो, नहीं तो आपका लिटिगेशन पे आप जाएंगे, आपका जो वाणी है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा सामने के लिए, तो मतांतर मनांतर हो जाएगा, तो अननेसेसरी लॉसेस होगा। यदि आप बिजनेसमैन है तो आप ज्यादा वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि कस्टमर डीलिंग के टाइम आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो लॉसेस होगा। उसके बाद आपका ये जो सिंह राशि है इनके लिए तो ज्यादा टाइमिंग नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि आपका राहु का, केतु एंड आपका जैसे कि शनि, ये तीनों का जो ट्रांजिट में चेंजेस हुआ है, इसके साथ ये जो ग्रहण का आपका जो असर आ रहा है इसमें आपको 100% की फाइनेंशियल लॉसेस, आपको लिटिगेशन, कहीं ना कहीं आपका मामला कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा हर चीज में। इसलिए आप लोग का दायित्व है कि जितना सिंह राशि है घर में आपका गरुड़ पुराण का एक आयोजन करवा दीजिए, और तीनों राशि के लिए भी दायित्व है कि घर घर में आप जैसे कि हरिवंश पुराण का वो पाठ करवाइए प्रिस्ट के थ्रू, और आपका हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पूजा भी करवा सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। साथ में ये तीनों के लिए सबका दायित्व है कि आज से 54 दिन तक रोज आप मॉर्निंग में सूर्योदय के समय आप जल में थोड़ा गुड़, लाल चंदन, चावल और आपका कुछ न कुछ लाल फूल डाल के वो भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, और सूर्य गायत्री भी आप 7 बार पढ़ना चाहिए। ओम आदित्याय आपका आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये सब करवाइए, तीनों राशि के लिए अच्छा रहेगा, प्रकंठल होगा। और साथ में जहाँ पे भी वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम, वहां पे जितना आपका आपका गुरु गुरुजन है उन लोग को थोड़ा कुछ दान दे दीजिए।
0: बिल्कुल, गुरु को प्रणाम करना, दान करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और यहीं से सूर्य ग्रहण पर महा उपाय आप क्या कर सकते हैं, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहिए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: और महाउपाय इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ग्रहण भले ही भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन जिन जिन कंट्रीज में ग्रहण लग रहा है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज जिनका जिक्र हमने किया, वहां पर सनातन को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं। इसलिए ये हमारा खास शो जो है वो देश और दुनिया में भी देखा जाता है, और इसीलिए वहां रह रहे लोगों को क्या करना है, क्या उपाय करना है, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपके पास आना चाहूंगी संजीव अग्निहोत्री जी, अगर हम उपायों की बात करें, देखिए एक एक करके प्रिकॉशंस क्या लेनी है वो तो हम अपने गेस्ट से जान ही रहे हैं, लेकिन उपायों की बात करें क्योंकि ग्रहण में दान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों चीजें बताइएगा, वो लोग जो जहां पर ग्रहण का असर है वो क्या दान करें, और भारत में जो रहते हैं वो क्या दान कर सकते हैं।
1: देखिए विशेष चार राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, तो कर्क, सिंह और मकर और कुंभ, इन राशियों पर विशेष रहेगा। तो जो इन राशियों के जातक हैं उनको अपने वजन के बराबर गेहूं, गोधूम जिसको संस्कृत में कहते हैं, गोधूम का दान करें और अपने बराबर का दान करें और गौशाला में दे दें, बहुत अच्छा है, या गरीबों में बंटवा दें, क्योंकि इस तरह का जो अनुदान है ये इस तरह का सहायता दानों का दे दें, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके आप इसको 1.25 किलो या 1.25 किलो आप इसको दान करें। संकल्प बोल कर दें, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपके ग्रह की स्थिति क्या है, ये सब बोल करके किसी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण से उसका संकल्प कराएं, तब इसको दान करें। और सूर्य ग्रहण के तक्षण बाद में आपको गेहूं का दान, अन्न का दान, जो भी लोग मांगने वाले आते हैं सुबह सुबह सभी जगह आते हैं, उनको जरूर देना चाहिए। आर्थिक दान, धन का दान, रुपए पैसे जो भी आपकी श्रद्धा, उसको अपने ऊपर से उतार करके आप दे दें तो आपके जीवन की आपत्ति विपत्ति आपसे छुटकारा पाएंगी और आपकी राशियां स्वस्थ, आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। और सूर्य को प्रातःकाल उठ करके स्नान करके अर्घ प्रदान करें, उनके लिए प्रणाम करें, लाल पुष्प उनके लिए बरसाएं और उनके मंत्रों का ओम ह्रीम घृणी सूर्याय नमः या फिर सूर्य नारायण की गायत्री मंत्र है आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें तो सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। और पितृ गायत्री का जाप भी कर सकते हैं क्योंकि आज पितृ अमावस्या भी है, तो पितृ गायत्री में
0: जी
1: ओम पितृदेवाय नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ा मंत्र कई बार आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो
0: इसलिए सरल साहब बिल्कुल ये इजी भी है, समय कम हो तो आप उसका जाप भी
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं।
1: पितृदेवाय नमः बड़ा मंत्र तो हम बोल देंगे, बहुत बड़ा वैदिक मंत्र, पितृव्याः सुधायव्याः सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधायव्याः सुधा नमः अक्षन पितरो मी मदंत पितरो तीत्रबंत पितरः पितरः सुन्धद्वं मा। अब ये मंत्र तो हम ही लोग को बड़ा मुश्किल होता है, इतना बड़ा है, इसलिए मैंने कहा पितृदेवाय नमः।
0: कोशिश हमारी यही है कि दर्शकों को एक सरल सा मंत्र बताया जाए जो कहीं भी बैठ के कहीं भी।
1: और एक और बोल देता हूँ, सूक्ष्म शरीरा, क्योंकि पितृगण जो आते हैं सूक्ष्म शरीर लेकर आते हैं, सूक्ष्म शरीराय विद्महे दिव्य देहाय देहाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी।
0: हम जब देश और दुनिया की, क्योंकि ग्रहण के दौरान, अभी ग्रहण आचार्य गौरव, इसके बाद चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, जब देश और दुनिया का जिक्र करते हैं कि इस ग्रहण का असर कितना होगा, अगर देखा जाए तो 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर और फिर उसके बाद 18 सितंबर तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मंगल का गोचर, तो इस ग्रह दशा में क्या असर देखते हैं।
2: देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैसा अभी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी कि कर्क राशि एक सौम्य राशि है, एक सौम्य राशि यानी चंद्रमा की राशि के अंदर ग्रहण का लगना, कोई भी ऐसी राशि हो जिसमें ग्रहण लगता है, नवजोत जी कहने का तो समय होता है कि केवल 7 दिन, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम 3 महीने का समय, मिनिमम 3 से 4 महीने।
0: आप लोग 40 दिन बताते हैं।
2: मैं इसका जो प्रभाव है नवजोत जी, कहीं ना कहीं देखिए तरंगे होती हैं, इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ग्रहों का जो तरंगे होती है हमेशा से हम बात करते आ रहे हैं वो कैलकुलेट नहीं होती हैं, इसका प्रभाव आने वाले काफी लंबे समय तक चलता है। जैसे कर्क राशि के अंदर ये गोचर हुआ वो पहले ही चंद्रमा की सौम्य राशि है, अब वहां पर जैसे ही अब सूर्य जो है वो ग्रहण में है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे अगली राशि है सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, और नवजोत जी वहां से पहले से ही वहां पे कौन से ग्रह विराजमान है, केतु और राहु, यानी राहु ठीक 180 डिग्री के आगे से सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, यानी सूर्य को सबसे ज्यादा ग्रहण अगर कोई लगाता है तो वो राहु ही लगाता है, यानी सूर्य के पूरे प्रभाव को वो ढक देता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां हैं मेरे हिसाब से हम जिस चीज को समझ रहे हैं कि 7 दिनों में वो ठीक हो सकती है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से समय खिंचता हुआ नजर आ रहा है। और फिर आने वाले समय में सितंबर में मंगल का भी कर्क का गोचर, मंगल कर्क राशि के अंदर नीच के होते हैं, इस चीज को भी समझना चाहिए। फिर बृहस्पति, इसी साल के अंदर बृहस्पति भी, क्योंकि बृहस्पति नवजो जी अतिचारी हैं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वक्र शनि पे है, इसीलिए ये समय संतुलित है, ये समय बचा हुआ है। जैसे ही जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इसी साल के आखिर में सिंह राशि में जाएंगे, फिर वक्र अवस्था से वापस कर्क राशि में आएंगे, लेकिन वो जो 2-3 महीने का समय होगा वो भी कहीं ना कहीं इतना बेहतर नहीं नजर आ रहा नवजोत जी, जैसे ही शनि वक्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो बृहस्पति का गोचर होना, कर्क राशि के अंदर मंगल का गोचर होना, सूर्य का केतु के साथ ग्रहण होना, अभी भी ग्रहण है, और ये कहीं ना कहीं परिस्थितियां मेरे हिसाब से समय जो है वो आने वाला टाइम भी नवजोत जी इतना अनुकूल मुझे नजर नहीं आ रहा।
0: बहुत डरा रहे हैं आप।
2: मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा
0: हम गुड न्यूज़ टुडे पर बैठे हैं, हम डराते नहीं है, सावधान करते हैं, लेकिन आपने डरा दिया है।
2: मेरी कोशिश है कि देखिए मैं जागरूकता रखूं, पॉजिटिविटी रखूं, लेकिन बस यही है कि जैसे मेरे साथीगण आपको बता रहे हैं, मंत्रों का चैंटिंग करना ये आप नियम बना लीजिए, आप मंत्र का चैंटिंग करें, और ये जितना हो सके अगर आप दान करते हो, अनाज का आप दान करते हो, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हो, बाहर आप वृद्ध आश्रम में जाके उनकी मेडिसिन, उनकी दवाइयां, उनके वस्त्र, जो अंधे या बच्चों के जो बुक्स होती हैं, अगर आप इन सबको दान करते हो अपनी पॉकेट के अनुसार
0: जी।
2: मैं कहता हूं इससे बड़ा दान तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए दान करें, मंत्रों की चैंटिंग करें, अंधविश्वास से बाहर निकले। लेकिन हाँ, आचार्य गौरव जो आपसे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पहले की प्रेडिक्शन आप सब जान सकते हैं।
0: हाँ।
2: ये साल भी थोड़ा सा इन्हों डगमगाता है, तो साल के अंत तक जब तक बृहस्पति वापस कर्क में नहीं आएंगे, सिंह से कर्क के अंदर वापस नहीं आएंगे, थोड़ा सा समय
0: तो थोड़ा सा अलर्ट रह के
2: अलर्ट रहने का, भीड़ भाड़ के इलाकों से बचने का।
0: बिल्कुल। तुला वृश्चिक धनु बाना जी आपके पास आते हुए बताइए, इन तीनों के लिए समय कैसा है इस ग्रहण के दौरान?
3: जी, तुला राशि के लिए मैं बोलूंगी कि ये ग्रहण एक न्यूट्रल है, हो सकता है आपको अपने करियर में कुछ अच्छे जो है रिजल्ट्स आते दिखे, हो सकता है आपको कुछ प्रमोशंस जो है इस टाइम पर वो भी आपको मिलती हुई नजर आए। सिर्फ एक खास बात आपको जो आपको ध्यान रखना है तुला राशि वालों, आपको गलती से भी अपने बॉसेस के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो बॉसेस काफी कारक होते हैं, तो किसी भी बात पर आप उनसे नाराज ना होइए, और हो सकता है कि ये ग्रहण आपके लिए आपके करियर में कुछ बहुत अच्छी न्यूज जो है वो भी लेके आए। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको सूर्य देव की आराधना करनी है आपको, क्योंकि पितृ जो है कहीं ना कहीं हमारा एंसेस्ट्रल लिंकेज भी इसके साथ बन रहा है, तो आप ओम पितृभ्यो नमः कर सकते हैं, और आज अमावस्या भी है, और इस आप जो है ओम त्रिणी सूर्याय नमः का जाप जो है वो भी आप कर सकते हैं, और ग्रहण के पश्चात आप जो है कुछ भी गुड़ का, तांबे का जो है, अनाज का दान जो है वो भी आप लोग कर सकते हो। अगली राशि पर हम चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। ये ग्रहण जो है आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव पर इम्पैक्ट करेगा, तो पिता से जो है आपको आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाउस आपके फादर से भी कनेक्ट आपको आपकी लाइफ में करता है, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में ऐसे भी बने वेयर यू फील और यू ऑब्जर्व दैट लक इज नॉट फेवरिंग यू, तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। माँ गायत्री की आप जितनी आराधना इस टाइम पर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपको जो है सूर्य देव को जल जो है जरूर देना है, हो सकता है ये ग्रहण आपके लिए कुछ हायर स्टडीज या हायर लर्निंग की जो है अपॉर्चुनिटीज लेके आए, और इस ग्रहण के बाद अगर आप कुछ धार्मिक यात्रा कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली राशि पर अगर हम चलते हैं तो धनु राशि पर। धनु राशि की अभी शनि की ढैया भी चल रही है और ये जो ग्रहण है धनु राशि के अष्टम भाव पर लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्पेशली आप जो है अगर आपको लगता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म आपको कुछ हेल्थ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको जो है आप प्लीज इग्नोर ना कीजिए। अपने इन लॉज के साथ जो है फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनके साथ किसी भी तरह का आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगले दिन जो है जब नेक्स्ट डे आप ग्रहण के बाद जो है आप किसी भी जो है वृद्ध आश्रम में जा सकते हैं, वहां पर जो आपको कोई मेल फादरली फिगर्स दिखते हैं आप उनके लिए जो है कुछ दान जो है वो आप जरूर लेके जाएं, स्पेशली जो बहुत अच्छे पोजीशंस पे थे और जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, तो उस तरह के अगर आपको कुछ फिगर्स दिखते हैं उससे आपका लाइफ में अगर सूर्य खराब है कुंडली में तो वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, या आपके सूर्य पर अगर मृत्युमशा है रेमेडीज के तौर पर आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट डे सूर्यदेव को आप जल जरूर देंगे। जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं इनसे, धनु राशि वालों में स्पेशली आपको बोल रही हूँ, इनसे आपको किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना, चाहे वो बॉसेस हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो मदर इन लॉ हो, ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें। और आपको एक और काम भी करना है, जब नेक्स्ट डे आप जल देंगे तो आपको जो जल में थोड़ी सी मिट्टी होती है उसको आप अपने माथे के तिलक पर लगाएं, और आपको जो भी लगता है आपकी लाइफ में इशू है उसको आप विजुअलाइज करें। आई एम श्योर यू विल गेट योर सॉल्यूशंस।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पंडित श्रीपति जी, आखिरी तीन राशियां जल्दी से बता दीजिए कि इनका समय ग्रहण के दौरान कैसा है, उपाय इनको क्या करना है।
4: मकर कुंवर मीन तीनों राशि के लिए पहले टिप्स कि हम लोग कारण को सुधारेंगे तो भाग्य सुधर जाएगा। यदि हम लोग का नेगेटिव टर्म रहेगा, जो आपका ये गौरव जी बोल रहे थे कि 90 डेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी, कि एवरी 90 डिग्री में हम लोग का एक चेंजेस होता है, क्योंकि 360 डिवाइड बाई

0: जी चले, जब तक पंडित श्रीपति चर्चा करेंगे उससे गौरव आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा सरल उपाय जो कोई भी कर सकता है कहीं पर भी बैठा हो, चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश में, एक सरल सा उपाय।
1: जी, सबसे अच्छा अगर तरीका है, देखिए मैं जैसे अगर आपको गाइड करूं, जैसे मंत्रों की ही बात करें, गायत्री मंत्र का जाप करना ये सबसे विशेष आपके लिए रहेगा। उसके साथ साथ आप अगर जैसे कि आज के टाइम के अंदर जो शेड्यूल लोगों का नहीं बन पाता है, आज के टाइम में लोग नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, कोई मॉर्निंग का चल रहा है, शेड्यूल सेट नहीं है, मैं कहता हूँ जब भी समय मिले आप शिव मंदिर जाएं, वहाँ पे जल लोटे में जल लें आप और वहीं पे चढ़ा के वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान लगाना, ध्यान लगाना सबसे बड़ी चीज़ है। ओम नमः शिवाय का जाप करें और वहाँ पे जल आप चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि ये ग्रहण की समाप्ति 13 तारीख की जैसे सुबह रहेगा, तो आप कोशिश करिए कि 13 तारीख या 14 तारीख या फिर नेक्स्ट मंडे अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है तो आप रुद्र अभिषेक भी आप करवा सकते हैं। तो ये बहुत विशेष और बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है।
0: आचार्य श्रीपति जी का कुछ ऑडियो इश्यू है, वाणी जी चाहूंगी कि आखिरी 3 राशियां आप बता दीजिए, मकर कुंभ और मीन।
2: मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर से बना के रखनी है, उनसे जो है किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इसका इम्पैक्ट जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपके बिजनेस पार्टनर्स पर भी पड़ सकता है, तो आप अपना बिजनेस पार्टनर का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वो बहुत ध्यान से करें और अपने बिजनेस पार्टनर से किसी भी तरह का आपको आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मकर राशि है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस ग्रहण का काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर जो है आ सकता है, सो बी वेरी कॉशियस एंड कॉन्शियस। अब यहाँ पर जो है उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आप अपना गुरु मंत्र जो है उसका जाप कर सकते हैं, आप गीता के अध्याय कर सकते हैं, आप भगवान शिव की आराधना जो है इस टाइम पर जो है आप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप सूर्य गायत्री मंत्र जो है वो भी इस टाइम पर सुन सकते हैं, और नेक्स्ट डे जो है आप सूर्य देव के दान, जैसे गुड़ हो गया, तांबा हो गया, किसी गाय को जो है आप थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए, कुछ अनाज जो है वो खिला दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण आपके 6th हाउस को इंपैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जो है बहुत ज्यादा रखना है, अपने ऑरा को जो है आप लॉक करके रखिए, शील्ड करके रखिए, अपने एनिमीज से अपने आप को बचा के रखिए। इसके लिए आप जो है दुर्गा कवच जो है वो भी आप इस टाइम पर जो है सुन सकते हैं, या हनुमान कवच जो है वो भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव की आराधना जो है आपको बिल्कुल करनी है। ननिहाल परिवार से आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो इस टाइम पर आपको नहीं करना है, चाहे वो आपके मामा है, नाना है या जो भी है। इसके अलावा जिन लोगों से भी आपने लोन, आप इस टाइम पर कोई लोन ना लें, कुछ टाइम अगर आप 45 डेज तक मेजर इम्पैक्ट रहता है, तो आप थोड़ा सा अगर आप लोन जो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 7:30 का भी अभी आपका अंतिम चरण चल रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। और इसमें जो है बस आप इतना ही कीजिए, कवच जो है कर लीजिए, अगले दिन सूर्यदेव का दान कर दीजिए। मीन राशि पर चलते हैं, ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के पंचम भाव में लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप जो है अपने पार्टनर से किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। आपके स्टडीज में जो है कुछ हिंड्रेंस आ सकता है इस टाइम पर, और जो भी आपके जो एजुकेशन है, जो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मा है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है आपको आपकी लाइफ में जो है मिल सकता है। पर इस टाइम पर सीइंग द पोजीशन ऑफ सैटर्न एज वेल, की जिस हिसाब से जो अभी गोचर में स्थिति चल रही है, तो आप जो है सूर्यदेव की आराधना करें, गायत्री मंत्र जितना जप सकते हैं उतना करें, और अपने गुरु की आराधना, और क्योंकि आपके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं तो अपना गुरु मंत्र जरूर करें।
0: बिल्कुल संजीव जी, जल्दी से एक बार चलते चलते इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्या मंदिरों में पूजा बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर होगी?
3: बिल्कुल सही तरीके से होगी, क्योंकि सूतक काल,
0: भारत की बात,
3: ग्रहण, हाँ देखिए उस समय तो हाँ, अगर अगर जहाँ सूतक लगा है वहां तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए, मंदिरों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। और अगर बाहर बैठकर जहां भी पूजा करें, जलाशय बना लें, अब ज्यादा बड़ी सी छोटी सी बड़ी परात जो भी हो आपके घर, बर्तन उसमें रखें और उसके उसमें गंगा जल भी पधराएं, उसके बाद जल उसमें पधराएं, उसके बाद उसके वहां पर बैठकर किसी भी अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, यूरोपीय देश के किसी भी अध्यक्ष महोदया की मृत्यु हो सकती है 20 दिन के बाद में, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं।
0: वान्या जी, जल्दी से, बिल्कुल हो रही, बहुत बड़ी भयावह। वान्या जी, एक उपाय जल्दी से, छोटा सा
2: जी, इस टाइम पर जो है जितना हो सकता है अपने गुरुओं का, अपने पिता का जो है जितना ज्यादा आप नमन कर सकते हैं, और गायत्री

0: मंत्र जो है आप कर सकते हैं वो आप करिए। बस आपके चैनल के माध्यम से नवजोत जी मैं 5 सेकंड्स लूंगी, आप बस यहाँ पर ये देखेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ अमेरिका साइड जो है वर्ल्ड में आपको कुछ उथल पुथल दिख सकती है, कुछ रियॉर्ट्स दिख सकते हैं, कुछ ऐसा दिख सकता है जहां जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट जो है वो चली जाएगी। सत्ता में आपको नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट्स और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो है आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल में कोई नेता जो है आपको वो जाता हुआ दिख सकता है। और इस टाइम पर जो है टेम्परेचर और ज्यादा जो है आपका ड्रॉप हो जाएगा और एआई के स्कैम्स अभी और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
1: बिल्कुल पंडित श्रीपति, एक छोटा सा उपाय चलते चलते, आई थिंक वो है नहीं है गौरव, चलते चलते 10 सेकंड का एक छोटा सा उपाय।
2: डॉलर भी गिर सकता है।
3: सबसे अच्छा, अच्छी तरीका यही है,
1: इसी पर बता दीजिए, इस पर नजर सबकी रहेगी, डॉलर की स्थिति कैसी रहेगी?
4: यूरोपीय डॉलर भी गिर सकता है, अमेरिका में उथल पुथल आ सकती है,
1: यूरोपीय यूरो है
4: जी,
1: ठीक है
3: जी, ये बात सही है, ऐसी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ग्रहण है तो बनता है। एक मंत्र है सूर्य का, बहुत सरल मंत्र है, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप चैंट करिए जब भी समय मिलता है। और दूसरा तरीका नवजोत सबसे अच्छा है, वो है आपके कुल के देवी देवता, उनका जो भी मंत्र है, उनका जो भी ध्यान है, मैं हमेशा से कहता हूँ कुल की धरोहर, यानी उनको आप प्रणाम करें, ऑटोमेटिक ही चीजें बेटर होती जाएंगी।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। ग्रहण का असर कितना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब जाना हमारे खास मेहमानों से। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देख रहे हैं।

0: आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है प्रभाव, क्या करें सूर्य ग्रहण के बाद उपाय ताकि विपदा टल जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं तमाम उन खबरों पर जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं और वायरल भी हैं।
2: पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना और मस्ती करना भी बेहद जरूरी है। स्कूल के मैदान में खेल कूद बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ उनके मानसिक विकास में भी मदद करता है। इन तस्वीरों में बच्चे गाने की धुन पर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बड़े ही मजेदार अंदाज में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस गतिविधि के जरिए बच्चों का बैलेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पढ़ाई के बीच मस्ती भरे ये पल बच्चों को तरोताजा कर रहे हैं। ऊंचाइयां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। इन बच्चियों का अभ्यास भी इसी जज्बे की मिसाल है। मुश्किल लगने वाली गतिविधि को ये बेटियां पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पूरा करती नजर आ रही हैं। उनका संतुलन, एकाग्रता और लगातार प्रयास देखने वालों को भी प्रभावित कर रहा है। यही छोटी छोटी कोशिशें बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। इन बेटियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। शब्दों से खेलना हो तो इन बच्चों से सीखना चाहिए। क्लास में कराई जा रही यह मजेदार गतिविधि बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ाने का शानदार तरीका है। कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द तैयार किया जाता है, लेकिन बच्चे उन्हीं अक्षरों से नए नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बच्चे खेल खेल में सीख भी रहे हैं और अपनी सोच को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी और उत्साह देखकर आसपास मौजूद लोग भी उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। कहते हैं अकेले दबाव सहना मुश्किल होता है, लेकिन साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यही सीख दी जा रही है। टीचर एक एक ग्लास पर दबाव डालती हैं तो ग्लास आसानी से दब जाते हैं, लेकिन जब कई ग्लासों को एक साथ रखकर उनके ऊपर प्लेट रखी जाती है तो पूरा सेटअप संतुलित बना रहता है। ये छोटा सा प्रयोग बच्चों को बताता है कि एकता में ताकत होती है और मिलजुल कर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ मजेदार गतिविधियां भी बच्चों के सीखने का हिस्सा बन रही हैं। अब इस गेम को ही देख लीजिए, जिसमें बच्चों को बिना हाथ लगाए पेन को बोतल के अंदर डालना है। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं है। बच्चे पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे
1: खबरों को परख कर
0: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।

0: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें, असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे,
5: और छाया को देखने के लिए लोगों के बीच कितना क्रेज है और तैयारियां कैसे की गई हैं।
6: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, इसकी बात तो होगी सूर्य ग्रहण की, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें अगस्त के महीने में देश भर में मॉनसून के तेवर कैसे हैं, परेशानियों को कम करने की उम्मीद।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: न्यूज टुडे, अच्छी खबर
5: दिखाई नहीं देगा लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को नासा की नजर से आज हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ दिखाएंगे उत्तरी रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन जैसे कई और देशों में

0: सूरज पर चंद्रमा की छाया को देखने के लिए लोगों के बीच कितना क्रेज है और तैयारियां कैसे की गई हैं।
1: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, इसकी बात तो होगी सूर्य ग्रहण की, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें अगस्त के महीने में देश भर में मॉनसून के तेवर कैसे हैं, परेशानियों को कम करने की उम्मीद जगा रहा है, इसकी भी पूरी कहानी आपको बताएंगे। और भी काफी ज्यादा गुड न्यूज है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें,
2: तफसील से जानकारी देंगे।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका शर्मा। हीरा उगलने वाली पन्ना की धरती ने कैसे बदली सात मजदूरों की जिंदगी, कैसे खेत की खदान से मिला ये बेशकीमती हीरा, इन लेबर्स की आर्थिक परेशानियों को कम करने की उम्मीद जगा रहा है, इसकी भी पूरी कहानी आपको बताएंगे। और भी काफी ज्यादा गुड न्यूज है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जश्न आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा। जश्न आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड की। भारत और मलेशिया के बीच हो रहा संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति, सुबांग एयरबेस पर चल रही एक्सरसाइज, सैन्य सहयोग बढ़ाने का मकसद। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपको पहले ये भी बता दें कि भाई भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तरी रूस से होगी और सूरज पर चंद्रमा की छाया आगे बढ़ते हुए ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन से होकर पुर्तगाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से तक पहुंचेगी। स्पेन में ओवीडो से लेकर मलोर्का द्वीप तक लोग इस अद्भुत नजारे के गवाह बनेंगे। स्पेन में ग्रहण सूर्यास्त से ठीक पहले दिखाई देगा। बर्गोस शहर में करीब 1:48 तक दिन में ही रात जैसा नजारा दिखाई देगा। रूस और ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में भी पूर्ण ग्रहण की अवधि 2.5 से कम रहेगी।
4: हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ देर का होगा, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण करीब 1:45 तक देखा जा सकेगा। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों के अलावा कनाडा, अमेरिका के उत्तरी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में लोग आंशिक ग्रहण देख सकेंगे। भारत में सूर्य पर ग्रहण की ये छाया नहीं दिखाई दे रही, तो सूर्य ग्रहण पर केवल लोगों की ही नहीं साइंटिस्ट की भी नजरें टिकी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस मौके को एक बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। नासा अपने हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च जेट WB-57 और वैज्ञानिक गुब्बारों की मदद से चंद्रमा की छाया का पीछा करेगा।

0: कहा तो ये जा रहा है कि जब कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण की छाया से गुजरेगा तो यूरोप के कुछ हिस्सों में दिन में रात का मंजर नजर आएगा। अंधेरा इतना घना होगा कि ग्रहण दुनिया को
1: की ये छाया नहीं दिखाई दे रही, तो सूर्य ग्रहण पर केवल लोगों की ही नहीं साइंटिस्ट की भी नजरें टिकी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस मौके को एक बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। नासा अपने हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च जेट WB-57 और वैज्ञानिक गुब्बारों की मदद से चंद्रमा की छाया का पीछा करेगा।

0: कहा तो ये जा रहा है कि जब कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण की छाया से गुजरेगा तो यूरोप के कुछ हिस्सों में दिन में रात का मंजर नजर आएगा। अंधेरा इतना घना होगा कि ग्रहण दुनिया को दिन में तारे तक दिखा देगा। समझ लीजिए कि आज का सूर्य ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाला एक खूबसूरत नजारा भर नहीं होगा।
1: The timing correctly so that we can actually get as much totality, so they can grab as much data they can from that event.
0: दरअसल जमीन पर खड़े होकर ग्रहण देखने में सबसे बड़ी परेशानी बादल बन सकते हैं। ऐसे में नासा का विमान बादलों से ऊपर उड़ते हुए ग्रहण का पीछा करेगा। विमान ग्रहण से काफी पहले उड़ान भरेगा ताकि उसमें लगे कैमरों और वैज्ञानिक उपकरणों को सही तरीके से तैयार और कैलिब्रेट किया जा सके। इसके बाद विमान पश्चिमी आइसलैंड में ग्रहण के साथ उसका पीछा करेगा और अपने अस्थायी बेस के फ्लाविक पर वापस लौट आएगा। भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत आज रात करीब 9:04 पर होगी और ये सिलसिला रात के बाद अगले दिन करीब 1:27 तक चलेगा, यानी कुल मिलाकर करीब 4:24 तक ये खगोलीय घटना अलग अलग चरणों में नजर आएगी। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण की पट्टी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस और स्पेन से होकर गुजरेगी, जबकि यूरोप और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। भारत के लोग भले ही इस सूर्य ग्रहण के दीदार न कर पाए, लेकिन यूरोप में इस सूर्य ग्रहण को लेकर अलग तरह का क्रेज नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट स्पेन में है, जहां लोगों की निगाहें अभी से आसमान पर टिकी हुई हैं। लेकिन यूरोप में इस सूर्य ग्रहण को लेकर अलग तरह का क्रेज नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट स्पेन में है, जहां लोगों की निगाहें अभी से आसमान पर टिकी हुई हैं। उत्तरी स्पेन में खगोल की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों का असिस खरीदने की होड़ लगी है। हाल ये है कि कई फार्मेसीज में ग्रहण को देखने वाले चश्मों का स्टॉक खत्म हो चुका है।
2: Brûler la rétine et c'est trop dommage pour quelques secondes. Vaut mieux ne pas regarder du tout plutôt que de perdre sa vue.
0: सूर्य ग्रहण को देखने और समझने के अपने अपने नजरिए हैं। ज्योतिष विज्ञान ऐसे ग्रहण को अपनी कसौटी पर कसता है, तो साइंस सोलर इक्लिप्स को अपने नजरिए से परखता है। ये ग्रहण विज्ञान के लिए इसलिए भी बड़ा मौका है क्योंकि सूर्य को लेकर तमाम पहेलियां अभी भी उलझी हैं। वैज्ञानिक इस ग्रहण के जरिए ये जानना चाहते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसका बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना इससे कहीं ज्यादा गर्म क्यों है। यही वजह है कि आज का ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए चंद मिनटों का अंधेरा भर नहीं है, बल्कि सूरज के रहस्यों की तरफ खुलने वाला एक उजाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चांद पर इंसान का घर बसाने की तैयारी तेज हो गई है। अब इस मिशन में भारत भी अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत की इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है, यानी कि आने वाले वक्त में चांद पर बनने वाले इंसानी ठिकाने में भारत की भी एक अहम भूमिका हो सकती है। ये बड़ा न्योता 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में हुई भारत अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में दिया गया। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद भारत की बढ़ती स्पेस ताकत का असर अब साफ दिखाई दे रहा है।
4: और नासा का यह न्योता सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि चांद पर भारत की बढ़ती ताकत की बड़ी पहचान है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई थी। अब उसी कामयाबी के बाद अमेरिका भारत के साथ चांद की अगली बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। नासा का मून बेस प्रोग्राम इंसानों को चांद पर लंबे वक्त तक रहने और काम करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसरो की एंट्री से भारत अमेरिका की स्पेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब आपको बताते हैं दरअसल क्या है मिशन मून। नासा अब चांद को सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां इंसान लंबे समय तक रह सके और काम कर सके। इसके लिए मून बेस को धीरे धीरे तैयार किया जाएगा। ये मून बेस

0: भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का होम बेस होगा। यहाँ रहकर वे चांद की जमीन, चट्टानों और वहां मौजूद संसाधनों पर रिसर्च करेंगे। रोवर और मोबाइल लैब की मदद से वे दूर के इलाकों तक भी पहुंच सकेंगे। नासा ने मून बेस के लिए चांद के साउथ पोल को चुना है। यहाँ कुछ जगहों पर लंबे समय तक सूरज की रोशनी मिलती है, जबकि कुछ अंधेरे में रहने के वाले क्रेटर्स में बर्फ मिलने की संभावना है।
1: बिल्कुल, इंसानों के लंबे समय तक चांद पर रहने से वैज्ञानिक ज्यादा सैंपल जुटा सकेंगे, ज्यादा प्रयोग हो सकेंगे और इससे चांद की सतह और वहां मौजूद संसाधनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी मिलेगी और नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण भी होगा। नासा का लक्ष्य सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं है, मून बेस पर विकसित होने वाली रहने, बिजली, रोवर, संसाधनों के इस्तेमाल और सामान पहुंचाने जैसी तकनीकें भविष्य में इंसानों को मंगल तक भेजने में भी काम आएंगी।
2: और देखिए, मून बेस मिशन नासा इसरो के साथ साथ इसरो को न्योता क्यों, चलिए समझते हैं इसको। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके साथ भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इससे इसरो की सटीक
0: वाले क्रेटर्स में बर्फ मिलने की संभावना।
1: बिल्कुल, इंसानों के लंबे समय तक चांद पर रहने से वैज्ञानिक ज्यादा सैंपल जुटा सकेंगे, ज्यादा प्रयोग हो सकेंगे और इससे चांद की सतह और वहां मौजूद संसाधनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी मिलेगी और नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण भी होगा। नासा का लक्ष्य सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं है, मून बेस पर विकसित होने वाली रहने, बिजली, रोवर, संसाधनों के इस्तेमाल और सामान पहुंचाने जैसी तकनीकें भविष्य में इंसानों को मंगल तक भेजने में भी काम आएंगी।
2: और देखिए, मून बेस मिशन नासा इसरो के साथ साथ इसरो को न्योता क्यों, चलिए समझते हैं इसको। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके साथ भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इससे इसरो की सटीक लैंडिंग कराने की क्षमता पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई। चंद्रमा का साउथ पोल बेहद कठिन इलाका है।
3: सुरक्षित लैंडिंग की और उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चला। दोनों ने करीब 14 दिन या
0: समय के लिए रहने का बेस बनाता है, तो बर्फ और पानी इंसानों के काम आ सकते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल वाले इलाके में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई थी।
3: जुलाई में बारिश ने जो कसर छोड़ी थी, अगस्त आते ही उसकी भरपाई शुरू हो गई है। देश
0: के साउथ पोल वाले इलाके में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई थी।
3: जुलाई में बारिश ने जो कसर छोड़ी थी, अगस्त आते ही उसकी भरपाई शुरू हो गई है। देश के तमाम हिस्सों में आसमान से पानी बरस रहा है, कहीं झमाझम तो कहीं लगातार बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बारिश ने जनजीवन की रफ्तार भी थाम दी है, यानी मॉनसून अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है।
2: बिल्कुल, मौसम का ये मिजाज अभी थमने वाला नहीं है। आने
0: रहने का बेस बनाता है, तो बर्फ और पानी इंसानों के काम आ सकते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल वाले इलाके में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई थी।
3: जुलाई में बारिश ने जो कसर छोड़ी थी, अगस्त आते ही उसकी भरपाई शुरू हो गई है। देश के तमाम हिस्सों में आसमान से पानी बरस रहा है, कहीं झमाझम तो कहीं मॉनसून अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है।
2: बिल्कुल, मौसम का ये मिजाज अभी थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत
4: बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है और अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल भारत में मानसून के दो एक्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं, इनमें से एक मध्य प्रदेश के पास है तो दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है। आने वाले कुछ दिनों में ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्रों में तब्दील हो जाएंगे और इससे देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं।
5: आने वाले 24 घंटे में दो रहने वाले हैं, पूरा पहला तो पूर्वी भारत और दूसरा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो से लगा हुआ मध्य भारत और गुजरात का जो क्षेत्र है। इस मैप से भी आप देख पा रहे होंगे, चूंकि ये लो प्रेशर यहाँ पे है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर वर्षा का प्रमाण ज़्यादा रहेगा। राजस्थान, खासतौर से पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन, यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी वर्षा आज होने की संभावना है।
4: मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में एक दो दिन की बारिश के

0: जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल भारत में मॉनसून के दो एक्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश के पास है तो दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है। आने वाले कुछ दिनों में ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्रों में तब्दील हो जाएंगे और इससे देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं।
1: आने वाले 24 घंटे में दो रहने वाले हैं, पूरा पहला तो पूर्वी भारत और दूसरा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो से लगा हुआ मध्य भारत और गुजरात का जो क्षेत्र है। इस मैप से भी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये लो प्रेशर यहाँ पे है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर वर्षा का प्रमाण ज़्यादा रहेगा। राजस्थान खासतौर से पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी वर्षा आज होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में एक दो दिन की बारिश के बाद एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगेगा।
1: यानी मॉनसून ट्रफ एक्टिव कंडीशन में देखी जा रही है और जिसका जो विस्तार है एक से डेढ़ किलोमीटर तक वर्टिकल।
2: हाँ, चल रही थी बहुत अच्छा। वैसे 16 तारीख तक प्रेडिक्शन था दिल्ली एनसीआर में, आई डोंट नो आज धूप कैसे खिलाई, लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं वहां पर अभी भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। बरखा बहार से वादियां हरी भरी हो गई हैं, गर्मी उमस से आजिज आ चुके लोगों का दिल बारिश की बौछारों ने खुश कर दिया, लेकिन पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से कुछ चुनौतियां भी हैं।
3: आपको बता दें खास करके हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बौछारें एक बार फिर से अच्छा खासा वहां पर बरस रही है, हालांकि कई मध्यम तो कहीं पर भारी बारिश हो रही है, इसलिए मौसम विभाग ने भी कहीं येलो तो कहीं।
4: अगस्त महीने में मॉनसून पूरे वेग में है, देश के कई राज्यों में पड़ रहे चारों तरफ बसेरा है। इस बीच बरखा बहार का दौर हरी भरी वादियों को मानो और पार्वती नदियां उफान पर हैं। बारिश यहां भी रह रहकर हो रही है, पूरी घाटी बादलों से छाई है। तो मनाली में भी मॉनसून की सक्रियता कुल्लू जैसी ही बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। विभाग ने जानकारी दी है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी। वहीं इसी दौरान चंबा, कांगड़ा और मंडी में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि 14 से 16 अगस्त के दौरान वेदर सिस्टम दोबारा मजबूत होगा, जिससे पूरे हिमाचल में मानसूनी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। खासकर 14 और 15 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है, इसलिए इस दौरान भारी बारिश का अलर्ट भी है। इसी तरह से मॉनसून 16 अगस्त तक पूरे हिमाचल में सक्रिय रहने वाला है। फिलहाल तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिन हिमाचल प्रदेश में मॉनसून फुल एक्टिव मोड पर रहेगा। यही वजह है कि मौसम विभाग के साथ ही प्रशासन ने भी इन मौसमी हालातों को देखते हुए ही लोगों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।
5: एडवाइजरी देखिए, जो हमारे मेजर रिवर्स हैं, लोक नदी नाले, यहाँ पे आपका जो वाटर लेवल है वो अचानक से राइज कर सकता है, और इसलिए जनता से ये अपील है कि अभी वाटर जो सोर्स है उसके आसपास ना जाएं। और जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे लो क्लाउड्स के चलते जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम रहेगी, तो जब भी आप अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें ध्यानपूर्वक ट्रैवल करें। और कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे हमारे लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं, तो जो अगर ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रेजेंट रोड कंडीशन है उसके बारे में मालूम करके अपना ट्रैवल प्लान करें। अभी अननेसेसरी जो ट्रैवल है वो अभी प्लान ना करें।
4: जाहिर है हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक फुल मोड में रहने वाला मौसम जहां सावन की खुशियों वाली सौगात ला रहा है, तो वहीं कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावित चुनौतियों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमेशा की तरह एहतियात बरतते हुए ही सावन की इन मानसूनी बौछारों का आनंद लिया जाए। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जिस तरह से मॉनसून पूरे पीक पर है, ऐसे में पूर्वोत्तर राज्य असम बाढ़ से जूझ रहा है। वहां लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, ऐसे में प्रभावितों की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं। बॉलीवुड की दुनिया से भी कई हाथ मदद के लिए आगे आए हैं।
6: जी हाँ, देखिए ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। मुंबई की सड़कों पर हजारों की संख्या में जुटे लोग एकता मंच के बैनर तले असम बाढ़ प्रभावितों के लिए पैसा जुटा रहे हैं। अब खास बात यह है कि लोगों के साथ इस शानदार पहल में पम्मी के नाम से मशहूर एक्ट्रेस अदिति पौनकर भी शामिल हुई।
7: असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, कई जाने गई हैं। ऐसे में मुंबई की सड़कों पर एक भव्य रैली लोगों द्वारा निकाली गई है, जो कहीं ना कहीं मदद का हाथ बढ़ाते हुए हर दुकानों पर हर लोगों से कुछ इस तरीके से डोनेशन ले रहे हैं और ये सारी चीजें मदद में लगाई जाएगी।

0: की बाढ़ पीड़ितों के लिए खास बात यह है कि पम्मी का किरदार निभाने वाली अदिति इस समय हमारे साथ है और उन्होंने भी ज्वाइन करा है के भारत हम भारत। कैसा क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा जरूरी है और आप जैसे लोग अब सड़कों पे उतरेंगे तो कुछ ज्यादा ही लोग प्रभावित होंगे और मदद के लिए आगे बढ़ेंगे।
1: नहीं, अजय कॉल सर से आज मैं मिली हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक सोचते हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम एक साथ एक बन के, बिकॉज वी आर वन, हम एक है, हम एक एक भारत हम भारत का की आइडिया ही यही है कि हम सब एक है और हमको अगर हम जुड़ जाते हैं तो यूनाइटेड, एज वी गेट यूनाइटेड वी आर गोइंग टू बिकम अ ह्यूज पावर, अ सुपर पावर इन फैक्ट। सो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इसमें मैं जुड़ गई, ये मेरा सौभाग्य है।
2: जब जब इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई हो, चाहे वो कश्मीर में हुई हो, केरला में हो, महाराष्ट्र में हुई है, एकता मंच ने अपने तरीके से जितना हो सकता है मदद पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है कि एकता मंच का उद्देश्य ये रहा है कि ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये सभी जाति ये धर्म सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है।
0: आशीर्वाद मिले ईश्वर का, वाकई में बहुत एक सराहनीय और अच्छा काम है, क्योंकि जिस तरीके से कई लोगों की जान जा रही है, आज भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना असम के लोगों को करना पड़ रहा है, यही वजह है कि मुंबई की सड़कों में हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी रैली इस समय आपको देखने के लिए मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा पैसे यहाँ नहीं जमा हो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक हाथ तो जमा हो जाएंगे और जब सारे एक साथ हो जाते हैं तो कुछ भला ही होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, मुंबई।
3: वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा देश उत्सवों, त्योहारों, सेलिब्रेशंस का देश है और कई सारे उत्सव लगातार अभी चल ही रहे हैं और उसमें, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो आने वाला है, यानी स्वतंत्रता दिवस। मुझे लगता है कि हर एक भारतवासी इसे उतनी ही खुशी से मनाता होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि जो इस दिन सेलिब्रेट अपने अपने तरीके से ना करता हो। अब तो हर घर तिरंगा भी हो रहा है,
4: मेरे घर में तो किसी का बर्थडे भी आता है तो हमारी डबल सेलिब्रेशन हो जाती है, बट बचपन याद आता है। मुझे बताओ कि इस दिन छुट्टी किस किस की होती थी?
5: नहीं, हमारे स्कूल की तरफ से सेलिब्रेशन होता था और वो लड्डू मिल जाते थे हमको, हम सेलिब्रेशन के बाद लड्डू।
3: मुझे अच्छे से याद है, हमें तो व्हाइट ड्रेस में जाना होता था, केट्स जो है व्हाइट वाले, उसको अच्छे से चौक से आप एकदम अच्छे से साफ वाफ करके आप जाते थे, और उस दिन जब फ्लैग होस्टिंग होता था प्रिंसिपल करते थे, उसके बाद हमें एक छोटा बॉक्स मिलता था जिसमें एक लड्डू, एक फ्रूटी और एक कुछ नमकीन रहता था,
4: और कुछ प्रोग्राम्स भी होते थे। मतलब मेरे टाइम प्रोग्राम होते थे, फ्लैग होस्टिंग होती थी, आपको खाने के लिए फ्री में मिलता था सब कुछ, तो बड़ा मजा आता था। लेकिन हाल ही में जैसे फ्लैग होस्टिंग होती है रेड फोर्ट पे, तो वहां पे आसपास में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैं गई थी, तो क्या उन्होंने सिक्योरिटी की हुई थी, क्या वहां पे इंतजाम हो रहे थे कि मोदी जी की स्पीच होगी, फ्लैग होस्टिंग होगी, तो वो काफी ज्यादा बहुत अच्छे इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं।
3: बिल्कुल, तो आपने सुना, सबके अपने अपने भाई एक्सपीरियंस है, बचपन से हम सभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बार फिर देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर तिरंगा लहराने की तैयारी हो रही है, कहीं तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, तो कहीं देश की शान हमारे तिरंगे को तैयार करने में कारीगर दिन रात जुटे हैं।
4: बिल्कुल, देखिए ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली के सदर बाजार से, जहां तिरंगे बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये वही इलाका है जहां कभी फ्लैग अंकल के नाम से मशहूर शख्स तिरंगा बनाया करते थे, आज उनके परिवार ने भी इस परंपरा को उसी गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में लहराता विशाल तिरंगा भी इसी परिवार ने तैयार किया है, और खास बात यह है कि इनके हाथों से बने तिरंगे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शान से लहराते हैं।

0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा लहरा रहा है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, देशभक्ति के जज्बे से सराबोर ये यात्राएं भारत की एकता, अखंडता और गौरव की तस्वीर पेश करती हैं। आलम यह है कि बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के कई शहरों में तिरंगा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली के सदर बाजार में अब्दुल भी दिन रात तिरंगा बनाने में जुटे हैं।
1: लहराते हुए तिरंगे को देखकर हम सब कितना खुश होते हैं, सीना जैसे गर्व से फूल जाता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के सदर बाजार में एक ऐसी दुकान पर लेकर आ रहे हैं जहां पर पीढ़ियां दर पीढ़ियां तिरंगे को बनाने में, उसको तैयार करने में, उसकी सिलाई करने में लगी हुई हैं।
0: यहां कहीं कपड़े की कटिंग हो रही है तो कहीं मशीनों पर सिलाई का काम चल रहा है। यानी तिरंगे की कटिंग से लेकर सिलाई, पैकिंग और सप्लाई तक हर काम पूरी रफ्तार से जारी है।
1: आप लोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है, फ्लैग बनाना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो किन बातों का ख्याल

0: आप लोग रखते हैं जिसमें बनाते हैं, खासकर जो हमारा अशोक चक्र है उसमें कितनी उसकी लाइंस होंगी, कैसा चक्र होगा, सब कुछ डिसाइड करते हुए?
1: मेरे फादर इन लॉ हैं फ्लैग अंकल के नाम से, बहुत फेमस हैं, और उसी उन्होंने जो हमें काम सौंपा है वो काम हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल करा कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने फ्लैग को बनाने में, सबसे पहले मैं बताऊँगा हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लैग है एक इसकी आन बान है, तो हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसको प्रिंटिंग में जो है पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रिंटिंग वर्क हो।
2: आजादी के पर्व को देखते हुए काम की रफ्तार भी कई गुना बढ़ा दी गई है। ऑर्डर बढ़े तो कारीगरों के हाथ भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तिरंगा बनाना महज रोजगार नहीं बल्कि देश के प्रति अपने जज्बे और सम्मान को रंगों में पिरोने का एक जरिया है। तभी तो इनके बनाए झंडे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुँचते हैं।
3: हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम में चल रही है, जो कि हमने सन 1962 से मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था, उनके साथ मेरे भैया बड़े जिनको फ्लैग अंकल के नाम से खिताब दिया गया, अब्दुल गफ्फान ने उनका सहयोग किया, तो उसके बाद हम उनके साथ लगे। अब हमारी तीसरी जनरेशन है, हमारे बच्चे उनके साथ लगे हैं।
2: ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, इनमें करोड़ों भारतीयों का गर्व, सम्मान और देशभक्ति का जज्बा जुड़ा है। जब यही तिरंगे घरों, दुकानों और सड़कों पर लहराते हैं तो हर तरफ एक ही रंग नजर आता है, तिरंगे का रंग, हिंदुस्तान के गौरव का रंग। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दिल्ली की सड़कों पर आज देशभक्ति का जोश देखने को मिला। बीएसएफ, एनएसजी और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा पर निकले, हाथों में तिरंगा था और दिल में देशभक्ति का जज्बा।
5: और जवानों की यात्रा जहां से भी गुजरी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत माता के जयकारों और लहराते तिरंगे के बीच जवानों ने आजादी के पर्व का संदेश दिया। ये सिर्फ बाइक रैली नहीं बल्कि देश के आन बान शान तिरंगे को सलाम करने का जज्बा था।
6: हर घर तिरंगा कैंपेन का एक आज अलग नजारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जब ये जवान बीएसएफ के जवान, एनएसजी के कमांडोज तिरंगा यात्रा निकालने के लिए तैनात इस वक्त भारत मंडपम पे है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, हर कठिन से कठिन मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आज एक अलग तस्वीर। आमतौर पे लोगों से दूर एनएसजी कमांडोज, लेकिन आज भारत मंडपम पे जब तिरंगा यात्रा निकलने वाला है तो एनएसजी कमांडोज भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आमतौर पे आप लोग पब्लिक व्यू से दूर रहते हैं, लेकिन आज बतौर एनएसजी कमांडोज भारत का तिरंगा लेके तिरंगा यात्रा
7: में वी आर इन्वॉल्विंग इन ईच एंड एवरी कैंपेन व्हाट एवर गिवन बाय द डायरेक्शन गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, वी आर इंक्लूडिंग आवर कमांडोज, वी आर फाइटिंग विद द टेररिस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग वीआईपी सिक्योरिटीज, एंड अपार्ट फ्रॉम द एनी कैंपेन विल बी डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट, वी आर ऑलवेज देयर सर विद द सिविलियंस।
6: टुडे यू विल बी कैरिंग इंडियाज फ्लैग और तिरंगा यात्रा।
7: टुडे वी आर कैरिंग इंडिया फ्लैग एंड वन कैंपेन विल बी देयर, हर घर तिरंगा, एंड we are just came to contribute ourselves, okay, in that har ghar tiranga. Okay sir, thank you.
6: तो जिस तिरंगे की शान के लिए एनएसजी कमांडोज लड़ते हैं उसी तिरंगे के साथ बाइक रैली में आज जो शामिल होंगे, और बीएसएफ के भी सारे यहां पे जवान दिख रहे हैं। सर, हर घर तिरंगा कैंपेन 2022 से शुरू हुआ, आप लोग हर साल शामिल होते हैं इसमें, 9 से 17 तारीख का इवेंट है, किस तरह से ये अलग छटाएं बिखेरने के लिए आप लोगों के पास भी मौका होता है आज के दिन?
8: देखिए, बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या होता था तो हम 26 जनवरी 15 अगस्त में केवल एक दिन फहराते थे, अभी हर दिन फहरा रहे हैं। मतलब झंडे की शान दूर दूर तक जा रही है, काफी अच्छा लग रहा है हमें।
6: पिछले झंडे की शान, तिरंगे की शान हर घर तक पूरे देश में पूरे साल पहुंच रही है, इस बात को लेकर खुशी बीएसएफ के जवानों में है, एनएसजी के कमांडोज में है।
5: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रोहित शर्मा के शो का इतना शोर क्यों।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जश्न आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर। श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा निकली। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समा, यात्रियों के लिए बनाया गया खास सेल्फी पॉइंट। आज मनाया जा रहा वर्ल्ड एलिफेंट डे, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को किया याद। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत में नहीं दिखाई देगा, ये खगोलीय नजारा ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा ये ग्रहण।
3: जाहिर सी बात है किसी से जुड़ा कोई शख्स है जिस पर हम बात करेंगे। तो क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले रोहित शर्मा अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैदान पर विकेट के पीछे से उनका मजेदार अंदाज तो आपने खूब देखा, लेकिन अब रोहित टीवी की दुनिया में भी नजर आने वाले हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब ये क्रिकेट से सीधे टीवी?
8: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा ना अपने आप में इतने ज्यादा एंटरटेनिंग है ना। आप उनके फील्ड पे स्टंप माइक से वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि रील वायरल होने लगती है, तो वो अपने आप में एक मजेदार इंसान है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मजा आएगा,
3: अच्छा लगेगा देखने में। बिल्कुल। हालांकि शगुफ्ता, आपको नहीं लगता है हम हरभजन को भी टीवी पे देख सकते हैं? आई थिंक नीता बसरा के साथ वो आ चुके हैं, उनके साथ भी एज ए कमेंटेटर तो अलग बात है, या फिर एज ए गेस्ट, लेकिन गीता बसरा के साथ भी उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। फिर सुरेश रैना ने भी अपनी वाइफ के साथ शुरू किया था।
8: बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे,
3: बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये लोग आए हैं, लेकिन ये थोड़े हटके हैं, एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज्यादा। क्यों?
8: बहुत ज्यादा। शर्मा जी का बेटा है, अब करेगा कुछ ना कुछ तो कमाल ही। मैदान में तो कर ही चुका है, मैदान के बाहर भी रेडी है अपनी इस नई पारी के लिए। आई एम श्योर कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इनको देखने के लिए कि यहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन देखिए, टेस्ट और टी20 क्रिकेट को तो अलविदा कह चुके हैं रोहित शर्मा, अब सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाएंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रोहित का ये नया शो अक्टूबर में ऑन एयर हो सकता है, यानी क्रिकेट के बाद अब रोहित का कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वाला स्टाइल आप सबको देखने को मिलेगा।
9: गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने वाले रोहित शर्मा क्रिकेट के मैदान पर छक्के चौकों की बारिश करने वाले रोहित शर्मा और विकेट के पीछे खड़े होकर यंगस्टर्स को बोल वचन देने वाले रोहित शर्मा। टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास के बाद अब टीवी की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार हैं रोहित शर्मा। दरअसल सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा से जुड़ा एक प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसे सोनी टीवी ने शेयर किया है। इस वीडियो प्रोमो में रोहित शर्मा कैमरा एंगल को हर तरह से चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैमरामैन को अलग अलग एंगल से शूट करने के इंस्ट्रक्शंस भी देते दिख रहे हैं। वीडियो कैप्शन में लिखा है, स्टेज रेडी, कैमरा रेडी, जल्दी मिलते हैं। जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा टीवी पर अपना खुद का रोहित शर्मा शो लेकर आ रहे हैं, जिसे द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट डेब्यू बताया जा रहा है। हालांकि अभी किसी तारीख का खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार शूटिंग सितंबर में शुरू हो सकती है, जबकि शो अक्टूबर में ऑन एयर होने की चर्चा है। हालांकि चैनल और रोहित शर्मा ने शो से जुड़ी ज्यादा डिटेल अभी शेयर नहीं की है, जिस वजह से फैंस के बीच सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन वीडियो देखकर लग रहा है कि शो में रोहित एक एंकर या प्रेजेंटर के तौर पर नजर आ सकते हैं। ऐसे में फैंस के एक्साइटमेंट का लेवल काफी हाई हो चुका है। इससे पहले मई में शो से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें रोहित शर्मा अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते नजर आए। इस दौरान फैंस उनसे उनका मशहूर डायलॉग कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा दोहराने की मांग करते हैं। रोहित शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर और उनका सहज अंदाज हमेशा से ही फैंस को लुभाता रहा है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर को दिया गया जवाब हो या मैदान पर साथियों के साथ मस्ती, हिटमैन का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाता है। ऐसे में जब वो एक एंटरटेनमेंट शो के जरिए दर्शकों के बीच आएंगे तो मनोरंजन का डोज डबल होना तय है। यानी जो अंदाज और टाइमिंग हम अब तक क्रिकेट पिच पर देखते थे, वही बेफिक्री और मजेदार हिटमैन स्टाइल अब ड्राइंग रूम में टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 32 साल की स्पेनिश मॉडल डांसर और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही जॉर्जियाना रॉड्रिग्स को अपना जीवन साथी बना लिया। स्टार कपल ने अपने अपने इंस्टा हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों के अंगूठी पहने हथेलियां नजर आ रही। बताया जा रहा है कि पश्चिमी पुर्तगाल में राजधानी लिस्बन के पास समंदर किनारे बसे शहर कास्किस में दोनों ने एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थामा है।
3: और अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखने वाले रोनाल्डो और जॉर्जिना को लेकर फैंस को एक बार की यकीन नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसी खुशखबरी भी दे सकते हैं। हालांकि रोनाल्डो और जॉर्जिना शादी से पहले ही माता पिता बन चुके हैं, दोनों के 5 बच्चे भी हैं। वहीं आज रोनाल्डो ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, तो वहीं एक सेल्फ मैनेजर से करोड़पति बनने का सफर जॉर्जिना का भी कम दिलचस्प नहीं रहा है।

11 साल तक किया एक दूसरे को डेट, 11 साल से रह रहे साथ साथ, अब एक दूजे को अंगूठी पहनाकर कहा हम हैं हमेशा साथ साथ। सोशल मीडिया पर एक दूसरे का हाथ थामे और उंगलियों में पहनी अंगूठियों की ये तस्वीर तस्दीक कर रही है कि पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी रचा ली है, उन्हें अपनी जीवन संगनी बना लिया है। हाल ही में स्टार कपल ने अपने निजी रिश्तों को लेकर चली आ रही सालों की अटकलों पर विराम लगा दिया और पुर्तगाल के कास्केस में एक प्राइवेट सेरेमनी के दौरान एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बताया जा रहा है कि रोनाल्डो और जॉर्जिना की इस खुशी में उनके परिवार के करीबी लोग और 5 बच्चे भी शरीक हुए। 41 साल के रोनाल्डो ने अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि रोनाल्डो अपने फैंस को कुछ ऐसे शादी की गुड न्यूज देंगे। हालांकि इस गुपचुप शादी की कोई और फोटो या वीडियो सामने नहीं आए हैं। रोनाल्डो और जॉर्जिना की पहली मुलाकात 2016 में हुई थी, जब जॉर्जिना गुची के एक स्टोर में काम करती थी। जनवरी 2017 में ज्यूरिख में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में दोनों पहली बार रेड कार्पेट पर साथ दिखे। वहीं जॉर्जिना ने मॉडलिंग में एक सफल करियर बनाया और कई मशहूर फैशन ब्रांड्स के साथ काम किया। 2021 में उन्होंने अपना फैशन लेबल ओम बाई जी लॉन्च कर अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को बढ़ाया। वो कई बिजनेस वेंचर्स में भी शामिल हुई, इनमें हेयर रेस्टोरेशन कंपनी इंस्पारिया भी शामिल है। फोर्ब्स स्पेन ने पहले बताया था कि वो रोनाल्डो के साथ कंपनी की को ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों थीं। हालांकि बाद की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2024 में उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका छोड़ दी। आज जब रोनाल्डो और जॉर्जिना का रिश्ता 11 साल पुराना हो गया है, तो इसी दौरान इस जोड़ी की दो बेटियां अलाना और बेला हैं, जबकि रोनाल्डो के बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर और जुड़वा बच्चों इवा मारिया और माटियो की परवरिश भी रोनाल्डो और जॉर्जिना बखूबी कर रहे हैं। बता दें कि जॉर्जिना की नेटफ्लिक्स सीरीज आई एम जॉर्जिना में रोनाल्डो ने भी स्वीकार किया था कि शुरुआत में उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जॉर्जिना के साथ उनका प्यार इतना गहरा हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्जिना ही उनकी लाइफ पार्टनर है। वहीं जॉर्जिना ने भी बड़े बेटे रोनाल्डो जूनियर के साथ बाकी 4 बच्चों को पूरे दिल से अपनाया। यही वजह भी रही कि 11 साल पुराना रोनाल्डो और जॉर्जिना का रिश्ता साल दर साल गहरा होता गया और अब रोनाल्डो ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी रचाकर

0: फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए हम तो ये कहेंगे कि कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को इस गुड न्यूज के लिए। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं, अच्छी तस्वीर है, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से सामने आई। इन दिनों एक खास मेहमान हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ये कोई आम सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि हाईटेक रोबो कॉप है। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के अलग अलग हिस्सों तक ये रोबो लगातार निगरानी करता हुआ नजर आता है।
2: बिल्कुल, AI तकनीक से लैस ये रोबोट सिर्फ पहरा देने तक सीमित नहीं है। ये स्टेशन पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ कई जटिल काम एक साथ कर सकता है। यानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और निगरानी में अब इंसानों के साथ मशीन की स्मार्ट ताकत भी जुड़ गई है।
3: चौकस निगाहें, चप्पे चप्पे पर नजर, RPF का ये रोबोट कॉप है मुसाफिरों की सुरक्षा का हम सफर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तैनात ये रोबोट कॉप रेल मुसाफिरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रोबोट का नाम है DSC अर्जुन। सिर पर RPF की कैप और चार पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल पर सवार इस AI रोबोट को देखकर सभी की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी होती है कि लोग इसके बारे में पूछे बिना रह नहीं पाते। DSC अर्जुन के पास तैनात सिपाही मुसाफिरों को इस रोबोट की खूबियों के बारे में समझाते हैं। इस अत्याधुनिक रोबोट में 7 हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। ये रोबोट ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। रेलवे ट्रैक पर उतरने वाले यात्रियों पर इसकी पैनी नजर होती है। ये रोबोट आग जैसी घटना को तुरंत भांप लेता है। किसी भी गड़बड़ी का पता चलते ही ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। इस रोबोट को करीब 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। DSC अर्जुन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और रेलवे स्टेशन की दूसरी अहम जगहों की लगातार निगरानी करता है। निगरानी के साथ ही ये पब्लिक

0: के साथ लोगों को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी देता है। खास बात यह है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई जटिल कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। डीएससी अर्जुन रोबोट AI, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस है। ये रोबोट RPF के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभा सकता है। इसमें AI आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। ये रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स से यात्रियों की संख्या का आकलन करता है। इसकी AI तकनीक लावारिस सामानों को तुरंत पहचान लेती है। ये संदिग्ध गतिविधियों के बारे में फौरन आगाह कर सकता है।
1: रोबोट है और ये सबके ऊपर निगरानी रखता है और जो भी क्रिमिनल या कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके अगर फिगर से अगर मैच कर जाता है तो ये सीधा हेडक्वार्टर तक वो पहुंचा देता है और लोगों को भी ये उनको बता देता है कि आपका सामान ठीक तरह से रखिए, सजा के रखिए और निगरानी में रखिए ताकि ये चोर के द्वारा कोई उसको उठाना ले जाए।
0: रेलवे का मानना है कि डीएससी अर्जुन की तैनाती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये रोबोट रियल टाइम में अहम सूचनाएं जुटाकर अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करता है। इसके आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों की मदद पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले पहचान सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में ये रोबोट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है और हाथियों पर अगर कहीं इस दिन का असली रंग चढ़ा है तो वो है जयपुर का आमेर हाथी गांव। आमेर किले के पास बसा ये गांव आज हाथियों की चहल पहल से गुलजार है। दरअसल आमेर का ये हाथी गांव राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में अपनी तरह का पहला ऐसा गांव है जिसे खास तौर पर हाथियों के संरक्षण और देखभाल के लिए बसाया गया था। करीब 140 बीघा में फैला ये गांव साल 2008 में शुरू हुआ था। आज यही जगह जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण बन चुकी है।
3: लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज यहाँ मेहमान इंसान नहीं बल्कि हाथी हैं और मेहमान नवाजी भी ऐसी कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। हाथियों के लिए खास दावत सजाई गई है, तरह तरह के फल मंगाए गए हैं। कोई हाथी केले और तरबूज का स्वाद ले रहा है तो कोई अपने पसंदीदा फलों का मजा लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से हाथियों को भी आज खास तौर पर सजाया गया है, यानी पूरा माहौल सेलिब्रेशन से कम नहीं है।
2: तो आपको जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बता दें चूंकि आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है और इस मौके पर आपको राजस्थान में हाथियों के इस गांव को हम दिखा रहे हैं जहां पर विशेष करके आज उनके लिए दावत सजाई गई थी। पहले तो हाथियों को सजाया गया था, उनका श्रृंगार किया गया था, उसके बाद रेड कार्पेट बिछाकर उनके लिए एक तरह से बुफे लगाया गया था।
3: बिल्कुल, देखिए इंसानों की रैंप वॉक तो आपने देखी होगी अक्सर, लेकिन ये हाथियों की रैंप वॉक करते हुए इस तस्वीर को शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, लेकिन ये नजारा नजर आया है जयपुर में जहां सजे धजे हाथियों की खास वॉक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई।
4: एलिफेंट डे जितना खास ये दिन सुनने में है उतना खास इसको जयपुर के एलिफेंट विलेज में बनाया गया है जहाँ हाथियों के लिए खास बुफे रखा गया है, उनका श्रृंगार किया गया है और उन्होंने की है रैंप वॉक। तो ये जो खास बुफे है वो इसी हाथी गांव में रहने वाले हाथियों पे जो कि करीब 75 हाथी है उनके लिए रखा गया जिसमें फ्रेश फ्रूट लगाए गए और उससे पहले हाथियों का श्रृंगार किया गया जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है एक रैंप वॉक के जरिए और उनमें से एक हाथी ऐसा भी है जिसका बर्थडे भी आज सेलिब्रेट किया गया तो उसको खास बनाया गया है केक कटिंग के जरिए जो ये दिखाता है कि जितना खास एक मनुष्य जीवन है उतना ही खास ये पशु या जानवरों का जो जीवन है वो है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए इनका बर्थडे और वर्ल्ड एलिफेंट डे इस जयपुर के हाथी गांव में मनाया गया। कैमरा मनोज के साथ उत्तम जैन, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए हाथियों का जश्न केवल जयपुर में ही नहीं चल रहा है बल्कि दुनिया भर में हाथियों के साथ का सेलिब्रेशन चल रहा है। इस मौके पर चलिए आपको दिखाते हैं कि चीन के यूनान प्रांत की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ एशियाई हाथियों का एक बड़ा बसेरा है। यहाँ की एक सिटी का जियांगचेंग काउंटी हाथियों की गतिविधियों का प्रमुख इलाका है। ये तस्वीरें वहीं की है।
5: जब हाथियों के बीच लोग कैमरे के साथ पहुंचे तो कैमरे में हाथियों की जिंदगी के कई दिलचस्प रंग कैद हुए। कहीं हाथियों का झुंड गांव और खेतों के बीच आराम से टहलता नजर आया तो कहीं हाथी खेतों में मक्का खाते दिखाई दिए और सबसे प्यारा नजारा था नन्हे हाथियों का।
3: जो कीचड़ में लेटते खेलते खूब मस्ती करते नजर आए। और तस्वीरें इंसानों और हाथियों के बीच खूबसूरत

0: तालमेल और साथ रहने की कहानी बयां करती हैं।
1: चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गर्मी में तपते चीन का अनोखा जुगाड़।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्रोएशिया में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों ने ऐसा रास्ता चुना जिसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। क्रक द्वीप के पुनात में लोग समुद्र में तैरने नहीं बल्कि समुद्र की तलहटी में चलने के लिए पहुंचे,
0: और यहां खास हेलमेट पहनकर पर्यटक 3 मीटर नीचे उतरे और करीब 20 मिनट तक समुद्री दुनिया का कैसे इन लोगों ने लुत्फ उठाया इन तस्वीरों में देखिए।
6: इस समय रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर चल रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली और क्रोएशिया जैसे देशों में तापमान काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में क्रोएशिया में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों ने नायाब रास्ता चुना है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। क्रोएशिया में पर्यटकों ने गर्मी को मात देने का जो तरीका निकाला वो वाकई गजब है। यहाँ लोग समुद्र में सिर्फ तैरने नहीं बल्कि समुद्र की तलहटी में टहलने उतर गए। क्रोएशिया के क्रक द्वीप पर पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए समुद्र की तलहटी पर सैर कर रहे हैं। वहाँ समुद्र किनारे बनाए गए एक अंडरवाटर पार्क में पर्यटक खास तरह के एयर सप्लाई हेलमेट पहनकर पानी के अंदर कूल वॉक करते दिखे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने पानी के अंदर की दुनिया को करीब से देखा, जहां पर्यटकों ने मछलियों को अपने हाथों से खाना भी खिलाया, साथ ही मछलियों को छुआ भी। पर्यटकों को हेलमेट की मदद से उन्हें समुद्र की सतह के नीचे भी सामान्य रूप से सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। हवा की सप्लाई वाला हेलमेट सांस लेने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस रोमांच के लिए आपको प्रोफेशनल डाइवर होने की जरूरत नहीं बल्कि ट्रेनर उन्हें इस सैर पर लेकर जाते हैं। गर्मी से राहत के साथ साथ ये अनुभव पर्यटकों को समुद्र की दुनिया से रूबरू करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: गर्मी से बचने के लिए आपने अब तक एसी, कूलर और पहाड़ों का रुख करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन चीन ने अपने शहरों में गर्मी से निजात पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर चीन के जिलिन शहर की है। यहाँ गर्मी से परेशान लोग किसी पहाड़ी इलाके में नहीं बल्कि एक इंडोर स्की रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं। बाहर मौसम गर्म लेकिन अंदर चारों तरफ बर्फ, बर्फीली पगडंडियां और पेड़ों पर जमी सफेद परत।
7: देखिए समझ लीजिए, शहर में बाहर गर्मी का सितम है और अंदर सर्दियों जैसा एहसास है। कभी सिविल डिफेंस प्रोजेक्ट रही इस जगह को अब साल भर चलने वाले क्रॉस कंट्री स्की रिजॉर्ट में बदल दिया गया है, जहां गर्मियों में लोग कूल कूल माहौल का मजा लेते हैं और सर्दियों में स्कीइंग का रोमांच। यानी चीन में गर्मी को मात देने का अंदाज भी कुछ ऐसा है कि पारा बढ़ा तो लोग बर्फ की शरण में पहुंच गए।
0: साइबर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे होगी मुलाकात चाय पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है प्रभाव, क्या करें सूर्य ग्रहण के बाद उपाय ताकि विपदा टल जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
0: हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जश्न आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा।
7: भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समा, यात्रियों के लिए बनाया गया खास सेल्फी पॉइंट भी।

0: आज मनाया जा रहा वर्ल्ड एलिफेंट डे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को किया याद। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत में नहीं दिखाई देगी, एक खगोलीय घटना। स्पेन से आइसलैंड तक लोगों में अद्भुत नजारे को देखने का उत्साह।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, जेएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण चंद घंटों के बाद लगने जा रहा है। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि भारत में तब तक रात हो चुकी होगी, लेकिन यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में, कई देशों में इसे देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, कुछ देशों में लंबे अरसे के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण का संयोग बना है। हालांकि भारत के लोगों को इस सूर्य ग्रहण को लेकर सूतक वगैरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूतक तभी लगता है जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पर जहां तक भारत पर इस पे प्रभाव की बात है, तो इससे तो ज्योतिषाचार्य भी इनकार नहीं कर रहे। ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से अगले 45 दिनों तक देश में बड़ी उथल पुथल हो सकती है।

0: दूसरा सूर्य ग्रहण बेशक भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस अद्भुत खगोलीय घटना को लेकर देश के एस्ट्रोनॉमर से लेकर एस्ट्रोलॉजर तक चौकन्ने हैं, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देने के बावजूद सावन के पावन महीने में लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के कई गहरे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 12 अगस्त को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यूरोपीय देशों और उत्तरी रूस के अलावा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशियस, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। यूरोप में तो 27 सालों बाद ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले साल 1999 में यूरोप के कुछ देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत खगोलीय नजारा दिखाई दिया था। बात करें इसकी टाइमिंग की तो भारतीय समय अनुसार ये खगोलीय घटना रात 9:04 पर शुरू होगी, जबकि आधी रात के बाद 1:28 पर इसका समापन होगा। रात 11:16 पर ये सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा। इस बार सूर्य ग्रहण की अवधि करीब 4:24 की है। सूर्य ग्रहण जब अपने चरम पर होगा तो धरती के कुछ हिस्सों में दिन में ही बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। कुछ पलों के लिए दिन में ही ऐसा लगेगा कि रात हो गई है। दरअसल सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना का एक अद्भुत ब्रह्मांडीय विज्ञान है। इसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही सीध रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होता है, तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस खगोलीय घटना के दौरान सूर्य की किरणें चंद्रमा से बाधित हो जाती है और धरती के कुछ हिस्सों में चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। साफ है कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह खगोलीय घटना है। हालांकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खगोलीय घटना होने के साथ ही सूर्य ग्रहण का अपना मान्य ज्योतिषीय विधान भी है।
1: चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इसे खगोलीय घटना मानते हैं वैज्ञानिक, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां अलग है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो जब सूर्य पर राहु और केतु का योग बनता है, दृष्टि योग बनता है, दृष्टि संबंध बनता है या युति संबंध बनता है, योग संबंध बनता है, तो वह सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा के साथ राहु और केतु का संबंध बनता है, सूर्य की स्थिति बनती है साथ में, तो वह चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियों में उसके प्रभाव की चर्चा होती है, तो प्रभाव भी पड़ता ही है। जिन राष्ट्रों पर यह दृश्य होता है, जिन राष्ट्रों में यह दृश्य होता है, उस पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और सामाजिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, किस कोई भी व्यवस्था हो, उसमें परिवर्तन, उसमें तनाव, उसमें कुछ न कुछ विपरीतता की स्थिति देखने को मिलती है।
0: यूं तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लिहाजा भारत में सूतक लगने से भी इनकार किया जा रहा है, लेकिन भारत में इसके ज्योतिषीय प्रभाव को लेकर तमाम बातें कही जा रही है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। कर्क राशि में सूर्य के अलावा चंद्रमा, बुध और देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी उपस्थिति रहेगी। ऐसे में इस अद्भुत खगोलीय घटना के दौरान तीन बेहद शुभ योग बन रहे हैं, बुधात्य योग और हंसराज योग और गजकेसरी योग। साफ है कि भारत में नहीं दिखने के बावजूद साल के इस अंतिम सूर्य ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव की भी स्थिति बन रही है। इसमें अलग अलग राशि के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ज्योतिषीय शास्त्रों के जानकार सूतक नहीं लगने के बाद भी कुछ सावधानी और एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं।
1: कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की जब स्थिति बनती है तो खगोलीय घटनाओं के रूप में देखा जाता है वैज्ञानिक रूप से, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दोनों जोड़ते हैं तो देखा जाता है कि ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ता है। तो जैसी हमारी मानसिकता होती है, जैसी हमारी सोच होती है, उस तरह की ऊर्जा की पुनरावृत्ति होती है, उस तरह की ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और हमारा मन मस्तिष्क जो होता है वो उसी तरह की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, जिसका सीधा असर बच्चे पर जाता है। तो अच्छी बात करेंगे तो अच्छी बात जाएंगे, बुरी बात करेंगे तो बुरी बात जाएंगे। तो इस समय में बेकार की बात नहीं करना है, प्रपंच नहीं करना है, भगवान का नाम, भगवान के नाम का स्मरण करना है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेनी है, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, इष्ट देव का ध्यान करना है, नारायण का ध्यान करना है, भगवान सदाशिव का ध्यान करना है, श्रावण का महीना है, तो ओम शाम सदाशिवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ग्रहण काल में और ग्रहण के सूतक काल में।
0: ज्योतिषीय शास्त्र के जानकार इस सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ एहतियात बरतने की सलाह तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि ये भारत में दृश्यमान नहीं है, लिहाजा इस सूर्य ग्रहण को लेकर सूतक से जुड़े नियमों की कोई बाध्यता नहीं है। यानी सूर्य ग्रहण को लेकर अगर आपके मन में कोई आशंका या द्वंद्व है, यानी सूर्य ग्रहण को लेकर अगर आपके मन में कोई आशंका है तो उसे पूरी तरह निकाल दीजिए।
2: सूतक की यदि हम बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, और सूतक के नियमों के हिसाब से 12 घंटे पहले या 9 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है, खाने में तुलसी दल डाला जाता है और गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में बाहर निकलना वर्जित होता है। लेकिन हर ग्रहण में सूतक मान्य नहीं होता है। ग्रहण जहां दिखता है, कहां दृश्यमान है, आपकी धार्मिक पारिवारिक परंपराएं क्या है, किस तरह का ग्रहण है, इस पर निर्भर करता है कि ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं होगा। 12 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है ये इंडिया में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इंडिया में इसका सूतक नहीं लगेगा। अदृश्य ग्रहण का सूतक कभी भी मान्य नहीं माना जाता है। सूतक के नियम तभी लागू होते हैं अगर जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे ग्रहण दिखाई दे रहा है, और इस बार का जो ग्रहण है वो इंडिया में दृश्यमान नहीं है, बाकी के हिस्सों में वर्ल्ड के दिखाई देगा, इसलिए वहां पे सूतक मान्य होगा।
0: साफ है कि इस सूर्य ग्रहण में भारत के लोगों के लिए सूतक की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन चूंकि ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है तो इसलिए इसके प्रभावों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए दुनिया भर में जल से जुड़ी आपदाएं देखने को मिल सकती है। ज्योतिषाचार्य भूकंप जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाओं की आशंका जता रही है। कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का राजनीति और राजसत्ता पर भी असर पड़ सकता है। उच्च पदों पर बैठे लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां पेश आ सकती हैं। जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां इसका ज्यादा नकारात्मक असर पड़ने की आशंका बताई जा रही है।
1: किसी भी देश में जहां से ये दृश्य है, जिस भूमि से दृश्य है, जिस भूमि पर इसका प्रभाव है वहां पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य राजा है, राजा को ग्रहण लग रहा है, इसलिए नकारात्मक परिवर्तन की स्थिति उस राष्ट्र में दिखाई देगी, विशेष रूप से राजनैतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, धार्मिक व्यवस्था पर, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। भारत, अगर कुछ राष्ट्रों की बात करें जैसे अमेरिका हुआ, चीन हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इसी तरीके से अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, चेचन्या हो गया, इन राष्ट्रों के लिए आप देखेंगे तो अगले 45 दिन तक, जब कि 90 दिन तक इसका प्रभाव रहता, लेकिन 45 दिन तक घनघोर प्रभाव रहेगा, जिसमें प्राकृतिक उथल पुथल, भूकंप, बाढ़ की स्थितियों में वृद्धि, और जब भी ग्रहण लगता है तो आप देखते हैं कि जिन राष्ट्र को प्रभाव में लेता है, चूंकि अमेरिका की राशि बनती है उसे, तो ऐसे में प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अमेरिका को नुकसान ज्यादा करेगा। तो 10 ग्रहण लगने के 1-2 दिन आगे पीछे नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं, और इसी कारण से दक्षिणी अमेरिका में भूकंप की घटना देखने को मिल रही है।
0: राष्ट्रीय राजनीति और राजसत्ता के साथ ही अलग अलग राशियों के जातकों पर भी इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग असर होने की बात कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। ग्रह और नक्षत्रों की चाल के अनुसार कुछ राशि के जातकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
1: ऐसी स्थिति में देखा जाए तो लाभ की स्थिति में कौन सी राशियां होंगी, तो मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशियां लाभ की स्थिति में होंगी। सावधानी किनको बरतनी है, कर्क सिंह कन्या धनु मकर और कुंभ, इन राशियों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि थोड़ी सी नकारात्मकताएं आ सकती हैं।
0: बात भारत की करें तो कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से देश में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है। उच्च पदस्थ लोगों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसके अलावा पूर्वी भारत में बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच इसका बड़ा नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
1: भारत भूमि की बात करें तो 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला होगा, नकारात्मक होगा। राजनीतिक उथल पुथल, बड़े व्यक्तित्व जो राजनीति में बड़े स्तर पर हैं, आईएएस अधिकारी बड़े स्तर के हैं, इनको नुकसान हो सकता है, इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र सामने आ सकता है, इनको जेल जाना पड़ सकता है, कोई घोटाले उजागर हो सकते हैं, राष्ट्र के किसी बड़े नेतृत्व को, बड़े नेता को हमें खोना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, असामयिक दुर्घटना हो सकता है, राष्ट्र के भारत के पूर्वी क्षेत्र में वाहन से रिलेटेड दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसमें वाहन दुर्घटना में ट्रेन दुर्घटना भी हो सकती है, प्लेन दुर्घटना हो सकती है, बस दुर्घटना हो सकती है। मास में जो लोग जा रहे होंगे पूर्वी क्षेत्र में, जैसे आसाम का क्षेत्र हुआ, कलकत्ता का क्षेत्र हुआ, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इन क्षेत्रों में, उड़ीसा में भी ये पूर्वी क्षेत्र माना जाएगा, तो इन क्षेत्रों में नुकसान की स्थिति ज्यादा दिखाई दे सकती है।
0: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव 45 दिनों तक प्रचंड रहता है। हालांकि 90 दिनों तक इसका असर होने की बात ज्योतिष शास्त्र में कही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सूर्य ग्रहण निसंदेह एक अनोखी खगोलीय घटना है। विज्ञान की रोशनी में सूर्य ग्रहण की वजहें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण से जुड़ी घटनाओं का जिक्र वेद पुराण से लेकर महाभारत और सनातन के कई ग्रंथों में मिलता है। वेद पुराण और दूसरे ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारे मनुष्यों को सूर्य ग्रहण का ज्ञान हजारों साल पहले से था। तभी तो पंचांग के माध्यम से सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी हजारों साल पहले से की जा रही है।
4: साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में बेशक नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग मूल रूप से आस्थावान होते हैं और वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, इसलिए इस सूर्य ग्रहण को भी लेकर उनके मन में आस्था का भाव है। बहुत से आस्थावान सनातनी भारत में नहीं दिखने के बावजूद सूर्य ग्रहण के सूतक से संबंधित वर्जनाओं का पालन कर रहे हैं। वैसे ये जानना स्वाभाविक है कि सूतक काल के दौरान किन किन नियमों का पालन जरूरी होता है, क्या क्या वर्जनाएं रखनी होती है।
2: सूर्य ग्रहण की पारंपरिक यदि हम विधि विधान की बात करें तो ग्रहण से पहले आपको साफ कपड़े पहनने हैं, आपको पूजा पाठ को अपने सामान को व्यवस्थित करना है, ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन कर लें। कई परिवारों में भोजन में तुलसी के पत्ते डालने की भी परंपरा है। ग्रहण के दौरान भोजन करने से परहेज करें, क्योंकि कहा जाता है उसमें आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और मंत्र जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, ईश्वर का स्मरण करते रहें, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्रों का जाप करें, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और आप जो है साधना और आत्मचिंतन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो उसका आपको हजार गुना फल मिलता है। और ग्रहण जब समाप्त होता है उसके बाद आप जब पूजा पाठ करके स्नान करके पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करते हैं, अपने मंदिर को साफ सफाई करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करते हैं, तो इसका भी आपको विशेष फल मिलता है।
4: सूर्य ग्रहण के भारतीय दृष्टिकोण का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक भविष्यवाणी तो साल 1958 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना के बाद शुरू हुई, लेकिन भारतीय पंचांग में सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी हजारों साल पहले से दी जा रही है। भारत के मनीषियों ने अपनी साधना, तप और अंतर्दृष्टि के दम पर इस खगोलीय घटना का ज्ञान बहुत पहले ही हासिल कर लिया था। महर्षि अत्रि को ग्रहण का ज्ञान देने वाला दुनिया का प्रथम आचार्य माना जाता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में सूर्य ग्रहण का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद के उस मंत्र में ये बताया गया है कि राहु ने सूर्य पर आक्रमण कर उसे अंधकार से ढक दिया, जिसके बाद महर्षि अत्रि ने अपने ज्ञान के प्रकाश से अंधकार का शमन कर सूर्य का उद्धार किया। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु से है। मत्स्य पुराण में कथा आती है कि एक बार स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पीने की चाह में वेश बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। हालांकि भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठे स्वरभानु को पहचान लिया, लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत का पान कर चुका था। अमृत उसके गले तक पहुंच भी गया था। भगवान विष्णु ने सोचा कि अमृत अगर उसके गले के नीचे चला जाएगा तो स्वरभानु अमर हो जाएगा और देवताओं को परेशान करेगा। इसी सोच के साथ भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर चूंकि अमृत उसके गले तक चला गया था इसलिए सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो मरा नहीं। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। मत्स्य पुराण के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। वेद पुराण के अलावा महाभारत में भी सूर्य ग्रहण का संदर्भ मिलता है। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय बताई गई है। इतना ही नहीं, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण लगा हुआ था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक और सूर्य ग्रहण लगने का प्रसंग भी मिलता है। माना जाता है कि 18 दिन के भीतर 3 ग्रहण लगने की वजह से ही महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो अग्नि दाह कर लेंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा के बाद कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना दिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से अचानक दिन में ही अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने आया और कहा कि सूर्यास्त हो चुका है इसलिए अग्नि दाह कर लो। इस बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य अपने प्रखरता के साथ चमकने लगे। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। साफ है कि भारत में सूर्य ग्रहण का संदर्भ किसी न किसी रूप में वेद पुराण से लेकर तमाम ग्रंथों में मिलता है। इस संदर्भों को देखने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मनीषियों को इस बात का ज्ञान था कि सूर्य ग्रहण का संबंध चंद्रमा से है। आज वैज्ञानिक रूप से ये बात प्रमाणित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ आज के हमारे जयंती स्पेशल की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
2: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरे देश में तिरंगे के रंग नजर आते हैं, लेकिन इस बार आजादी का जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदियों और झीलों की लहरों पर भी नजर आने वाला है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई, करीब 150 बोट और इन बोट्स पर शान से लहराता हुआ तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील भी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। यहाँ शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा, दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील, और दोनों जगह एक ही पहचान, और वो है हमारा तिरंगा। यानी पानी की लहरें अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगे के नीचे पूरा देश एक होता है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। रंग आपको लगातार दिखा रहे हैं, नर्मदा नदी पर शान से लहराता हुआ तिरंगा बोट के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। देखिए शाम का वक्त है तो अब बात स्ट्रीट फूड की कर लेते हैं। मुंबई के स्ट्रीट फूड का जायका अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भा रहा है। हाल ही में जारी टाइम आउट की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड शहरों की ग्लोबल लिस्ट में मुंबई ने 10वां स्थान हासिल किया है। 55% अप्रूवल वेटिंग के साथ मुंबई सूची में शामिल हुआ। देखिए मुंबई के जायके वाली हमारी ये जायकेदार रिपोर्ट।
7: 2026 में पूरे विश्व भर में एक ऐसा सर्वे किया गया है जिसमें स्ट्रीट फूड के मामलों में मुंबई ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं, और उसके बाद जहां पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहां जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपये का एक है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम सस्त हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
8: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
7: एक में हो गया, पेट भर गया।
8: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो वो काफी फीलिंग हो जाता है।
7: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है।
8: महीने में चार से पांच बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
7: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र में
8: हूँ।
7: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
8: यस यस, बचपन से। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन। मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब काफी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं।
7: तो देखिए, भले ही हम इस समय एक वड़ा पाव की दुकान पर खड़े हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग जो खाने के लिए आ रहे हैं, और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपुरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया, पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीजें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है प्रभाव, क्या करें सूर्य ग्रहण के बाद उपाय ताकि विपदा टल जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जश्न आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा निकली। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समय, यात्रियों के लिए बनाया गया खास सेल्फी पॉइंट। आज मनाया जा रहा वर्ल्ड एलिफेंट डे, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को याद किया। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत में नहीं दिखाई देगा खगोलीय नजारा, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा ग्रहण।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: विश्व हाथी दिवस के मौके पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन, हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। जयपुर के कुंडा स्थित हाथी गांव में किए गए आयोजन के लिए हाथियों का किया गया श्रृंगार, प्राचीन और पारंपरिक आभूषणों से किया गया हाथियों का श्रृंगार। विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हाथियों ने रैंप वॉक भी किया। इस मौके पर हाथियों के लिए मनपसंद खाने का भी इंतजाम किया गया। हाथियों का रैंप वॉक देखने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग और बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड के मसूरी में दिखी करीब 500 साल पुरानी परंपरा, भट्टा गांव से विधि विधान के साथ निकाली गई नाग देवता की डोली। क्यारकुली स्थित नागदेव मंदिर के लिए रवाना डोली में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए लोग, बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। डोली में सिर पर कलश लेकर शामिल हुई महिलाएं, क्यारकुली भट्टा क्षेत्र के रक्षक देवता माने जाते हैं नागदेव, हर साल नागपंचमी से पहले निकलती है डोली। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में चढ़ावे की गिनती का तीसरा दिन, सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में चढ़ावे की गणना। मंदिर में मौजूद कुल 41 से ज्यादा दान पेटियों में से 30 पेटियां खोली गई, 32 लोगों की टीम कर रही गिनती का काम। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, छावनी में तब्दील लाल किले के आसपास का इलाका। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते पर भी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया, पेट्रोलिंग की जा रही। नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में लगातार मूवमेंट पर रखी जा रही पुलिस की नजर, रात में भी लगाई जा रही गश्त। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडोज की सघन पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। देशभक्ति के रंग में डूबा भारतीय रेलवे, रेलवे स्टेशनों पर बज रहे देशभक्ति के गीत, तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दे रहे रेल कर्मचारी और स्काउट गाइड। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन, अलग अलग राज्यों और शहरों में भी तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीयू के माई भारत वॉलंटियर्स भी शामिल हुए। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से निकली तिरंगा साइकिल रैली। देशभक्ति और फिटनेस यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय के 1000 से ज्यादा माई भारत वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। तिरंगा साइकिल रैली को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। खेल मंत्री मांडविया बोले, साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या का समाधान। नक्सल मुक्त गांव तक पहुंची बाइक रैली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की शानदार रैली की शुरुआत। राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य। स्वतंत्रता दिवस के जश्न और राष्ट्रीय एकता के संदेश के तहत श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में दिखा अद्भुत नजारा। भव्य शिकारा तिरंगा रैली आयोजित हुई। डल झील में तिरंगे झंडों से सजे नजर आए शिकारे। देश प्रेम की भावना का दिखा सुंदर नजारा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा योजना के तहत आयोजित रैली में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली। जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर, कोट रोड, रीगल चौक के आसपास निकाली गई रैली। स्कूली बच्चों ने भी दिखाया उत्साह। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज। इम्फाल में असम राइफल्स के भव्य पाइप बैंड प्रदर्शन का आयोजन हुआ। पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा। युवाओं और आम जनता में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना इसका उद्देश्य रहा। ऐतिहासिक कांगला स्थल पर हुआ देशभक्ति से भरा संगीतमय आयोजन। इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए छात्र। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रेलवे सुरक्षा बल के बैंड ने दी शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस। आरपीएफ बैंड अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने बांधा समा। देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना में डूबे लोग कार्यक्रम में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में निकाली गई तिरंगा रैली। तिरंगा रैली में पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता, डीएम, एसएसपी और आम लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हटवाल गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से मुख्य बाजार तक निकाली ये यात्रा। गुजरात के नर्मदा में महिला डॉक्टर ने बचाई शख्स की जान। महिला डॉक्टर ने समय रहते सीपीआर देकर बचाई शख्स की जान। दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। देशभक्ति में डूबे लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे इसमें हिस्सा। प्रयागराज में मन रहा आजादी का जश्न। राष्ट्रप्रेम और सामाजिक एकता को समर्पित रंग दे बसंती कार्यक्रम हुआ। चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्रप्रेम से जोड़ने की पहल। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर किए गए। रंग दे बसंती शीर्षक से आयोजित कवि सम्मेलन। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, सामाजिक एकता और भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने मैदान में उतरेंगे यूपी के मंत्री। जेंजी चौपाल में सुनेंगे उनकी समस्याएं। लद्दाख के कारगिल में लगा एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। शिविर में एनसीसी कैडेट्स ने स्किल्स के साथ सीखे अनुशासन के गुर। इस शिविर में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति को बढ़ाना उद्देश्य रहा। पीएम मोदी ने किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। आत्मकथा का टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। विज्ञान भवन में आयोजित हुआ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित यह आत्मकथा। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने नौजवानों को दिया संदेश, मुश्किलों के बावजूद हार न माने, खुद पर रखें भरोसा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की खास पहल, दुर्ग जिले में प्रदेश का पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम शुरू। लाभार्थियों को अब घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, इस मशीन के जरिए ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे लोग। राशन कार्ड नंबर या आधार कार्ड से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए होते हैं लाभार्थी की पहचान, पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा से मशीन से निकलता है अनाज। हिमाचल के बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और मरीजों से भी की मुलाकात, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में लगातार खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा, घाटी में लड़कियों के बीच तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा बास्केटबॉल। श्रीनगर में आयोजित किया गया लड़कियों का बास्केटबॉल कार्यक्रम, कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। घाटी में बढ़ती खेल सुविधाओं से खिलाड़ी खुश, युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना मकसद। कश्मीर का अंगूरों वाला गांव के नाम से पॉपुलर है गांधरबल का रेपोरा गांव, जहां 600 साल पुरानी परंपरा दिखाई देती है। मीठी फसल और बड़े बड़े अंगूरों के लिए मशहूर है ये गांव, लगातार नई तकनीक से खेती की जा रही है और गांधरबल को अंगूर का हब बनाने की कोशिश भी। जम्मू के उधमपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिला बूस्ट, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने जीएमसी उधमपुर में 128 स्लाइस सिटी स्कैनर का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों का उद्घाटन किया, गोरखपुर के विकास की नई सौगात दी। हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, राज्य सरकार के सेस लगाने की वजह से हुई बढ़ोतरी। बुलंदशहर में गौमूत्र से जैविक खाद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आसपास के लगभग 15 गांव इस परियोजना के साथ जुड़े। कटिहार में एक शादी बनी चर्चा का विषय, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामे बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, बारात में 2 दर्जन ट्रैक्टर शामिल। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन हुआ, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञों शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 14 अगस्त मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों और संस्कृति का जश्न, दुर्लभ और लद्दाख के राज्य के पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन के संरक्षण पर जोर देना मकसद। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के कारण प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। आज लगेगा साल का दूसरा आखिरी सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में दिखेगी ये खगोलीय घटना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से धरती के कई हिस्सों में दिन में होगी रात, 3 दशक के बाद सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाएगा अंधेरा। 1999 के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा सूर्य ग्रहण, खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:04 से रात 1:27 तक रहेगा ये ग्रहण। रात का समय होने के चलते भारत में दिखाई नहीं देगा ये सूर्य ग्रहण, दिखाई नहीं देने के कारण भारत में ना तो सूतक लगेगा और ना ही सूतक के नियम लागू होंगे। असम के गोलाघाट में धन

0: हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, फोर लेन हाईवे की एक लेन को किया गया बंद। मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड हुआ, करीब 7 घरों पर गिरे पत्थर, मलबे में कई के फंसे होने की भी आशंका है। तमिलनाडु के मदुरै में लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, हफ्ते भर गर्मी के बाद आई बारिश ने लोगों को राहत दी। 80वें स्वतंत्रता दिवस में 2 दिन बाकी, सुरक्षा के अभेद किले में बदला दिल्ली का लाल किला। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करीब 15,000 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात, 1,000 से ज्यादा कैमरों और FRS तकनीक से भी निगरानी। गुजरात के महसाणा में स्कूली बच्चों ने नहीं मानी हार, मेहनत से रचा इतिहास, स्कूल में नहीं था मैदान तो खेतों में दौड़कर जीते 138 मेडल। स्कूल में जरूरी सुविधाएं न होने पर गांव के किसानों ने किया सहयोग, खेतों को समतल कर बनाया खेल का मैदान। वेरसोडा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए किया कमाल, सिर्फ 3 साल में एथलेटिक्स में जीते 56 स्वर्ण, 40 रजत और 42 कांस्य। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा। कन्नौज जिले के 458 सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जा रही जूडो और थाइक्वांडो की ट्रेनिंग का दिखा असर, बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीते मेडल। फिल्म बंटवारा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, प्रीति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्रों से शेयर किए फिल्म से जुड़े किस्से। फिल्म बंटवारा के जरिए करीब 8 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही प्रीति जिंटा, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। प्रीति ने फिल्म की कहानी को बताया दिल के बहुत करीब, आमिर खान प्रोडक्शन के तले फिल्म बंटवारा 1947 का राजकुमार संतोषी ने निर्देशन किया है। फिल्म हैवान का टीजर रिलीज हो गया है, अक्षय कुमार और सैफ अली खान अहम भूमिकाओं में आएंगे नजर, सितंबर में रिलीज होगी। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया है फिल्म हैवान का निर्देशन, हैवान के जरिए करीब 18 साल के बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएगी अक्षय और सैफ अली खान की जोड़ी। कृष्णावतारम पार्ट 2 के रिलीज से पहले मेकर्स का बड़ा फैसला, फिल्म का पहला भाग कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट को दोबारा सिनेमाघर में किया जाएगा रिलीज। सलमान खान और संजय दत्त अब इंटरनेशनल एक्शन फिल्म 7 डॉग्स में मिस्र के सुपरस्टार अहमद एज और करीम अब्देल अजीज के साथ नजर आएंगे। फिल्म कॉमन आदमी के साथ बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़े नेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी, आरित्र दास क्रिएशन और नर्चर राइस प्रोडक्शन के साथ ही उनका पहला प्रोजेक्ट। 26 साल के बाद बॉलीवुड में वापसी करेगी 90s की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली 2 में नजर आएंगी। फिल्म उड़ता तीर की नई रिलीज डेट का ऐलान 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर की ईथा हुई पोस्टपोन, अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म, फिल्म में रणदीप हुड्डा और जीशान अयूब। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म राणा बाली की रिलीज डेट में बदलाव, अब 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिक्स से पुर्तगाल में की सिविल मैरिज, दोनों ने अंगूठियों के साथ शेयर की तस्वीर। भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद ने रचा इतिहास, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वॉश चैंपियनशिप में देश को दिलाया पहला गोल्ड। भारत और अफगानिस्तान के बीच में 3 T20 मैच की सीरीज का ऐलान, BCCI ने दी जानकारी। तेरह से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे तीनों मैच, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में होंगे तीनों मुकाबले। IPL टीम गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को वापस लेने से किया इनकार, हार्दिक ने वापसी के लिए कैप्टन बनाने की रखी थी शर्त। रोहित शर्मा होस्ट के तौर पर टीवी पर करेंगे डेब्यू, द रोहित शर्मा शो नाम से जल्द आएगा एक गेम शो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें
2: आपके ऊपर सूर्य ग्रहण

0: कैसा पड़ सकता है प्रभाव, क्या करें सूर्य ग्रहण के बाद उपाय ताकि विपदा टल जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पन्ना जिसे यूं ही हीरों की नगरी नहीं कहा जाता, यहाँ कब किसकी चमक उठे किस्मत कुछ कह नहीं सकते। अब सरकोहा गांव के 7 मजदूरों की किस्मत एक ऐसे हीरे ने चमका दी जिसकी चमक ने उनके अधूरे सपनों में नई उम्मीद भर दी। खदान से 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा निकला है जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन इस हीरे की असली चमक उन सपनों में दिखाई दे रही है जो अब पूरे होने की उम्मीद जगा रहे हैं।
2: ये कोई मामूली चमक नहीं है, ये है 16.96 कैरेट का नायाब हीरा जिसने पन्ना के सरकोहा गांव के इन 7 मजदूरों की किस्मत बदलने की उम्मीद जगा दी। दरअसल इस गांव की हीरा खदान में मजदूर रोज की तरह मेहनत कर रहे थे। बारिश के दौरान खदान की चाल का निरीक्षण करने पहुंचे पट्टाधारक अखिलेश पाल की नज़र मिट्टी के बीच चमकते हुए इस पत्थर पर पड़ी। जब जांच हुई तो पता चला कि ये जेम क्वालिटी डायमंड है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल मजदूरों ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।
3: अखिलेश पाल है, सनाफ श्री गणेश पाल, ये निवासी है नारंगी बाग पुरुषोत्तमपुर जिला पन्ना के, और इनको सरकोहा क्षेत्र में इनको हीरा मिला है और इनके द्वारा पूर्व में खदान लगाई गई थी जिसकी चाल को धो करके और वो करके इनके कुछ पार्टनर थे इनके साथ में मिलकर के हीरा मिला हुआ है। 16.96 कैरेट का बेस कीमती उपजल किस्म का हीरा है और जो इन्होंने हीरा कार्यालय में जमा कराया है।
2: इस हीरे की सबसे खास चमक उन 3 मजदूरों पर दिखाई दे रही है जिनकी आंखों में बरसों से एक सपना है, संतोष, सरमन और अरुण, जिनकी 30 से 38 साल की उम्र के इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति ऐसी रही है कि शादी अब तक नहीं हो सकी। इन मजदूरों को अब उम्मीद है कि हीरे से मिलने वाली रकम उनकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।
4: अपनी शादी कराएंगे, मम्मी की सेवा करेंगे, घर बनाएंगे।
5: अच्छा, शादी पहला काम रहेगा आपका?
4: हाँ, शादी पहला काम है। उम्र ज्यादा हो गई।
5: कितने साल के हो गए आप?
4: 35 साल के हो गए हम।
6: वो अभी हीरा पकड़ेंगे और घर मकान बनाएंगे, शादी करेंगे और घर और भी कुछ करेंगे।
2: जिस मिट्टी में रोज पसीना बहाया उसी मिट्टी ने आज जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद दे दी। किसी के लिए ये सिर्फ 16.96 कैरेट का हीरा है, लेकिन इन मजदूरों के लिए ये बेहतर जिंदगी, अपना घर और अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद है। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़े। जश्न आजादी से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की डल लेक पर शिकारों पर लहराया तिरंगा, सोपोर में भी तिरंगा यात्रा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर RPF बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समा, यात्रियों के लिए बनाया गया खास सेल्फी पॉइंट। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एलिफेंट डे, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को किया याद। कुछ घंटे बाद लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखाई देगा खगोलीय नजारा, स्पेन से आइसलैंड तक लोगों में अद्भुत नजारे को देखने का उत्साह।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में अब देशभक्ति का रंग छाने लगा है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी तैयारियों के बीच तिरंगा रैली का जगह जगह आयोजन हो रहा है, और इन आयोजनों में देशभक्ति की बयार बह रही है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, तिरंगा रैली में देशभक्ति और एकता का संदेश। देश भर में देशभक्ति के रंग बिखरे हैं, कहीं सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए लोग कदम ताल करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं कश्मीर की वादियों में शिकारे तिरंगे के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं।
15: डल झील की लहरों पर तिरंगा शान से लहरा रहा है, घाटी की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम निकल रहा है, कहीं बच्चे में देशभक्ति का जोश दिखाई दे रहा है, तो कहीं राजधानी की सड़कों पर तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। ये तस्वीर किसी एक शहर की नहीं है, बल्कि देश भर में ज्यादातर शहर देशभक्ति के रंग में रंग गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में निकाली तिरंगा रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान दिखी
16: जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। और गांदरबल में भी आज जिला इंतजामिया की तरफ से और बाकी जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आज रैली का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने स्कूली बच्चों का यहाँ मौजूद, ये इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों को कितना जोश है, जज्बा है इस तिरंगा रैली।
15: जम्मू कश्मीर के सोपोर में भव्य बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें शामिल लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हर बाइक पर तिरंगा, दिल में देश के लिए गर्व का भाव नजर आया।
17: हजारों की तादाद में यहाँ पे जो खासकर सोपोर का जो यूथ है वो वॉलंटियर इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
15: दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी भव्य बाइक पर तिरंगा रैली निकाली गई। भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक निकाली गई रैली में जवान और सांसद शामिल हुए।
18: हर घर तिरंगा कैंपेन का एक आज अलग नजारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जब ये जवान, बीएसएफ के जवान, एनएसजी के कमांडोज तिरंगा यात्रा निकालने के लिए तैनात इस वक्त भारत मंडपम पे है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, हर कठिन से कठिन मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज एक अलग तस्वीर, आमतौर पे लोगों से दूर एनएसजी कमांडोज, लेकिन आज भारत मंडपम पे जब तिरंगा यात्रा निकलने वाला है तो एनएसजी कमांडोज भी उसमें शामिल हो रहे हैं।
15: स्वतंत्रता दिवस आने में कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में बाइक यात्रा को लेकर सभी में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी देशभक्ति गीत गाते नजर आए।
18: आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को क्या मैसेज है।
19: मैं आज चार लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पर तन अर्पण तन मन सारा, झंडा ऊंचा।
15: हर कदम के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश देश भर में गूंज रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल के छात्र और अधिकारियों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
20: जो हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और जो हम लोग आज अच्छे जो वातावरण में जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं और गुलामी से जो आज़ादी हम लोग को मिली थी, उनको श्रद्धा सुमन करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलता है। और हम सभी से अपील करेंगे इस कैंपेन से में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने घरों पर एक तिरंगा जरूर लगाएं।
15: जाहिर है तिरंगा रैली को लेकर देश भर के युवाओं में जोश हाई है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों पर तिरंगे रैली में उमड़ती भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि जोश से भरा ये हिंदुस्तान नया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज, श्रीनगर से अशरफ वानी और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
21: झांसी रेल मंडल के स्टेशनों पर अब आपको देशभक्ति के तराने सुनाई देंगे। यहां पर लगे अनाउंसमेंट सिस्टम पर ट्रेनों से संबंधित जानकारी के साथ लोगों को वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई देगी। आजादी के जश्न के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर वंदे मातरम गीत और आजादी के तराने लगातार एक सप्ताह तक गूंजेंगे। ऐसे में आज की हमारी अगली, यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है, वो है 100 रेलवे स्टेशनों पर सुनिए देशभक्ति के तराने। जी हां, झांसी रेल मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशनों पर पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए देशभक्ति के गीत सुनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन बिल्डिंग को भी तिरंगे लाइट्स से सजाया जा रहा है।
22: रेलवे स्टेशनों में लगे अनाउंसमेंट सिस्टम पर ट्रेनों से संबंधित जानकारी के साथ वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दे रही है। दरअसल 9 से 15 अगस्त तक रेलवे स्टेशनों पर वंदे मातरम सहित कई देशभक्ति गीतों का प्रसारण शुरू हो गया है। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लगे अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए देशभक्ति के गीत बजाए जाने की शुरुआत कर दी गई है। झांसी रेल मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशनों पर इन गीतों का प्रसारण शुरू हो गया है। रेलवे की कोशिश है कि सभी देशवासी पूरे उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाएं।
1: पूरा राष्ट्र 9 से 15 अगस्त तक जो स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं उसी श्रृंखला में स्टेशनों पर जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है मतलब देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं, ये इसमें इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे कि जो रेल यात्री सुविधाओं पर कोई प्रभाव ना पड़े, साथ ही साथ जो हमारा जो आजादी का जो समारोह है उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
22: पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान और अन्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। रेलवे भी इस जश्न को देशभक्ति गीतों के माध्यम से मना रहा है, लेकिन इन गीतों से रेलवे की सेवा प्रभावित न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके पर स्टेशन को तिरंगे लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है।
1: इस अवसर पर जहाँ जहाँ हमारी जो स्टेशन पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है उनको इल्यूमिनेट किया जाएगा ट्राई कलर में, जो हमारे जैसे बड़े बड़े स्टेशन हैं उनके साथ साथ जो वहाँ भी व्यवस्था है वहाँ पे हम तिरंगा रंग में जो लाइटें लगाई जाएंगी और जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है इसको और बेहतर और शानदार तरीके से हम सेलिब्रेट।
22: रेलवे की इस पहल का स्वागत रेल यात्री भी कर रहे हैं। इन गीतों से उनके बचपन की याद ताजा हो गई है जब स्कूलों में ऐसे ही तराने बजा करते थे। सफर करने पहुंचे यात्रियों के मुताबिक देशभक्ति गीतों को सुनकर उनको एक अलग ही अनुभव हो रहा है।
3: अभी मैं आया तो इधर वंदे भारत मातरम और देशभक्ति के गीत बज रहे थे, सुन के बड़ा अच्छा लगा। मतलब बचपन के दिन याद आ गए, जब स्कूल जाते थे स्कूल में हम लोग भी गाया करते थे, तो ये देश के प्रति और झांसी मीरांगना लक्ष्मी बाई के प्रति मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए, आदमियों के लिए लगना चाहिए कि थोड़ा सा याद आए कि हम भारत देश के निवासी हैं।
22: इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर रेलवे स्टेशनों को गरिमामय, संगीतमय और ऊर्जावान बनाना है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को देश प्रेम की भावना से सराबोर करने के लिए 19 सदाबहार देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं।
3: अच्छी बात है, देशभक्ति गीत बजना चाहिए और बाय में बजना चाहिए रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति गीत, इसमें अच्छा लगता है।
5: बहुत अच्छा लग रहा था, अपने देश के गीत बज रहे हैं तो अच्छा लगता है सुन के, इसलिए बजाया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अपन मनाएंगे, इसलिए बजाया जा रहा है, अच्छा लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है।
22: स्टेशन पर आपातकालीन या जरूरी सूचना यात्रियों को मिले और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए सभी प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमोद कुमार गौतम, झांसी, गुड न्यूज टुडे।
21: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोर पकड़ चुकी हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर तिरंगा लहराया जा रहा है। ऐसे में तिरंगे की भी खूब मांग हो रही है। ऐसे में दिल्ली के सदर बाजार में तिरंगा बनाने का काम शुरू हो चुका है और यहां पर एक व्यक्ति की 3 पीढ़ी इसी काम में जुटी हुई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है फ्लैग अंकल की विरासत संभालता परिवार। जी हाँ, दिल्ली का सदर बाजार वो इलाका है जहां कभी फ्लैग अंकल के नाम से मशहूर शख्स तिरंगा बनाया करते थे। आज उनके परिवार ने भी इस परंपरा को उसी गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है।

0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा लहरा रहा है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर ये यात्राएं भारत की एकता, अखंडता और गौरव की तस्वीर पेश करती हैं। आलम यह है कि बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के कई शहरों में तिरंगा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली के सदर बाजार में अब्दुल भी दिन रात तिरंगा बनाने में जुटे हैं।
1: लहराते हुए तिरंगे को देखकर हम सब कितना खुश होते हैं, सीना जैसे गर्व से फूल जाता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के सदर बाजार में एक ऐसी दुकान पर लेकर आ रहे हैं जहां पर पीढ़ियां दर पीढ़ियां तिरंगे को बनाने में, उसको तैयार करने में, उसकी सिलाई करने में लगी हुई हैं।
0: यहां कहीं कपड़े की कटिंग हो रही है तो कहीं मशीनों पर सिलाई का काम चल रहा है। यानी तिरंगे की कटिंग से लेकर सिलाई, पैकिंग और सप्लाई तक हर काम पूरी रफ्तार से जारी है।
1: आप लोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है, फ्लैग बनाना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो किन बातों का ख्याल आप लोग रखते हैं जिसमें बनाते हैं? खासकर जो हमारा अशोक चक्र है उसमें कितनी उसकी लाइंस होंगी, कैसा चक्र होगा, सब कुछ डिसाइड करते होंगे?
2: मेरे फादर इन लॉ हैं, फ्लैग अंकल के नाम से बहुत फेमस हैं, और उसी उन्होंने जो हमें काम सौंपा है वो काम हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल करा कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने फ्लैग को बनाने में, सबसे पहले मैं बताऊंगा हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लैग है एक इसकी आन बान है, तो हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसको प्रिंटिंग में जो है पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रिंटिंग वर्क हो।
0: आजादी के पर्व को देखते हुए काम की रफ्तार भी कई गुना बढ़ा दी गई है। ऑर्डर बढ़े तो कारीगरों के हाथ भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तिरंगा बनाना महज रोजगार नहीं बल्कि देश के प्रति अपने जज्बे और सम्मान को रंगों में पिरोने का एक जरिया है। तभी तो इनके बनाए झंडे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचते हैं।
3: हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम में चल रही है, जो कि हमने सन 1962 से मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था, उनके साथ मेरे भैया बड़े जिनको फ्लैग अंकल के नाम से खिताब दिया गया, अब्दुल गफ्फान ने उनका सहयोग किया, तो उसके बाद हम उनके साथ लगे, अब हमारी तीसरी जनरेशन है, हमारे बच्चे उनके साथ लगे हैं।
0: ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, इनमें करोड़ों भारतीयों का गर्व, सम्मान और देशभक्ति का जज्बा जुड़ा है। जब यही तिरंगे घरों, दुकानों और सड़कों पर लहराते हैं तो हर तरफ एक ही रंग नजर आता है, तिरंगे का रंग, हिंदुस्तान के गौरव का रंग। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: रक्षाबंधन ये वो डोर है जिसके जरिए भाई और बहन एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े और जुड़े होते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में अब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में पूरे देश में इस त्यौहार को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है, और वो है राखी पर बहनों को डाक विभाग का तोहफा। आपको बता दें कि डाक विभाग ने राखी पर वाटर प्रूफ लिफाफे तैयार किए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर में राखी की डोर बंधुत्व और भाईचारे का एक खूबसूरत संदेश दे रही है। यहां एक मुस्लिम परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से देव राखी बनाने का काम कर रहा है।

0: बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन, जिसका इंतजार हर बहन साल भर करती है। राखी का ये धागा भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें बहन की ढेरों भावनाएं छिपी होती है। भाई की लंबी उम्र की दुआ और जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाने का भरोसा होता है, और इस पर्व को खास बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। बाजार सज गए हैं, राखियां प्यार और सद्भाव से बनाई जा रही हैं। अकोला के बालापुर की ये तस्वीरें सिर्फ राखियां बनाते हुए हाथों की तस्वीरें नहीं, बल्कि ये उस भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की मिसाल है, जहां त्योहार मजहब की सीमाओं से आगे निकलकर लोगों को जोड़ते हैं।
1: लगभग चार पीढ़ियों से अधिक समय से जो है ये परिवार जो है यही रेशमी धागे को, जो देव राखी जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, जो पूजनीय राखी का धागा होता है, सबसे पहले ये राखी जो है बहन भाई से भी पहले जो है वो भगवान पर चढ़ती है, उस धागे को बनाने का काम ये मुस्लिम परिवार यहाँ पर करता नजर आ रहा है। मानो रेशमी धागे के साथ, भाई बहन के रिश्ते के साथ, हिंदू मुस्लिम रिश्ते को भी ये धागा जो है और मजबूती देता है।
0: बालापुर के ताज मोहम्मद का परिवार पिछले पांच पीढ़ियों से राखी बनाने का काम कर रहा है। दादा परदादा से मिली इस परंपरा को ताज मोहम्मद ने आज भी संभाल कर रखा है। राखी बनाने का ये काम अब उनके लिए सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है।
2: ये हमारा जो काम है, ये हमारे दादा परदादाओं के टाइम से चलता आ रहा है।
3: मुझे बोलिए, आप मुस्लिम हैं लेकिन हिंदुओं के त्योहार का हर...
2: नहीं, मुस्लिम है हम, मगर हमें ये हमारी पेट रोजी है, इसमें कोई जात पात कुछ चीज नहीं। ये समझ लो ये काम है, ये इसमें हम, इसमें असल में क्या है सर कि हम ये हिंदू का है, ये फलाने का है, हम ये चीजों को नहीं मानते। ये त्योहार सबका है और हम ऐसी चीजों में विश्वास रखते ही नहीं जिससे किसी का, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे।
0: राखी का पर्व बेहद खूबसूरत है। ये पर्व केवल भाई बहन के रिश्तों को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ता है। नागपुर में भी राखी के त्योहार को लेकर तैयारी तेज है। यहाँ राखी की डोर ने भाई बहन के प्यार के साथ देश के जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी जोड़ा। यहाँ राखी की डोर भाइयों की कलाई के साथ साथ देश की सरहदों पर तैनात उन जवानों तक पहुंचाई जा रही है, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में डटे हैं।
4: यदि सच कहूं तो बहुत ही भावुक क्षण होता है जब वो अपने परिवार से दूर होते हैं, और विशेषतः त्योहारों में संभव नहीं होता कि सबको छुट्टी मिल सके। तो जब वो दूर होते हैं और अपना देश का हर नागरिक उनका परिवार होता है, वहाँ वो देश की सुरक्षा के लिए अर्थात देश के आखिरी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी बैठे हैं, तो जब ये राखियाँ उनके हाथों में पहुँचती हैं तो उनके दिल में जोश का फिर से वही संचार होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इन धागों के साथ किसी बहन का विश्वास है, किसी बच्चे की आस्था है, और पूरा देश मेरे पीछे खड़ा है।
0: राखी के पर्व के दौरान बारिश की भी संभावना बनी रहती है, लिहाजा बहनों की राखी बारिश में खराब ना हो और सुरक्षित भाई तक पहुंचे, इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से खास पहल की गई है। धौलपुर पोस्ट ऑफिस में बहनों की राखी के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे का इंतजाम किया गया है, जिसकी कीमत 10 रुपए और 15 रुपए रखी गई है। वहीं राखी उपहार और मिठाई को सुरक्षित भेजने के लिए 30 रुपए का वाटरप्रूफ बॉक्स वाला विशेष पैकेज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 अगस्त से लिफाफा और बॉक्स पर 10% की छूट भी दी जा रही है। इस बार डाक विभाग ने राखी पर विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार राखियां और गिफ्ट भाइयों को समय पर स्पीड पोस्ट से डिलीवरी हो सके, इसका खास ख्याल रखा जाएगा।
5: बार भारतीय डाक विभाग ने 12 अगस्त से 10% राखी मिल पे छूट की है, तो इस बार बहने 10% का छूट के छूट पाएंगी राखी भेजने पे, और आसान है, आप एक बार में 5 बार मेल करा सकते हो स्पीड पोस्ट, और राखी वितरण के लिए टाइम पे डिलीवरी होगी रक्षाबंधन से, तो 12 अगस्त से 10% छूट के साथ में बहने अपने भाइयों के लिए राखी भेज सकती हैं।
0: राखी की ये डोर सिर्फ भाई बहन के प्यार का ही प्रतीक नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का भी संदेश देती है। अकोला से धनंजय साबले, धौलपुर से उमेश मिश्रा और नागपुर से योगेश वसंत पांडे, गुड न्यूज टुडे। अगले महीने 26 तारीख से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पितृपक्ष की शुरुआत से पहले ही गयाची में पंडा समाज अपने बही खातों को दुरुस्त करने में जुट गया है। पंडों के बही खातों में तीर्थयात्रियों के वंशजों का 200 से 300 साल पुराना रिकॉर्ड दर्ज होता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है पितृपक्ष से पहले गयाची में दुरुस्त होते बही खाते। भगवान विष्णु की नगरी गयाची में पितृपक्ष मेला शुरू होने के पहले यहां के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में रहने वाले गयापाल पंडा अपने यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के बही खातों में उलझे नजर आते हैं। गयापाल पंडा समाज के लोग अपने तीर्थयात्रियों के पूरे वंशजों का नाम, पता तथा वो गया में कब आए और किनका पिंडदान किया था, इन सब का पूरा रिकॉर्ड अपने बही खातों में दर्ज करके रखते हैं। इनके बही खातों में 200 से 300 साल पुराना रिकॉर्ड मिल सकता है जिसमें वो पिंडदान करने आए थे। तीर्थयात्रियों की पूरी जानकारी और हस्ताक्षर रखते हैं। अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर तीर्थयात्री विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के देवघाट स्थित अन्य जगहों पर पिंडदान एवं तर्पण करते हैं। पितरों के मोक्ष के लिए मात्र गयाजी ही ऐसा धाम है जहां पिंडदान और तर्पण करने से मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों एक रोबो कॉप की खूब चर्चा हो रही है। ये हाईटेक रोबोट प्लेटफॉर्म के साथ साथ रेलवे स्टेशन के हर हिस्से पर पैनी नजर बनाए रखता है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। रेल यात्रियों की सुरक्षा में एआई रोबोट अर्जुन तैनात। जी हां, यात्रियों की सुरक्षा पर नजर रखने के साथ साथ एआई तकनीक से लैस ये रोबोट कई जटिल कामों को एक साथ निपटा सकता है।
6: चौकस निगाहें, चप्पे चप्पे पर नजर, आरपीएफ का ये रोबोट कॉप है मुसाफिरों की सुरक्षा का हम सफर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तैनात ये रोबोट कॉप रेल मुसाफिरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रोबोट का नाम है डीएससी अर्जुन। सिर पर आरपीएफ की कैप और चार पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल पर सवार इस एआई रोबोट को देखकर सभी की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी होती है कि लोग इसके बारे में पूछे बिना रह नहीं पाते। डीएससी अर्जुन के पास तैनात सिपाही मुसाफिरों को इस रोबोट की खूबियों के बारे में समझाते हैं। इस अत्याधुनिक रोबोट में 7 हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। ये रोबोट ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। रेलवे ट्रैक पर उतरने वाले यात्रियों पर इसकी पैनी नजर होती है। ये रोबोट आग जैसी घटना को तुरंत भांप लेता है। किसी भी गड़बड़ी का पता चलते ही ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। इस रोबोट को करीब 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। डीएससी अर्जुन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और रेलवे स्टेशन की दूसरी अहम जगहों की लगातार निगरानी करता है। निगरानी के साथ ही ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए मुसाफिरों को जागरूक भी करता है। ये रोबोट ट्रेनों के आवागमन, सामान की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक पार न करने की हिदायत के साथ लोगों को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी देता है। खास बात ये है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई जटिल कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। डीएससी अर्जुन रोबोट एआई, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस है। ये रोबोट आरपीएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभा सकता है। इसमें एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। ये रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स से यात्रियों की संख्या का आकलन करता है। इसकी एआई तकनीक लावारिस सामानों को तुरंत पहचान लेती है। ये संदिग्ध गतिविधियों के बारे में फौरन आगाह कर सकता है।
7: रोबोट है और ये सबके ऊपर निगरानी रखता है और जो भी क्रिमिनल या कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके अगर फिगर से अगर मैच कर जाता है तो ये सीधा हेडक्वार्टर तक वो पहुंचा देता है और लोगों को भी ये उनको बता देता है कि तो आपका सामान ठीक तरह से रखिए, सजा के रखिए और निगरानी में रखिए ताकि ये चोर के द्वारा कोई उसको उठा ना ले जाए।
6: रेलवे का मानना है कि डीएससी अर्जुन की तैनाती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये रोबोट रियल टाइम में अहम सूचनाएं जुटाकर अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करता है। इसके आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों की मदद पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले पहचान सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ साथ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में ये रोबोट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है। इस मौके पर जयपुर के आमेर में स्थित हाथी गांव में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां हाथियों को आभूषण से सजाया गया और उनके लिए एक शानदार दावत रखी गई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के लिए दावत। जी हाँ, जयपुर के हाथी गांव में विश्व हाथी दिवस पर एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। एलिफेंट राइडिंग के लिए मशहूर हाथी गांव में हाथियों के लिए आज एक भव्य दावत रखी गई जिसे हाथियों ने खूब एंजॉय किया। विश्व हाथी दिवस पर इस बार खास तौर पर हाथियों का फैशन शो हुआ जिसमें हथनियों को चांदी के गहनों से सजाया गया। इस मौके पर हथनियों ने रेड कार्पेट पर कैटवॉक किया। गुलाबो, जुनाली, हेमा, चंदा, पुष्पा, लक्ष्मी सहित कई हथनियों ने इस मौके पर अपनी सुंदरता की चमक बिखेरी।
8: वर्ल्ड एलिफेंट जितना खास है तुम सुनने में है उतना खास इसको जयपुर के एलिफेंट विलेज में बनाया गया है जहाँ हाथियों के लिए खास बूफे रखा गया है, उनको श्रृंगार किया गया है और उन्होंने की है रैंप। ये जो खास बूफे है वो इसी हाथी गांव में रहने वाले हाथियों पे जो करीब 75 हाथी है उनके लिए रखा गया जिसमें फ्रेश फ्रूट लगाए गए और उससे पहले हाथियों का श्रृंगार किया गया जिसके बाद इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है एक रैम वॉक के जरिए। और से एक हाथी ऐसा भी है जिसका बर्थडे क्या सेलिब्रेट किया गया तो उसको खास बनाया गया है केक कटिंग के जरिए जो ये दिखाता है कि जितना खास एक मनुष्य जीवन है उतना ही खास ये पशु व जानवरों का जो जीवन है वो है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए इनका बर्थडे और वर्ल्ड एलिफेंट डे इस जयपुर पे हाथी गांव में मनाया गया।
0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, दिन में तारे दिखाने वाला ग्रहण, हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा, इसरो को नासा का न्योता। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन की तैयारी, गोबर से बन रहे तिरंगा बाज और राखियां, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान जारी, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कब।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। लोग बिना जांचे परखे इसे सच मान लेते हैं और इसे लगातार शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ की रेखा के बीच का फर्क मिटाते हैं। पुरानी घटना कभी कभी नई बताकर परोसी जाती, हम हर उस खबर की तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ आप तक लेकर आते हैं सही सच्ची और सटीक खबर, ताकि आप किसी अफवाह का शिकार ना हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के करीब आते ही सांसद सानी घोष के स्वर बदल गए। यूजर्स एक वीडियो के जरिए सानी घोष पर लगातार तंज कस रहे हैं, क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो यूपी के गोंडा का है, जहां एक गांव में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर के घर पर हमला कर दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए, शुरुआत करेंगे फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सानी घोष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें दो क्लिप्स हैं। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके स्वर बदल गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर।
7: सांसद सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें दो क्लिप्स हैं। पहले क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती है।
6: बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोह। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हाँ वॉर है।
7: वही दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। वो ये भी कहती हैं कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
6: आजम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
7: अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायोनी घोष टीएमसी के साथ थी और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद सायोनी घोष की ये दो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स उसे वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि जब वो टीएमसी में थी तो बीजेपी पर हमला भर थी, बागी होते ही राष्ट्रवादी बनकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके बोल बदल गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और इस दौरान हमने ये गौर किया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स एक ही भाषण के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखा तो हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही महिला पर गया। ये महिला दोनों क्लिप्स में नजर आ रही है, इससे ये तो इशारा मिल गया कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही वीडियो के हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्लिप्स में सायोनी घोष एक जैसी ही साड़ी पहने हुए भी नजर आ रही है, इससे भी इशारा मिलता है कि एक ही समय के दोनों क्लिप्स हो सकती हैं। संसद में दिए गए किसी भाषण से इसे उठाया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि सांसद सायोनी घोष का वायरल हो रहा वीडियो कब का है। दूसरा सवाल ये कि ये कहीं सांसद सायोनी घोष के बयान को दो हिस्सों में बांटकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानना।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सायोनी घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो 29 जुलाई 2025 का है। घोष ने ये भाषण संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था। 16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे।
6: सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
7: इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। पाकिस्तान को बताया जाए कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटते हैं।
6: But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वज़ीर-ए-आज़म आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
7: वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है, लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं। दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो टीएमसी के साथ थी। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
8: और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए, ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है।
7: 7 अगस्त को सायोनी घोष ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, वो भी उस वक्त की जब वो टीएमसी में ही थी। इस भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए थे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये वीडियो है, जहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
9: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक व्यक्ति घास फूस से बना किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का लग रहा है। उस वीडियो के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बाउंड्री हटाने में उसका साथ दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा का मामला है, जहां एक गांव में कुछ मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हिंदुओं के घर पर हमला कर दिया। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत इटिया थोक गांव गिरधरपुर में संगठित होकर मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में होला हमला, गांव में फैला दहशत का माहौल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार पर जबरन उसे तोड़ते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गोंडा के इटियाथोक गांव गिरधरपुर में एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, लिहाजा इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग घास फूस से बनी अस्थायी दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर जबरन कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी इस हरकत का विरोध जरूर हुआ होगा। पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के जरिए ये इशारा भी मिल रहा है कि ये आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो ये घटना कब की। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानेंगे।
9: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात में जुटी। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले गोंडा के इटियाथोक थाना प्रभारी कमलकांत त्रिपाठी से बात की और घटना की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गोंडा के गजातपुर गांव का ही है और लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम गुटों के बीच कहासुनी हो गई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। वायरल वीडियो वाले एक एक्स पोस्ट के जवाब में गोंडा पुलिस ने 7 अगस्त को एक स्पष्टीकरण दिया था। इसमें पुलिस ने बताया था कि ये वीडियो 5 जून 2026 का है। गांव में एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था। बबलू उर्फ अफरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। वकील अहमद, इसरार अहमद, सलीम और तस्लीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इसके बाद 16 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो गोंडा का ही है, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये एक गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में हुए विवाद का वीडियो है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, दिन में तारे दिखाने वाला ग्रहण, हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा, इसरो को नासा का न्योता, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
2: महाराष्ट्र के अमरावती के एक स्कूल में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षक का तबादला होने पर उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षक के जाने की खबर से कई छात्र भावुक होकर रोने लगे और उनसे गले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने तो स्कूल का गेट तक बंद कर दिया ताकि शिक्षक वहां से जा ना सकें। इस भावुक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसे देखकर लोग छात्रों और शिक्षक के बीच के इस खास रिश्ते की तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों ने जिस तरह अपने शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान जताया, वो लोगों को छू गया। शिक्षक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी बच्चों ने दिखा दिया कि उनके लिए वो कितने खास हैं।
3: क्वेश्चन क्या है? वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में मैडम बच्चों की टेस्ट कॉपी देख रही हैं।
3: इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं और जानवर किडनैप हो रहे हैं,
2: जिसपे एक कॉपी को लेकर वो बहुत हंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल टेस्ट में सवाल पूछा गया था कि जंगलों से वन्य जीव कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस सवाल का जवाब एक बच्चे ने बहुत मजेदार दिया।
3: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
2: बच्चे ने कॉपी में प्रश्न का जवाब लिखा कि जंगलों से वन्य जीव इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि वो किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको जू में लाया जा रहा है। वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक्स किया है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
3: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है, हमने यही आंसर लिखवाया था।
4: मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
3: तो तुम 7 दिन नहीं आए थे तो तुम यही लिखोगे कि जानवर किडनैप हो रहे हैं, इसीलिए वन्य जीव कम हो रहे हैं। किडनैप किए हो क्या तुम? किसको? बकरी को लेके?
5: परी के दर्शन कराती हूँ परी के इंस्टाग्राम।

0: बट वाली ही रियल लाइफ परी दिखाते हैं।
1: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत ले रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि आखिर बेटी क्यों अपने पिता की दुलारी होती है। इस दृश्य को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है वीडियो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है। वहां पर पिता अपनी बेटी की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है। इस दौरान बेटी भी बिना कोई सवाल जवाब किए पापा के बालों को सहला रही है। प्यार, अपनापन और देखभाल जताने का ये खूबसूरत तरीका लोगों को पसंद आ रहा है।

देशभक्ति और उत्साह की एक प्यारी सी झलक लद्दाख के एक छोटे से गांव से सामने आई, जहां नन्हे बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे दिखे। बच्चों के मासूम चेहरे, सादगी भरी तैयारियां और देश के प्रति उनका उत्साह लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लद्दाख के गांव का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व महसूस करने का खास दिन है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई हाथ में तिरंगा लेकर चलता दिख रहा है, तो कोई उस दिन होने वाली परेड की तैयारी कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बता रही है कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार उन्हें भी उतना ही रहता है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। दरअसल पिता को जब घर के पास बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गया, उसे ढूंढने लगा। खोजबीन के दौरान बच्ची सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठी मिली और एक छोटे पपी के साथ ऐसे बातचीत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये प्यारा और मासूम पल इंटरनेट पर काफी पसंद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां पढ़ाई में व्यस्त बच्चों के बीच एक कुत्ता बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा और कुछ ही देर में वो पूरी स्टडी सेशन की जान बन गया। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं। सभी अपने अपने पढ़ाई के काम में बिजी हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत नजर आ रहा है। इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचता है। आमतौर पर कोई कुत्ता बच्चों के बीच पहुंचता है तो उसके साथ खेलने या उसे प्यार करने के लिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को परेशान करने के बजाय चुपचाप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। कुत्ते को जैसे ही आराम करने के लिए सही जगह मिली, वो वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में एक बच्चे की गोद में जाकर आराम से सो भी गया। आसपास बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और डॉगी अपनी ही दुनिया में सुकून से झपकी लेता रहा। उसकी सबसे प्यारी बात यही थी कि उसने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, न कोई शरारत, न भौंकना, न ही बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़। वो तो बस आराम से लेटकर अपनी नींद पूरी करता नजर आया।

इन दिनों सावन की कावड़ यात्रा पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग और बम बम भोले और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे।

दरअसल दो शिव भक्तों ने अपनी साधारण सी बाइक को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी का बिल्कुल जीवंत रूप दे दिया। जी हाँ, एक चलती फिरती नंदी बाइक। वीडियो में इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया

0: बाइक को एक अद्भुत और असली जैसा लुक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी को ही सफेद रंग के मुलायम और रोएदार कवर से ढका गया, जो बिल्कुल नंदी की खाल जैसा एहसास कराता है। बाइक की हेडलाइट के ठीक ऊपर नंदी महाराज का एक बेहद खूबसूरत और अस्थायी चेहरा लगाया गया, जिसे देख पहली नजर में धोखा हो जाए कि ये कोई असली बैल है या बाइक। दो श्रद्धालु इस अनोखे वाहन पर बड़े गर्व के साथ सवार होकर कांवड़ यात्रा के जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस का है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। लड़की ऑटो ड्राइवर से कुछ देर रुकने की इजाजत मांगती है। वो उससे कहती है कि क्या वो करीब 5 मिनट के लिए ऑटो रोक सकता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है। ड्राइवर भी बगैर किसी परेशानी के उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए ऑटो रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से इनकार करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है प्रभाव, क्या करें सूर्य ग्रहण के बाद उपाय ताकि विपदा टल जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधारा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखिए, दिन में तारे दिखाने वाला ग्रहण की वजह से भारत में नहीं लगेगा सूतक काल। हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा, तिरंगा यात्रा से देशवासियों को एकता का संदेश। और नासा का मून बेस प्रोग्राम पूरा करवाएगा हिंदुस्तान अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने इसरो को दिया न्योता। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली।

जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन की भी तैयारी। गोबर से बन रहे तिरंगा बाज और राखियां, पर्यावरण संरक्षण के साथ देशभक्ति का संदेश। हरिद्वार में कावड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कावड़िए। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एलिफेंट डे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को किया याद। कुछ घंटे बाद लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखाई देगी खगोलीय घटना, स्पेन और आइसलैंड तक लोगों में अद्भुत नजारे को देखने का उत्साह। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात सूर्य ग्रहण की, और इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण बस अब से कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाला है, जो कि दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा लेकिन भारत में नजर नहीं आएगा। ऐसे में यहां सूतक काल भी मान्य नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि देश में पूजा पाठ, मंदिरों के कपाट बंद करने या फिर रोजमर्रा के कामों पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए दुनिया के कई देशों में खास तैयारी की गई है, जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी शामिल है, जो इस हवाई विमान का इस्तेमाल करके सूर्य ग्रहण की पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाली है।

0: बस कुछ पलों का और इंतजार, जब दुनिया साल के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण का साक्षी बनने जा रही है। इस खगोलीय घटना में दिलचस्पी रखने वाले लाखों करोड़ों लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, ताकि वो इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को होते हुए देख पाए। भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 9:04 से होगी और रात 11:16 पर ग्रहण अपने चरम पर होगा, जबकि ग्रहण का समापन देर रात 1:28 पर होगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 घंटे और 24 मिनट का समय लगेगा।
1: वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी के किसी हिस्से पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। स्नान, कपड़े बदलना या फिर दान करना वैज्ञानिक रूप से ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। हालांकि ये धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व रख सकती है। एक बात जो विज्ञान और परंपरा दोनों में ही महत्वपूर्ण है, सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधी आंखों से ना देखें, क्योंकि सूर्य को देखने के लिए आपको जो है स्पेशल ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी आईज को इम्पैक्ट करती है।
0: हालांकि भारत के लोग इस खगोलीय घटना को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी लागू नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि देश में पूजा पाठ, मंदिरों के कपाट बंद करने या फिर रोजमर्रा के कामकाज पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और न ही गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के खास नियम मानने की जरूरत है।
2: 12 अगस्त 2026 श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है, बुधवार को खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है, परंतु ये भारत में दृश्य नहीं है। भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत भूमि से हम इसे नहीं देख पाएंगे, या देख कहां पाएंगे? या खग्रास सूर्य ग्रहण तो पश्चिमी यूरोप में देखेंगे, पश्चिमी अफ्रीका में देखेंगे, ग्रीनलैंड में देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखेंगे और उत्तरी प्रशांत महासागर में दिखेगा। ये भारत भूमि से दृश्य नहीं होने के कारण यह धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है।
1: अदृश्य ग्रहण का सूतक कभी भी मान्य नहीं माना जाता है। सूतक के नियम तभी लागू होते हैं अगर जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे ग्रहण दिखाई दे रहा है। और इस बार का जो ग्रहण है वो इंडिया में दृश्यमान नहीं है, बाकी के हिस्सों में वर्ल्ड के दिखाई देगा, इसलिए वहां पे सूतक मान्य होगा।
0: लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे आसानी से देखा जा सकेगा, खासकर यूरोप में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि स्पेन, उत्तरी रूस, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में ग्रहण दिखेगा, जबकि यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि जिन देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वहां 2 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा, इसलिए लोगों में खासा तौर पर इसे देखने की उत्सुकता है। पेरिस से आई ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। वहाँ लोग न सिर्फ बेसब्री से इस खगोलीय घटना का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। ग्रहण देखने के लिए पेरिस में सोलर इक्लिप्स ग्लासेस खरीदने की होड़ लगी है। हाल ये है कि कई फार्मेसियों में ग्रहण को देखने वाले चश्मों का स्टॉक खत्म हो चुका है।
3: Donc vivre sa première éclipse, enfin moi ça me fascinait un petit peu, je suis un peu fascinée par l'astronomie, etc. Donc voilà.
0: सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं में हमेशा से खगोल शास्त्रियों और स्पेस एजेंसियों की गहरी दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि इस बार भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सूर्य ग्रहण की घटना को कैप्चर करने के लिए WB-57 हाई एल्टीट्यूड जेट विमान तैनात किया है, जिसे करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा। इतनी ऊंचाई पर उड़ने से पृथ्वी के वायुमंडल की धूल, बादल और जल वाष्प जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सूर्य की बेहद साफ तस्वीर मिलती है। नासा के जेट पर विशेष कैमरे लगे हैं जो कोरोना से निकलने वाली इंफ्रारेड तरंगों को रिकॉर्ड करेंगे, जिन्हें धरती का वायुमंडल सोख लेता है।
4: The overall mission is to capture the eclipse. The science team is looking for data based on the eclipse and the corona of the sun. My role is to basically get the aircraft into the correct piece of airspace and in the timing correctly so that we can actually get as much totality so they can grab as much data they can from that event.
0: सूर्य को लेकर खगोल वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण की ये घटना खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे सूर्य से जुड़े रहस्यों को और समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए बात करते हैं उस अभियान की जो इस वक्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चला जा रहा है। बात हम कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह है कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। और इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल
1: है? आज की रैली में 132 बटालियन से श्री WR जोशुआ कमांडेंट, 132 बटालियन, सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बगतौर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बगतौर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चढ़ाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले यह अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के, देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के, जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करते हैं।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज चार लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: तिरंगा यात्रा से जुड़ी ऐसी ही रौनक कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन को तिरंगे की थीम पर रोशन कर दिया गया है। दो दिन बाद देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश में जश्न ए आजादी की ये शानदार जानदार तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: बात करेंगे अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को से मिले उस न्योते की जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उसके बढ़ते दबदबे को दर्शाता है। पूरी दुनिया से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मून बेस प्रोग्राम किसी से छिपा नहीं है, जिसका मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहला स्थायी आधार केंद्र बनाना है, ताकि वहां लंबे समय तक रहकर अंतरिक्ष यात्री संसाधनों की खोज कर सके। और इसके अलावा दुनिया को चांद, पृथ्वी और पूरे सौरमंडल का इतिहास और भूगोल पता चल सके। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका के नासा को भारत के साथ और सहयोग चाहिए, यानी नासा का मून बेस्ड प्रोग्राम का लक्ष्य हिंदुस्तान ही पूरा करवाएगा।

0: 57 वर्ष से साल दर साल अंतरिक्ष में कमाल करने वाले इसरो का दम दुनिया ने भी मानना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले अमेरिका की एजेंसी नासा को भी इसरो की जरूरत पड़ रही है। अंतरिक्ष खोज में अग्रणी नासा ने अपने मून बेस प्रोग्राम के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को सहयोग करने के लिए न्योता भेजा है। दरअसल 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर में CSJWG यानी भारत अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में नासा ने इसरो को अपने महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट मून बेस प्रोग्राम में सहयोग करने के साथ आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया। अमेरिकी दूतावास के अनुसार दोनों पक्षों ने आर्टेमिस समझौते के तहत खुले वैज्ञानिक डेटा साझा करने पर सहयोग आगे बढ़ाने की दिशा में भी सहमति जताई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर प्रस्ताव की पुष्टि की। दरअसल मून बेस प्रोग्राम अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास पहला स्थायी आधार केंद्र स्थापित करना है, ताकि अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह पाएं, काम कर सकें और रिसर्च के काम को आगे बढ़ा सकें।
1: इस तीन फेजेस में सबसे पहला फेज है जो 2026 से लेकर 2029 तक है। उस टाइम पे ये मून के साउथ पोल में जाकर वहां पर रोबोट्स, लैंडर्स ये सब लैंड करेंगे और खोज करेंगे कि वहां पर साउथ पोल में पानी है या नहीं। आपको याद होगा कि हमारे इसरो के चंद्रयान 2 या 3 में, तीन में हमने कहा था कि वहां पर पानी है, उससे पहले पुष्टि नहीं हुई थी। तो वो पानी का खोज करेंगे और कई बातें खोज करेंगे।
2: नासा का मून बेस प्रोग्राम अब सिर्फ इतना नहीं है कि इंसान को दोबारा से चांद पर उतारा जाए, बल्कि बात अब आगे की है। नासा इस प्रोग्राम के तहत कोशिश ये कर रहा है कि कैसे इंसान को चांद पर बसाया जाएगा। नासा इस पूरे प्रोग्राम को 3 चरणबद्ध तरीकों से करना चाहता है। पहले चरण में सबसे पहला काम वो ये करना जा रहा है कि वो नासा अपने साथ साथ कई सारी प्राइवेट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेगा। वो चांद की सतह का अध्ययन करेगा, वहाँ पर क्या मुश्किल हालात हैं, किस तरह से उसे इंसान के लिए तैयार किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर सतह की पूरी तरह से रिसर्च की जाएगी। रिसर्च के बाद दूसरा काम होगा कि उसी सतह पर, चांद की सतह पर, कैसे रोवर और कम्युनिकेशन के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाए, उन्हें वहाँ इस्टेब्लिश किए जाए। और तीसरे चरण में यानी कि अंतिम चरण में कोशिश ये है कि 2030 तक कैसे इंसान को वहाँ पर बसा दिया जाए।
0: दरअसल पिछले साल अमल में आए निसार मिशन की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को लेकर अमेरिका का भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ झुकाव बढ़ा है। बीते साल 30 जुलाई को भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो धरातल यानी पृथ्वी की सतह जैसे जमीन, समंदर और बर्फ की चादरों में छोटे बड़े बदलावों पर गहराई से नजर रखने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए था, जिसके बाद अमेरिका ने विज्ञान क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे को माना। अमेरिका के इस न्योते के पीछे चंद्रयान 3 की सफलता भी बड़ी वजह बनी है। दरअसल आज से करीब 3 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन के तहत भारत ने चंद्रमा के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। अमेरिका की योजना के अनुसार नासा का मून बेस भी दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र में ही बनना है, जिसकी वजह से चंद्रमा, मंगल और दूसरे अंतरिक्ष मिशनों तक पहुंच चुके इसरो का तजुर्बा नासा के लिए काफी मायने रखता है।
1: नासा के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध है और नासा तो देख रहा है कि हम एक के बाद एक चंद्रयान, फिर मंगलयान, अभी हम गगनयान और फिर अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो हम एक तरह से स्पेस मैं सुपर पावर तो नहीं कहूंगा अभी तक, लेकिन गिने चुने देशों में एक है जिनका स्पेस कैपेबिलिटी बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो हम जिसे कहते हैं बिग बॉयज के साथ खेल रहे हैं।
0: पिछले कुछ सालों में इसरो ने बेहद किफायती बजट में चंद्रयान 3 और सूर्य का अध्ययन करने वाला आदित्य L1 के लॉन्च में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं। 2025 में भारत ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग के अलावा पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की तैयारियां भी शामिल हैं, जिसका मकसद 3 भारतीय यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजकर सुरक्षित वापसी भी करवाना है। अंतरिक्ष से जुड़े इस तरह के जटिल मिशन पूरा करने की क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बहुत मजबूत किया है।
1: हमारा बजट जो है पूरा साइंस एक्सप्लोरेशन का, वो जो है कुछ $1.6 बिलियन का, और नासा का जो बजट है वो है कुछ $24 बिलियन। चीन का है 19 से 24 बिलियन डॉलर, वो सबको ठीक तरह नहीं बताते। और यूरोप का है कुछ 9.3 या 4 बिलियन डॉलर्स का। तो हम सबसे, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रूगल हैं, लेकिन हम जो आउटपुट है हमारा वो बहुत ही मतलब शानदार है।
0: चंद्रमा की सतह पर रिसर्च के लिए बेस बनाने की रेस में चीन भी जुटा है। रूस के सहयोग से चीन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के जरिए चांद पर अपना बेस बना रहा है, जिसका मकसद चंद्रमा की बनावट का अध्ययन करने के अलावा चंद्रमा को बेस की तरह इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहने की तकनीक विकसित करना है। अमेरिका चीन के इसी बढ़ते प्रभाव को रोकने और उससे मुकाबला करने के लिए भारत को साथ लाना चाहता है।
1: नासा का सहायता करें और चीन को टक्कर दें, और हम पहले जाकर, हम मतलब मैं कह रहा हूं इसरो, नासा, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं और दूसरे देश, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सेट्रा, ये सब जाकर एक पहले साउथ पोल में, चंद्रमा में जाकर एक हैबिटेशन बसाएं और एक बेस बसाएं। इसमें हमारा जो योगदान होगा वो बहुत ही मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण होगा, और इसीलिए नासा ने हमें चूज किया।
0: साल 2040 तक भारत का लक्ष्य भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने का है। ऐसे में नासा के मून बेस प्रोग्राम में सहयोग करना भारत के लिए भी अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, जिसकी बदौलत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष में कामयाबी के नए नए परचम लहरा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको आज बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद आप अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें कि जो दान करने से सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:41 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 6:06 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इसके समाप्त होने के बाद आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको लाभ हो। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को लगा। ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव देश दुनिया पर अगले 3 तक बड़ी गहराई से पड़ेगा और अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अगले 15 से 1 तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा अलग अलग राशियों के माध्यम से। कुछ राशियों को इससे लाभ होगा और कुछ राशियों को इससे समस्या होगी। ये ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि में लग रहा है तो इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के अगले दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, संतान की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, चिकित्सा में लापरवाही ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रिश्ते मधुर होंगे, अनाज का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब राशियों पर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को इनको क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो ग्रहण से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान करें तो परेशानियां कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा निगेटिव है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 13 अगस्त को दिन के समय में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके करियर पर और आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है, करियर और रिश्तों की समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गुड़ और आटे का दान अगर आप करेंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान की चिंता हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या दान करेंगे। सिंह राशि की अगर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर खराब हो सकता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गेहूं या गेहूं के आटे का दान अगर आप करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, खास तौर से धन और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल शिव जी के मंदिर में अगर आप जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, ग्रहण आपके करियर के लिए और आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अच्छा है। करियर की मुश्किलों को दूर करेगा और आपकी तमाम समस्याओं को समाप्त करेगा। जीवन में आगे बढ़ेंगे इस समय। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगले एक महीने तक सतर्क रहिएगा। और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, करियर की समस्या हल होगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए। ऑफिस में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी।

अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ग्रहण के बाद क्या करेंगे। धनु राशि की बात करें तो ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। मकर राशि, ग्रहण आपके करियर में समस्या पैदा कर सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है। इसलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कुंभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल है और कुंभ राशि वालों को ग्रहण से लाभ होगा, स्वास्थ्य और करियर में इनके सुधार होगा। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, ग्रहण आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रोक सकता है। ग्रहण के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसीलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी भी समय किसी भी मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर धन की बचत करने में समस्या आ रही हो, धन की बचत ना हो पा रही हो, तो एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, इससे पैसा आएगा भी और बचेगा भी। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और प्रार्थना करिए कि फंसा हुआ पैसा मिले। हर बुधवार को किसी भी समय गाय को हरा चारा खिलाइए और प्रार्थना करिए कि डूबा हुआ धन आपको मिले। लगातार 1 से 3 महीने तक आप ये उपाय करेंगे, फंसे हुए रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है, लेकिन इस बार आजादी का जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदियों और झीलों की लहरों पर भी नजर आने लगा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 150 बोट और इन बोट्स पर शान से लहराता तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा वाकई देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। यहां शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील, दोनों जगहों पर खूबसूरत नजारा। वो तिरंगा कितनी शान से यहां लहरा रहा है। पानी की लहरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगे के नीचे पूरा देश एक है और ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। देशभक्ति, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है सहारनपुर की गौशाला, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ ही रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। देशभक्ति के रंग में रंगा ये छोटा सा तिरंगा बाज दिखने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका बहुत खास है। ये बाज प्लास्टिक या फिर किसी सिंथेटिक मटीरियल से नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। सहारनपुर की इस गौशाला में गौवंश संरक्षण के साथ ही गोबर के उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पिछले साल करीब 3,000 बैच बनाए गए थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 5,000 पहुंच गई है, यानी कि हर साल इस स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल पहल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमत गोबर से तैयार एक तिरंगा बैच की अगर कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए ही है। वहीं गोबर से बने ये बैच पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें गमले में डाला जा सकता है जहां से ये खाद भी बन जाएगी। तो खास राखियां भी रक्षाबंधन से पहले तैयार की जा रही हैं। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां भारत चीन सीमा के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आजादी दिवस समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती इलाके में उत्साह का संदेश भी देखने को मिला। बर्फीली हवाओं और बेहद चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट न सिर्फ युवाओं के खेल कौशल का एक मंच है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करता है। इस भव्य आयोजन में खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका उत्साह भी देखने लायक था। इस खास कार्यक्रम का मकसद स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पक में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 गांव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली।

सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन की भी तैयारी। गोबर से बन रहे तिरंगा बैज और राखियां, पर्यावरण संरक्षण के साथ देशभक्ति का संदेश। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए।

एफएनडीए, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को किया याद। कुछ घंटे बाद लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखाई देगा खगोलीय नजारा, स्पेन से आइसलैंड तक लोगों में अद्भुत नजारे को देखने का उत्साह।

0: आगे शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है।
1: मध्य प्रदेश के पन्ना में एक हीरे ने रातों रात 7 मजदूरों की किस्मत बदल दी। इनमें से 3 तो इसलिए खुश हैं कि आर्थिक तंगी दूर होगी और फाइनली अब इनकी शादी हो पाएगी। असल में इन मजदूरों को खेत की खदान से 16.96 कैरेट का अत्यंत दुर्लभ जिम क्वालिटी का बेशकीमती हीरा मिला है जिसकी कीमत करीब 50 लाख रूपए बताई जा रही है। हीरे को शासकीय हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवा दिया गया है जहाँ से नीलामी के बाद रॉयल्टी काटकर बाकी रकम सीधे मजदूरों के खातों में भेजी जाएगी। नियम मुताबिक सरकारी नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि 7 पार्टनरों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। ऐसे में इन्होंने मिलने वाली रकम से भावी योजनाएं भी बना ली हैं। 30 से 45 साल तक के 3 लोग खुश हैं कि अब उनकी शादी हो पाएगी जो आर्थिक तंगी की वजह से संभव नहीं हो पा रही थी। वहीं बाकी मजदूर इन पैसों को पक्के मकान और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की सोच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज से भारतीय सेना की बहादुरी और संवेदनशीलता का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें सेना के जवान वन विभाग की मदद से मुश्किल में फंसे एक हिमालयन भालू की मदद करते दिख रहे हैं। तस्वीरें बांदीपुरा की गुरेज घाटी की है जहां एलओसी के पास खापुरी गांव में एक ग्रेट हिमालयन भालू का मुंह एक टिन के डिब्बे में बुरी तरह फंस गया था। इससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। वो कभी दीवार तो कभी फेंसिंग से टकरा रहा था। भारतीय जवानों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उसे ढूंढा और सूझबूझ और बहादुरी के साथ उसे टिन के डिब्बे से आजाद कराया। भालू फिलहाल मेडिकल जांच और निगरानी के लिए वाइल्ड लाइफ वेटनरी सेंटर में है। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन अगले ही पल राहत भी देती है। घटना बिहार में बरौनी कटिहार रेलखंड के खगड़िया जंक्शन की है जहां बीती रात सफर पर निकले एक परिवार के लिए आरपीएफ जवान देवदूत बनकर आया। आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील कुमार के मुताबिक यूपी के रहने वाले इस युवक जिनका नाम सोमपाल है, इन्हें खगड़िया स्टेशन से सीतापुर के लिए डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन लेनी थी, लेकिन वो गलती से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जनसेवा एक्सप्रेस में चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी तब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत ट्रेन में हैं। ऐसे में घबराहट में दोनों ट्रेन से कूद पड़े। महिला की गोद में बच्ची भी थी। संयोग से उन पर आरपीएफ जवान रमेश कुमार की नजर पड़ी तो वो फौरन मदद के लिए दौड़े और महिला और बच्ची की जान बचा ली। वहीं स्टेशन पर खड़े लोगों ने उसके पति सोमपाल की मदद की। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है और लोग आरपीएफ जवान की सतर्कता और तत्परता की तारीफ कर रहे हैं। बिहार के कटिहार में ट्रैक्टर में बारात लेकर आए इस दूल्हे की खूब चर्चा है। हालांकि बाराती बाइक पर भी हैं, लेकिन ट्रैक्टरों का काफिला देखने लायक है और सबसे शानदार तो है दूल्हे का अंदाज। खुद भी सजे हैं और ट्रैक्टर को भी खूब सजाया है। दिलचस्प तो ये है कि ट्रैक्टर की स्टेयरिंग भी खुद ही संभाल रखी है। शादी को यादगार बनाने का ये तरीका अच्छा है। वीडियो कटिहार के मोरसंडा गाँव की है जहाँ दिलशाद आलम दूल्हा बनकर कुछ इस अंदाज में अपनी दुल्हन रौनक प्रवीण को ब्याहने चले हैं। ये तस्वीरें लेह में आयोजित हो रहे पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव की है जिसका शुभारंभ मंगलवार को हुआ और इस मौके पर स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने क्रेन बनकर डांस के जरिए इस खास पक्षी के संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। 11 से 14 अगस्त तक चलने वाले इस 4 दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी इस दुर्लभ अल्पाइन पक्षी का संरक्षण करना और इसे इको टूरिज्म से जोड़ना है। आपको बता दें कि यह लद्दाख का राजकीय पक्षी भी है। देश भर से आजादी की सालगिरह के जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये तस्वीर भोपाल की है जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी जिससे राष्ट्रीय गौरव देशभक्ति और उत्साह से भरा माहौल बन गया। जश्न के माहौल को और बढ़ाने के लिए स्टेशन पर वंदे मातरम और यशोलभस्व लोगो वाला एक खास सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया। यहाँ लोग सेल्फी के जरिए यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करते दिखे।
0: और अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। तिरंगा भारत के आन बान और शान की पहचान है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर तिरंगा लहराने की तैयारी। कहीं तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं तो कहीं देश की शान हमारे तिरंगे को तैयार करने में कारीगर दिन रात जुटे हैं। लिहाजा देश भर में देशभक्ति के रंग बिखरे हैं। कहीं सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए लोगों का उत्साह, तो श्रीनगर की डल झील में शिकारे तिरंगे के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।

0: घरों में तिरंगा, साइकिल पर तिरंगा, बाइक पर तिरंगा, हर तरफ देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है। श्रीनगर में डल झील की लहरों पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। घाटी की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम निकल रहा है। कहीं बच्चों में देशभक्ति का जोश दिखाई दे रहा है, तो कहीं सड़कों पर तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में निकली तिरंगा रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा और चेहरे पर मुस्कान दिखी।
1: लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं और गांधरबल में भी आज जिला इंतजामिया की तरफ से और बागे जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आज रैली का अहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने स्कूली बच्चों का यहाँ मौजूद, ये इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों को कितना जोश है, जज्बा है इस तरह रैली से।
0: जम्मू कश्मीर के सोपोर में भव्य बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें शामिल लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हर बाइक पर तिरंगा, दिल में देश के लिए गर्व का भाव भरा हुआ नजर आया।
2: पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 15 अगस्त की तैयारी बड़े जोशों में है और इस वक्त हम मौजूद है सोपोर में और आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहां पे बाइक रैली का इनेकाद होने वाला है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहां पे जो खासकर सोपोर का जो यूथ है वो वॉलंटियर इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे साथ एक जवान है। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो आज पुलिस की तरफ से जो बाइक रैली है?
3: जी, मेरा नाम सफियान मुश्ताक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी रैली नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे बड़ी होनी चाहिए जी। क्योंकि ये हमारा हक है, ये कश्मीर का हक है, क्यों हम इंडिया का पार्ट है, इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का दिल है।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं।
0: श्रीनगर में ही सीआरपीएफ की ओर से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लहराते इन बच्चों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिलों में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है।
5: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
0: देश की राजधानी दिल्ली में भी भव्य बाइक पर तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक जवान और सांसद शामिल हुए।
6: 2022 से देश भर में हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया और उसी के तहत ये तिरंगा यात्रा भारत मंडपम से हर साल निकाली जाती है। इस साल भी आपको जो विजुअल्स दिखेंगे उसमें बीएसएफ के जवान और एनएसजी के जवान दिखाई देंगे, साथ में एनडीए के सांसद, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं भारत मंडपम से निकले इस तिरंगा यात्रा में। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीपी राधा कृष्णन साहब ने तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया और अब ये यात्रा नेशनल स्टेडियम की तरफ बढ़ चला है।
0: स्वतंत्रता दिवस आने में कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में बाइक रैली को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी देशभक्ति के गीत गाते नजर आए।
6: मनोज तिवारी हैं हमारे साथ। देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
7: मैं आज चार लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, सुधा बरसाने वाला इस परतन अर्पण तन मन सारा झंडा ऊंचा
6: मैंने कर दिया
8: नौ सिवारी झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना गाते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये जो छटाएं ये जो रंग इस वक्त आपको दिखाई दे रही है ये भारत मंडपम से आगे बढ़ने वाली नेशनल स्टेडियम की तरफ बढ़ने वाली तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं।
0: ये तस्वीर किसी एक शहर की नहीं बल्कि देश भर में ज्यादातर शहरों में देशभक्ति का यही तिरंगा रंग चढ़ा हुआ है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है तिरंगा रैली को लेकर देश भर के युवाओं में जोश हाई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाह है कि देश का हर नागरिक देशभक्ति के जोश और उत्साह से भरा हुआ है। आलम ये है कि बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के कई शहरों में तिरंगा बनाने का काम तेज हो गया है। दिल्ली के सदर बाजार में अब्दुल भी दिन रात तिरंगे बनाने में जुटे हैं।
9: लहराते हुए तिरंगे को देखकर हम सब कितना खुश होते हैं, सीना जैसे गर्व से फूल जाता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के सदर बाजार में एक ऐसी दुकान पर लेकर आ रहे हैं जहां पर पीढ़ियां दर पीढ़ियां तिरंगे को बनाने में, उसको तैयार करने में, उसकी सिलाई करने में लगी हुई हैं।
0: यहां कहीं कपड़े की कटिंग हो रही है तो कहीं मशीनों पर सिलाई का काम चल रहा है। यानी तिरंगे की कटिंग से लेकर सिलाई, पैकिंग और सप्लाई तक हर काम पूरी रफ्तार से जारी है।
9: आप लोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है, फ्लैग बनाना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो किन बातों का ख्याल आप लोग रखते हैं जिसमें बनाते हैं? खासकर जो हमारा अशोक चक्र है उसमें कितनी उसकी लाइंस होंगी, कैसा चक्र होगा, सब कुछ डिसाइड करते होंगे?
10: जैसा कि आपने बताया, मेरे फादर इन लॉ हैं फ्लैग अंकल के नाम से, बहुत फेमस हैं, और उसी उन्होंने जो हमें काम सौंपा है वो काम हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल करा कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने फ्लैग को बनाने में, सबसे पहले मैं बताऊंगा हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लैग है एक इसकी आन बान है तो हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसको प्रिंटिंग में जो है पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रिंटिंग वर्क हो।
9: तो और कुछ क्या क्या है हमारे पास?
11: देखिए हमारे पास ये इस तरीके के बैंड भी बनाए जाते हैं जिसमें इंडिया लिखा होता है, ठीक है, और इस तरह की बाइक के ऊपर झंडे लगाने वाले होते हैं, ये इसके अंदर भारत का नक्शा भी हमने डाला हुआ है।
9: अच्छा।
11: जी इस पे आप गौर करेंगे तो भारत का नक्शा दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इस तरीके बैजेस होते हैं जिन पे इंडिया और अशोक चक्र दोनों आते हैं, ठीक है। कुछ साइज छोटे होते हैं, कुछ साइज बड़े होते हैं, और ये हमारा भारत का नक्शा है, ये प्लास्टिक के अंदर होता है, हमने इसके अंदर भारत का नक्शा डाल दिया, मतलब कम से कम रेंज के अंदर तमाम भारतीयों के पास पहुँचना चाहिए।
0: इनके लिए तिरंगा बनाना महज रोजगार नहीं बल्कि देश के प्रति अपने जज्बे और सम्मान को रंगों में पिरोने का एक जरिया है। इनमें करोड़ों भारतीयों का गर्व, सम्मान और देशभक्ति का जज्बा जुड़ा हुआ है। जब यही तिरंगे घरों, दुकानों और सड़कों पर लहराते हैं तो हर तरफ एक ही रंग नजर आता है, तिरंगे का रंग और हिंदुस्तान का गौरव। श्रीनगर से माजिद फारूक और दिल्ली से अमित भरद्वाज के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
12: छत्तीसगढ़ में हुई पहले अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
13: पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के शुरुआती संघर्षों को याद किया और बताया कि कैसे मुश्किल हालात ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। इस दौरान उन्होंने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और रील के इस दौर में शॉर्टकट से दूर रहने की सलाह भी दी।
14: सविता कोविंद
13: छत्तीसगढ़ के भिलाई में राज्य के पहले अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत हो गई। इससे सरकारी राशन लेने वालों को अब लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वो खुद कार्ड नंबर डालकर बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल कर किसी भी समय इस मशीन से चावल निकाल पाएंगे। लोगों के लिए ये व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, ताकि ऐसे लोगों को राहत मिल सके जो निर्धारित समय में राशन दुकान तक नहीं पहुँच पाते। मध्य प्रदेश के सीहोर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सीहोर के रूठिया परिवार ने ब्रिटिश राज में अंग्रेजों को दिए गए कर्ज को लौटाने की मांग की है। इस परिवार के दो भाई विवेक रूठिया और विनय रूठिया का दावा है कि उनके दादा ने 109 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत को 35,000 रुपए का कर्ज दिया था, जिसे अब वो ब्रिटिश सरकार से ब्याज सहित वापस मांग रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वकील के जरिए ब्रिटिश सरकार को नोटिस भेजा था और अब उसका जवाब आया है। जवाब में ब्रिटिश सरकार की ओर से कर्ज के सभी दस्तावेज और परिवार की जानकारी मांगी गई है, जिसकी तैयारी रूठिया परिवार कर रहा है। इस मामले में उन्होंने भारत सरकार से भी दखल की अपील की है। रिपोरा को कश्मीर के ग्रेप विलेज यानी अंगूरों वाले गांव की पहचान मिली है। मध्य कश्मीर की पहाड़ियों की तलहटी में और श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित रिपोरा के बागों में असामान्य रूप से बड़े, मीठे और कुरकुरे अंगूर उगाए जाते हैं। यहां गांव के लगभग हर घर में अंगूर की खेती होती है, जो सैकड़ों लोगों की जीविका का साधन है। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय रेलवे भी देशभक्ति के रंग में रंग गया है। रेलवे स्टेशनों पर जहां एक ओर देशभक्ति गीत बज रहे हैं, वहीं रेलकर्मी और स्काउट गाइड तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं।
12: और अब बात राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पद के चयन के लिए इंटरव्यू किए जा चुके हैं। देश भर से सीईओ पद के लिए 5,300 आवेदन आए थे और इंटरव्यू के लिए 18 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया था। हालांकि उम्मीदवारों का इंटरव्यू उनके अनुभव, धार्मिक कार्यों, भगवान राम में आस्था और पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पर किया गया। अब इनमें से 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनमें से ट्रस्ट अपनी बैठक में किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा। ट्रस्ट की ये बैठक 2 सितंबर को अयोध्या में होगी और सीईओ के नाम की घोषणा 3 सितंबर को की जाएगी।

0: क्या भगवान राम में आस्था है? जनेऊ पहनते हैं या नहीं? भोजन शाकाहारी करते हैं? और हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी है या नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे अयोध्या में राम मंदिर का सीईओ बनने पहुंचे उम्मीदवारों का सामना हुआ। राम मंदिर के सीईओ का इंटरव्यू देकर वापस आते पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, जो अयोध्या के जिलाधिकारी रह चुके हैं। योगेश्वर राम मिश्रा के अलावा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस राजेश पांडे भी इंटरव्यू देने पहुंचे थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए कल यानी मंगलवार से इंटरव्यू शुरू हो गए। हर आवेदक से लगभग एक घंटे से अधिक समय तक सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जरिए उनकी प्रभु राम लला के प्रति आस्था परखी जा रही है। देश भर से आए 5300 से ज्यादा आवेदकों में से 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। पहले दिन 8 लोगों का इंटरव्यू लिया जा चुका है। इनमें 3 पूर्व आईएएस अफसर, 1 पूर्व आईपीएस अफसर और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे।
1: राम मंदिर के नए सीईओ के पद के लिए साक्षात्कार चल रहा है, आज दूसरा दिन है। कई चेहरे, कई नाम, इन लोगों ने अभी तक अपना इंटरव्यू दे दिया है और जो संख्या है वो तकरीबन 18 से 24 लोग जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उनका साक्षात्कार हो रहा है। जिन नामों की चर्चा है उसमें राजेश पांडे उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। इसके अलावा योगेश्वर राम मिश्रा हैं जो कि डीएम रह चुके हैं मिर्जापुर के, उनको उनके पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अनुभव है। अब परेश सक्सेना हैं, दिनेश चंद्र हैं, ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोग इंटरव्यूज देने आ रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पद के लिए ज़्यादातर जो पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं या फिर जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, ऐसे लोगों को तवज्जो मिल सकती है। अगर उनका काल, उनका कामकाज बेदाग रहा है, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है।
0: उम्मीदवारों से इंटरव्यू से पहले लगभग 3 दर्जन सवालों वाला ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरवाया गया। इंटरव्यू में उम्मीदवारों से धार्मिक संस्थानों के संचालन के पुराने अनुभव और मंदिर प्रबंधन को लेकर उनके विजन से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इंटरव्यू में कैंडिडेट से राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। उनके सीवी में दिए गए डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उनकी पसंद नापसंद को लेकर भी सवाल पूछे गए। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उम्मीदवारों से उनके परिवार और बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर भी जानकारी मांगी गई।
1: कल भी इंटरव्यूज हुए हैं, तकरीबन 12 लोगों के आसपास, 1 दर्जन लोगों ने कल इंटरव्यू दिया है। आज भी लगभग दर्जन भर के आसपास इंटरव्यूज होंगे। चर्चा थी कि सिर्फ 18 लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि लगभग 24 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिनका कि इंटरव्यू होना है। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का ये इंटरव्यू एक एक जो व्यक्ति हैं उन्हें देना पड़ रहा है और कई ऐसे सवाल इसमें पूछे गए हैं कि आप सनातन में कितना यकीन रखते हैं, किस तरीके का आपका परिवार है, संस्कार कैसे हैं, जो वेज नॉन वेज क्या अब आप खाते हैं या नहीं खाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के एक गूगल ड्राइव का जो फॉर्म है वो फिलअप किया गया है। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो या तो मंदिरों से जुड़े रहे हैं, जैसे ऐसे नौकरशाह, ऐसे अधिकारी जिनका कुछ ना कुछ अनुभव मंदिरों को लेकर रहा है, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई पुराना नौकरशाह, खास करके पीसीएस से निकल कर आया हुआ या फिर आर्मी बैकग्राउंड के लोग को वरीयता दी जा सकती है। 2 सितंबर को जब बैठक होगी राम मंदिर ट्रस्ट की, तो उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि जितने लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं उसमें से कौन राम मंदिर के इस सीईओ पद के लिए चुना जाएगा, कौन इसके काबिल है।
0: नया सीईओ राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके जिम्मे प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े बड़े फैसले होंगे। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के लिए इंटरव्यू आज खत्म हो गए। अब इस इंटरव्यू के बाद समिति सबसे योग्य 3 नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंपेगी। इस पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्टी विचार विमर्श करके सीईओ का चयन करेंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
3: कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बीच कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में फिर गिरावट देखने को मिली। बुधवार 12 अगस्त को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 187 अंकों की गिरावट के साथ 77,966 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 35 अंकों की गिरावट के साथ 24,435 पर बंद हुआ। बुधवार को मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच गोल्ड की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 2600 रुपये बढ़कर 1,59,800 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 4,000 रुपये बढ़कर 2,46,000 रुपये पर पहुंच गई। 12 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 95.33 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
2: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई फिल्म हैवान का टीजर हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें फिल्मी मोड़ पर।
3: सलमान खान जल्द ही एक बड़े इंटरनेशनल एक्शन प्रोजेक्ट 7 डॉग्स में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, मिस्र के सुपरस्टार अहमद इज और करीम अब्दुल अजीज के अलावा मोनिका बेलुची और जियान कार्लो एस्पोसिटो जैसे इंटरनेशनल कलाकार भी हैं। आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह के निर्देशन में बनी ये फिल्म 21 अगस्त को भारत में हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज होगी। फिल्म के एक्शन और स्टंट 8711 की मदद से तैयार किए गए हैं, जबकि सलमान ने इसे बड़े पर्दे के लिए शानदार इंटरनेशनल एंटरटेनर बताया है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। दोनों प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में दिखाई देंगे। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें रहस्य, रोमांच और बेचैनी से भरी कहानी की झलक देखने को मिल रही है। हैवान 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में बोमन ईरानी, सयामी खेर और श्रेया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। फिल्म प्रोड्यूसर गौरव वर्मा अब अपने नए बैनर अवनिका फिल्म्स के साथ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के तौर पर नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म प्रेम कीटाणु की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिर्फ एक बंदा काफी है और उम्मीदवारों के निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। मिर्जापुर के किंग प्रिंस और शेर एक बार फिर लौट आए हैं और इस बार जंग बड़े पर्दे पर होने वाली है। मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें गद्दी की लड़ाई पहले से ज्यादा बड़ी, खूनी और खतरनाक नजर आ रही है। फिल्म 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। इसे रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है।
2: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल, इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एलिफेंट डे, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, समृद्ध विरासत और संरक्षण प्रयासों को किया याद। चलिए न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

देखिए, मजा ना आए तो कहिए। नन्हे नन्हे बच्चों का ये खेल इतना मजेदार है कि इसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। लाइन में खड़े बच्चों को एक रेड पाइप दिया गया है। अब बच्चों को इसे अपने पैरों के नीचे से पीछे खड़े साथी तक पहुंचाना है। देखने में आसान लग रहा है ये गेम, बच्चों के लिए काफी दिलचस्प है। बच्चों का उत्साह और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश वीडियो को और भी मजेदार बना रही है।

मंदिर में पूजा करने के लिए सजना तो जरूरी है। अब इस प्यारी सी बच्ची को ही देख लीजिए, सफेद साड़ी में सजी बच्ची, माथे पर श्रृंगार और चेहरे पर मासूम है, हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठी है। बच्ची का ये प्यारा अंदाज हर किसी का मन मोह रहा है। मासूम चेहरा और भक्ति में डूबी बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद भगवान का आशीर्वाद लेने आई हो। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: क्लास में बच्चों की तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस अब दूर नहीं। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे प्लेन की ड्राइंग बनाकर उसमें अलग अलग रंग भरते नजर आ रहे हैं। कोई रंगों को बड़े ध्यान से भर रहा है तो कोई अपनी कल्पना से ड्राइंग को और खूबसूरत बना रहा है। बच्चों का ये डेडिकेशन देखकर साफ है कि आज़ादी के जश्न का उत्साह अभी से नजर आने लगा है। यही वजह है कि लोगों को बच्चों का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
1: अच्छा रैपर कौन है?
2: मैं हूँ। यो यो।
1: अरे क्या हुआ अम्मा?
2: अरे मैं हूँ ना रैपर, इसको गाना गाना नहीं आता, रैपर बनेगी
1: है? अभी पता लग जाएगा।
2: हाँ।
1: पहले सुनाओ आप।
2: पहाड़ों में घर, हरे हरे पत्ते, हरे हरे यया कर दी, गाना गाना नहीं आ रहा, तू बनेगी रैपर?
1: आप सुनाओ फिर।
2: ओहो,
0: सास बहू की ये जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में बहू कुछ कहने लगती है तभी सास उसे चुप कराते हुए बड़े ही मजेदार अंदाज में कहती है, मैं हूँ रैपर। इसके बाद सास का रैप शुरू होता है। उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और रैप करने का तरीका इतना मजेदार है कि बहू भी हंसने लगती है। वीडियो देखने वाले भी सास के इस टैलेंट को देख कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, इस गाने पर बच्ची का शानदार एक्सप्रेशन देखकर आप भी उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। बच्ची एक एक लिरिक्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाती हुई डांस कर रही है। चेहरे के एक्सप्रेशन से लेकर उसके अंदाज तक हर चीज देखने लायक है। बच्ची की मासूमियत और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

0: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जेन जी की खर्च करने की आदतों की। करीब एक दशक पहले तक लोग आम तौर पर घर खरीदने या फिर बिजनेस करने के लिए लोन लिया करते थे, लेकिन आज के दौर में जेन जी ने कर्ज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया है, जिसको लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई। आपको बता दें कि देश में जेन जी से जुड़े लोग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और बाय नाउ पे लेटर प्रोडक्ट्स का अधिकतर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि कंजम्पशन यानी कि उपभोग करने से जुड़े कर्ज में बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2026 तक परिवारों के कुल कर्ज में कंजम्पशन सेगमेंट से जुड़ा हिस्सा 58.4% हो गया है, जो कि एक साल पहले मार्च 2025 में 54.9% था। प्रति उधारकर्ता औसत बकाया कर्ज मार्च 2025 तक 4.78 लाख रुपए हो गया, जो कि 7 साल पहले मार्च 2018 में 3.41 लाख रुपए हुआ करता था। हाल ही में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पर्सनल लोन की कुछ कैटेगरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2022 में सोने के गहनों पर लिए गए लोन की बकाया राशि 74,738 करोड़ रुपए थी, जो कि मार्च 2026 तक बढ़कर 4.61 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं दूसरे पर्सनल लोन की बकाया राशि मार्च 2022 में 9.02 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि मार्च 2026 तक बढ़कर 17.32 लाख करोड़ रुपए हो गई। हालांकि घरों को दिए जाने वाले लोन से भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम को होने वाले जोखिम अभी सीमित हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घरों पर बढ़ते कर्ज, खास करके कम रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के मामले में बारीकी से नजर रखने पर जोर दिया है। मार्च 2026 के आखिर में सिक्योर्ड रिटेल लोन में ग्रॉस एनपीए रेशियो 0.7% और अनश्योर्ड रिटेल लोन में 1.7% था। बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन एक खास जोखिम बने हुए हैं। 50,000 रुपए से कम के छोटे पर्सनल लोन के सेगमेंट में फिनटेक कंपनियों ने 56.8% का बड़ा मार्केट शेयर हासिल किया। मार्च 2026 तक लोन ना चुकाने की दर 6.4% थी। फिनटेक के कुल लोन में से लगभग 70.5% बिना गारंटी वाले हैं और इनमें से लगभग आधे लोन 35 साल से कम उम्र के लोगों को दिए गए हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल के अनुसार भारत की क्रेडिट के लिए योग्य आबादी में से क्रेडिट एक्टिव लोगों का हिस्सा लगभग एक दशक पहले के 11% से बढ़कर अब लगभग 28% हो गया है। क्रेडिट के लिए योग्य 79 करोड़ लोगों में से लगभग एक तिहाई लोगों ने पिछले साल लोन लिया है, या उनका लोन चल रहा है, या वे ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहे हैं। क्रेडिट लेने वाले लोगों में से लगभग आधे लोगों के पास कंजम्पशन लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, जबकि लगभग 10% लोगों के पास बिजनेस ओरिएंटेड लोन है। कंजम्पशन लोन लेने वालों में युवा ग्राहक, खास करके जेन जी, बड़ी संख्या में है और अक्सर इन लोन को चुकाने की अवधि 3 साल से कम होती है। तो जाहिर है आज की युवा पीढ़ी अपने शौक पूरे करने के लिए तमाम तरह के लोन ले रही है और अब कर्ज के बोझ तले जी रही है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में युवाओं से बात की और उनकी राय जानी।
1: यू नो सेविंग ज्यादा मस्ट है विद एक्सपीरियंस के साथ। आगे जाके जैसे फ्यूचर में यू नो महंगाई बढ़ रही है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक यूथ को सेविंग के साथ एक्सपीरियंस भी लर्न करना चाहिए और आगे जनरेशन में मेरे हिसाब से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेविंग ज्यादा रेफर करता हूँ कि सेविंग ज्यादा मस्ट है। आगे जैसी जनरेशन चल रही है यूथ इतना एक्सपीरियंस नहीं है चीजों को लेके। सेविंग एक ऐसी चीज है जो आगे जाके आपको यू नो सेव करती है हर चीज में, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेविंग ज्यादा मस्ट है यूथ के लिए।
2: मैं ऑनेस्टली मैं अपना बताऊं कि जब मेरे पास पैसे होते तो मैं तभी खरीदती हूँ। मतलब मेरे में ऐसी हैबिट ही नहीं है कि मैं बाद में दे दूंगी पैसे और अभी खरीद लेती हूँ, तो मतलब मेरा भी हैबिट ही नहीं है। मेरे लिए एक सुविधा है, अगर जरूरत बनाना उसको एक गंदी आदत मानी जाएगी, क्योंकि बाद में आप पे ही वो बोझ बढ़ेगा, पैसा देना है बाद अगले महीने देना है, परसों देना है, इसका और ही स्ट्रेस बढ़ेगा इस चीज का।
3: ऑब्वियसली पसंद करूंगा, बट बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, मतलब ठीक है जितना मैं पे कर सकूं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेन जी आजकल नौकरी कर रहे होते हैं कई शहरों में, दूसरे शहरों में, तो वहाँ पे पैसा नहीं होता है, तो उनको नीड होती है कोई सामान खरीदना है। जरूरी नहीं होता कि आपको एआरसी में उड़ाना है, आपको नीड भी होती है आपकी पर्सनल। मेरे को लगता है कि दोनों जरूरी है, बट सेविंग एक टाइम के बाद हो तो इम्पोर्टेंट है। कि क्या होता है, हम जो पहले के मिलियन लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, एक्सपीरियंस नहीं करते थे, वो क्या करते थे कि भाई सिर्फ बचाना है, बचाना करने चक्कर में जीवन के एक्सपीरियंस छोड़ देते थे वो, जिससे कि उनको लाइफ में आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ता था। अब जेन जी जो एक्सपीरियंस कर रहा है चीजों को एक्सप्लोर करना, कई तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं उसमें।
0: भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों एक खास मेहमान हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये कोई आम सुरक्षाकर्मी नहीं बल्कि हाईटेक रोबोकॉप है। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के अलग अलग हिस्सों तक ये रोबोट लगातार निगरानी करता नजर आता है। एआई तकनीक से लैस ये रोबोट सिर्फ पहरा देने तक सीमित नहीं है, ये स्टेशन पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ कई जटिल काम एक साथ कर सकता है। यानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और निगरानी में अब इंसानों के साथ मशीन की स्मार्ट ताकत भी जुड़ गई है।
4: चौकस निगाहें, चप्पे चप्पे पर नजर, आरपीएफ का ये रोबोट कॉप है मुसाफिरों की सुरक्षा का हम सफर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तैनात ये रोबोट कॉप रेल मुसाफिरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रोबोट का नाम है डीएससी अर्जुन। सिर पर आरपीएफ की कैप और चार पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल पर सवार इस एआई रोबोट को देखकर सभी की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी होती है कि लोग इसके बारे में पूछे बिना रह नहीं पाते। डीएससी अर्जुन के पास तैनात सिपाही मुसाफिरों को इस रोबोट की खूबियों के बारे में समझाते हैं। इस अत्याधुनिक रोबोट में 7 हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। ये रोबोट ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। रेलवे ट्रैक पर उतरने वाले यात्रियों पर इसकी पैनी नजर होती है। ये रोबोट आग जैसी घटना को तुरंत भांप लेता है। किसी भी गड़बड़ी का पता चलते ही ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। इस रोबोट को करीब 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। डीएससी अर्जुन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और रेलवे स्टेशन की दूसरी अहम जगहों की लगातार निगरानी करता है। निगरानी के साथ ही ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए मुसाफिरों को जागरूक भी करता है। ये रोबोट ट्रेनों के आवागमन, सामान की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक पार न करने की हिदायत के साथ लोगों को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी देता है। खास बात ये है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई जटिल कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। डीएससी अर्जुन रोबोट एआई, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस है। ये रोबोट आरपीएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभा सकता है। इसमें एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। ये रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स से यात्रियों की संख्या का आकलन करता है। इसकी एआई तकनीक लावारिस सामानों को तुरंत पहचान लेती है। ये संदिग्ध गतिविधियों के बारे में फौरन आगाह कर सकता है।
5: रोबोट है और ये सबके ऊपर निगरानी रखता है और जो भी क्रिमिनल या कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके अगर फिगर से अगर मैच कर जाता है तो ये सीधा हेडक्वार्टर तक वो पहुंचा देता है और लोगों को भी ये उनको बता देता है कि आपका सामान ठीक तरह से रखिए, सजा के रखिए और निगरानी में रखिए ताकि ये चोर के द्वारा कोई उसको उठा ना ले जाए।
4: रेलवे का मानना है कि डीएससी अर्जुन की तैनाती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये रोबोट रियल टाइम में अहम सूचनाएं जुटाकर अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करता है। इसके आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों की मदद पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले पहचान सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में ये रोबोट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: 27 साल बाद लगने जा रहे पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में उत्साह। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: स्पेन में लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं क्योंकि यहां 1912 के बाद पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। इसे देखने के लिए स्पेन ही नहीं विदेशों से भी लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। स्पेन की जावलम्ब्रे ऑब्जर्वेटरी में सूर्य ग्रहण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर उत्तरी स्पेन और बेलेरिक द्वीप समूह के गांवों में सैलानियों के स्वागत की पहले से ही तैयारी है। यूरोप में 27 साल बाद होने वाले इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आइसलैंड और उत्तरी स्पेन में लाखों लोग जमा हुए। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए यहां 60 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि स्पेन में ग्रहण के तुरंत बाद सूर्यास्त होगा जिससे नजारा और भी आकर्षक हो जाएगा। यूरोप में 27 साल बाद लगने जा रहे पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पश्चिमी आइसलैंड में भी लोगों में उतना ही उत्साह है जितना कि स्पेन में। आइसलैंड के रेकजाविक में इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पहुंचे सैलानी आसमान में छाए बादलों से थोड़ा मायूस हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि सूर्य ग्रहण के वक्त ये बादल छट जाएंगे। सूर्य ग्रहण देखने यूके से आइसलैंड आई कैरन विलियम्स खराब मौसम के बावजूद उत्साहित हैं। उनके मुताबिक रेकजाविक और आइसलैंड को देखना ही अपने आप में सुंदर अनुभव है। वहीं नोल्स उस खास पल में जादुई एहसास की कल्पना कर रहे हैं। उधर लंदन में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए युवाओं में चश्मा खरीदने की होड़ है। यहां ग्रीनविच में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के बाहर एक्लिप्स के चश्मे खरीदने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कोलंबिया में भूकंप से हुई तबाही के बाद अब यहां राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। ये तस्वीरें कोलंबिया के कैली शहर की हैं, जहां वॉलंटियर्स और इमरजेंसी वर्कर इमारतों के मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। कोलंबिया में आए भूकंप में कम से कम 250 लोगों की मौत का अनुमान है। 7.4 तीव्रता का ये भूकंप इस सदी में कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप बताया जा रहा है। ये तस्वीरें सिसली के माउंट एटना में ताजा विस्फोट की हैं। विस्फोट इतना तेज था कि आसमान में राख और लावा का गुबार फैल गया। इसकी धमक सिसली के बाहर भी महसूस की गई। इससे कैटानिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन भी प्रभावित हो गया है।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजाएगा। ब्रेक के बाद ये चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जो

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
1: पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे करेंगे नई पारी की शुरुआत। इसी के साथ खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
2: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। रहाणे जल्द ही भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज से क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। रहाणे ने हाल ही में अपने शानदार करियर को अलविदा कहा है। 37 साल के रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 38.46 के औसत से 5077 रन बनाए। इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान धनंजय डिसल्वा के हाथों में होगी, जबकि कामिंडू मेंडिस को उपकप्तान बनाया गया है। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। कश्मीर में लड़कियों के बीच बास्केटबॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लड़कियां इसे अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव के तौर पर देख रही हैं। खेलो इंडिया जैसी पहलों और स्थानीय अकादमियों के समर्थन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है।
1: इसी के साथ न्यूज पथ पर मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना, हमारी

0: जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी, कुल 4 घंटे 24 मिनट का ग्रहण काल, भारत में नहीं दिख रहा खगोलीय नजारा। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल, इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया गया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो कि पूर्ण ग्रहण है और इस वक्त हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के ज्यादातर देशों, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, कनाडा और रूस के उत्तर पूर्वी इलाकों में देखा जा रहा है। सूर्य के सामने चंद्रमा के आ जाने से दिन में ही शाम या फिर रात जैसा नजारा है। आपको साल के इस दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से बताएंगे, समझेंगे कि भारत में नजर नहीं आने के बावजूद ज्योतिष के हिसाब से भारत में इसका क्या असर होगा। सावन महीने का ये ग्रहण उथल पुथल मचाएगा या सौभाग्य लेकर आएगा, इस पर भी बात होगी। ग्रहण के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। सूर्य ग्रहण क्यों एक अनोखी खगोलीय घटना है और पूर्ण सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इस पर भी बात होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आसमान के अनोखे नजारे से। अभी से करीब एक घंटा पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, जिसे यूरोप के ज्यादातर देशों और अफ्रीकी देशों के साथ आर्कटिक, ग्रीनलैंड, कनाडा और आइसलैंड में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको जो हम दिखा रहे हैं ये यूरोप की है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आपको सूर्य ग्रहण की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भारत में ये दिखाई नहीं देगा, तो यूरोप में और भी कुछ हिस्से हैं विदेशों में, वहां पर अफ्रीकी देशों में वहां पर दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसका कितना असर होगा वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान मानता है कि भारत में भी इसका असर होगा। हमारे अलग अलग जो राशियां हैं उन पर असर हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि जो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो यूरोप की दिखा रहे हैं, जहां पर ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। यूरोप के ज्यादातर हिस्से अफ्रीकी देशों के साथ आर्कटिक, ग्रीनलैंड, कनाडा और आइसलैंड में ये देखा जा रहा है। तो भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू हुआ है, जिसका मध्य समय रात 11:16 रहेगा और ग्रहण रात में 1:27 पर समाप्त होगा। कुल मिलाकर इसकी अवधि 4:24 की है। रात करीब 10:30 वो खास नजारा दिखेगा, जब चंद्रमा सूर्य के लगभग 90% हिस्से को ढक देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यूरोप के लिए बेहद खास है, क्योंकि करीब 3 दशक के बाद ऐसा पूर्ण ग्रहण हुआ है जब दिन में ही रात हो जाए, इसलिए इसे देखने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश है। इस ग्रहण का खग्रास रूप यानी कि पूर्ण ग्रहण आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नजर आने वाला है, जबकि आंशिक ग्रहण ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूरोप के ज्यादातर देशों में दिखाई देने वाला है। तो चलिए आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। यूरोप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सूर्य ग्रहण के बाद का ये नजारा दिन में किस तरह से रात हो गई है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। और जिस तरह से हमने भी आपको बताया पहले भी कि हर जगह ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये नजारा जो कि चंद्रमा सूर्य के लगभग 90% हिस्से को ढक देता है उसके बाद की है। और तैयारी जरा यहां पर देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण जिन इलाकों में दिखने वाला है, यूरोप के जिन हिस्सों में भी दिखने वाला है, वहां पर तैयारी किस तरह से की गई है। लोग देखिए किस तरह से वहां पर जो खगोल वैज्ञानिक हैं वो अपने लेंसेज लगाकर पहले से बैठे हुए हैं, कई जो वहां के लोग हैं वो देखना चाहते हैं फिल्टर्ड लेंस से वो देख सकते हैं, कई तरह के लेंस खास करके इस ग्रहण को देखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कई लोग, कई फोटोग्राफर्स हैं आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद हैं, खास तरीके के लेंस को लेकर वो वहां पर बैठे हुए हैं और इस लेंस के माध्यम से इस सूर्य ग्रहण को वो देखेंगे। तो आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण भारत में हालांकि नजर नहीं आएगा, लेकिन यूरोप के लिए चूंकि ये बेहद खास है, 3 दशक के बाद ऐसा पूर्ण ग्रहण हुआ है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, जब दिन में ही रात जैसा मालूम पड़ता है, इसलिए इसे देखने के लिए लोगों में इतना उत्साह और इतना जोश नजर आ रहा है। तो दो तस्वीरें, एक तरफ आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से और जो पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, ये तस्वीरें आ रही है इस सूर्य ग्रहण को कैद करने की तस्वीरें, क्योंकि लगभग 3 साल के बाद जैसा कि आपको हमने बताया कि यूरोप में ये देखा जा सकेगा, इसलिए भी ये बेहद खास हो जाता है। और इस ग्रहण का जो पूर्ण रूप है वो आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नजर आने वाला है। ये नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां से ये जो तस्वीरें आ रही है वो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त लोगों के दिल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा तो क्या इसका असर नहीं होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक ग्रहण के दृश्य नहीं होने पर सूतक काल लागू नहीं होता, यानी कि ग्रहण के दौरान जो धार्मिक प्रतिबंध हैं वो मान्य नहीं होंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राशियों के हिसाब से इसके अच्छे या बुरे प्रभाव जरूर होंगे। सावन की अमावस्या पर लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान कई ग्रहों का शुभ संयोग है। जानकार मान रहे हैं कि कई राशियों के लिए यह ग्रहण अच्छी खबर लाएगा तो कई राशियों की चुनौती बढ़ेगी। चलिए आपको सूर्य ग्रहण का असर विस्तार से बताते हैं।
1: दिन है मगर सूरज गुम है, जैसे शाम हो गई हो। धरती अपनी जगह है और सूरज भी, मगर दोनों के दरमियान चांद आ गया है। तीनों बिल्कुल सीधी रेखा में है और आहिस्ता आहिस्ता सूरज चांद की ओट में छिप गया और धरती पर चांद की छाया पड़ने लगी। यही है सूर्य ग्रहण, जिसे इस वक्त दुनिया के करोड़ों लोग टकटकी लगाए मगर सावधानी से देख रहे हैं। इस साल का ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण अनोखा है, क्योंकि यूरोप में 27 साल बाद ये पूर्ण ग्रहण है। इसीलिए विज्ञान और ज्योतिष दोनों के लिए ये बेहद खास है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक इसका प्रभाव भारत पर नहीं होगा, यानी भारत में ग्रहण का सूतक काल भी माने नहीं है। न तो मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे और न ही खान पान का कोई प्रतिबंध है। जानकारों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को भी इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी सूर्य ग्रहण को लेकर मन में कोई आशंका या द्वंद नहीं होना चाहिए।
2: सूतक की यदि हम बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। और सूतक के नियमों के हिसाब से 12 घंटे पहले या 9 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है, खाने में तुलसी दल डाला जाता है और गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में बाहर निकलना वर्जित होता है। लेकिन हर ग्रहण में सूतक मान्य नहीं होता है। ग्रहण जहां दिखता है, कहां दृश्यमान है, आपकी धार्मिक पारिवारिक परंपराएं क्या है, किस तरह का ग्रहण है, इस पर निर्भर करता है कि ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं होगा। 12 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है ये इंडिया में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इंडिया में इसका सूतक नहीं लगेगा। अदृश्य ग्रहण का सूतक कभी भी मान्य नहीं माना जाता है। सूतक के नियम तभी लागू होते हैं अगर जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे ग्रहण दिखाई दे रहा है। और इस बार का जो ग्रहण है वो इंडिया में दृश्यमान नहीं है, बाकी के हिस्सों में वर्ल्ड के दिखाई देगा, इसलिए वहां पे सूतक मान्य होगा।
1: ये पूर्ण सूर्य ग्रहण धरती के दूसरे हिस्से यानी कि यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में नजर आ रहा है, जिसका भारत पर सीधा असर नहीं है। पर जहां तक इसके ज्योतिषीय प्रभाव की बात है तो उस पर चर्चा हो रही है। इसके सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हो रही है। अच्छी बात यह है कि ग्रहण सावन के पवित्र महीने में लगा है और ग्रहों की दशा और दिशा भी इस लिहाज से अनुकूल है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगा है। कर्क राशि में सूर्य के अलावा चंद्रमा, बुध और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उपस्थित हैं। ऐसे में अद्भुत खगोलीय घटना के दौरान तीन बेहद शुभ योग यानी कि बुध आदित्य योग, हंस राज योग और गज केसरी योग बन रहे हैं। हालांकि अलग अलग राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का अलग अलग असर होने की संभावना है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूतक नहीं लगने के बाद भी कुछ सावधानी और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है।
3: कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की जब स्थिति बनती है तो खगोलीय घटनाओं के रूप में देखा जाता है वैज्ञानिक रूप से, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दोनों जोड़ते हैं तो देखा जाता है कि ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ता है। तो जैसी हमारी मानसिकता होती है, जैसी हमारी सोच होती है, उस तरह की ऊर्जा की पुनरावृत्ति होती है, उस तरह की ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और हमारा मन मस्तिष्क जो होता है वो उसी तरह की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है, जिसका सीधा असर बच्चे पर जाता है। तो अच्छी बात करेंगे तो अच्छी बात जाएंगे, बुरी बात करेंगे तो बुरी बात जाएंगे। तो इस समय में बेकार की बात नहीं करना है, प्रपंच नहीं करना है, भगवान का नाम, भगवान के नाम का स्मरण करना है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेनी है, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, इष्ट देव का ध्यान करना है, नारायण का ध्यान करना है, भगवान सदाशिव का ध्यान करना है, श्रावण का महीना है, तो ओम शाम सदाशिवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ग्रहण काल में और ग्रहण के सूतक काल में।
1: वैज्ञानिकों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस दौरान सूर्य की सतह और उसकी ऊर्जा को समझने का अवसर मिलता है, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण चौंकाने वाले परिणाम देता है। अब क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसीलिए दुनिया भर में जल से जुड़ी आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। भूकंप जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक और राजसत्ता पर भी इसका असर होगा और उच्च पदों पर बैठे लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां पेश आ सकती हैं।
3: किसी भी देश में जहां से ये दृश्य है, जिस भूमि पर इसका प्रभाव है, वहां पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य राजा है, राजा को ग्रहण लग रहा है, इसलिए नकारात्मक परिवर्तन की स्थिति उस राष्ट्र में दिखाई देगी, विशेष रूप से राजनैतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, धार्मिक व्यवस्था पर, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। भारत, अगर कुछ राष्ट्रों की बात करें, जैसे अमेरिका हुआ, चीन हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इसी तरीके से अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, चेचन्या हो गया, इन राष्ट्रों के लिए आप देखेंगे तो अगले 45 दिन तक, जबकि 90 दिन तक इसका प्रभाव रहता है, लेकिन 45 दिन तक घनघोर प्रभाव रहेगा, जिसमें प्राकृतिक उथल पुथल, भूकंप, बाढ़ है की स्थितियों में वृद्धि, और जब भी ग्रहण लगता है तो आप देखते हैं कि जिन राष्ट्र को प्रभाव में लेता है, क्योंकि अमेरिका की राशि बनती है ऐसे, तो ऐसे में प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अमेरिका को नुकसान ज्यादा करेगा, तो ग्रहण लगने के एक से दो दिन आगे पीछे नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं, और इसी कारण से दक्षिणी अमेरिका में भूकंप की घटना देखने को मिल रही है।
1: इस समय देवगुरु कर्क राशि में उदय है और शनि देव मीन राशि में वक्री। एक तरफ गुरु का उदय होना शुभता और नई ऊर्जा का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ शनि का वक्री होना कड़े अनुशासन और मेहनत का संकेत दे रहा है। जानकार मान रहे हैं कि इस लिहाज से कुछ राशियों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छे नतीजे दे सकता है।
3: ऐसी स्थिति में देखा जाए तो लाभ की स्थिति में कौन सी राशियां होंगी, तो मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशियां लाभ की स्थिति में होंगी। सावधानी किनको बरतनी है, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर और कुंभ, इन राशियों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि थोड़ी सी नकारात्मकताएं आ सकती हैं।
1: सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देने के बावजूद जानकारों की राय में इस दौरान ध्यान और मंत्र जाप करना लाभकारी होगा, खासकर जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है या फिर सूर्य की दशा चल रही है, उन्हें इस दौरान सूर्य की उपासना करनी चाहिए और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या जरूरी सामान का दान भी फायदेमंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: शास्त्रों में बताया गया है कि जब ग्रहण लगता है तब सूर्य देव पीड़ित अवस्था में रहते हैं, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसे समय में कुल देवी देवता या फिर गुरु मंत्र का जाप फलदायी होता है। जानकारों के मुताबिक ग्रहण अवधि में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना अच्छा होता है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों जैसे कि भगवद्गीता, विष्णु सहस्रनाम और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करें। ग्रहण काल के बाद पूजा स्थल की सफाई करके दीपक जलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल या धन का दान करें। गाय, पक्षियों को भोजन कराना भी पुण्यदायक माना जाता है। विज्ञान के नजरिए से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसकी वजह चंद्रमा है। धरती और सूर्य के बीच एक सीध में उसके आने से सूरज की रोशनी छिप जाती है और धरती पर चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है, तो लगता है कि अंधेरा हो गया। लेकिन हमारी धार्मिक परंपरा में ग्रहण की कहानी राहु और केतु से जुड़ी है। धार्मिक मत है कि राहु की सूर्य एवं चंद्रमा से शत्रुता है और वो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रास कर लेता है। शत्रुता की ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब राहु ने छल से अमृत पीने की कोशिश की। वो इसमें कामयाब भी हो जाता, लेकिन सूर्य और चंद्र ने इसकी सूचना भगवान विष्णु को दे दी, जिसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। हालांकि तब तक राहु के गले तक अमृत जा चुका था, इसलिए वो मरा नहीं, पर राहु और केतु दो हिस्सों में बट गए। भेद खोलने के कारण ही राहु के सूर्य और चंद्र से दुश्मनी मानी जाती है और ग्रहण को उससे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से सूर्य ग्रहण की वास्तविकता अलग है। चलिए समझते हैं और आपको समझाते हैं हम इस रिपोर्ट के माध्यम से।

0: आसमान में एक ऐसा नजारा है जो कई सालों बल्कि दशकों में देखने को मिलता है। खगोल शास्त्र के लिए एक बड़ी घटना, जब सूर्य की चमकीली सतह छिप जाती है और बाहरी सतह यानी कोरोना को देखना मुमकिन होता है। ये कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बेहद सटीक मेल का नतीजा है। इसे बेहद आसान तरीके से यूं समझिए, सूर्य लगातार रोशनी बिखेरता है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा हमारी धरती की परिक्रमा करता है। जब घूमते घूमते चंद्रमा ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब उसकी छाया धरती की सतह पर पड़ती है। बस इसी खगोलीय स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण में प्रकृति का एक बेहद दिलचस्प संयोग भी काम करता है। सूरज का व्यास चंद्रमा से करीब 400 गुना बड़ा है, मगर सूर्य हमसे लगभग 400 गुना ज्यादा दूर भी है। इसी वजह से धरती से देखने पर दोनों का दिखाई देने वाला आकार कई बार लगभग बराबर नजर आता है। जब चंद्रमा बिल्कुल सही दूरी और दिशा में सूर्य के सामने आ जाता है, तो उसका आकार सूर्य के चमकीले हिस्से को पूरी तरह से ढकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यही स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण की होती है, जो हमेशा नहीं होता। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया भी एक जैसी नहीं होती। सबसे गहरी छाया को अम्ब्रा कहते हैं, जिसमें सूर्य का चमकीला चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई दे सकता है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है, पर इसके आसपास की हल्की छाया पेनम्ब्रा कहलाती है। वहां से सूरज का कुछ हिस्सा चंद्रमा के पीछे छिपा नजर आता है, यानी आंशिक ग्रहण दिखाई देता है। धरती घूमती रहती है, चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता रहता है और इसीलिए छाया भी सतह पर लगातार सरकती है और एक लंबा रास्ता बनाती है। इसी वजह से पूर्ण ग्रहण एक सीमित पट्टी में ही दिखाई दे सकता है। सूर्य ग्रहण हर हाल में अमावस्या को ही होगा, लेकिन हर अमावस्या पर ऐसा नहीं होता। इसकी वजह है चंद्रमा की कक्षा का झुकाव। चंद्रमा जिस रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ वाली कक्षा से करीब 5 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए ज्यादातर मौकों पर चांद सूर्य के ठीक सामने नहीं आता, थोड़ा ऊपर या फिर नीचे निकल जाता है। जब दोनों कक्षाएं सही बिंदु पर मिलती हैं, तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। 12 अगस्त का ये सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा ने सूर्य के चमकीले हिस्से को पूरी तरह से ढक दिया है और इसीलिए वैज्ञानिकों को सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाने का बड़ा अवसर मिला है। ग्रहण के दौरान नासा का खास वैज्ञानिक मिशन सूरज और पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिक एक हाई ऑल्टीट्यूड विमान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी ऐसा विमान जो बादलों से बहुत ऊपर उड़ सके।
1: The overall mission is to capture the eclipse. The science team is looking for data based on the eclipse and the corona of the sun. My role is to basically get the aircraft into the correct piece of airspace and in the timing correctly so that we can actually get as much totality so they can grab as much data they can from that event.
0: इस पूरे मिशन का मकसद सूर्य ग्रहण को कैप्चर करना है। वैज्ञानिकों की टीम सूर्य ग्रहण और सूर्य के कोरोना से जुड़े डेटा जुटाना चाहती है। असल में जब सूर्य की तेज चमक कुछ समय के लिए चांद के पीछे छिपती है, तब उसके कोरोना को ज्यादा साफ तरीके से देखा जा सकता है। इसी दौरान वैज्ञानिक सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, गर्मी और सोलर विंड जैसे विषयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाते हैं। ग्रहण के दौरान धरती के वातावरण में रोशनी अचानक घटती है, जिसका इस्तेमाल ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन में किया जा सकता है। इसीलिए जहां आम लोग सूर्य ग्रहण को उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, वहीं वैज्ञानिक सूरज से जुड़े रहस्यों को समझने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी, कुल 4 घंटे 24 मिनट का ग्रहण काल, भारत में नहीं दिख रहा खगोलीय नजारा। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति।

0: हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया गया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण जारी, सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से धरती के कई हिस्सों में दिन में रात होता है, 3 दशक बाद सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाया अंधेरा। 1999 के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा सूर्य ग्रहण, यूरोप के कुछ हिस्सों, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में दिखेगा ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:04 पर शुरू हुआ सूर्य ग्रहण, रात 1:27 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। रात का समय होने के कारण भारत में दिखाई नहीं दे रहा सूर्य ग्रहण, दिखाई नहीं देने के कारण भारत में ना तो सूतक लगेगा और ना ही सूतक के नियम लागू होंगे। उत्तराखंड के मसूरी में दिखी करीब 500 साल पुरानी परंपरा, भट्टा गांव में विधि विधान के साथ निकाली गई नाग देवता की टोली, भागवत कथा का भी शुभारंभ। क्यारकुली स्थित नागदेव मंदिर के लिए रवाना डोली में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए लोग, बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। डोली में सिर पर कलश लेकर शामिल हुई महिलाएं, क्यारकुली भट्टा क्षेत्र के रक्षक देवता माने जाते हैं नागदेव, हर साल नागपंचमी से पहले निकलती है डोली। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में चढ़ावे की गिनती की तीसरे दिन सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में चढ़ावे की गणना, वीडियोग्राफी भी की जा रही। मंदिर में मौजूद कुल 41 से ज्यादा दान पेटियों में से 30 पेटियां खोली गई, 32 लोगों की टीम कर रही गिनती, गणना में अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिली। विश्व हाथी दिवस के मौके पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन, हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। जयपुर के कुंडा स्थित हाथी गांव में किए गए आयोजन के लिए हाथियों का किया गया श्रृंगार, प्राचीन और पारंपरिक आभूषणों से किया गया हाथियों का श्रृंगार। विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हाथियों ने रैंप वॉक भी किया, इस मौके पर हाथियों के लिए मनपसंद खाने का भी इंतजाम किया गया। हाथियों का रैंप वॉक देखने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग और बच्चे कार्यक्रम में हुए शामिल। आम लोगों और बच्चों में दिखा गजब का उत्साह। मध्य प्रदेश के खंडवा से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखी रैली में तिरंगे से सजी 150 नावें हुए शामिल, नर्मदा की लहरों पर दिखा देशभक्ति का माहौल, नाव तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। हरियाणा के नूह से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीर, एक हाथ में पवित्र कुरान और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकले मुस्लिम समुदाय के लोग। इस अनोखी तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के करीब 100 धार्मिक नेता, मदरसों में पढ़ने वाले करीब 200 बच्चे और करीब 150 महिलाएं हुए शामिल। नूह के यासीन मेव डिग्री कॉलेज से गांधी पार्क तक निकाली गई है अनोखी तिरंगा यात्रा, पसमांदा विकास फाउंडेशन की अगुवाई में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर हुए शामिल, यात्रा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए श्रीनगर में पुलिस और बीएसएफ ने बढ़ाई निगरानी, गाड़ियों की सघन तलाशी करते दिखे जवान। दिल्ली में लाल किले के पास चांदनी चौक में क्रांतिकारियों का अनोखा मंदिर, देश के बलिदानियों के इस मंदिर में लगी है कई गुमनाम क्रांतिकारियों की तस्वीरें। क्रांतिकारी स्वर्ण लाल परूथी ने बनवाया था ये मंदिर, अलग अलग राज्यों के 100 क्रांतिकारियों की लगवाई तस्वीर, क्रांतिकारियों के योगदान का भी जिक्र। इस मंदिर में लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद करने वाले क्रांतिकारी की तस्वीर, उस क्रांतिकारी का भी जिक्र जिसने अपने 6 बेटों को बनाया था क्रांतिकारी। यूपी के सहारनपुर में देशभक्ति के साथ पर्यावरण का दिया जा रहा संदेश, स्वतंत्रता दिवस के लिए गोबर से बनाए जा रहे तिरंगा जस्ट बैच। माँ शाकंभरी कान्हा गौशाला की ओर से स्वतंत्रता दिवस के लिए बनाए जा रहे हैं 5,000 तिरंगा चेस्ट बैच, सहारनपुर नगर निगम करता है गौशाला का संचालन। सहारनपुर में गोबर से बनाई जा रही इको फ्रेंडली राखियां, इनोवेशन के लिए माँ शाकंभरी कान्हा गौशाला के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक समेत कई सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के लिए सहारनपुर में तिरंगा बनाने में जुटी महिलाओं का समूह, मांग पूरी करने के लिए तिरंगा बनाने में जुटी महिलाएं। सहारनपुर जिले को 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बना रही तिरंगा, तिरंगा निर्माण से महिलाओं को मिल रहा रोजगार। सिक्किम के थेगू में 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल प्रतियोगिता, देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके के तहत किया जा रहा आयोजन। भारतीय सेना की ब्लैक कैट डिवीजन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थेगू संयुक्त रूप से कर रहे आयोजन, थेगू स्कूल ग्राउंड में खेले जा रहे मैच। प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह, जनरल सगत सिंह मेमोरियल हाई ऑल्टीट्यूड फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 में कुल 34 टीमें ले रही हिस्सा। उनतीस जुलाई से शुरू हुई प्रतियोगिता में खेले जा रहे नॉकआउट मुकाबले, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को खेला जाएगा खिताबी मैच। नशा मुक्त सिक्किम है फुटबॉल प्रतियोगिता की थीम, खेल के जरिए युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना मकसद। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, छावनी में तब्दील लाल किले के आसपास का इलाका। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते पर भी सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षाकर्मी यमुना नदी में नाव के जरिए कर रहे पेट्रोलिंग। नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में लगातार मूवमेंट पर नजर रख रही है पुलिस, रात में भी लगाई जाएगी गश्त। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडो की सघन पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। देशभक्ति के रंग में डूबा भारतीय रेलवे स्टेशनों पर, बज रहे देशभक्ति के गीत, तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दे रहे रेल कर्मचारी और स्काउट गाइड। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन, अलग अलग राज्यों और शहरों में भी तिरंगा और रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीयू के माई भारत वॉलंटियर्स भी शामिल। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से निकली तिरंगा साइकिल रैली, इस देशभक्ति और फिटनेस यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय के 1,000 से ज्यादा माई भारत वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। तिरंगा साइकिल रैली को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह, खेल मंत्री मांडविया बोले साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान। नक्सल मुक्त गांव तक पहुंची बाइक रैली, छत्तीसगढ़ के बस्तर में तिरंगा यात्रा का आयोजन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की शानदार रैली की शुरुआत, राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना है उद्देश्य। स्वतंत्रता दिवस के जश्न और राष्ट्रीय एकता के संदेश के तहत श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में दिखा सुंदर नजारा, भव्य शिकारा तिरंगा रैली आयोजित। डल झील में तिरंगे झंडों से सजे नजर आए शिकारे, देश प्रेम की भावना को दिखा सुंदर नमूना। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बाइक तिरंगा रैली का आयोजन, हर घर तिरंगा योजना के तहत आयोजित रैली में हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर, कोट रोड और रीगल चौक के आसपास निकाली गई रैली, स्कूली बच्चों में दिखा रैली को लेकर खासा उत्साह। देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां तेज, इम्फाल में असम राइफल के भव्य पाइप बैंड प्रदर्शन का आयोजन। पाइप बैंड की देशभक्ति धुनों ने बांधा समा, युवाओं और आम जनता में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना कार्यक्रम का उद्देश्य। ऐतिहासिक कांगला स्थल पर हुआ देशभक्ति से भरा संगीतमय आयोजन, इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए छात्र और आम लोग। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन, रेलवे सुरक्षा बल के बैंड ने दी शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस। आरपीएफ बैंड अपने परफॉर्मेंस से बांधा समा, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना में डूबे लोग। कार्यक्रम में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी हुए शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में निकाली गई तिरंगा रैली, तिरंगा रैली में पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता, डीएम, एसएसपी और आम लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं भी हुए शामिल। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, हटवाल गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से मुख्य बाजार तक निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। गुजरात के नर्मदा में महिला डॉक्टर ने बचाई शख्स की जान, महिला डॉक्टर ने समय रहते सीपीआर देकर बचाई शख्स की जान। दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन, देशभक्ति में डूबे लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। प्रयागराज में मन रहा आजादी का जश्न, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को समर्पित रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन। चित्रकला के जरिए युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने की पहल, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। रंग दे बसंती शीर्षक से आयोजित कवि सम्मेलन, कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, सामाजिक एकता और भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने मैदान में उतरे यूपी के मंत्री, जनजी चौपाल में सुनेंगे समस्याएं और बताएंगे सरकार की योजनाएं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की खास पहल, दुर्ग जिले में प्रदेश का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम शुरू। लाभार्थियों को अब घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, इस मशीन के जरिए ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे लोग। राशन कार्ड नंबर या आधार कार्ड से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए होती है लाभार्थी पहचान, पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में मशीन से बाहर निकलता है अनाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, एम्स अस्पताल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और मरीजों से भी की मुलाकात, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में लगातार खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा, घाटी में लड़कियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा बास्केटबॉल। श्रीनगर में आयोजित किया गया लड़कियों का बास्केटबॉल कार्यक्रम, कई जिलों की टीमों ने लिया हिस्सा। घाटी में बढ़ती खेल सुविधाओं से खिलाड़ी खुश, युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना मकसद। कश्मीर का अंगूरों वाला गांव के नाम से मशहूर है गांदरबल का रेपोरा गांव, जहां 600 साल पुरानी परंपरा और आधुनिक बागवानी का मेल से हो रही है अंगूरों की खेती। मीठी फसल और बड़े बड़े अंगूरों के लिए मशहूर है ये गांव, लगातार नई तकनीक से खेती कर और गांदरबल को अंगूर का हब बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिला बूस्ट, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने जीएमसी उधमपुर में 128 स्लाइस सिटी स्कैनर का किया उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों का किया उद्घाटन, गोरखपुर को विकास की नई सौगात। हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, राज्य सरकार के सेस लगाने की वजह से हुई बढ़ोतरी। बुलंदशहर में गौमूत्र से जैविक खाद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू, आसपास के लगभग 15 गांव इस परियोजना से जुड़े। कटिहार में एक शादी बनी चर्चा का विषय, ट्रैक्टर का स्टेयरिंग थामे बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, बारात में 2 दर्जन ट्रैक्टर हुए शामिल। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेकेड क्रेन महोत्सव का आयोजन, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। चौदह अगस्त को मनाया जाएगा उच्च ऊंचाई वाले वन जीवों और संस्कृति का जश्न। दुर्लभ और लद्दाख के राजकीय पक्षी ब्लैक नेकेड क्रेन के संरक्षण पर जोर देना मकसद। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा। बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे भक्त। 10 अगस्त तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम के कारण प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस में 2 दिन बाकी, सुरक्षा के अभेद किले में बदला दिल्ली का लाल किला। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 25,000 लोग होंगे शामिल। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करीब 15,000 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। 1,000 से ज्यादा कैमरों और FRS तकनीक से भी निगरानी। कल होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। गुजरात के मेहसाणा में स्कूली बच्चों ने नहीं मानी हार, मेहनत से रचा इतिहास। स्कूल में नहीं था मैदान तो खेतों में दौड़कर जीते 138 मेडल। स्कूल में जरूर सुविधाएं न होने पर गांव के किसानों ने किया सहयोग। खेतों को समतल कर बनाया खेल का मैदान। खेलों में अच्छे प्रदर्शन का पढ़ाई में भी हुआ लाभ। परसोड़ा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए किया कमाल। सिर्फ 3 साल में एथलेटिक्स में जीते 56 स्वर्ण, 40 रजत और 42 कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा का भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। ट्रेनिंग से मजबूत हो रहे बच्चे। कन्नौज जिले के 458 सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जा रही है जूडो और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग, जिसका दिखा असर। बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीते 17 पदक। फिल्म बंटवारा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची अभिनेत्री प्रीति जिंटा। प्रीति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्रों से शेयर की फिल्म से जुड़ी बातें। फिल्म बंटवारा के जरिए करीब 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं प्रीति जिंटा। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म बंटवारा 1947। प्रीति ने फिल्म की कहानी को बताया दिल के करीब। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म बंटवारा 1947 का राजकुमार संतोषी ने किया है निर्देशन। फिल्म हैवान का टीजर रिलीज। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अहम भूमिकाओं में आएंगे नजर। सितंबर में रिलीज होने जा रही है फिल्म। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया है फिल्म हैवान का निर्देशन। हैवान के जरिए करीब 18 साल बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे अक्षय और सैफ। कृष्णावतारम पार्ट 2 की रिलीज से पहले मेकर्स का बड़ा फैसला। फिल्म का पहला भाग कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट को दोबारा सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज। सलमान खान और संजय दत्त अब इंटरनेशनल एक्शन फिल्म 7 डॉग्स में मिस्र के सुपर

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: पन्ना को यूं ही हीरों की नगरी नहीं कहा जाता है। यहाँ कब किसकी किस्मत चमक जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सरकोहा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 7 मजदूरों की किस्मत एक हीरे ने चमका दी, जिसकी चमक ने उनके अधूरे सपनों में नई उम्मीद भर दी है। खदान से जो हीरा निकला है उसकी अनुमान कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
6: मामूली चमक नहीं है, ये है 16.96 कैरेट का नायाब हीरा, जिसने पन्ना के सरकोहा गांव के इन 7 मजदूरों की किस्मत बदलने की उम्मीद जगा दी। दरअसल इस गांव की हीरा खदान में मजदूर रोज की तरह मेहनत कर रहे थे। बारिश के दौरान खदान की चाल का निरीक्षण करने पहुंचे पट्टाधारक अखिलेश पाल की नजर मिट्टी के बीच चमकते हुए इस पत्थर पर पड़ी। जब जांच हुई तो पता चला कि ये जेम क्वालिटी डायमंड है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल मजदूरों ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।
7: अखिलेश पाल है, सनाफ श्री गणेश पाल, ये निवासी है नारंगी बाग पुरुषोत्तमपुर जिला पन्ना के, और इनको सरकोहा क्षेत्र में इनको हीरा मिला है, और इनके द्वारा पूर्व में खदान लगाई गई थी जिसकी चाल को धो करके और वो करके इनके कुछ पार्टनर थे इनके साथ में मिलकर के हीरा मिला हुआ है। 16 कैरेट 96 सेंट का बेस कीमती उज्जवल किस्म का हीरा है, और जो इन्होंने हीरा कार्यालय में जमा कराया।
6: इस हीरे की सबसे खास चमक उन 3 मजदूरों पर दिखाई दे रही है, जिनकी आंखों में बरसों से एक सपना है। संतोष, सरमन और अरुण, जिनकी 30 से 38 साल की उम्र के इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति ऐसी रही है कि शादी अब तक नहीं हो सकी। इन मजदूरों को अब उम्मीद है कि हीरे से मिलने वाली रकम उनकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।
8: अपनी शादी कराएंगे, मम्मी की सेवा करेंगे, घर बनाएंगे।
9: शादी पहला काम रहेगा आपका?
8: हाँ, शादी पहला काम है।
9: कितने साल की
8: उम्र ज्यादा हो गई?
9: कितने साल की हो गए आप?
8: 33 साल की हो गए हम।
10: अभी हीरा पकड़ेंगे और घर मकान बनाएंगे, शादी करेंगे और घर और भी कुछ करेंगे।
6: जिस मिट्टी में रोज पसीना बहाया, उसी मिट्टी ने आज जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद दे दी। किसी के लिए ये सिर्फ 16.96 कैरेट का हीरा है, लेकिन इन मजदूरों के लिए ये बेहतर जिंदगी, अपना घर और अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद है। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी, कुल 4 घंटे 24 मिनट का ग्रहण काल, भारत में नहीं दिख रहा खगोलीय नजारा। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल, इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया गया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के शो का चर्चा का विषय क्या है। पंडित जी के साथ जो हम बातें करने वाले हैं वो बातें होंगी सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण चूंकि है तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपके तमाम भ्रमों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में उथल पुथल हो सकती है, उससे बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है, कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो सूर्य ग्रहण के बाद आपको निश्चित ही करने चाहिए, उसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर धन की बचत करने में समस्या आ रही हो, धन की बचत ना हो पा रही हो, तो एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए। इससे पैसा आएगा भी और बचेगा भी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 13 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 13 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्राम।

0: तक नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:06 तक राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। शुरुआत में हमने आपको बताया सूर्य ग्रहण की स्थिति के बारे में, आपको बताएंगे इसका प्रभाव क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी आपको ये समझाएंगे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति जो होती है वो पंडित जी होती क्या है और इसका प्रभाव क्या और कैसे पड़ता है।
0: जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इसके समाप्त होने के बाद आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको लाभ हो। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को लगा। ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव देश दुनिया पर अगले 3 तक बड़ी गहराई से पड़ेगा और अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अगले 15 से 1 तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा अलग अलग राशियों के माध्यम से। कुछ राशियों को इससे लाभ होगा और कुछ राशियों को इससे समस्या होगी। इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के अगले दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: चलिए, इस विषय के बारे में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से आगे जाके लेंगे, लेकिन आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से ही। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, संतान की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, चिकित्सा में लापरवाही ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रिश्ते मधुर होंगे, अनाज का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित से अब ये जान लेते हैं कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों को इस ग्रहण के बाद क्या कुछ अचूक उपाय करने चाहिए। पंडित जी,
0: अब राशियों पर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को इनको क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो ग्रहण से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान करें तो परेशानियां कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा निगेटिव है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 13 अगस्त को दिन के समय में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके करियर पर और आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है, करियर और रिश्तों की समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गुड़ और आटे का दान अगर आप करेंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
1: चले आते हैं वापस राशिफल पर। अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। अभी बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान की चिंता हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी दर्शकों के सवाल, आप सभी के सवाल और पंडित जी के जवाब। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई दिक्कत है, परेशानी है आपके जीवन की, उसका निवारण आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी।
0: जी, आज का पहला प्रश्न पायल जी ने हमें लिखा है और पायल जी हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1982, शाम के 7:55, जन्म स्थान है देवरिया। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं से मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। पायल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक हैं, शारीरिक समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं हैं जितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है या आपको मानसिक तनाव है। तो अगर आप अपने मन को बेहतर कर लें, मानसिक स्थिति को सुधार लें, तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आपकी स्थिति वैसे कुल मिला जुला के फरवरी 2027 के बाद बेहतर दिखाई दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और पूर्णिमा का उपवास रखें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: चलिए इसी के साथ वक्त चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है। अगला सवाल पंडित जी के पास।
0: जी, अगला प्रश्न सुजीत कुमार ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1978, जन्म का समय 7:00, जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? सुजीत कुमार जी, बिल्कुल आपको व्यापार में अभी जाना चाहिए, आपके व्यापार का उपयुक्त समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अभी आप बिजनेस और नौकरी दोनों बराबर से चलाते रहिए। अगले साल 2027 के जून के बाद आप पूरी तरह से नौकरी छोड़कर बिजनेस में स्विच कर जाइएगा तो बेहतर रहेगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के तमाम जो लोग हैं उनको ग्रहण के बाद कौन कौन से अचूक उपाय करने चाहिए जो उनके लिए कारगर होंगे।
0: अब जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या दान करेंगे। सिंह राशि की अगर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर खराब हो सकता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गेहूं या गेहूं के आटे का दान अगर आप करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, खास तौर से धन और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल शिव जी के मंदिर में अगर आप जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, ग्रहण आपके करियर के लिए और आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अच्छा है। करियर

0: आगे बढ़ेंगे समय। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, अगले एक महीने तक सतर्क रहिएगा। और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे।
1: चलिए इसी के साथ वापस आते हैं राशिफल पर और अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी है अब।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, करियर की समस्या हल होगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अब पंडित जी से जानते हैं, अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के तमाम जो लोग हैं उनको इस ग्रहण के बाद कौन कौन से अचूक उपाय करने चाहिए।
0: अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ग्रहण के बाद क्या करेंगे। धनु राशि की बात करें तो ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। मकर राशि, ग्रहण आपके करियर में समस्या पैदा कर सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है, इसलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कुंभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल है और कुंभ राशि वालों को ग्रहण से लाभ होगा, स्वास्थ्य और करियर में इनके सुधार होगा। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, ग्रहण आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रोक सकता है। ग्रहण के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसीलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी भी समय किसी भी मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशियों के अंत की तरफ और अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, इनके भाग्य में क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए, ऑफिस में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: मिलेगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें ताकि दिन बेहतर हो। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए वापस आते हैं दर्शकों के सवालों के ऊपर और अगले दर्शक का कौन सा सवाल आज के इस शो में हम शामिल करने जा रहे हैं, पंडित जी से ही जानकारी लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न सरजू प्रसाद जी ने हमें लिखा है और सरजू प्रसाद जी हमें मेल लिखते हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 30 मई 1980, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म स्थान है सीतामढ़ी बिहार। सरजू प्रसाद जी कह रहे हैं कि परिवार में प्रॉपर्टी के डिवीजन को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मेरा हिस्सा मुझे मिल सकेगा और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। सरजू प्रसाद जी, आपके परिवार में जो प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहे हैं, ये विवाद अभी 2 महीने में हल हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर के समय में प्रॉपर्टी का बंटवारा निपट जाएगा, ये विवाद हल होगा और आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ का दान करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपके लिए बेहतर होगा, प्रॉपर्टी का काम भी सरलता से निपट जाएगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है दर्शकों के अंतिम सवाल को इस शो में शामिल करने की और जानते हैं कौन से दर्शक ने अपना सवाल पंडित जी तक पहुंचाया है।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अंजलि शर्मा ने हमें लिखा है और अंजलि शर्मा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1982, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म का स्थान है राजपुरा पटियाला पंजाब और मेल लिखती हैं गुड़गांव से। अंजलि कह रही हैं कि मेरी नौकरी में पॉलिटिक्स बहुत है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं लेकिन मेरी नौकरी बदल नहीं पा रही है, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अंजलि, आपको नौकरी बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां नौकरी करती हैं वहीं स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अक्टूबर खत्म होने का इंतजार करिए, उसके बाद स्थितियां यहीं पर बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अगर इस समय नौकरी बदलने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है उसके परिणाम बहुत अच्छे ना हो। ऑफिस में आपको समस्या ना हो, दिक्कतें ना हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 13 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: 13 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में किसी भी तरह का जोखिम ना लें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। हालांकि अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं इस शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाना उचित है? ज्यादातर लोग केक पर मोमबत्तियां लगाते हैं अपनी उम्र के बाद और फिर फूंक करके मोमबत्तियां बुझा देते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, भारतीय परंपरा में दीपक को बुझाना अशुभ माना जाता है, और आप चाहें तो केक काटकर खुशियां मना सकते हैं, लेकिन इस शुभ अवसर पर मोमबत्ती ना बुझाएं। मोमबत्ती बुझाना एक अशुभ क्रिया है, वो नहीं करना चाहिए।
1: अब पंडित जी से जान लेते हैं 13 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 13 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में आपको लाभ होगा।
1: तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि आपकी गुडलक राशि, आज की राशि कौन सी है?
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा कैसे करें कि उन्हें लाभ हो। आज की गुडलक राशि है कर्क। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से केवल जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप भावनात्मक और मानसिक समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: चलिए, इस शो से जुड़े हुए उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं, बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी,

0: बिजनेसमैन हैं या किसी को उधार दिया है, बहुत सारा पैसा आपका मार्केट में या लोगों के पास फंस गया है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और प्रार्थना करिए कि फंसा हुआ पैसा मिले। हर बुधवार को किसी भी समय गाय को हरा चारा खिलाइए और प्रार्थना करिए कि डूबा हुआ धन आपको मिले। लगातार 1 से 3 महीने तक आप ये उपाय करेंगे, फंसे हुए रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रभात उस अभियान की जो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल है?
1: आज की रैली में 132 बटालियन से श्री WR जोशुआ कमांडेंट 132 बटालियन, सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बगतौर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बगतौर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चढ़ाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले ये अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
7: हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और

0: अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
1: देखिए तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है, मनोज जी आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को क्या मैसेज है।
2: मैं आज चार लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
0: हम सब लोग तिरंगे को साक्षी बनकर के हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
1: देखिए तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है, मनोज जी आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को क्या मैसेज है।
2: मैं आज चार लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
3: युवाओं ने लिया हिस्सा, इसरो को सहयोग करने के लिए न्योता भेजा है। दरअसल 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर में CSJWG यानी भारत अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में नासा ने इसरो को अपने महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट मून बेस प्रोग्राम में सहयोग करने के साथ आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया। अमेरिकी दूतावास के अनुसार दोनों पक्षों ने आर्टेमिस समझौते के तहत खुले वैज्ञानिक डेटा साझा करने पर सहयोग आगे बढ़ाने की दिशा में भी सहमति जताई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर प्रस्ताव की पुष्टि की। दरअसल मून बेस प्रोग्राम अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास पहला स्थायी आधार केंद्र स्थापित करना है, ताकि अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह पाएं, काम कर सकें और रिसर्च के काम को आगे बढ़ा सकें।
4: इस तीन फेजेस में सबसे पहला फेज है जो 2026 से लेकर 2029 तक है। उस टाइम पे ये मून के साउथ पोल में जाकर वहां पर रोबोट्स, लैंडर्स, ये सब लैंड करेंगे और खोज करेंगे कि वहां पर साउथ पोल में पानी है या नहीं। आपको याद होगा कि हमारे इसरो के चंद्रयान 2 या 3 में, दो और तीन में हमने कहा था कि वहां पर पानी है, उससे पहले पुष्टि नहीं हुई थी। तो वो पानी का खोज करेंगे और कई बातें खोज करेंगे।
5: नासा का मून बेस प्रोग्राम अब सिर्फ इतना नहीं है कि इंसान को दोबारा से चांद पर उतारा जाए, बल्कि बात अब आगे की है। नासा इस प्रोग्राम के तहत कोशिश ये कर रहा है कि कैसे इंसान को चांद पर बसाया जाएगा। नासा इस पूरे प्रोग्राम को 3 चरणबद्ध तरीकों से करना चाहता है। पहले चरण में सबसे पहला काम वो ये करना जा रहा है कि वो नासा अपने साथ साथ कई सारी प्राइवेट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेगा। वो चांद की सतह का अध्ययन करेगा, वहाँ पर क्या मुश्किल हालात हैं, किस तरह से उसे इंसान के लिए तैयार किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर सतह की पूरी तरह से रिसर्च की जाएगी। रिसर्च के बाद दूसरा काम होगा कि उसी सतह पर, चांद की सतह पर, कैसे रोवर और कम्युनिकेशन के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाए, उन्हें वहाँ इस्टेब्लिश किए जाए। और तीसरे चरण में यानी कि अंतिम चरण में कोशिश ये है कि 2030 तक कैसे इंसान को वहाँ पर बसा दिया जाए।
3: दरअसल पिछले साल अमल में आए निसार मिशन की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को लेकर अमेरिका का भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ झुकाव बढ़ा है। बीते साल 30 जुलाई को भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो धरातल यानी पृथ्वी की सतह जैसे जमीन, समंदर और बर्फ की चादरों में छोटे बड़े बदलावों पर गहराई से नजर रखने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए था। जिसके बाद अमेरिका ने विज्ञान क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे को माना। अमेरिका के इस न्योते के पीछे चंद्रयान 3 की सफलता भी बड़ी वजह बनी है। दरअसल आज से करीब 3 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन के तहत भारत ने चंद्रमा के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। अमेरिका की योजना के अनुसार नासा का मून बेस भी दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र में ही बनना है, जिसकी वजह से चंद्रमा, मंगल और दूसरे अंतरिक्ष मिशनों तक पहुंच चुके इसरो का तजुर्बा नासा के लिए काफी मायने रखता है।

0: नासा के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध है और नासा तो देख रहा है कि हम एक के बाद एक चंद्रयान, फिर मंगलयान, अभी हम गगनयान और फिर अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो हम एक तरह से स्पेस में सुपर पावर तो नहीं कहूंगा अभी तक, लेकिन गिने चुने देशों में एक हैं जिनका स्पेस कैपेबिलिटी बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो हम जिसे कहते हैं बिग बॉयज के साथ खेल रहे हैं।
1: पिछले कुछ सालों में इसरो ने बेहद किफायती बजट में चंद्रयान 3 और सूर्य का अध्ययन करने वाला आदित्य L1 के लॉन्च में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं। 2025 में भारत ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग के अलावा पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की तैयारियां भी शामिल हैं, जिसका मकसद 3 भारतीय यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजकर सुरक्षित वापसी भी करवाना है। अंतरिक्ष से जुड़े इस तरह के जटिल मिशन पूरा करने की क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बहुत मजबूत किया है।
0: हमारा बजट जो है पूरा साइंस एक्सप्लोरेशन का, वो जो है कुछ 1.6 बिलियन डॉलर्स का, और नासा का जो बजट है वो है कुछ 24 बिलियन डॉलर, चीन का है 19 से 24 बिलियन डॉलर, वो सबको

0: हम जो आउटपुट है हमारा वो बहुत ही मतलब शानदार है।
1: चंद्रमा की सतह पर रिसर्च के लिए बेस बनाने की रेस में चीन भी जुटा है। रूस के सहयोग से चीन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के जरिए चांद पर अपना बेस बना रहा है, जिसका मकसद चंद्रमा की बनावट का अध्ययन करने के अलावा चंद्रमा को बेस की तरह इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहने की तकनीक विकसित करना है। अमेरिका चीन के इसी बढ़ते प्रभाव को रोकने और उससे मुकाबला करने के लिए भारत को साथ लाना चाहता है।
0: नासा का सहायता करें और चीन को टक्कर दें और हम पहले जाकर, हम मतलब मैं कह रहा हूं इसरो, नासा, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं और दूसरे देश, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सेट्रा, ये सब जाकर एक पहले साउथ पोल में, चंद्रमा में जाकर एक हैबिटेशन बसाएं और एक बेस बसाएं। इसमें हमारा जो योगदान होगा वो बहुत ही मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए नासा ने हमें चूज किया।
1: साल 2040 तक भारत का लक्ष्य भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने का है। ऐसे में नासा के मून बेस प्रोग्राम में सहयोग करना भारत के लिए भी अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, जिसकी बदौलत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष में कामयाबी के नए नए परचम लहरा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जयपुर में वर्ल्ड एलिफेंट डे धूमधाम से मनाया गया। आमेर हाथी गांव, आमेर किले के पास बसा ये गांव आज हाथियों की चहल पहल से गुलजार है। दरअसल आमेर का ये हाथी गांव राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में अपनी तरह का पहला ऐसा गांव है जिसे खास तौर पर हाथियों के संरक्षण और देखभाल के लिए बसाया गया था। करीब 140 बीघा में फैला ये गांव साल 2008 में शुरू हुआ था। आज यही जगह जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण बन चुकी है। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है क्योंकि आज यहां मेहमान इंसान नहीं बल्कि हाथी हैं और मेहमान नवाजी भी ऐसी कि देखने वाले बस देखते रह जाए। हाथियों के लिए खास दावत सजाई गई है, तरह तरह के फल मंगाए गए हैं। कोई हाथी केले और तरबूज का स्वाद ले रहा है तो कोई अपने पसंदीदा फलों का मजा ले रहा है। ऊपर से हाथियों को भी आज खास तौर पर सजाया गया है, यानी कि पूरा माहौल किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं। और अब बात मौसम की। अगस्त महीने में मानसूनी तेवर पहाड़ों पर खूब नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों का माहौल बदल दिया है। इस बरखा बहार से वादियां हरी भरी हो गई हैं। गर्मी और उमस से आजिज आ गए लोगों का दिल बारिश की बौछारों ने खुश कर दिया है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।

अगस्त महीने में मॉनसून पूरे वेग में है। देश के कई राज्यों में पड़ रही बरखा बहार दिलो दिमाग को तरोताजा कर दे रही है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग भी इन दिनों मॉनसूनी बौछारों का आनंद ले रहे हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां दोबारा तेज होती नजर आ रही हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जैसी कई और जगहों के आसमान में काले बादलों का डेरा है, तो कहीं कोहरे का भी चारों तरफ बसेरा है। इस बीच बरखा बहार का दौर हरी भरी वादियों को मानो नई जान दे रहा है। कुल्लू से होकर बहने वाली ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर हैं। बारिश यहां भी रह रह कर हो रही है। पूरी घाटी बादलों से छाई है। तो मनाली में भी मॉनसून की सक्रियता कुल्लू जैसी ही बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। विभाग ने जानकारी दी है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी। वहीं इसी दौरान चंबा, कांगड़ा और मंडी में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि 14 से 16 अगस्त के दौरान वेदर सिस्टम दोबारा मजबूत होगा, जिससे पूरे हिमाचल में मानसूनी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। खासकर 14 और 15 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है, इसलिए इस दौरान भारी बारिश का अलर्ट भी है। इसी तरह से मॉनसून 16 अगस्त तक पूरे हिमाचल में सक्रिय रहने वाला है। फिलहाल तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिन हिमाचल प्रदेश में मॉनसून फुल एक्टिव मोड पर रहेगा। यही वजह है कि मौसम विभाग के

0: हाँ है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
2: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल, इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िया। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भोलेनाथ जो बेलपत्र और धतूरे के साथ ही जलाभिषेक के अर्पण से वरदान लुटा देते हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे आभूषण की महिमा बताने जा रहे हैं जो दिव्य और मंगलकारी माना जाता है। आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी महाशक्ति की, शिव के प्रिय रुद्राक्ष की, जो माना जाता है भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। शिव कृपा के लिए कई उपाय बताए गए हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग इन्हीं उपायों में से एक है। रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ, आखिर रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानिए।

0: वो जन्मा है रुद्रनाथ के रुदन से। उसकी उत्पत्ति मानी जाती है त्रिनेत्रधारी के नेत्रों से, जिसे देवाधिदेव महादेव के अंतर्मन का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसका प्राकट्य होना ध्यान मग्न महादेव की लीला का सार है। ये रुद्राक्ष है जिसे महादेव की शक्ति माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि धरती पर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का विवरण मिलता है। रुद्राक्ष जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में कही गई है, जो महादेव का आभूषण है, जो शिव को प्रिय है, जिसे शंभुनाथ की शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
1: भगवान शिव की उपासना में भस्म का, बेलपत्र का, भांग, धतोरा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्र के अश्रुओं से निकला ये वो अनमोल मोती है जो लोगों के जीवन में न सिर्फ आने वाले संकटों को दूर कर सकता है, बल्कि ये साधक की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करवा सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे महादेव की महाशक्ति कहे जाने वाले रुद्राक्ष की महिमा, साथ ही ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय तथा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं।
1: रुद्राक्ष के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। कैसे? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं और इस शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है। जो भी धारण करता है या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं और उसको मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं।
0: माना जाता है कि कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की सनातनी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि से लेकर संतों की दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है शिव का ये आभूषण। मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसके प्रयोग से मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप जानते समझते हैं उससे कहीं अधिक है इसकी शक्ति। रुद्राक्ष की शक्ति को मापना भी आसान नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल अचूक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करके परेशानियों को दूर करता है। काम बनने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है? रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिलेगा सिर्फ लाभ।
1: जो व्यक्ति भी इसे धारण करता है और भगवान शिव को चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करते समय सावधानी बरतनी है कि सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए।
0: रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर यह चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरों की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। विशेष लाभ पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है और अगर सही रुद्राक्ष धारण किया जाए तो जरूर पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। रुद्राक्ष के वैसे कई प्रकार भी हैं, हर किसी की एक पहचान है, पर असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की खुद पहचान कर सकते हैं, जानिए।

0: भोलेनाथ के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है महाकाल के लिए सबसे खास। रुद्राक्ष धारण करके करे महादेव की भक्ति। एक रुद्राक्ष से मिल सकती है शिव की शक्ति। भोलेनाथ का वरदान है रुद्राक्ष। शिव शक्ति का प्रताप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है महादेव के अश्रुओं से।
1: भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान मुद्रा में बहुत समय तक भगवान शिव बैठे रहे। अचानक उनके मन में किसी बात को लेकर ग्लानि हुई। उनके नेत्र से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं, निकल जाती हैं। और यही जो उनकी दो बूंदें हैं भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गई।
0: कहते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे, और जब ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बनकर जमीन पर गिरे। उनके अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा उगा, जिससे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। कथा कहती है कि एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बहुत बलशाली और पराक्रमी था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कथा कहती है कि भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था, जिससे त्रिपुर का वध हो सकता था, लेकिन उस अस्त्र का तेज बहुत ज्यादा था। कथा कहती है कि त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। कथा है कि अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुओं की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला समाज में मान सम्मान पाता है। ये महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि तन मन की ऊर्जा को संतुलित रखने की औषधि है, जिसे धारण कर आप भी पा सकते हैं महादेव की महाकृपा। चलिए आपको बताते हैं कि एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष के विशेषताओं पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: अब जो 14 प्रकार है रुद्राक्ष के, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है साक्षात शिव स्वरूप है। इसे धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, यह सर्व सुख प्रदायक है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदायक है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह कालाग्नि स्वरूप है, पाप का नाश करके उत्तम फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है।
0: रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए मंत्र जाप में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन की हर दिशा में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि हर मनोकामना पूरी कर सकता है रुद्राक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है, पापों का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करने वाला है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जो सुख धन और रूप प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, आयु में वृद्धि करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप है, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है नौ मुखी रुद्राक्ष में।
0: शीघ्र विवाह के लिए दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिक्षा और एकाग्रता के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष, स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए एक मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, नौकरी की बाधाओं से बचने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष, भक्ति के लिए ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मस्तक पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शांति मिलती है तथा शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सभी प्रकार के सुखों के को प्रदान करने वाला माना गया है। एकादश मुखी रुद्राक्ष, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के कष्टों का समन करने के लिए। द्वादश मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, सामान्य जनों के लिए अच्छा माना गया है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष जो है विश्व देवों के रूप में है, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, जो परम कल्याणी है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना गया है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष होगा तो आपके पास से मुसीबतें हो जाएंगी कोसों दूर। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में ज्योतिष के जानकार।
1: असली जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो बनावट, एक रुद्राक्ष की बनावट दूसरे रुद्राक्ष से भिन्न होगी, समान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक के जो रुद्राक्ष होते हैं, नकली होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे कि जो रेखाएं हैं असली रुद्राक्ष पर ऊपर से नीचे तक अस्पष्ट और प्राकृतिक रेखाएं होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। असली दाने की ऊपरी सतह खुरदरी और असमान होती हैं। दो असली रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसका ध्यान देना जरूरी है। जबकि त्रिशूल, ओम या विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं, वह असली में नहीं पाए जाते। यह नकली रुद्राक्ष का जो फल है, रुद्राक्ष है, उस पर बनाए जाते हैं लक्ष्य। असली रुद्राक्ष भारी होने के कारण पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी के ऊपर तैरता रहता है।
0: उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता, ना ही उस पर कोई असर होता है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूबता नहीं है। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग से गहरा हो जाता है। काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाले रुद्राक्ष ज्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। रुद्राक्ष को सुई से कुरेदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप नहीं होगी। तो देखा आपने मनोकामना पूर्ति का ये रुद्राक्ष किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब आप भी रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कैसे शांत होंगे शनिदेव, आगे जानिए।
2: माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहां तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से समाप्त किया जा सकता है।
0: शनि पीड़ा का अंत करेगा रुद्राक्ष, शनि की कृपा का पात्र बनाएगा रुद्राक्ष। माना जाता है कि महादेव के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शून्य हो जाता है। साथ ही साथ जानकार ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वालों पर ग्रहों की पीड़ा का असर नहीं होता। महादेव के प्रताप से उनके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रुद्राक्ष से लाभ हासिल कर सकते हैं।
1: षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, भस्म से स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी वस्तुओं से उसका पूजन उसी प्रकार करेंगे जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार, 1008 बार या यथाशक्ति जप करेंगे। अंत में ओम तद पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार जप करके भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा।
0: यही तो है रुद्राक्ष की शक्ति। अगर आप भी शनि के कष्टों से दो चार हो रहे हैं तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष, क्योंकि शास्त्रों में शनि के गुरु हैं महादेव। माना जाता है कि जो भी साधक महादेव के आभूषण को धारण करता है और धर्म सम्मत आचरण रखता है उस पर शनि कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को शनि परेशान नहीं करते हैं और वो साधक शनि का साढ़ साथी और ढैया होने पर भी सुख से रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शनि से जुड़ी बाधाएं कैसे आप रुद्राक्ष की मदद से दूर कर सकते हैं। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। सेहत की दिक्कतें हो तो शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साढ़े साथी या ढैया हो तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। माना जाता है कि रुद्राक्ष से जुड़े ये महाप्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं और साथ ही नियमों का पालन करते हैं तो शनिदेव आप पर भी मेहरबान होंगे, जिससे आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: और अब बात उस अभियान की जो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने हरी झंडी दिखाई। इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: सर, आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल है?
1: आज की रैली में 132 बटालियन से श्री WR जोशुआ कमांडेंट, 132 बटालियन सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बगतौर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बगतौर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चलाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदू ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले ये अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के, देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के, जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: तिरंगा यात्रा से जुड़ी ऐसी ही रौनक कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन को तिरंगे की थीम पर रोशन कर दिया गया है। 2 दिन बाद देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश में जश्न ए आजादी की ये शानदार जानदार तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
12: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी। दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग। भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट। समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान। पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी। सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार। गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। लोग बिना जांचे परखे इसे सच मान लेते हैं और इसे लगातार शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ की रेखा के बीच का फर्क मिटाते हैं। पुरानी घटना कभी कभी नहीं बताकर परोसी जाती। हम हर उस खबर की तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ आप तक लेकर आते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर, ताकि आप किसी अफवाह का शिकार ना हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के करीब आते ही सांसद सानी घोष के स्वर बदल गए। यूजर्स एक वीडियो के जरिए सानी घोष पर लगातार तंज कस रहे हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो यूपी के गोंडा का है, जहां एक गांव में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर के घर पर हमला कर दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करेंगे फैक्ट चेक की।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सानी घोष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें दो क्लिप्स हैं। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके स्वर बदल गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
13: बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर।
14: सांसद सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें दो क्लिप्स हैं। पहले क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं।
13: आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता।
14: वहीं दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। वो ये भी कहती हैं कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
13: आदम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
14: सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायोनी घोष टीएमसी के साथ थी, और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद सानी घोष की ये दो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स उसे वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि जब वो टीएमसी में थी तो बीजेपी पर हमला पर थी, बागी होती राष्ट्रवादी बनकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके बोल बदल गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और इस दौरान हमने ये गौर किया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स एक ही भाषण के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखा तो हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही महिला पर गया। ये महिला दोनों क्लिप्स में नजर आ रही है, इससे ये तो इशारा मिल गया कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही वीडियो के हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्लिप्स में सानी घोष एक जैसी ही साड़ी पहने हुए भी नजर आ रही है, इससे भी इशारा मिलता है कि एक ही समय के दोनों क्लिप्स हो सकती हैं। संसद में दिए गए किसी भाषण से इसे उठाया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि सांसद सानी घोष का वायरल हो रहा वीडियो कब का है। दूसरा सवाल ये कि ये कहीं सांसद सायनी घोष के बयान को दो हिस्सों में बांटकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानना।
14: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सायोनी घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो 29 जुलाई 2025 का है। घोष ने ये भाषण संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था। 16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे।
13: सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
14: इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। पाकिस्तान को बताया जाए कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटते हैं।
13: But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
14: वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है, लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं। दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो टीएमसी के साथ थी। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
15: और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए। ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है।
14: 7 अगस्त को सायोनी घोष ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, वो भी उस वक्त की जब वो टीएमसी में ही थी। इस भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए थे।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये वीडियो है, जहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
16: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक व्यक्ति घास फूस से बना किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का लग रहा है। उस वीडियो के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बाउंड्री हटाने में उसका साथ दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा का मामला है, जहां एक गांव में कुछ मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हिंदुओं के घर पर हमला कर दिया। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत इटिया थोक गांव गिरधरपुर में संगठित होकर मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बोला हमला। गांव में फैला दहशत का माहौल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार पर जबरन उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की गोंडा के इटियाथोक गांव गिरधरपुर में एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। लिहाजा इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग घास फूस से बनी अस्थायी दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर जबरन कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी इस हरकत का विरोध जरूर हुआ होगा। पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के जरिए यह इशारा भी मिल रहा है कि ये आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो यह घटना कब की। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाएंगे।
16: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात में जुटी। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले गोंडा के इटियाथोक थाना प्रभारी कमलकांत त्रिपाठी से बात की और घटना की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गोंडा के गजातपुर गांव का ही है और लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम गुटों के बीच कहां सुनी हो गई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। वायरल वीडियो वाले एक एक्स पोस्ट के जवाब में गोंडा पुलिस ने 7 अगस्त को एक स्पष्टीकरण दिया था। इसमें पुलिस ने बताया था कि ये वीडियो 5 जून 2026 का है। गांव में एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। बबलू उर्फ अफरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। वकील अहमद, इसरार अहमद, सलीम और तस्लीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। शिकायत पर पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इसके बाद 16 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। इस तरह हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो गोंडा का ही है, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये एक गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में हुए विवाद का वीडियो है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
2: महाराष्ट्र के अमरावती के एक स्कूल में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षक का तबादला होने पर उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षक के जाने की खबर से कई छात्र भावुक होकर रोने लगे और उनसे गले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने तो स्कूल का गेट तक बंद कर दिया ताकि शिक्षक वहां से जा ना सकें। इस भावुक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसे देखकर लोग छात्रों और शिक्षक के बीच के इस खास रिश्ते की तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों ने जिस तरह अपने शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान जताया, वो लोगों को छू गया। शिक्षक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी बच्चों ने खा दिया कि उनके लिए वो कितने खास हैं।
3: क्वेश्चन क्या है? वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में मैडम बच्चों की टेस्ट कॉपी देख रही हैं।
3: इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं और जानवर किडनैप हो रहे हैं,
2: जिसपे एक कॉपी को लेकर वो बहुत हंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल टेस्ट में सवाल पूछा गया था कि जंगलों से वन्य जीव कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस सवाल का जवाब एक बच्चे ने बहुत मजेदार दिया।
3: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
2: बच्चे ने कॉपी में प्रश्न का जवाब लिखा कि जंगलों से वन्य जीव इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि वो किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको जू में लाया जा रहा है। वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक्स किया है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
3: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है, हमने यही आंसर लिखवाया था।
4: मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
3: तो तुम 7 दिन नहीं आए थे तो तुम यही लिखोगे कि जानवर किडनैप हो रहे हैं, इसीलिए वन्य जीव कम हो रहे हैं। किडनैप किए हो क्या तुम? किसको? बकरी को लेके?
5: परी के दर्शन कराती हूँ, परी के इंस्टाग्राम और बॉलीवुड वाली नहीं, रियल लाइफ परी दिखाती हूँ।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत ले रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि आखिर बेटी क्यों अपने पिता की दुलारी होती है। इस दृश्य को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है वीडियो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है। वहां पर पिता अपनी बेटी की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है। इस दौरान बेटी भी बिना कोई सवाल जवाब किए पापा के बालों को सहला रही है। प्यार, अपनापन और देखभाल जताने का ये खूबसूरत तरीका लोगों को पसंद आ रहा है।

देशभक्ति और उत्साह की एक प्यारी सी झलक लद्दाख के एक छोटे से गांव से सामने आई, जहां नन्हे बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे दिखे। बच्चों के मासूम चेहरे, सादगी भरी तैयारियां और देश के प्रति उनका उत्साह लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लद्दाख के गांव का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व महसूस करने का खास दिन है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई हाथ में तिरंगा लेकर चलता दिख रहा है, तो कोई उस दिन होने वाली परेड की तैयारी कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बता रही है कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार उन्हें भी उतना ही रहता है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। दरअसल पिता को जब घर के पास बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गया, उसे ढूंढने लगा। खोजबीन के दौरान बच्ची सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठी मिली और एक छोटे पपी के साथ ऐसे बातचीत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये प्यारा और मासूम पल इंटरनेट पर काफी पसंद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां पढ़ाई में व्यस्त बच्चों के बीच एक कुत्ता बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा और कुछ ही देर में वो पूरी स्टडी सेशन की जान बन गया। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं। सभी अपने अपने पढ़ाई के काम में बिजी हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत नजर आ रहा है। इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचता है। आमतौर पर कोई कुत्ता बच्चों के बीच पहुंचता है तो उसके साथ खेलने या उसे प्यार करने के लिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को परेशान करने की बजाय चुपचाप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। कुत्ते को जैसे ही आराम करने के लिए सही जगह मिली, वो वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में एक बच्चे की गोद में जाकर आराम से सो भी गया। आसपास बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और डॉगी अपनी ही दुनिया में सुकून से झपकी लेता रहा। उसकी सबसे प्यारी बात यही थी कि उसने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, न कोई शरारत, न भौंकना, न ही बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़। वो तो बस आराम से लेटकर अपनी नींद पूरी करता नजर आया।

इन दिनों सावन की कावड़ यात्रा पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग और बम बम भोले और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे।

दरअसल दो शिव भक्तों ने अपनी साधारण सी बाइक को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी का बिल्कुल जीवंत रूप दे दिया। जी हाँ, एक चलती फिरती नंदी बाइक। वीडियो में इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया

बाइक को एक अद्भुत और असली जैसा लुक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी को ही सफेद रंग के मुलायम और रोएदार कवर से ढका गया, जो बिल्कुल नंदी की खाल जैसा एहसास कराता है। बाइक की हेडलाइट के ठीक ऊपर नंदी महाराज का एक बेहद खूबसूरत और अस्थायी चेहरा लगाया गया, जिसे देख पहली नजर में धोखा हो जाए कि ये कोई असली बैल है या बाइक। दो श्रद्धालु इस अनोखे वाहन पर बड़े गर्व के साथ सवार होकर कांवड़ यात्रा के जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस का है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर

0: रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से इनकार करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कब
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है, लेकिन इस बार आजादी का जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदियों और झीलों की लहरों पर भी नजर आने लगा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 150 बोट और इन बोट्स पर शान से लहराता तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा वाकई देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील। दोनों जगहों पर खूबसूरत नजारा, वो तिरंगा कितनी शान से यहां लहरा रहा है। पानी की लहरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगे के नीचे पूरा देश एक है और ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है।

0: Almanya.
1: देशभक्ति, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है सहारनपुर की गौशाला, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ ही रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। देशभक्ति के रंग में रंगा ये छोटा सा तिरंगा बाज दिखने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका बहुत खास है। ये बाज प्लास्टिक या फिर किसी सिंथेटिक मटीरियल से नहीं, बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। सहारनपुर की इस गौशाला में गौवंश संरक्षण के साथ ही गोबर के उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पिछले साल करीब 3000 बैच बनाए गए थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 पहुंच गई है, यानी कि हर साल इस स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल पहल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमत गोबर से तैयार एक तिरंगा बैच की अगर कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए ही है। वहीं गोबर से बने ये बैच पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें

0: गमले में डाला जा सकता है जहां से ये खाद भी बन जाएगी। तो खास राखियां भी रक्षाबंधन से पहले तैयार की जा रही हैं। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां भारत चीन सीमा के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आजादी दिवस समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती इलाके में उत्साह का संदेश भी देखने को मिला। बर्फीली हवाओं और बेहद चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट न सिर्फ युवाओं के खेल कौशल का एक मंच है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करता है। इस भव्य आयोजन में खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका उत्साह भी देखने लायक था। इस खास कार्यक्रम का मकसद स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: इसीलिए खबर के किंतु
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी। दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग। भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट। समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कावड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान। पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी। सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कावड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार। गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। भोलेनाथ जो बेलपत्र और धतूरे के साथ ही जलाभिषेक के अर्पण से वरदान लुटा देते हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे आभूषण की महिमा बताने जा रहे हैं जो दिव्य और मंगलकारी माना जाता है। आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी महाशक्ति की, शिव के प्रिय रुद्राक्ष की, जो माना जाता है भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। शिव कृपा के लिए कई उपाय बताए गए हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग इन्हीं उपायों में से एक है। रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ? आखिर रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानिए।

0: वो जन्मा है रुद्रनाथ के रुदन से। उसकी उत्पत्ति मानी जाती है त्रिनेत्रधारी के नेत्रों से, जिसे देवाधिदेव महादेव के अंतर्मन का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसका प्राकट्य होना ध्यान मग्न महादेव की लीला का सार है। ये रुद्राक्ष है जिसे महादेव की शक्ति माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि धरती पर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का विवरण मिलता है। रुद्राक्ष जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में कही गई है, जो महादेव का आभूषण है, जो शिव को प्रिय है, जिसे शंभुनाथ की शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
1: भगवान शिव की उपासना में भस्म का, बेलपत्र का, भांग धतोरा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्र के अश्रुओं से निकला ये वो अनमोल मोती है जो लोगों के जीवन में न सिर्फ आने वाले संकटों को दूर कर सकता है, बल्कि ये साधक की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करवा सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे महादेव की महाशक्ति कहे जाने वाले रुद्राक्ष की महिमा, साथ ही ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय तथा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं।
1: रुद्राक्ष के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। कैसे? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं और इस शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है। जो भी धारण करता है या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं और उसको जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं।
0: माना जाता है कि कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की सनातनी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि से लेकर संतों की दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है शिव का ये आभूषण। मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसके प्रयोग से मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप जानते समझते हैं उससे कहीं अधिक है इसकी शक्ति। रुद्राक्ष की शक्ति को मापना भी आसान नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल अचूक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करके परेशानियों को दूर करता है। काम बनने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिलेगा सिर्फ लाभ।
1: जो व्यक्ति भी इसे धारण करता है और भगवान शिव को चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करते समय सावधानी बरतनी है कि सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए।
0: रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर यह चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरों की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। विशेष लाभ पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है और अगर सही रुद्राक्ष धारण किया जाए तो जरूर पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। रुद्राक्ष के वैसे कई प्रकार भी हैं, हर किसी की एक पहचान है, पर असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की खुद पहचान कर सकते हैं, जानिए।

0: भोलेनाथ के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है महाकाल के लिए सबसे खास। रुद्राक्ष धारण करके करें महादेवों की भक्ति। एक रुद्राक्ष से मिल सकती है शिव की शक्ति। भोलेनाथ का वरदान है रुद्राक्ष, शिव शक्ति का प्रताप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है महादेव के अश्रुओं से।
1: भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान मुद्रा में बहुत समय तक भगवान शिव बैठे रहे। अचानक उनके मन में किसी बात को लेकर ग्लानि हुई। उनके नेत्र से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं, निकल जाती हैं। और यही जो उनकी दो बूंदें हैं भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गई।
0: कहते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे, और जब ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बनकर जमीन पर गिरे। उनके अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा उगा, जिससे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। कथा कहती है कि एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बहुत बलशाली और पराक्रमी था, कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कथा कहती है कि भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था, जिससे त्रिपुर का वध हो सकता था, लेकिन उस अस्त्र का तेज बहुत ज्यादा था। कथा कहती है कि त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। कथा है कि अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुओं की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला समाज में मान सम्मान पाता है। ये महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि तन मन की ऊर्जा को संतुलित रखने की औषधि है, जिसे धारण कर आप भी पा सकते हैं महादेव की महाकृपा। चलिए आपको बताते हैं कि एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष के विशेषताओं पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: अब जो 14 प्रकार है रुद्राक्ष के, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है साक्षात शिव स्वरूप है। इसे धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, यह सर्व सुख प्रदायक है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदायक है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह कालाग्नि स्वरूप है, पाप का नाश करके उत्तम फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है।
0: रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए मंत्र जाप में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन की हर दिशा में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि हर मनोकामना पूरी कर सकता है रुद्राक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है, पापों का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करने वाला है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जो सुख धन और रूप प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, आयु में वृद्धि करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप है, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है नौ मुखी रुद्राक्ष में।
0: शीघ्र विवाह के लिए दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिक्षा और एकाग्रता के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष, स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए एक मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, नौकरी की बाधाओं से बचने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष, भक्ति के लिए ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मस्तक पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शांति मिलती है तथा शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सभी प्रकार के सुखों के को प्रदान करने वाला माना गया है। एकादश मुखी रुद्राक्ष, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के कष्टों का समन करने के लिए। द्वादश मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, सामान्य जनों के लिए अच्छा माना गया है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष जो है विश्व देव के रूप में है, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, जो परम कल्याणी है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना गया है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष होगा तो आपके पास से मुसीबतें हो जाएंगी कोसों दूर। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में ज्योतिष के जानकार।
1: असली जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो बनावट, एक रुद्राक्ष की बनावट दूसरे रुद्राक्ष से भिन्न होगी, समान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक के जो रुद्राक्ष होते हैं, नकली होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे कि जो रेखाएं हैं असली रुद्राक्ष पर ऊपर से नीचे तक अस्पष्ट और प्राकृतिक रेखाएं होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। असली दाने की ऊपरी सतह खुरदरी और असमान होती हैं। दो असली रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसका ध्यान देना जरूरी है। जबकि त्रिशूल, ओम या विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं, वह असली में नहीं पाए जाते। यह नकली रुद्राक्ष का जो फल है, रुद्राक्ष है, उस पर बनाए जाते हैं लक्ष्य। असली रुद्राक्ष भारी होने के कारण पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी के ऊपर तैरता रहता है।
0: उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता, ना ही उस पर कोई असर होता है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूबता नहीं है। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग से गहरा हो जाता है। काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाले रुद्राक्ष ज्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। रुद्राक्ष को सुई से कुरेदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप नहीं होगी। तो देखा आपने मनोकामना पूर्ति का ये रुद्राक्ष किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब आप ही रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कैसे शांत होंगे शनिदेव, आगे जानिए।
2: माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहां तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से समाप्त किया जा सकता है।
0: शनि पीड़ा का अंत करेगा रुद्राक्ष। शनि की कृपा का पात्र बनाएगा रुद्राक्ष। माना जाता है कि महादेव के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष की जानकार बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शून्य हो जाता है। साथ ही साथ जानकार ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वालों पर ग्रहों की पीड़ा का असर नहीं होता। महादेव के प्रताप से उनके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रुद्राक्ष से लाभ हासिल कर सकते हैं।
1: षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, भस्म से स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी वस्तुओं से उसका पूजन उसी प्रकार करेंगे जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार, 1008 बार या यथाशक्ति जप करेंगे। अंत में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार जप करके भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा।
0: यही तो है रुद्राक्ष की शक्ति। अगर आप भी शनि के कष्टों से दो चार हो रहे हैं तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष, क्योंकि शास्त्रों में शनि के गुरु हैं महादेव। माना जाता है कि जो भी साधक महादेव के आभूषण को धारण करता है और धर्म सम्मत आचरण रखता है उस पर शनि कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को शनि परेशान नहीं करते हैं और वो साधक शनि का साढ़े साथी और ढैया होने पर भी सुख से रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शनि से जुड़ी बाधाएं कैसे आप रुद्राक्ष की मदद से दूर कर सकते हैं। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3-10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। सेहत की दिक्कतें हो तो शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साढ़े साथी या ढैया हो तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। माना जाता है कि रुद्राक्ष से जुड़े ये महाप्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं और साथ ही नियमों का पालन करते हैं तो शनिदेव आप पर भी मेहरबान होंगे, जिससे आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब बात उस अभियान की जो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने हरी झंडी दिखाई। इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: सर, आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल है?
1: आज की रैली में 132 बटालियन से श्री W.R. जोशुआ कमांडेंट 132 बटालियन, सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बख्तोर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बख्तोर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चलाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदू ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले यह अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के, देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के, जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज चार लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: तिरंगा यात्रा से जुड़ी ऐसी ही रौनक कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन को तिरंगे की थीम पर रोशन कर दिया गया है। दो दिन बाद देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश में जश्न ए आजादी की ये शानदार जानदार तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी। दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग। भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट। समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान। पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी। सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िया। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार। गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
10: कर मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। लोग बिना जांचे परखे इसे सच मान लेते हैं और इसे लगातार शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ की रेखा के बीच का फर्क मिटाते हैं। पुरानी घटना कभी कभी नहीं बताकर परोसी जाती। हम हर उस खबर की तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ आप तक लेकर आते हैं सही, सच्ची और सटी खबर, ताकि आप किसी अफवाह का शिकार ना हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के करीब आते ही सांसद सानी घोष के स्वर बदल गए। यूजर्स एक वीडियो के जरिए सानी घोष पर लगातार तंज कस रहे हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो यूपी के गोंडा का है, जहां एक गांव में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर के घर पर हमला कर दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करेंगे फैक्ट चेक की।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सानी घोष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें दो क्लिप्स हैं। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके स्वर बदल गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
17: बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर।
18: सांसद सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें दो क्लिप्स हैं। पहले क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं।
17: आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता।
18: वही दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। वो ये भी कहती हैं कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
17: आदम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
18: अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायोनी घोष TMC के साथ थी, और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद सानी घोष की ये दो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स इसे वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि जब वो टीएमसी में थी तो बीजेपी पर हमला पर थी, बागी होते ही राष्ट्रवादी बनकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके बोल बदल गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और इस दौरान हमने ये गौर किया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स एक ही भाषण के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखा तो हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही महिला पर गया। ये महिला दोनों क्लिप्स में नजर आ रही है, इससे ये तो इशारा मिल गया कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही वीडियो के हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्लिप्स में सानी घोष एक जैसी ही साड़ी पहने हुए भी नजर आ रही है, इससे भी इशारा मिलता है कि एक ही समय के दोनों क्लिप्स हो सकती हैं। संसद में दिए गए किसी भाषण से इसे उठाया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि सांसद सानी घोष का वायरल हो रहा वीडियो कब का है। दूसरा सवाल ये कि ये कहीं सांसद सायनी घोष के बयान को दो हिस्सों में बांटकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट को जानना।
18: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सायोनी घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो 29 जुलाई 2025 का है। घोष ने ये भाषण संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था। 16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे।
17: सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही, हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
18: इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। पाकिस्तान को बताया जाए कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटते हैं।
17: But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। So let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
18: वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है, लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं। दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो टीएमसी के साथ थी। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
15: और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए, ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है।
18: 7 अगस्त को सायोनी घोष ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, वो भी उस वक्त की जब वो टीएमसी में ही थी। इस भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए थे।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये वीडियो है, जहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
19: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक व्यक्ति घास फूस से बना किसी अस्थाई दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का लग रहा है। उस वीडियो के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बाउंड्री हटाने में उसका साथ दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा का मामला है, जहां एक गांव में कुछ मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हिंदुओं के घर पर हमला कर दिया। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत इटिया थोक गांव गिरधरपुर में संगठित होकर मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बोला हमला। गांव में फैला दहशत का माहौल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार पर जबरन उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गोंडा के इटियाथोक गांव गिरधरपुर में एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, लिहाजा इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग घास फूस से बनी अस्थायी दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर जबरन कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी इस हरकत का विरोध जरूर हुआ होगा। पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के जरिए यह इशारा भी मिल रहा है कि ये आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो यह घटना कब की। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
19: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात में जुटी। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले गोंडा के इटियाथोक थाना प्रभारी कमलकांत त्रिपाठी से बात की और घटना की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गोंडा के गजातपुर गांव का ही है और लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम गुटों के बीच कहासुनी हो गई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। वायरल वीडियो वाले एक एक्स पोस्ट के जवाब में गोंडा पुलिस ने 7 अगस्त को एक स्पष्टीकरण दिया था। इसमें पुलिस ने बताया था कि ये वीडियो 5 जून 2026 का है। गांव में एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। बबलू उर्फ अफरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। वकील अहमद, इसरार अहमद, सलीम और तस्लीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। शिकायत पर पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इसके बाद 16 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। इस तरह हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो गोंडा का ही है, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये एक गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में हुए विवाद का वीडियो है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
10: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
0: महाराष्ट्र के अमरावती के एक स्कूल में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षक का तबादला होने पर उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षक के जाने की खबर से कई छात्र भावुक होकर रोने लगे और उनसे गले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने तो स्कूल का गेट तक बंद कर दिया ताकि शिक्षक वहां से जा न सकें। इस भावुक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसे देखकर लोग छात्रों और शिक्षक के बीच के इस खास रिश्ते की तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों ने जिस तरह अपने शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान जताया वो लोगों को छू गया। शिक्षक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी बच्चों ने दिखा दिया कि उनके लिए वो कितने खास हैं।
21: क्वेश्चन क्या है? वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में मैडम बच्चों की टेस्ट कॉपी देख रही हैं।
21: इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं और जानवर किडनैप हो रहे हैं।
0: जिसपे एक कॉपी को लेकर वो बहुत हंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल टेस्ट में सवाल पूछा गया था कि जंगलों से वन्य जीव कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस सवाल का जवाब एक बच्चे ने बहुत मजेदार दिया।
21: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
0: बच्चे ने कॉपी में प्रश्न का जवाब लिखा कि जंगलों से वन्य जीव इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि वो किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको जू में लाया जा रहा है। वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक्स किया है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
21: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है, यही आंसर लिखवाया था।
22: मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
21: तो तुम 7 दिन नहीं आए थे तो तुम यही लिखोगे कि जानवर किडनैप हो रहे हैं इसीलिए वन्य जीव कम हो रहे हैं? किडनैप किए हो क्या तुम? किसको? बकरी को लेके?
23: परी के दर्शन कराती हूँ, परी के इंस्टाग्राम और बॉलीवुड वाली नहीं, रियल लाइफ परी दिखाती हूँ।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत ले रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि आखिर बेटी क्यों अपने पिता की दुलारी होती है। इस दृश्य को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है वीडियो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है। वहां पर पिता अपनी बेटी की गोद में सिर रख कर सोया हुआ है। इस दौरान बेटी भी बिना कोई सवाल जवाब किए पापा के बालों को सहला रही है। प्यार, अपनापन और देखभाल जताने का ये खूबसूरत तरीका लोगों को पसंद आ रहा है।

देशभक्ति और उत्साह की एक प्यारी सी झलक लद्दाख के एक छोटे से गांव से सामने आई, जहां नन्हे बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे दिखे। बच्चों के मासूम चेहरे, सादगी भरी तैयारियां और देश के प्रति उनका उत्साह लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लद्दाख के गांव का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व महसूस करने का खास दिन है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई हाथ में तिरंगा लेकर चलता दिख रहा है, तो कोई उस दिन होने वाली परेड की तैयारी कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बता रही है कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार उन्हें भी उतना ही रहता है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। दरअसल पिता को जब घर के पास बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गया, उसे ढूंढने लगा। खोजबीन के दौरान बच्ची सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठी मिली और एक छोटे पपी के साथ ऐसे बातचीत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये प्यारा और मासूम पल इंटरनेट पर काफी पसंद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां पढ़ाई में व्यस्त बच्चों के बीच एक कुत्ता बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा और कुछ ही देर में वो पूरी स्टडी सेशन की जान बन गया। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं, सभी अपने अपने पढ़ाई के काम में बिजी हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत नजर आ रहा है। इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचता है। आमतौर पर कोई कुत्ता बच्चों के बीच पहुंचता है तो उसके साथ खेलने या उसे प्यार करने के लिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को परेशान करने के बजाय चुपचाप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। कुत्ते को जैसे ही आराम करने के लिए सही जगह मिली, वो वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में एक बच्चे की गोद में जाकर आराम से सो भी गया। आसपास बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और डॉगी अपनी ही दुनिया में सुकून से झपकी लेता रहा। उसकी सबसे प्यारी बात यही थी कि उसने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, ना कोई शरारत, ना भौंकना, ना ही बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़। वो तो बस आराम से लेटकर अपनी नींद पूरी करता नजर आया।

इन दिनों सावन की कावड़ यात्रा पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग और बम बम भोले और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे।

दरअसल दो शिव भक्तों ने अपनी साधारण सी बाइक को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी का बिल्कुल जीवंत रूप दे दिया। जी हाँ, एक चलती फिरती नंदी बाइक। वीडियो में इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया।

बाइक को एक अद्भुत और असली जैसा लुक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी को ही सफेद रंग के मुलायम और रोएदार कवर से ढका गया, जो बिल्कुल नंदी की खाल जैसा एहसास कराता है। बाइक की हेडलाइट के ठीक ऊपर नंदी महाराज का एक बेहद खूबसूरत और अस्थायी चेहरा लगाया गया, जिसे देख पहली नजर में धोखा हो जाए कि ये कोई असली बैल है या बाइक। दो श्रद्धालु इस अनोखे वाहन पर बड़े गर्व के साथ सवार होकर कांवड़ यात्रा के जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस का है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। लड़की ऑटो ड्राइवर से कुछ देर रुकने की इजाजत मांगती है। वो उससे कहती है कि क्या वो करीब 5 मिनट के लिए ऑटो रोक सकता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है। ड्राइवर भी बगैर किसी परेशानी के उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए ऑटो रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है,

0: ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से इनकार करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है, लेकिन इस बार आजादी का जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदियों और झीलों की लहरों पर भी नजर आने लगा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 150 बोट और इन बोट्स पर शान से लहराता तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा वाकई देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। यहां शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील, दोनों जगहों पर खूबसूरत नजारा। वो तिरंगा कितनी शान से यहां लहरा रहा है। पानी की लहरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगे के नीचे पूरा देश एक है और ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। देशभक्ति, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है सहारनपुर की गौशाला, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ ही रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। देशभक्ति के रंग में रंगा ये छोटा सा तिरंगा बाज दिखने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका बहुत खास है। ये बाज प्लास्टिक या फिर किसी सिंथेटिक मटीरियल से नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। सहारनपुर की इस गौशाला में गौवंश संरक्षण के साथ ही गोबर के उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पिछले साल करीब 3000 बैच बनाए गए थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 पहुंच गई है, यानी कि हर साल इस स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल पहल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमत गोबर से तैयार एक तिरंगा बैच की अगर कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए ही है। वहीं गोबर से बने ये बैच पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें गमले में डाला जा सकता है जहां से ये खाद भी बन जाएगी। तो खास राखियां भी रक्षाबंधन से पहले तैयार की जा रही हैं। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां भारत चीन सीमा के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आजादी दिवस समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती इलाके में उत्साह का में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती

0: इलाके में उत्साह का ने मैदान पर अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट न सिर्फ युवाओं के इस भव्य आयोजन में खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका उत्साह भी देखने लायक था। इस खास कार्यक्रम का मकसद स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी। दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग। भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट। समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान। पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी। सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िया। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार। गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भोलेनाथ जो बेलपत्र और धतूरे के साथ ही जलाभिषेक के अर्पण से वरदान लुटा देते हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे आभूषण की महिमा बताने जा रहे हैं जो दिव्य और मंगलकारी माना जाता है। आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी महाशक्ति की, शिव के प्रिय रुद्राक्ष की, जो माना जाता है भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। शिव कृपा के लिए कई उपाय बताए गए हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग इन्हीं उपायों में से एक है। रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ? आखिर रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानिए।

0: वो जन्मा है रुद्रनाथ के रुदन से। उसकी उत्पत्ति मानी जाती है त्रिनेत्रधारी के नेत्रों से, जिसे देवाधिदेव महादेव के अंतर्मन का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसका प्राकट्य होना ध्यान मग्न महादेव की लीला का सार है। ये रुद्राक्ष है, जिसे महादेव की शक्ति माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि धरती पर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का विवरण मिलता है। रुद्राक्ष जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में कही गई है, जो महादेव का आभूषण है, जो शिव को प्रिय है, जिसे शंभुनाथ की शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
1: भगवान शिव की उपासना में भस्म का, बेलपत्र का, भांग धतोरा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्र के अश्रुओं से निकला ये वो अनमोल मोती है, जो लोगों के जीवन में न सिर्फ आने वाले संकटों को दूर कर सकता है, बल्कि ये साधक की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करवा सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे महादेव की महाशक्ति कहे जाने वाले रुद्राक्ष की महिमा, साथ ही ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है, जिसका औषधीय तथा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं।
1: रुद्राक्ष के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। कैसे? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं और इस शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है। जो भी धारण करता है या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं और उसको मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं।
0: माना जाता है कि कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की सनातनी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि से लेकर संतों की दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है शिव का ये आभूषण। मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसके प्रयोग से मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप जानते समझते हैं उससे कहीं अधिक है इसकी शक्ति। रुद्राक्ष की शक्ति को मापना भी आसान नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल अचूक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करके परेशानियों को दूर करता है। काम बनने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है? रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिलेगा सिर्फ लाभ।
1: जो व्यक्ति भी इसे धारण करता है और भगवान शिव को चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करते समय सावधानी बरतनी है कि सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए।
0: रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर ये चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरों की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। विशेष लाभ पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है और अगर सही रुद्राक्ष धारण किया जाए तो जरूर पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। रुद्राक्ष के वैसे कई प्रकार भी हैं, हर किसी की एक पहचान है, पर असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की खुद पहचान कर सकते हैं, जानिए।

0: भोलेनाथ के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है महाकाल के लिए सबसे खास। रुद्राक्ष धारण करके करे महादेवों की भक्ति। एक रुद्राक्ष से मिल सकती है शिव की शक्ति। भोलेनाथ का वरदान है रुद्राक्ष। शिव शक्ति का प्रताप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है महादेव के अश्रुओं से।
1: भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान मुद्रा में बहुत समय तक भगवान शिव बैठे रहे। अचानक उनके मन में किसी बात को लेकर ग्लानी हुई। उनके नेत्र से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं, निकल जाती हैं। और यही जो उनकी दो बूंदें हैं भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गई।
0: कहते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे, और जब ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बनकर जमीन पर गिरे। उनके अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा उगा, जिससे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। कथा कहती है कि एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बहुत बलशाली और पराक्रमी था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कथा कहती है कि भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था, जिससे त्रिपुर का वध हो सकता था, लेकिन उस अस्त्र का तेज बहुत ज्यादा था। कथा कहती है कि त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। कथा है कि अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुओं की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला समाज में मान सम्मान पाता है। ये महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि तन मन की ऊर्जा को संतुलित रखने की औषधि है, जिसे धारण कर आप भी पा सकते हैं महादेव की महाकृपा। चलिए आपको बताते हैं कि एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष के विशेषताओं पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: अब जो 14 प्रकार है रुद्राक्ष के, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव स्वरूप है। इसे धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, यह सर्व सुख प्रदायक है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदायक है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह कालाग्नि स्वरूप है, पाप का नाश करके उत्तम फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है।
0: रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए मंत्र जाप में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन की हर दिशा में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि हर मनोकामना पूरी कर सकता है रुद्राक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है, पापों का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करने वाला है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जो सुख धन और रूप प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, आयु में वृद्धि करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप है, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है नौ मुखी रुद्राक्ष में।
0: शीघ्र विवाह के लिए दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिक्षा और एकाग्रता के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष, स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए एक मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, नौकरी की बाधाओं से बचने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष, भक्ति के लिए ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मस्तक पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शांति मिलती है तथा शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सभी प्रकार के सुखों के को प्रदान करने वाला माना गया है। एकादश मुखी रुद्राक्ष, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के कष्टों का समन करने के लिए। द्वादश मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, सामान्य जनों के लिए अच्छा माना गया है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष जो है विष देव के रूप में है, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, जो परम कल्याणी है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना गया है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष होगा तो आपके पास से मुसीबतें हो जाएंगी कोसों दूर। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में ज्योतिष के जानकार।
1: असली जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो बनावट, एक रुद्राक्ष की बनावट दूसरे रुद्राक्ष से भिन्न होगी, समान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक के जो रुद्राक्ष होते हैं, नकली होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे कि जो रेखाएं हैं असली रुद्राक्ष पर ऊपर से नीचे तक अस्पष्ट और प्राकृतिक रेखाएं होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। असली दाने की ऊपरी सतह खुरदरी और असमान होती है। दो असली रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसका ध्यान देना जरूरी है। जबकि त्रिशूल, ओम या विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं, वह असली में नहीं पाए जाते। यह नकली रुद्राक्ष का जो फल है, रुद्राक्ष है, उस पर बनाए जाते हैं लक्ष्य। असली रुद्राक्ष भारी होने के कारण पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी के ऊपर तैरता रहता है।
0: उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता, ना ही उस पर कोई असर होता है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूबता नहीं है। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग से गहरा हो जाता है। काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाले रुद्राक्ष ज्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। रुद्राक्ष को सुई से कुरेदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप नहीं होगी। तो देखा आपने मनोकामना पूर्ति का ये रुद्राक्ष किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब आप ही रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कैसे शांत होंगे शनिदेव, आगे जानिए।
2: माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहां तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से समाप्त किया जा सकता है।
0: शनि पीड़ा का अंत करेगा रुद्राक्ष, शनि की कृपा का पात्र बनाएगा रुद्राक्ष। माना जाता है कि महादेव के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष की जानकार बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शून्य हो जाता है। साथ ही साथ जानकार ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वालों पर ग्रहों की पीड़ा का असर नहीं होता, महादेव के प्रताप से उनके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रुद्राक्ष से लाभ हासिल कर सकते हैं।
1: षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, भस्म से स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी वस्तुओं से उसका पूजन उसी प्रकार करेंगे जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार, 1008 बार या यथाशक्ति जप करेंगे। अंत में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार जप करके भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा।
0: यही तो है रुद्राक्ष की शक्ति। अगर आप भी शनि के कष्टों से दो चार हो रहे हैं तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष, क्योंकि शास्त्रों में शनि के गुरु हैं महादेव। माना जाता है कि जो भी साधक महादेव के आभूषण को धारण करता है और धर्म सम्मत आचरण रखता है उस पर शनि कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को शनि परेशान नहीं करते हैं और वो साधक शनि का साढ़े साथी और ढैया होने पर भी सुख से रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शनि से जुड़ी बाधाएं कैसे आप रुद्राक्ष की मदद से दूर कर सकते हैं। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3-10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। सेहत की दिक्कतें हो तो शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साढ़े साथी या ढैया हो तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। माना जाता है कि रुद्राक्ष से जुड़े ये महाप्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं और साथ ही नियमों का पालन करते हैं तो शनिदेव आप पर भी मेहरबान होंगे, जिससे आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हाउस स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब बात उस अभियान की जो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल है?
1: आज की रैली में 132 बटालियन से श्री डब्ल्यू आर जोशुआ कमांडेंट, 132 बटालियन, सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़ कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बख्तोर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बख्तोर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चलाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदू ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है, ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले यह अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के, देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के, जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: तिरंगा यात्रा से जुड़ी ऐसी ही रौनक कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन को तिरंगे की थीम पर रोशन कर दिया गया है। 2 दिन बाद देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश में जश्न ए आजादी की ये शानदार जानदार तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: देश भर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल, इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िया। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। लोग बिना जांचे परखे इसे सच मान लेते हैं और इसे लगातार शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ की रेखा के बीच का फर्क मिटाते हैं। पुरानी घटना कभी कभी नहीं बताकर परोसी जाती, हम हर उस खबर की तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ आप तक लेकर आते हैं सही सच्ची और सटी खबर, ताकि आप किसी अफवाह का शिकार ना हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के करीब आते ही सांसद सानी घोष के स्वर बदल गए। यूजर्स एक वीडियो के जरिए सानी घोष पर लगातार तंज कस रहे हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो यूपी के गोंडा का है, जहां एक गांव में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर के घर पर हमला कर दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करेंगे फैक्ट चेक।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
11: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सानी घोष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें दो क्लिप्स हैं। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके स्वर बदल गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
13: बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
14: सांसद सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें दो क्लिप्स हैं। पहले क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं।
13: आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता।
14: वही दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। वो ये भी कहती हैं कि वो एक किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
15: आजम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। लेट पाकिस्तान नो कि आप एक किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
14: अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायुनी घोष टीएमसी के साथ थी और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद सायुनी घोष की ये दो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स उसे वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि जब वो टीएमसी में थी तो बीजेपी पर हमला भर थी, बागी होते ही राष्ट्रवादी बनकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके बोल बदल गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और इस दौरान हमने ये गौर किया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स एक ही भाषण के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखा तो हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही महिला पर गया। ये महिला दोनों क्लिप्स में नजर आ रही है, इससे ये तो इशारा मिल गया कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही वीडियो के हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्लिप्स में सायुनी घोष एक जैसी ही साड़ी पहने हुए भी नजर आ रही हैं, इससे भी इशारा मिलता है कि एक ही समय के दोनों क्लिप्स हो सकती हैं। संसद में दिए गए किसी भाषण से इसे उठाया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि सांसद सायुनी घोष का वायरल हो रहा वीडियो कब का है। दूसरा सवाल ये कि ये कहीं सांसद सायुनी घोष के बयान को दो हिस्सों में बांटकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट को जानिए।
14: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सायुनी घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो 29 जुलाई 2025 का है। घोष ने ये भाषण संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था। 16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे।
15: सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
14: इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। पाकिस्तान को बताया जाए कि वो एक किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटते हैं।
15: But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वज़ीर-ए-आज़म आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप एक किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
14: वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है, लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं। दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो टीएमसी के साथ थी। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
16: और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा, देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए। ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये वीडियो है जहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
17: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक व्यक्ति घास फूस से बना किसी अस्थाई दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का लग रहा है। उस वीडियो के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बाउंड्री हटाने में उसका साथ दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा का मामला है, जहां एक गांव में कुछ मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हिंदुओं के घर पर हमला कर दिया। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत इटिया थोक गांव गिरधरपुर में संगठित होकर मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बोला हमला। गांव में फैला दहशत का माहौल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार पर जबरन उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गोंडा के इटियाथोक गांव गिरधरपुर में एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, लिहाजा इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग घास फूस से बनी अस्थायी दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर जबरन कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी इस हरकत का विरोध जरूर हुआ होगा। पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के जरिए यह इशारा भी मिल रहा है कि यह आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो यह घटना कब हुई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जाएंगे।
17: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात में जुटी। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले गोंडा के इटियाथोक थाना प्रभारी कमलकांत त्रिपाठी से बात की और घटना की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गोंडा के गजातपुर गांव का ही है और लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम गुटों के बीच कहासुनी हो गई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। वायरल वीडियो वाले एक एक्स पोस्ट के जवाब में गोंडा पुलिस ने 7 अगस्त को एक स्पष्टीकरण दिया था। इसमें पुलिस ने बताया था कि ये वीडियो 5 जून 2026 का है। गांव में एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। बबलू उर्फ अफरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। वकील अहमद, इसरार अहमद, सलीम और तस्लीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। शिकायत पर पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इसके बाद 16 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। इस तरह हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो गोंडा का ही है, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये एक गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में हुए विवाद का वीडियो है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
18: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
11: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
0: महाराष्ट्र के अमरावती के एक स्कूल में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षक का तबादला होने पर उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षक के जाने की खबर से कई छात्र भावुक होकर रोने लगे और उनसे गले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने तो स्कूल का गेट तक बंद कर दिया ताकि शिक्षक वहां से जा ना सकें। इस भावुक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसे देखकर लोग छात्रों और शिक्षक के बीच के इस खास रिश्ते की तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों ने जिस तरह अपने शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान जताया, वो लोगों को छू गया। शिक्षक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी बच्चों ने खा दिया कि उनके लिए वो कितने खास हैं।
20: क्वेश्चन क्या है? वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में मैडम बच्चों की टेस्ट कॉपी देख रही हैं।
20: इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं और जानवर किडनैप हो रहे हैं,
0: जिसपे एक कॉपी को लेकर वो बहुत हंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल टेस्ट में सवाल पूछा गया था कि जंगलों से वन्य जीव कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस सवाल का जवाब एक बच्चे ने बहुत मजेदार दिया।
20: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
0: बच्चे ने कॉपी में प्रश्न का जवाब लिखा कि जंगलों से वन्य जीव इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि वो किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको जू में लाया जा रहा है। वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक्स किया है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
20: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है, हमने यही आंसर लिखवाया था।
21: मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
20: तो तुम 7 दिन नहीं आए थे तो तुम यही लिखोगे कि जानवर किडनैप हो रहे हैं, इसीलिए वन्य जीव कम हो रहे हैं। किडनैप किए हो क्या तुम? किसको? बकरी को लेके?
22: परी के दर्शन कराती हूँ, परी के इंस्टाग्राम और बॉलीवुड वाली नहीं, रियल लाइफ परी दिखाती हूँ।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत ले रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि आखिर बेटी क्यों अपने पिता की दुलारी होती है। इस दृश्य को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है वीडियो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है। वहां पर पिता अपनी बेटी की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है। इस दौरान बेटी भी बिना कोई सवाल जवाब किए पापा के बालों को सहला रही है। प्यार, अपनापन और देखभाल जताने का ये खूबसूरत तरीका लोगों को पसंद आ रहा है।

देशभक्ति और उत्साह की एक प्यारी सी झलक लद्दाख के एक छोटे से गांव से सामने आई, जहां नन्हे बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे दिखे। बच्चों के मासूम चेहरे, सादगी भरी तैयारियां और देश के प्रति उनका उत्साह लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लद्दाख के गांव का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व महसूस करने का खास दिन है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई हाथ में तिरंगा लेकर चलता दिख रहा है, तो कोई उस दिन होने वाली परेड की तैयारी कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बता रही है कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार उन्हें भी उतना ही रहता है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। दरअसल पिता को जब घर के पास बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गया, उसे ढूंढने लगा। खोजबीन के दौरान बच्ची सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठी मिली और एक छोटे पपी के साथ ऐसे बातचीत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये प्यारा और मासूम पल इंटरनेट पर काफी पसंद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां पढ़ाई में व्यस्त बच्चों के बीच एक कुत्ता बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा और कुछ ही देर में वो पूरी स्टडी सेशन की जान बन गया। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं, सभी अपने अपने पढ़ाई के काम में बिजी हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत नजर आ रहा है। इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचता है। आमतौर पर कोई कुत्ता बच्चों के बीच पहुंचता है तो उसके साथ खेलने या उसे प्यार करने के लिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को परेशान करने के बजाय चुपचाप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। कुत्ते को जैसे ही आराम करने के लिए सही जगह मिली, वो वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में एक बच्चे की गोद में जाकर आराम से सो भी गया। आसपास बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और डॉगी अपनी ही दुनिया में सुकून से झपकी लेता रहा। उसकी सबसे प्यारी बात यही थी कि उसने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, ना कोई शरारत, ना भौंकना, ना ही बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़। वो तो बस आराम से लेटकर अपनी नींद पूरी करता नजर आया।

इन दिनों सावन की कावड़ यात्रा पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग और बम बम भोले और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे।

दरअसल दो शिव भक्तों ने अपनी साधारण सी बाइक को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी का बिल्कुल जीवंत रूप दे दिया। जी हाँ, एक चलती फिरती नंदी बाइक। वीडियो में इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया

0: बाइक को एक अद्भुत और असली जैसा लुक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी को ही सफेद रंग के मुलायम और रोएदार कवर से ढका गया, जो बिल्कुल नंदी की खाल जैसा एहसास कराता है। बाइक की हेडलाइट के ठीक ऊपर नंदी महाराज का एक बेहद खूबसूरत और अस्थायी चेहरा लगाया गया, जिसे देख पहली नजर में धोखा हो जाए कि ये कोई असली बैल है या बाइक। दो श्रद्धालु इस अनोखे वाहन पर बड़े गर्व के साथ सवार होकर कांवड़ यात्रा के जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस का है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। लड़की ऑटो ड्राइवर से कुछ देर रुकने की इजाजत मांगती है। वो उससे कहती है कि क्या वो करीब 5 मिनट के लिए ऑटो रोक सकता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है। ड्राइवर भी बगैर किसी परेशानी के उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए ऑटो रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है, तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से इनकार करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है, लेकिन इस बार आजादी का

0: और इन बोट्स पर शान से लहराता तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा वाकई देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। यहां शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील। दोनों जगहों पर खूबसूरत नजारा। वो तिरंगा कितनी शान से यहां लहरा रहा है। पानी की लहरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगे के नीचे पूरा देश एक है और ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। देशभक्ति, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है सहारनपुर की गौशाला, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ ही रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। देशभक्ति के रंग में रंगा ये छोटा सा तिरंगा बाज दिखने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका बहुत खास है। ये बाज प्लास्टिक या फिर किसी सिंथेटिक मटेरियल से नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। सहारनपुर की इस गौशाला में गौवंश संरक्षण के साथ ही गोबर के उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पिछले साल करीब 3000 बैच बनाए गए थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 पहुंच गई है, यानी कि हर साल इस स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल पहल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमत गोबर से तैयार एक तिरंगा बैच की अगर कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए ही है। वहीं गोबर से बने ये बैच पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें गमले में डाला जा सकता है जहां से ये खाद भी बन जाएगी। तो खास राखियां भी रक्षाबंधन से पहले तैयार की जा रही हैं। सिक्किम के धेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां भारत चीन सीमा के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आजादी दिवस समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती इलाके में उत्साह का संदेश भी देखने को मिला। बर्फीली हवाओं और बेहद चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट न सिर्फ युवाओं के खेल कौशल का एक मंच है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करता है। इस भव्य आयोजन में खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका उत्साह भी देखने लायक था। इस खास कार्यक्रम का मकसद स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में,
0: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी। दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य।

0: भक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट। समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भोलेनाथ जो बेलपत्र और धतूरे के साथ ही जलाभिषेक के अर्पण से वरदान लुटा देते हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे आभूषण की महिमा बताने जा रहे हैं जो दिव्य और मंगलकारी माना जाता है। आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी महाशक्ति की, शिव के प्रिय रुद्राक्ष की, जो माना जाता है भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। शिव कृपा के लिए कई उपाय बताए गए हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग इन्हीं उपायों में से एक है। रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ, आखिर रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानिए।

0: वो जन्मा है रुद्रनाथ के रुदन से। उसकी उत्पत्ति मानी जाती है त्रिनेत्रधारी के नेत्रों से, जिसे देवाधिदेव महादेव के अंतर्मन का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसका प्राकट्य होना ध्यान मग्न महादेव की लीला का सार है। ये रुद्राक्ष है जिसे महादेव की शक्ति माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि धरती पर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का विवरण मिलता है। रुद्राक्ष जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में कही गई है, जो महादेव का आभूषण है, जो शिव को प्रिय है, जिसे शंभुनाथ की शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
1: भगवान शिव की उपासना में भस्म का, बेलपत्र का, भांग धतोरा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्र के अश्रुओं से निकला ये वो अनमोल मोती है जो लोगों के जीवन में न सिर्फ आने वाले संकटों को दूर कर सकता है, बल्कि ये साधक की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करवा सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे महादेव की महाशक्ति कहे जाने वाले रुद्राक्ष की महिमा, साथ ही ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय तथा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं।
1: रुद्राक्ष के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। कैसे? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं और इस शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है। जो भी धारण करता है या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं और उसको जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं।
0: माना जाता है कि कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की सनातनी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि से लेकर संतों की दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है शिव का ये आभूषण। मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसके प्रयोग से मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप जानते समझते हैं उससे कहीं अधिक है इसकी शक्ति। रुद्राक्ष की शक्ति को मापना भी आसान नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल अचूक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करके परेशानियों को दूर करता है। काम बनने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है? रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिलेगा सिर्फ लाभ।
1: जो व्यक्ति भी इसे धारण करता है और भगवान शिव को चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करते समय सावधानी बरतनी है कि सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए।
0: रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर यह चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरों की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। विशेष लाभ पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है और अगर सही रुद्राक्ष धारण किया जाए तो जरूर पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। रुद्राक्ष के वैसे कई प्रकार भी हैं, हर किसी की एक पहचान है, पर असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की खुद पहचान कर सकते हैं, जानिए।

0: भोलेनाथ के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है महाकाल के लिए सबसे खास। रुद्राक्ष धारण करके करें महादेवों की भक्ति। एक रुद्राक्ष से मिल सकती है शिव की शक्ति। भोलेनाथ का वरदान है रुद्राक्ष, शिव शक्ति का प्रताप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है महादेव के अश्रुओं से।
1: भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान मुद्रा में बहुत समय तक भगवान शिव बैठे रहे। अचानक उनके मन में किसी बात को लेकर ग्लानि हुई। उनके नेत्र से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं, निकल जाती हैं। और यही जो उनकी दो बूंदें हैं भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गई।
0: कहते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे, और जब ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बनकर जमीन पर गिरे। उनके अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा उगा, जिससे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। कथा कहती है कि एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बहुत बलशाली और पराक्रमी था, कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कथा कहती है कि भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था, जिससे त्रिपुर का वध हो सकता था, लेकिन उस अस्त्र का तेज बहुत ज्यादा था। कथा कहती है कि त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। कथा है कि अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुओं की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला समाज में मान सम्मान पाता है। ये महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि तन मन की ऊर्जा को संतुलित रखने की औषधि है, जिसे धारण कर आप भी पा सकते हैं महादेव की महाकृपा। चलिए आपको बताते हैं कि एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष की विशेषताओं पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: अब जो 14 प्रकार है रुद्राक्ष के, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है साक्षात शिव स्वरूप है। इसे धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, यह सर्व सुख प्रदायक है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदायक है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह कालाग्नि स्वरूप है, पाप का नाश करके उत्तम फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है।
0: रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए मंत्र जाप में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन की हर दिशा में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि हर मनोकामना पूरी कर सकता है रुद्राक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है, पापों का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करने वाला है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जो सुख धन और रूप प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, आयु में वृद्धि करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप है, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है नौ मुखी रुद्राक्ष में।
0: शीघ्र विवाह के लिए दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिक्षा और एकाग्रता के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष, स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए एक मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, नौकरी की बाधाओं से बचने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष, भक्ति के लिए ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मस्तक पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शांति मिलती है तथा शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सभी प्रकार के सुखों के को प्रदान करने वाला माना गया है। एकादश मुखी रुद्राक्ष, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के कष्टों का समन करने के लिए। द्वादश मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, सामान्य जनों के लिए अच्छा माना गया है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष जो है विश्व देव के रूप में है, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, जो परम कल्याणी है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना गया है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष होगा तो आपके पास से मुसीबतें हो जाएंगी कोसों दूर। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में ज्योतिष के जानकार।
1: असली जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो बनावट, एक रुद्राक्ष की बनावट दूसरे रुद्राक्ष से भिन्न होगी, समान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक के जो रुद्राक्ष होते हैं, नकली होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे कि जो रेखाएं हैं असली रुद्राक्ष पर ऊपर से नीचे तक अस्पष्ट और प्राकृतिक रेखाएं होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। असली दाने की ऊपरी सतह खुरदरी और असमान होती हैं। दो असली रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसका ध्यान देना जरूरी है। जबकि त्रिशूल, ओम या विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं, वह असली में नहीं पाए जाते। यह नकली रुद्राक्ष का जो फल है, रुद्राक्ष है, उस पर बनाए जाते हैं लक्ष्य। असली रुद्राक्ष भारी होने के कारण पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी के ऊपर तैरता रहता है।
0: उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता, ना ही उस पर कोई असर होता है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूबता नहीं है। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग से गहरा हो जाता है। काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाले रुद्राक्ष ज्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। रुद्राक्ष को सुई से कुरेदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप नहीं होगी। तो देखा आपने मनोकामना पूर्ति का ये रुद्राक्ष किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब आप ही रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कैसे शांत होंगे शनिदेव, आगे जानिए।
2: माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहां तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से समाप्त किया जा सकता है।
0: शनि पीड़ा का अंत करेगा रुद्राक्ष, शनि की कृपा का पात्र बनाएगा रुद्राक्ष। माना जाता है कि महादेव के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शून्य हो जाता है। साथ ही साथ जानकार ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वालों पर ग्रहों की पीड़ा का असर नहीं होता, महादेव के प्रताप से उनके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रुद्राक्ष से लाभ हासिल कर सकते हैं।
1: षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, भस्म से स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी वस्तुओं से उसका पूजन उसी प्रकार करेंगे जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार 1008 बार या यथाशक्ति जप करेंगे। अंत में ओम तद पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार जप करके भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा।
0: यही तो है रुद्राक्ष की शक्ति। अगर आप भी शनि के कष्टों से दो चार हो रहे हैं तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष, क्योंकि शास्त्रों में शनि के गुरु हैं महादेव। माना जाता है कि जो भी साधक महादेव के आभूषण को धारण करता है और धर्म सम्मत आचरण रखता है उस पर शनि कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को शनि परेशान नहीं करते हैं और वो साधक शनि का साढ़े साथी और ढैया होने पर भी सुख से रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शनि से जुड़ी बाधाएं कैसे आप रुद्राक्ष की मदद से दूर कर सकते हैं। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3-10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। सेहत की दिक्कतें हो तो शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साढ़े साथी या ढैया हो तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। माना जाता है कि रुद्राक्ष से जुड़े ये महाप्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं और साथ ही नियमों का पालन करते हैं तो शनिदेव आप पर भी मेहरबान होंगे, जिससे आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: और अब बात उस अभियान की जो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने हरी झंडी दिखाई। इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल
1: है? आज की रैली में 132 बटालियन से श्री डब्ल्यू आर जोशुआ कमांडेंट, 132 बटालियन, सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बख्तोर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बख्तोर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चलाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले ये अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के, देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के, जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: तिरंगा यात्रा से जुड़ी ऐसी ही रौनक कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन को तिरंगे की थीम पर रोशन कर दिया गया है। 2 दिन बाद देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश में जश्न ए आजादी की ये शानदार जानदार तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल, इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िया। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। लोग बिना जांचे परखे इसे सच मान लेते हैं और इसे लगातार शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ की रेखा के बीच का फर्क मिटाते हैं। पुरानी घटना कभी कभी नई बताकर परोसी जाती, हम हर उस खबर की तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ आप तक लेकर आते हैं सही सच्ची और सटी खबर, ताकि आप किसी अफवाह का शिकार ना हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के करीब आते ही सांसद सानी घोष के स्वर बदल गए। यूजर्स एक वीडियो के जरिए सानी घोष पर लगातार तंज कस रहे हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो यूपी के गोंडा का है, जहां एक गांव में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर के घर पर हमला कर दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करेंगे फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सानी घोष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें दो क्लिप्स हैं। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके स्वर बदल गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही, हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर।
4: सांसद सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें दो क्लिप्स हैं। पहले क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती है।
3: आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही, हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हाँ और है।
4: वहीं दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। वो ये भी कहती हैं कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
3: आदम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है, तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
4: अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायोनी घोष टीएमसी के साथ थी, और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद सायनी घोष की ये दो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स इसे वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि जब वो टीएमसी में थी तो बीजेपी पर हमला पर थी, बागी होते ही राष्ट्रवादी बनकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके बोल बदल गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और इस दौरान हमने ये गौर किया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स एक ही भाषण के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखा तो हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही महिला पर गया। ये महिला दोनों क्लिप्स में नजर आ रही है, इससे ये तो इशारा मिल गया कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही वीडियो के हो सकती हैं। इसके अलावा दोनों क्लिप्स में सायनी घोष एक जैसी ही साड़ी पहने हुए भी नजर आ रही हैं, इससे भी इशारा मिलता है कि एक ही समय की दोनों क्लिप्स हो सकती हैं। संसद में दिए गए किसी भाषण से इसे उठाया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि सांसद सायनी घोष का वायरल हो रहा वीडियो कब का है। दूसरा सवाल ये कि ये कहीं सांसद सायनी घोष के बयान को दो हिस्सों में बांटकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानना।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सायोनी घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो 29 जुलाई 2025 का है। घोष ने ये भाषण संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था। 16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे।
3: सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही, हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
4: इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, पाकिस्तान को बताया जाए कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटते हैं।
3: But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। So let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
4: वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है, लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं। दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो टीएमसी के साथ थी। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
5: और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए, ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है।
4: 7 अगस्त को सायोनी घोष ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, वो भी उस वक्त के जब वो टीएमसी में ही थी। इस भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए थे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये वीडियो है, जहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक व्यक्ति घास फूस से बना किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का लग रहा है। उस वीडियो के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बाउंड्री हटाने में उसका साथ दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार पर जबरन उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गोंडा के इटियाथोक गांव गिरधरपुर में एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, लिहाजा इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग घास फूस से बनी अस्थायी दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर जबरन कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी इस हरकत का विरोध जरूर हुआ होगा। पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के जरिए यह इशारा भी मिल रहा है कि यह आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो यह घटना कब की। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जाएंगे।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात में जुटी। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले गोंडा के इटियाथोक थाना प्रभारी कमलकांत त्रिपाठी से बात की और घटना की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गोंडा के गजातपुर गांव का ही है और लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम गुटों के बीच कहासुनी हो गई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। वायरल वीडियो वाले एक एक्स पोस्ट के जवाब में गोंडा पुलिस ने 7 अगस्त को एक स्पष्टीकरण दिया था। इसमें पुलिस ने बताया था कि ये वीडियो 5 जून 2026 का है। गांव में एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था। बबलू उर्फ अफरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। वकील अहमद, इसरार अहमद, सलीम और तस्लीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ जो बाद में मारपीट में बदल गया। शिकायत पर पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इसके बाद 16 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। इस तरह हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो गोंडा का ही है, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये एक गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में हुए विवाद का वीडियो है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
11: महाराष्ट्र के अमरावती के एक स्कूल में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षक का तबादला होने पर उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षक के जाने की खबर से कई छात्र भावुक होकर रोने लगे और उनसे गले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने तो स्कूल का गेट तक बंद कर दिया ताकि शिक्षक वहां से जा ना सके। इस भावुक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसे देखकर लोग छात्रों और शिक्षक के बीच के इस खास रिश्ते की तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों ने जिस तरह अपने शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान जताया वो लोगों को छू गया। शिक्षक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी बच्चों ने दिखा दिया कि उनके लिए वो कितने खास हैं।
12: क्वेश्चन क्या है, वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही? यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
11: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में मैडम बच्चों की टेस्ट कॉपी देख रही हैं।
12: इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं और जानवर किडनैप हो रहे हैं।
11: जिसपे एक कॉपी को लेकर वो बहुत हंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल टेस्ट में सवाल पूछा गया था कि जंगलों से वन्य जीव कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस सवाल का जवाब एक बच्चे ने बहुत मजेदार दिया।
12: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट? क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
11: बच्चे ने कॉपी में प्रश्न का जवाब लिखा कि जंगलों से वन्य जीव इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि वो किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको जू में लाया जा रहा है। वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक्स किया है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
12: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है, हमने यही आंसर लिखवाया था।
10: मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
12: तो तुम 7 दिन नहीं आए थे तो तुम यही लिखोगे कि जानवर किडनैप हो रहे हैं इसीलिए वन्य जीव कम हो रहे हैं। किडनैप किए हो क्या तुम? किसको? बकरी को लेके?
13: परी के दर्शन कराती हूँ, परी के इंस्टाग्राम और बॉलीवुड वाली ही रियल लाइफ परी दिखाती हूँ।
11: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत ले रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि आखिर बेटी क्यों अपने पिता की दुलारी होती है। इस दृश्य को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है वीडियो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है। वहां पर पिता अपनी बेटी की गोद में सिर रख कर सोया हुआ है। इस दौरान बेटी भी बिना कोई सवाल जवाब किए पापा के बालों को सहला रही है। प्यार, अपनापन और देखभाल जताने का ये खूबसूरत तरीका लोगों को पसंद आ रहा है।

देशभक्ति और उत्साह की एक प्यारी सी झलक लद्दाख के एक छोटे से गांव से सामने आई, जहां नन्हे बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे दिखे। बच्चों के मासूम चेहरे, सादगी भरी तैयारियां और देश के प्रति उनका उत्साह लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लद्दाख के गांव का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व महसूस करने का खास दिन है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई हाथ में तिरंगा लेकर चलता दिख रहा है, तो कोई उस दिन होने वाली परेड की तैयारी कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बता रही है कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार उन्हें भी उतना ही रहता है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। दरअसल पिता को जब घर के पास बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गया, उसे ढूंढने लगा। खोजबीन के दौरान बच्ची सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठी मिली और एक छोटे पपी के साथ ऐसे बातचीत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये प्यारा और मासूम पल इंटरनेट पर काफी पसंद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां पढ़ाई में व्यस्त बच्चों के बीच एक कुत्ता बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा और कुछ ही देर में वो पूरी स्टडी सेशन की जान बन गया। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं। सभी अपने अपने पढ़ाई के काम में बिजी हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत नजर आ रहा है। इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचता है। आमतौर पर कोई कुत्ता बच्चों के बीच पहुंचता है तो उसके साथ खेलने या उसे प्यार करने के लिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को परेशान करने के बजाय चुपचाप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। कुत्ते को जैसे ही आराम करने के लिए सही जगह मिली, वो वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में एक बच्चे की गोद में जाकर आराम से सो भी गया। आसपास बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और डॉगी अपनी ही दुनिया में सुकून से झपकी लेता रहा। उसकी सबसे प्यारी बात यही थी कि उसने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, ना कोई शरारत, ना भौंकना, ना ही बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़। वो तो बस आराम से लेटकर अपनी नींद पूरी करता नजर आया।

इन दिनों सावन की कावड़ यात्रा पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग और बम बम भोले और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे।

दरअसल दो शिव भक्तों ने अपनी साधारण सी बाइक को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी का बिल्कुल जीवंत रूप दे दिया। जी हाँ, एक चलती फिरती नंदी बाइक। वीडियो में इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया

0: बाइक को एक अद्भुत और असली जैसा लुक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी को ही सफेद रंग के मुलायम और रोएदार कवर से ढका गया, जो बिल्कुल नंदी की खाल जैसा एहसास कराता है। बाइक की हेडलाइट के ठीक ऊपर नंदी महाराज का एक बेहद खूबसूरत और अस्थायी चेहरा लगाया गया, जिसे देख पहली नजर में धोखा हो जाए कि ये कोई असली बैल है या बाइक। दो श्रद्धालु इस अनोखे वाहन पर बड़े गर्व के साथ सवार होकर कांवड़ यात्रा के जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस का है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। लड़की ऑटो ड्राइवर से कुछ देर रुकने की इजाजत मांगती है। वो उससे कहती है कि क्या वो करीब 5 मिनट के लिए ऑटो रोक सकता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है। ड्राइवर भी बगैर किसी परेशानी के उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए ऑटो रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है, तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से इनकार करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: Good news today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है। लेकिन इस बार आजादी का जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदियों और झीलों की लहरों पर भी नजर आने लगा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 150 बोट और इन बोट्स पर शान से लहराता तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा वाकई देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। यहां शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब

शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील। दोनों जगहों पर खूबसूरत नजारा, वो तिरंगा कितनी शान।

0: देशभक्ति, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है सहारनपुर की गौशाला, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ ही रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। देशभक्ति के रंग में रंगा ये छोटा सा तिरंगा बाज दिखने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका बहुत खास है। ये बाज प्लास्टिक या फिर किसी सिंथेटिक मटीरियल से नहीं, बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। सहारनपुर की इस गौशाला में गौवंश संरक्षण के साथ ही गोबर के उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पिछले साल करीब 3000 बैच बनाए गए थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 पहुंच गई है, यानी कि हर साल इस स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल पहल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमत गोबर से तैयार एक तिरंगा बैच की अगर कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए ही है। वहीं गोबर से बने ये बैच पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें गमले में डाला जा सकता है जहां से ये खाद भी बन जाएगी। तो खास राखियां भी रक्षाबंधन से पहले तैयार की जा रही हैं। सिक्किम के धेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां भारत चीन सीमा के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आजादी दिवस समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती इलाके में उत्साह का संदेश भी देखने को मिला। बर्फीली हवाओं और बेहद चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट न सिर्फ युवाओं के खेल कौशल का एक मंच है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करता है। इस भव्य आयोजन में खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका उत्साह भी देखने लायक था। इस खास कार्यक्रम का मकसद स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा। दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी। दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2,00,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग। भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट। समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान। पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी। सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िया। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार। गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भोलेनाथ जो बेलपत्र और धतूरे के साथ ही जलाभिषेक के अर्पण से वरदान लुटा देते हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे आभूषण की महिमा बताने जा रहे हैं जो दिव्य और मंगलकारी माना जाता है। आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी महाशक्ति की, शिव के प्रिय रुद्राक्ष की, जो माना जाता है भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। शिव कृपा के लिए कई उपाय बताए गए हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग इन्हीं उपायों में से एक है। रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ? आखिर रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानिए।

0: वो जन्मा है रुद्रनाथ के रुदन से। उसकी उत्पत्ति मानी जाती है त्रिनेत्रधारी के नेत्रों से, जिसे देवाधिदेव महादेव के अंतर्मन का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसका प्राकट्य होना ध्यान मग्न महादेव की लीला का सार है। ये रुद्राक्ष है जिसे महादेव की शक्ति माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि धरती पर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का विवरण मिलता है। रुद्राक्ष जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में कही गई है, जो महादेव का आभूषण है, जो शिव को प्रिय है, जिसे शंभुनाथ की शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
1: भगवान शिव की उपासना में भस्म का, बेलपत्र का, भांग, धतोरा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्र के अश्रुओं से निकला ये वो अनमोल मोती है जो लोगों के जीवन में न सिर्फ आने वाले संकटों को दूर कर सकता है, बल्कि ये साधक की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करवा सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे महादेव की महाशक्ति कहे जाने वाले रुद्राक्ष की महिमा, साथ ही ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय तथा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंशुओं से पैदा हुए थे। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं।
1: रुद्राक्ष के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। कैसे? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं और इस शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है। जो भी धारण करता है या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं और उसको मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं।
0: माना जाता है कि कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की सनातनी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि से लेकर संतों की दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा है शिव का ये आभूषण। मान्यता है कि रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसके प्रयोग से मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप जानते समझते हैं उससे कहीं अधिक है इसकी शक्ति। रुद्राक्ष की शक्ति को मापना भी आसान नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल अचूक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच की तरह काम करके परेशानियों को दूर करता है। काम बनने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है। अब आपने चमत्कारी रुद्राक्ष का महत्व तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है? रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिलेगा सिर्फ लाभ।
1: जो व्यक्ति भी इसे धारण करता है और भगवान शिव को चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करते समय सावधानी बरतनी है कि सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए।
0: रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर यह चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरों की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। विशेष लाभ पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है और अगर सही रुद्राक्ष धारण किया जाए तो जरूर पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। रुद्राक्ष के वैसे कई प्रकार भी हैं, हर किसी की एक पहचान है, पर असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की खुद पहचान कर सकते हैं, जानिए।

0: भोलेनाथ के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है महाकाल के लिए सबसे खास। रुद्राक्ष धारण करके करे महादेवों की भक्ति। एक रुद्राक्ष से मिल सकती है शिव की शक्ति। भोलेनाथ का वरदान है रुद्राक्ष। शिव शक्ति का प्रताप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है महादेव के अश्रुओं से।
1: भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान मुद्रा में बहुत समय तक भगवान शिव बैठे रहे। अचानक उनके मन में किसी बात को लेकर ग्लानि हुई। उनके नेत्र से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं, निकल जाती हैं। और यही जो उनकी दो बूंदें हैं भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गई।
0: कहते हैं भगवान शिव आंखें बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे, और जब ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बनकर जमीन पर गिरे। उनके अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा उगा, जिससे जुड़ी है एक पौराणिक कथा। कथा कहती है कि एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बहुत बलशाली और पराक्रमी था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कथा कहती है कि भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था, जिससे त्रिपुर का वध हो सकता था, लेकिन उस अस्त्र का तेज बहुत ज्यादा था। कथा कहती है कि त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। कथा है कि अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुओं की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला समाज में मान सम्मान पाता है। ये महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि तन मन की ऊर्जा को संतुलित रखने की औषधि है, जिसे धारण कर आप भी पा सकते हैं महादेव की महाकृपा। चलिए आपको बताते हैं कि एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष के विशेषताओं पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: अब जो 14 प्रकार है रुद्राक्ष के, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है साक्षात शिव स्वरूप है। इसे धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है, यह सर्व सुख प्रदायक है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदायक है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह कालाग्नि स्वरूप है, पाप का नाश करके उत्तम फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है।
0: रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए मंत्र जाप में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करे तो जीवन की हर दिशा में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि हर मनोकामना पूरी कर सकता है रुद्राक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है, पापों का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करने वाला है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, जो सुख धन और रूप प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, आयु में वृद्धि करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि स्वरूप है, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है नौ मुखी रुद्राक्ष में।
0: शीघ्र विवाह के लिए दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिक्षा और एकाग्रता के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष, स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए एक मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, नौकरी की बाधाओं से बचने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष, भक्ति के लिए ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मस्तक पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शांति मिलती है तथा शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सभी प्रकार के सुखों के को प्रदान करने वाला माना गया है। एकादश मुखी रुद्राक्ष, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष सभी प्रकार के कष्टों का समन करने के लिए। द्वादश मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, सामान्य जनों के लिए अच्छा माना गया है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष जो है विश्व देवों के रूप में है, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, जो परम कल्याणी है, कल्याणकारी है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना गया है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चमत्कारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिय रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष होगा तो आपके पास से मुसीबतें हो जाएंगी कोसों दूर। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में ज्योतिष के जानकार।
1: असली जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो बनावट, एक रुद्राक्ष की बनावट दूसरे रुद्राक्ष से भिन्न होगी, समान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक के जो रुद्राक्ष होते हैं, नकली होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे कि जो रेखाएं हैं असली रुद्राक्ष पर ऊपर से नीचे तक अस्पष्ट और प्राकृतिक रेखाएं होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। असली दाने की ऊपरी सतह खुरदरी और असमान होती है। दो असली रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसका ध्यान देना जरूरी है। जबकि त्रिशूल, ओम या विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं, वह असली में नहीं पाए जाते। यह नकली रुद्राक्ष का जो फल है, रुद्राक्ष है, उस पर बनाए जाते हैं लक्ष्य। असली रुद्राक्ष भारी होने के कारण पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष पानी के ऊपर तैरता रहता है।
0: उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता, ना ही उस पर कोई असर होता है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूबता नहीं है। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग से गहरा हो जाता है। काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाले रुद्राक्ष ज्यादातर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। रुद्राक्ष को सुई से कुरेदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप नहीं होगी। तो देखा आपने मनोकामना पूर्ति का ये रुद्राक्ष किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब आप भी रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कैसे शांत होंगे शनिदेव, आगे जानिए।
2: माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहां तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से समाप्त किया जा सकता है।
0: शनि पीड़ा का अंत करेगा रुद्राक्ष, शनि की कृपा का पात्र बनाएगा रुद्राक्ष। माना जाता है कि महादेव के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शून्य हो जाता है। साथ ही साथ जानकार ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वालों पर ग्रहों की पीड़ा का असर नहीं होता, महादेव के प्रताप से उनके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रुद्राक्ष से लाभ हासिल कर सकते हैं।
1: षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, भस्म से स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी वस्तुओं से उसका पूजन उसी प्रकार करेंगे जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार, 1008 बार या यथाशक्ति जप करेंगे। अंत में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार जप करके भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा।
0: यही तो है रुद्राक्ष की शक्ति। अगर आप भी शनि के कष्टों से दो चार हो रहे हैं तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष, क्योंकि शास्त्रों में शनि के गुरु हैं महादेव। माना जाता है कि जो भी साधक महादेव के आभूषण को धारण करता है और धर्म सम्मत आचरण रखता है उस पर शनि कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को शनि परेशान नहीं करते हैं और वो साधक शनि का साढ़े साथी और ढैया होने पर भी सुख से रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शनि से जुड़ी बाधाएं कैसे आप रुद्राक्ष की मदद से दूर कर सकते हैं। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3-10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। सेहत की दिक्कतें हो तो शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साढ़े साथी या ढैया हो तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। माना जाता है कि रुद्राक्ष से जुड़े ये महाप्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं और साथ ही नियमों का पालन करते हैं तो शनिदेव आप पर भी मेहरबान होंगे, जिससे आपको जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात उस अभियान की जो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा कैंपेन की, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने हरी झंडी दिखाई। इस तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। इस कैंपेन का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

0: हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और लबों पर तराने। देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत ये तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हैं, जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। कहीं स्कूली बच्चों ने तिरंगा पद यात्रा निकाली, कहीं पुलिस वालों के साथ मिलकर आम लोगों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, तो कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़े जोश और उत्साह के साथ की।
1: इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
2: सर, आज की जो रैली थी, कौन कौन इसमें शामिल है?
1: आज की रैली में 132 बटालियन से श्री W.R. जोशुआ कमांडेंट 132 बटालियन, सिविल पुलिस डे से SDPO यासिर परे और टिंडल बिस्को स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने भाग लिया।
0: हाथों में लहराता हुआ तिरंगा लेकर जब सैकड़ों लोग घाटी की सड़कों पर उतरे तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने तिरंगे को सलाम किया और देशभक्ति के नारे भी बढ़ चढ़कर लगाए। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के साथ नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना है।
3: आज यहाँ पर बगतौर हाई ग्राउंड में तिरंगा रैली निकाला गया। इसमें तमाम स्कूल थे, तमाम प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी थी बगतौर की, और पुलिस भी थी, आर्मी जवान भी थी, सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तिरंगा लहरा चलाया।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदू ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हम
5: जम्मू कश्मीर में हर जगह हर कोने में आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है और लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले यह अभियान भव्य रूप ले चुका है, जिसकी गवाही दिल्ली से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां तिरंगा बाइक रैली हुई, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई। ये तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस रैली का हिस्सा बने।
6: हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज है देशवासियों को आज?
7: देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब लोगों को देश के लिए समर्पित होकर के देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा को जो है लेकर के जो लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उन लोगों का ऐसे को साक्षी मान करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग इस अमृत काल में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा, हम सब लोग तिरंगे को साक्षी मान करके हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें, इस लक्ष्य को लेकर काम करें।
6: देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
8: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
0: तिरंगा यात्रा से जुड़ी ऐसी ही रौनक कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन को तिरंगे की थीम पर रोशन कर दिया गया है। 2 दिन बाद देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश में जश्न ए आजादी की ये शानदार जानदार तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।